0: सब कुछ देकर अपने निवास स्थान पर लौट आए और हिमालय ने विवाह से संबंधित सामान का संग्रह कर किया। पर्वतों की स्त्रियां पार्वती का श्रृंगार भी करने लगी। वेद व्यास ने नारद जी के कहने पर ही यह ग्रंथ लिखा था। अब विभिन्न प्रकार के पर्वत, देवालय पर्वत दिव्य रत्नों के साथ आए, मंदराचल पर्वत विभिन्न रत्नों के और मणियों सहित वहां पहुंचे। इसी प्रकार से सभी पर्वत अपने अपने परिवारों के साथ रत्न मंडित होकर वहां पर पहुंचे शोभा बढ़ाने के लिए हिमालय के घर में। अब लीना जी और विवाह की क्या तैयारियां वहां चल रही थी। यह तो अद्भुत अलौकिक विवाह था जिसे देखकर देवता तो प्रसन्न होते हैं, हम तो सुनकर ही ऐसा लग रहा है कि हमारा तो जीवन ही सफल हो गया सुनने मात्र से। और लग रहा है कि कैसा दृश्य रहा होगा, कितना अलौकिक दिव्य दृश्य रहा होगा वो जिन्होंने इसका दृश्य में शामिल हुए, जो विवाह में शामिल हुए। अब आगे किस प्रकार से यह विवाह चला और क्या तैयारियां और हुई, वह सब हमारे श्रोताओं को भी सुनाइए और हमें भी।
1: बिल्कुल सही बात है, जैसा कि आपने कहा कि हमारा जीवन ही सफल हो गया
0: जी।
1: तो शिव पुराण ऐसी कथा ही है, ऐसी अद्भुत कथा है जो रामायण की तरह परम पवित्र है। और हर घर में जिस तरह से घर घर में रामायण बांची जाती है, ठीक उसी तरह शिव पुराण पुराणों में महा शिव पुराण है, जिसकी कथा को पंडितगण जो विज्ञजन है, विद्वान जन है, वो इसकी कथा को बताते और जो भी इस कथा को सुनता है या पढ़ता है उसके कर्ण में कुछ ना कुछ तो जाता है, अमृत तो घुलता ही है। अगर हम अमृत की बातें सुनेंगे, अमृत रस पिएंगे, तो हमारा जीवन अमृत में क्यों नहीं बने। और यह अमृत की ही कथा है, क्योंकि भगवान शिव ने क्या किया था, सारे विष को पी लिया था। अमृत पीने के पहले का प्रकरण जो है, उस प्रकरण में यही हुआ था कि पहले समुद्र मंथन में विष निकला था और उस हलाहल को पीने के लिए कोई तैयार नहीं थे, कोई उसके योग्य नहीं थे, कोई उसके पात्र नहीं थे
0: जी।
1: और शिव जी ने उसे पी करके पूरे संसार को बता दिया कि वे हम मनुष्यों के भी मन रूपी विष को पी सकते हैं। और मन के अंदर जो विष पलता है, ईर्ष्या का, द्वेष का, घृणा का, नफरत का, उन सारे विषों को अगर हम निकालना चाहें तो हमारे अकेले से संभव नहीं होगा। शिव की शरणागति से यह सब संभव है कि हमारे अंदर जो मन है, वह मन एक छोटा सा बच्चा है, वह उत्पाती भी है, वह बंदर की तरह प्रतिक्रिया क्रिया भी करता है। तो हमें अगर अपने मन को सुंदर बनाना है, समस्त दुर्गुणों से दूर करना है अपने मन को, तो भगवान शिव की शरणागति कर ले तो हमारा मन भी सुंदर हो जाएगा। तो सुंदर शिव, अमृत शिव, अमृतोपम शिव, दिव्योपम शिव, दिव्यादि दिव्य शिव, तो शिव ऐसे हैं तो उनकी कहानी तो दिव्य होगी ही। और दिव्य कहानी से हमें दिव्यता की अनुभूति होगी ही। अगर हम देवत्व को धारण करेंगे तो हम और अधिक दिव्य होते चले जाएंगे। इस शिव पुराण की महिमा यही है, इस शिव पुराण का महागुणगान यही है कि हम इसे न केवल सुने, न केवल पढ़ें, अपितु इसे आचरण भी में भी उतारें। और आचरण में जैसे जैसे शिव पुराण उतरेगा, वैसे वैसे हम शिवत्व की ओर बढ़ते चले जाएंगे और जीवो केवल शिव की अनुभूति भी हमें होगी कि हाँ, जन्म जन्मांतर का परिश्रम हमारा सार्थक हो जाएगा जब शिवत्व की हमें अनुभूति होगी।
0: लीना जी, मैं ये भी देख रही हूँ कि जब से हम लोग ये शिव पुराण की व्याख्या आपने शुरू की है और हमने शुरू की है सुननी और अपने श्रोताओं को भी सुनानी, तो मैं ये देख रही हूँ कि जीवन की कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान शिव पुराण में ना हो। तो हम क्यों फिर इधर उधर भटकते रहते हैं, यहाँ खोज वहाँ खोज, यहाँ पूछ वहाँ पूछ, सीधे शिव की शरण में ही क्यों नहीं आ जाते जहाँ सारी ही समस्याओं का समाधान है। फिर हम परेशान क्यों होते हैं, फिर समाज में लोग इतने दुखी क्यों रहते हैं। तो अब आप ये इसके विषय में कुछ कहना चाहेंगी।
1: बिल्कुल, अगर मन में कीचड़ होगा तो हम शिव तक नहीं पहुँच पाएंगे, क्योंकि शिव कीचड़ रहित है। कीचड़ से लिपायमान हमारा मन है तो हम शिव जैसे दुधिया चंद्रमा को कैसे देख पाएंगे। शिव को अगर देखना है, शिव को अगर समझना है, तो शिवत्व को उतारना ही पड़ेगा। कहते हैं कि मित्र की मित्रता कब होती है, जब दोनों के गुण समान होते हैं। तो भक्त भगवान की ओर जब अग्रसर होगा, भक्ति उसमें उतरेगी, तो शिव अपने आप उसके मन रूपी दर्पण में दिख जाएंगे। लेकिन मन रूपी दर्पण अभी मैला है।

0: इसलिए वो दिख नहीं रहे।
1: बोलिए। ये आप बिल्कुल सत्य कह रही हैं कि मन में जो बैठे हुए हैं हमारे शत्रु, तो उसको तो पशुपतिनाथ ही निकाल सकते हैं, क्योंकि वही जो पशु बैठे हुए हैं, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार ईर्ष्या द्वेष, तो ये जो इतने सारे पशु बैठे हुए हैं, इनको अगर हमें निकालना है तो हमें भगवान की शिव की शरण ही लेनी होगी, और कोई उपाय नहीं है।
0: क्योंकि शिव को पशुपतिनाथ भी कहा गया।
1: हाँ जी,
0: आपने कहा कि काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या अहंकार आदि जो है, ये क्या है? ये पशु है,
1: पशु
0: है। हमारे मन के पशु हैं। हाँ, अब इन सारे पशुओं को नाथने के लिए पशुपतिनाथ को तो आना ही पड़ेगा।
1: हाँ,
0: तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए हमारे अंतर की आर्त पुकार, करुण पुकार होनी चाहिए कि हे शिव, आप मुझे अपनी शरण में ले लें और हमें अपने जैसा भोला बना दें, अपने जैसा निर्मल बना दें, निष्कलंक बना दें। तो देखिए, भक्ति, भक्त और भगवान से सजी हुई ये दुनिया कितनी खूबसूरत लगेगी।
1: लीना जी, एक बड़ी प्रचंड जो समस्या आजकल समाज में देखने को मिल रही है, देख उसको सुनकर भी और देखकर भी मन बहुत दुखी होता है कि उसका समाधान क्यों नहीं ढूंढ पाते। हमारे पास इतने, जिसको कहना चाहिए कि अमूल्य धरोहर ये ग्रंथ हैं, इनमें सब कुछ है, क्यों नहीं इधर की तरफ बढ़ता है हमारा समाज, कि आज भाई भाई की हत्या कर रहा है द्वेष के कारण, ईर्ष्या के कारण। बाप बेटे की हत्या कर रहा है, बेटा बाप की हत्या कर रहा है, माँ की हत्या कर रहा है। इतना तो कुंठित समाज हमारा कभी पहले था नहीं, अब क्या हो गया इस समाज को? कैसे हमारे यहाँ से ये हमारे जो विचारों की और जो संस्कारों की ये कहाँ खो गए हैं, हमने कहाँ खो दिया इनको?
0: आपके प्रश्नों में ही समाधान छुपा हुआ है।
1: क्योंकि
0: हम लोग भक्ति युक्त शिव पुराण कर रहे हैं, जिस दिन मानव मात्र में भक्ति का सूर्योदय जगेगा, उस दिन सारे अंधकार अपने आप पलायित हो जाएंगे, भाग जाएंगे, दुम दबा करके भाग खड़े होंगे। तो जैसे अंधेरे कमरे में बहुत सालों से कमरा अंधेरा पड़ा हुआ है, लेकिन उसमें ट्यूबलाइट है, पर उसे जलाना कोई नहीं जानता। जैसे ही आप अंधेरे कमरे में प्रवेश करेंगे, सालों बाद मान लीजिए आप विदेश से आए हैं और उस अंधेरे कमरे में प्रवेश करेंगे, तो आपको लगेगा हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा है, कौन सा सामान कहाँ रखा है ये आपको पता नहीं है। लेकिन ट्यूबलाइट जलाते के साथ आपका अंधेरा दूर हो जाएगा, कमरे का अंधेरा दूर हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि कौन सा सामान कहाँ रखा है। ठीक उसी तरह हमारे मन के अंदर जो इतने प्रश्न हैं, उन सारे प्रश्नों का समाधान भक्ति है। आज के युग में, कलयुग में कहा गया है कि सबसे उत्तम अगर कोई चीज है, विधि है, तो वो है भक्ति। भक्ति से मनुष्य झुकना सीख पाता है, भक्ति के कारण मनुष्य कामी नहीं रह पाता, क्रोधी नहीं रह पाता, भक्ति के कारण उसके अंदर लोभ नहीं हो पाता। अगर लोभ है तो सिर्फ भगवान का लोभ है, अगर काम है, रति है, तो सिर्फ भगवान के चरणों से रति है, अगर ये क्रोध है तो सिर्फ उस पर कि जो समाज में विकृतियां छाई हुई हैं उस पर क्रोध है। तो भक्त बनो तो ऐसे कि प्रहलाद बन जाओ।
1: अब लीना जी, जैसे हमारे ऋषि मुनि तो अपने व्याख्यान से, धर्म उपदेश से और अपने प्रवचनों से हमारे समाज को प्रेरित कर ही रहे हैं, अच्छी शिक्षा दे ही रहे हैं, समाज को सही राह पे लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक जो आम आदमी का कर्तव्य है, एक आदमी, सामान्य आदमी इस क्षेत्र में कुछ करना चाहता है अगर, कि मैं कुछ ऐसा योगदान दूं, मैं भी लोगों के मन में बसी हुई वो ईर्ष्या द्वेष जो नाश कर रही है परिवारों का, उसको कैसे हटाऊं, तो अब इस विषय में एक आम इंसान अपना कैसे सहयोग दे?
0: मंजू जी, वास्तव में
1: जी
0: उस व्यक्ति को यह नहीं सोचना है कि मैं कैसे हटाऊं, वो हटाने वाला कोई नहीं होता। आप अपने चरित्र को इतना खूबसूरत बना लीजिए कि मुरमुर करके ये दुनिया आपको देखने लगे और आपके अनुकूल आचरण करने लगे। बुद्ध किसी को बुलाने नहीं जाते हैं कि तुम मेरे पास आओ, तुम मेरे पास आओ, लेकिन बुद्ध के पास सारी दुनिया जाती है। महावीर किसी को बुलाने नहीं जाते, लेकिन महावीर के पास सारी दुनिया जाती है। तो आप बुद्ध और महावीर की तरह बन जाइए, आपको किसी को बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन आपके आसपास का वातावरण इतना पवित्र हो जाएगा कि हर कोई कह उठेगा, देखो यह है महान आत्मा। तो क्षुद्रता से महानता की यात्रा हर मनुष्य को करनी होगी और इसके लिए ही शिव पुराण है। तो अब आगे चलते हैं इस कहानी की ओर। कहते हैं रुद्र संहिता के पार्वती खंड के 37वें अध्याय में कि अभी तक हम लोगों ने जो वर्णन किया था, उस वर्णन में पर्वत राजों, हिमालय के जो मित्र थे, पर्वत मित्र थे, वो सब आए थे, जिसमें कि उदयाचल, अस्ताचल, मंदराचल, विंध्यगिरी, सुमेरु पर्वत, मलयगिरी पर्वत, देवालय पर्वत आदि बहुत सारे पर्वत आए, त्रिकूट पर्वत, चित्रकूट पर्वत, ये सब आए। अब नदियों की चर्चा की जा रही है, जहाँ पर्वतों की चर्चा की गई है वहाँ नदियों की चर्चा नहीं करेंगे तो ये पर्वत की चर्चा अधूरी रहेगी, क्योंकि नदियाँ क्या है, पर्वत पुत्रियाँ हैं। नदियाँ क्या है, पर्वत से ही निकलती हैं जो सागर तक पहुँचती हैं। तो इन नदियों की चर्चा अब की जा रही है इस शिव पुराण में। अब देखिए क्या कहते हैं, कहते हैं ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हिमालय द्वारा निमंत्रित सभी पर्वत प्रसन्नता पूर्वक शिव पार्वती का विवाह देखने के लिए वहां आए, लेकिन उस समय नदियां भी आईं और उन नदियों का नाम लेते हुए वे कहते हैं, तदा सर्वे समायाता सोनभद्रादय खलु बहु शोभा महाप्रीत्या विवाह शिवयोरिति, नद्य सर्वा समायाता नाना अलंकार संयुता दिव्य रूप धरा प्रीत्या विवाह शिवयोरिति, गोदावरी च यमुना ब्रह्म स्त्री वेनिका तथा आययो हिमशैलम वै विवाह शिवयोरिति। कहते हैं कि उस समय सोनभद्र आदि सभी महानदियां प्रेम से शिव शिवा के विवाह में आई, और भी सभी नदियां दिव्य रूप तथा अनेक आभूषणों को धारण कर शिव शिवा का विवाह देखने के लिए वहां आई। गोदावरी, यमुना, ब्रह्मपुत्र, त्रिवेणी, ये सभी शिव शिवा का विवाह देखने के लिए हिमालय के घर आई। और आगे वो कहते हैं, गंगा तु सु महाप्रीत्या नाना अलंकार संयुता दिव्य रूपाययो प्रीत्या विवाह शिवयोरिति, अनेक अलंकारों से अलंकृत गंगा नदी अत्यंत प्रेम से उत्तम रूप धारण कर शिव शिवा का विवाह देखने के लिए वहां आई। नर्मदा तु महामोदा रुद्र कन्या सरित द्वारा महाप्रीत्या आजगामासु विवाह शिवयोरिति। कहते हैं कि नर्मदा और महामोदा, रुद्र कन्या, सरित द्वारा, ये सभी अलंकारों को धारण कर बड़े प्रेम से शीघ्र शिव शिवा के विवाह में आई। चारों ओर से इन निमंत्रित लोगों के आ जाने से सब प्रकार से सुशोभित हिमपुरी भर गई। चारों ओर से उत्साह युक्त वह नगरी जिसमें ध्वजा तोरण लगे हैं, तंबुओं के लग जाने से, सूर्य के प्रभाव के हट जाने से जिसकी शोभा बढ़ गई है, हिमालय ने भी घर में आए हुए उन आमंत्रित अतिथियों का आदर पूर्वक यथोचित सम्मान किया, उन सबके निवास की अलग अलग व्यवस्था की तथा अनेक प्रकार की आवश्यक वस्तुओं को उपलब्ध कराकर उन्हें पूर्ण रूप से संतुष्ट किया। अब देखिए हिमालय क्या थे, पर्वतराज थे। अब पर्वतराज के पास सारे पर्वत, सारी नदियां आ रही हैं। मित्र, कोई मित्र के रूप में आ रहे हैं, कोई हिमपुत्री के रूप में आ रही है, तो बहुत सारी चीजें थी जो हिमालय को व्यवस्था करनी थी, और उन्होंने समुचित व्यवस्था की इन लोगों की, जिससे कि कोई असंतुष्ट ना हो। क्योंकि वधू पक्ष क्या करता है, हमेशा यह कोशिश करता है कि जितने भी घराती बराती जो भी आए हैं सभी का यथोचित आदर हो, यथोचित सत्कार हो और उन्हें सम्मान मिल सके, जिससे कि वे निंदा के पात्र न बने। और दूसरी बात कि जो इतनी दूर से कष्ट उठा करके उनके घर आए हैं उन्हें कोई भी जो है असम्मानित न करे, अनादर न करे, वे खुश हों, प्रसन्न हो और प्रसन्न हो करके यहाँ से विदाई। तो अभी तक पर्वत और नदी की बात की गई है। तो अब रुद्र संहिता के पार्वती खंड के अध्याय 38वें में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। अब इस 38वें अध्याय में क्या कहा जा रहा है हम देखते हैं और सुनते हैं। कहते हैं, ब्रह्मोवाच, अत्शैलेश्वर प्रीतो हिमवान मुनि सत्तम स्वपुरम रचयामास विचित्रम परमोत्सवम सिक्त मार्गम संस्कृतम च शोभितम परमर्धिवी द्वारी द्वारी च रंभादी मंगलम द्रव्य संयुतम प्रांगणम रचयामास रंभा तंभसम समन्वितम पट्ट सूत्रय सन्निबद्धम रसाल पल्लवान्वितम मालती माल्य संयुक्तम तोरण सुप्रभम शोभितम मंगल द्रव्य चतुर्दिक्षु स्थित सुवह। बहुत सुंदर पंक्तियां हैं। कहते हैं कि हे मुनिवर, उसके बाद गिरिराज हिमालय ने प्रसन्न होकर अपने नगर में परम उत्सव करवाया। चारों ओर सड़कों पर पानी छिड़कवाया, दोनों ओर सड़कें सजा दी गईं, प्रत्येक दरवाजों पर केले आदि के पेड़ों को लगवा कर उन्हें सुशोभित कर दिया गया। देखिए पहले क्या होता था, पहले सजावट होती थी केले के पेड़ से, आजकल केले के पेड़ बहुत कम दिखते हैं। केला क्या है, मंगलकारी है, और केले का हर पूजन पाठ में केले का प्रयोग होता है, तो केले के थंब हर जगह लगाए जाते हैं। पहले भी मैंने देखा था दीपावली के समय में, आप अभी भी छोटे शहरों में जाएंगी, गांव में जाएंगी, तो वहाँ केले के थंब लगाए जाते हैं और उन पर दीपक लगाया जाता है, बड़ा खूबसूरत लगता है ये दृश्य देखने में। तो आजकल तो लाइट की परंपरा है, जगह जगह लाइट लगा
1: देते हैं। पहले सारा प्राकृतिक सज्जा होती थी,
0: पहले प्राकृतिक सज्जा होती थी, दीपक जलाए जाते थे, क्योंकि दीपक क्या है, वो तेल बाती उसमें जो जलता है वो बहुत खूबसूरत लगता है देखने में, तो दीपकों से सजाते थे पहले। तो केले आदि के पेड़ लगाकर उन्हें सुशोभित किया गया मार्गों को, और आंगन में भी केले के खंभे लगाकर उन पर रेशमी वस्त्र लपेट दिए, और चारों ओर आम के पत्ते लगा दिए। मालती की मालाओं के सुंदर तोरणों तथा अन्य मंगल द्रव्यों से चारों ओर सुशोभित कर दिया गया। इस प्रकार पर्वतराज ने सभी आयोजन अपनी कन्या की प्रसन्नता के लिए, मेरी कन्या प्रसन्न हो, क्योंकि वो कन्या साधारण थी नहीं, आदिशक्ति थी, और ऐसा हिमालय को आभास भी हुआ था, पता भी लगा था कि मेरी कन्या जो है साक्षात आदिशक्ति है, और साक्षात आदिशक्ति ने उनके घर में जन्म लिया था, यही तो परम हर्ष का विषय था। सभी जगह आदिशक्ति तो जन्म लेती नहीं है, हाँ आदिशक्ति का अवतरण अगर कहा जाए तो ये पूरा संसार आदिशक्ति का अवतरण ही है, चाहे वह चींटी से लेकर के मनुष्य हो, कोई भी हो, ऋषि मुनि अवतारी पुरुष, सब में आदिशक्ति का ही अवतरण है। लेकिन हम ये बात समझ नहीं पाते, अपने शरीर को मंदिर मान नहीं पाते। जिस दिन हम अपने शरीर को मान लेंगे कि हमारा शरीर दिव्योपम मंदिर है, ऐसा मंदिर कहीं और मिलेगा ही नहीं, तो हम सच में अपने शरीर के स्वास्थ्य के लिए कार्य करेंगे, ना कि शरीर से गलत कार्य करेंगे, ना कि शरीर को मांस मदिरा प्रदान करेंगे। लेकिन हम मंदिर ऐसे मान नहीं
1: मानते ही नहीं
0: है। इस शरीर रूपी मंदिर में जो मूरत है वो है हमारी आत्मा, और उस आत्मा रूपी मूरत में जो हृदय है वो है परमात्मा। तो आत्मा और परमात्मा का संगम है हमारे शरीर में, ये मूर्ति रूप में हमारे अंदर स्थापित है, इनकी धड़कन हम सुन सकते हैं, इनका स्पंदन हम सुन सकते हैं, लेकिन तब जब हम इन्हें जीवंत माने, जब हम इन्हें यह माने कि हम यही है, कैसे, तत्त्वमसि जो वह है वही हम है, सो अहम जो वह है वही हम है।
1: अब लीना जी वही कि यहाँ से बात सिद्ध होती है कि हमारा शरीर ही माध्यम है उस तक पहुँचने का, क्योंकि शरीर से मन में उतरने के लिए तो शरीर को भी स्वस्थ रखना होगा
0: जी।
1: तो जब शरीर को स्वस्थ रखना है तो फिर ऐसे तामसिक भोजन को तो दूर ही रखना चाहिए, उसका क्यों अपना ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि उसका तो असर फिर तामसिक ही होगा, प्रभाव भी शरीर पर तामसिक होगा, स्वास्थ्य पर भी प्रभाव तामसिक ही होगा।
0: एक बात यह मैं कहना चाहूंगी मंजू जी कि ये संसार जो रचा बसा है, जो रचाया है आदिशक्ति ने, वो तीनों गुणों के सन्निवेश से रचाया है। अगर तम गुण नहीं रहेगा तब भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि वातावरण में अगर कार्बन डाइऑक्साइड 0.009 ना रहे तो सारा वातावरण ही जल जाएगा, ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन से, हाइड्रोजन से, तो कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता भी बहुत ज़्यादा है, महत्वपूर्ण है, इसी कार्बन डाइऑक्साइड से नियंत्रित रहता है, जो ज्वलनशील गैस हैं वो सब नियंत्रित रहते हैं, तो तमोगुण भी आवश्यक है, निद्रा आवश्यक है, अगर निद्रा नहीं हो तो हम सब परेशान हो जाएंगे, तो निद्रा तमोगुण में आता है लेकिन आवश्यक है, लेकिन उतना ही आवश्यक है जितना हमें चाहिए, लेकिन हम उसी में रचे बसे रहेंगे तो हम तमोगुण ही हो जाएंगे। आते हैं रजोगुण पर, रजोगुण है महत्वाकांक्षा, रजोगुण है क्रिया करने की शक्ति, अगर रजोगुण नहीं रहे तो हम क्रिया ही नहीं कर पाएंगे, हम सोचेंगे ही नहीं उस विषय पर काम करने के लिए, तो इसलिए रजोगुण भी आवश्यक है। अब आते हैं सतोगुण पर, सतोगुण क्यों आवश्यक है, क्योंकि सत्य, सत्य की पूछो, सच्चिदानंद ब्रह्म, पर ब्रह्म परमेश्वर को अगर हम पाना चाहते हैं और तो हमारी गति सतोगुण की ओर होनी चाहिए, यानी कि ये सारी सीढ़ियां हैं, हम सब में ये तीनों गुण है, ऐसा नहीं है कि राम में तमोगुण नहीं है, राम में रजोगुण नहीं है, राम में सतोगुण नहीं है, ये नहीं है, लेकिन नियंत्रित अवस्था में है और वृद्धि है सतोगुण, और वो तो परमेश्वर है, तो इन तीनों गुणों से पड़े भी हैं वो लोग। तो अब सोचना ये है हर मनुष्य को कि अगर हमने जन्म लिया है तो तीनों गुण भले हैं, लेकिन हमें हर व्यक्ति परीक्षा पास करता है, पहली से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, फिर एम ए बी ए सब करता है। तो जब ये है तो उसी तरह तमोगुण से रजोगुण की ओर बढ़ना है उसे, और रजोगुण की ओर बढ़ने के लिए उसे सब कुछ देखना होगा कि कैसे निद्रा कम करें, आलस्य कम करें, प्रमाद कम करें, और उसके बाद महत्वाकांक्षा तो रहती है रजोगुण में, लेकिन क्रिया करने की शक्ति होती है तो वो सब करें। उसके बाद रजोगुण से सतोगुण की ओर हमको बढ़ना है। जब सतोगुण की ओर बढ़ेंगे तो वो प्रकाश का गुण है, प्रकाश के गुण की ओर बढ़ने के लिए ये शिव पुराण है। प्रकाश के गुण की ओर बढ़ने के लिए हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम कर सकते हैं। जैसे परीक्षा पास करने, बीए की परीक्षा पास करने के लिए आप इंटर के सिलेबस पढ़ करके जाएंगे तो क्या बीए की परीक्षा पास करेंगे? नहीं करेंगे। उसी तरह सतोगुण की भी परीक्षा है, रजोगुण की भी परीक्षा है, तो इन सारी परीक्षाओं को पास करने के लिए हमें उसी तरह की योग्यता चाहिए। तो योग्यता हासिल करते चलिए और पर पग रखते चलिए, तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सतोगुण, कोई भी गुण खत्म नहीं होगा, लेकिन उनकी संतुलन बना रहेगा। और जिस दिन संतुलन बन जाएगा इन तीनों गुणों से हम पड़े भी हो जाएंगे। तो यही हमें शिव पुराण सिखाता है
1: जी।
0: तो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं कि किस तरह से पूरे नगर को हिमालय ने सजाया, केले के थंब से भी सजाया। और उसके बाद कहता है कि उसके बाद महाप्रभावशाली गर्ग जी के सामने पूजा आदि की सामग्री प्रस्तुत की। फिर उन्होंने विश्वकर्मा को बुलाकर विस्तृत एवं सुंदर मंडप और उसके बीच में वेदी का निर्माण कराया। वेदी का निर्माण भी बहुत आवश्यक है, है? और कहते हैं, हे देवर्षि नारद, वह वितान 10,000 योजन विस्तृत अनेक शुभ लक्षणों तथा आश्चर्य कारक दृश्यों से युक्त था। वह मंडप स्थावर जंगम सबके लिए समान रूप से मनोहर था, चारों ओर से वह सुंदर था। जो मंडप बनाया गया वो चारों ओर से सुंदर था। फिर आगे आगे कह रहे हैं व्यास जी कि जंगमम विजितम तत्र स्थावरेण विशेषतः जंगमेन च तत्रासीत जीतम स्थावरम एव ही पैसा च जिता तत्र स्थल भूमि न चान्य था जलम किम ही स्थलम किम ही न विदु के अपि को विदा क्वचित सिंहा कृत्रिमाश्च क्वचित सारस्पंक्तय क्वचित शिखंडिना तत्र कृत्रिमाश्च मनोहरा। देखिए अब ये आगे बता रहे हैं प्रकृति किस तरह हास विलास से युक्त हो जाती है। जब प्रकृति और परमेश्वर की ही शादी हो रही है तो प्रकृति तो अपने ढेरों रंग दिखाएगी, इंद्रधनुषी रंग दिखाएगी। कहते हैं कि वहाँ की स्थावर रचना ने जंगम सृष्टि को और जंगम रचना ने स्थावर सृष्टि के मन को जीत लिया था, जल ने स्थल को जीत लिया था, अर्थात कहाँ जल है कहाँ स्थल है इसका निर्णय भी कोई नहीं कर पा रहे थे। कहीं बनावटी सिंह, कहीं सारसों की कतारें, कहीं मोर दर्शकों के मन को आकर्षित कर रहे थे, कहीं पुरुषों के साथ नाचती हुई बनावटी स्त्रियां भी देखने वालों के मन को मोहित कर रही थीं। इसी प्रकार प्रत्येक दरवाजे के पास मनोहर द्वारपाल बने हुए थे, हाथों से धनुषों को उठाए हुए वे बनावटी द्वारपाल वास्तविक जैसे लग रहे थे। दरवाजे पर बनाई हुई महालक्ष्मी सभी लक्षणों से युक्त होने के कारण ऐसी लग रही थी मानो साक्षात क्षीर सागर से आई हुई लक्ष्मी ही। बनावटी हाथी सभी प्रकार के अलंकारों से सुशोभित ऐसे लग रहे थे मानो स्वाभाविक ही हूँ। इसी प्रकार घोड़े घुड़सवारों से तथा हाथी हाथी पर सवार होने वालों से सुशोभित हो रहे। सारथियों से चलाए जाते हुए बनावटी रथ आश्चर्य युक्त थे, और भी वाहन पैदल सभी बनावटी बनाए गए थे। हे मुनि, देवताओं तथा मुनि जनों को चकित करने के लिए प्रसन्न चित्त विश्वकर्मा ने ये सब बनाए थे। अब बताइए, स्वयं विश्वकर्मा ने ये सब बनाया तो क्यों नहीं होगा आश्चर्यचकित? तो आजकल तो देखिए मनुष्य भी जो बना रहे हैं बहुत ही आश्चर्य करने वाली बातें हैं। पूरे आप देखेंगे कि पूरे गांव के गांव बनाए हुए हैं और लगता है कि सच में अभी बोल पड़ेंगी मूर्तियां, बोल पड़ेंगी। तो आज भी वो कलाएं हैं जीवित, और विश्वकर्मा तो देवताओं के जो है शिल्पी ही है, शिल्पकार है। कहा जाता है जो देवघर है भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग जहाँ स्थित है बैजनाथ धाम,
1: अच्छा,
0: वहाँ वो जो है भगवान विश्वकर्मा जो है स्वयं बनाए उस चीज को। केवल देवघर ही नहीं, बहुत सारे सारे मंदिरों के भी

0: विषय में बताया जाता है कि उन्होंने ही बनाया। तो शिव का ज्योतिर्लिंग कहाँ कहाँ नहीं, और केवल शिव ही क्यों, बहुत सारे देवी देवता भी हैं जिनके मंदिर बड़े अद्भुत हैं। अब मीनाक्षी मंदिर को देख लीजिए, कितना खूबसूरत है, जो
1: कलाकृति देख
0: कलाकृति है देख, चोल पल्लव आदि राजाओं ने जो बनाया था मंदिर, वो सच में देखने लायक है। मैं तो मीनाक्षी मंदिर को देख करके हतप्रभ रह गई, क्या ऐसा भी बनाया जा सकता है,
1: इतनी कला उसमें है, इतना हाँ। बारीकियां
0: और जीवंत लगते हैं, क्योंकि मूर्तियां उनमें स्थापित हैं, जीवंत मूर्तियां लगती हैं। अगर उन्हें देखने जाइए तो ऐसा लगेगा कि जीवंत है, अभी बोल पड़ेंगे। ऐसे ही अभी एक महालक्ष्मी मंदिर बनाया गया है, मैं तिरुपति गई थी, तिरुपति के पास
1: ही पहले पड़ता है
0: हाँ, तो वहाँ पूरे सोने की का मंदिर है और कमल के आकार में जो है चारों तरफ मैदान है, तो सारे को पार करके आप महालक्ष्मी मंदिर तक जाएंगे, और लक्ष्मी मंदिर सच में लगता है कि महालक्ष्मी जो है पूर्ण वैभव और विलास के साथ वहाँ स्थित है। तो ये सब बहुत खूबसूरत लगता है, तो मनुष्य कृत भी बहुत सुंदर है और ईश्वर कृत तो सुंदर होंगे ही। तो अब देखिए यहाँ पर जो विश्वकर्मा की बात बताई गई है, तो विश्वकर्मा के लिए कहा जाता है कि इन्होंने कैसे बनावटी चित्र बनाए कि कहाँ जल है और कहाँ स्थल है, इसका भी पता नहीं चल रहा, इसका निर्णय कोई नहीं कर पा रहे थे। और कहते हैं आगे कि सारथियों से चलाए जाते हुए बनावटी रथ आश्चर्य युक्त थे, और भी वाहन पैदल सभी बनावटी बनाए गए थे। हे मुनि, देवताओं तथा मुनि जनों को चकित करने के लिए प्रसन्न चित्त विश्वकर्मा ने ये सब बनाए थे। हे मुनि, प्रमुख द्वार पर शुद्ध स्फटिक जैसा बनावटी बनाया हुआ नंदी वास्तविक नंदी जैसा ही लग रहा था। उसके ऊपर अलौकिक रत्न जटित पुष्पक विमान था, जो शुभ्र पल्लव तथा चामरों से सुशोभित था। मतलब कि हर चीज इन्होंने जो लिखा है, वेदव्यास जी ने, उन्होंने तो अपनी दूरदृष्टि से लिखा है, और जो दूरदृष्टि उनकी थी वो कम नहीं थी,
1: कम नहीं थी।
0: जो महाभारत दिखा दिए संजय को, श्री कृष्ण क्या बोल रहे हैं गीता में वो दिखा दिया, तो उनके विषय में क्या कहा,
1: अलौकिकता थी, अलौकिकता थी, अलौकिक शक्ति थी
0: जी जी
1: जी। तो लीना जी, बहुत ही सुंदर ये वर्णन चल रहा है शिव पार्वती के विवाह का, लेकिन क्योंकि अब समय ज़्यादा नहीं बचा है, तो मैं पुनः आपसे अनुरोध करती हूँ कि चार पंक्तियाँ सुनाएं और हमारे भक्तों को शिव में बनाएं।
0: कहते हैं परम मांगलिक परम कल्याणकारी, परम मांगलिक परम कल्याणकारी, परम योगी परम मनस्वी, परम योगी परम मनस्वी, परम यशस्वी परम शक्तिशाली, और कौन है, केवल शिव, केवल शिव।
1: बहुत बहुत ही महिमा युक्त आपने ये शब्द जो है रचे हैं और सुनाए हैं जो हमारे श्रोताओं को, तो अब सब सोचते ही रहेंगे और शिव में ही बने रहेंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद लीना,
0: धन्यवाद।
1: तो दोस्तों, अब मुझे भी इजाज़त दीजिए, अगले एपिसोड में पुनः हम यहीं पर मिलते हैं आपको, रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। फील गुड, फील लाइव।

0: रेडियो मानव कृष्णा 107.8 एफएम पर। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका आपके साथ और शुरू हो चुका है प्रोग्राम आत्मबोध। और हर बार की तरह हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं बीके ज्योति जी और बीके प्रिया जी। चलिए इनसे इनका हाल चाल जानते हैं। गुड मॉर्निंग।
1: ओम शांति। गुड मॉर्निंग।
2: ओम शांति। और आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है और उम्मीद करते हैं कि आप सब भी बहुत स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे।
0: आप भी अपनी शुभकामनाओं के लिए हमें मैसेज करें, हमसे कांटेक्ट करें। नंबर है 8010781078। हर हफ्ते हम चले आते हैं गीता के ज्ञान को लेकर के, जहां हम बहुत सारी बातें आप लोगों से करते हैं। गीता के ज्ञान में इतना सब कुछ है ना कि हमारी जिंदगी बदल जाएगी। आप सभी जानते हैं कि कई लोग जिन्हें हम देखते हैं वो ये कहते हैं कि गीता के ज्ञान ने हमारी पूरी जिंदगी को बदल करके रख दिया। तो चलिए अब अपनी जिंदगी को बदलते हैं, और खास तौर पे वो लोग जिनके पास वक्त नहीं है, इतने बिजी हैं कि क्या बताएं, उनसे कुछ पूछो तो यही कि यार हमारे पास तो वक्त ही नहीं, हम कैसे कुछ नया करें। तो रेडियो मानव कृष्णा 107.8 एफएम पर हमने शुरू किया गीता का ज्ञान प्रोग्राम है आत्मबोध, और इसमें आपको गीता के ज्ञान के बारे में पता चलेगा। और इन सब के जानकारी के लिए हमारे साथ बीके प्रिया जी और बीके ज्योति जी होती हैं। दूसरे अध्याय पर हैं हम लोग, जिसका नाम है ज्ञान योग। ज्ञान योग के बारे में काफी सारी डिटेल में बातें बताई बीके प्रिया जी और ज्योति जी ने, लेकिन इसमें एक और है लेसन जिसका नाम है आप आत्मा हैं। आत्मा के बारे में काफी अच्छे से यहाँ पर बताया गया है। तो चलिए हम ज्योति जी और प्रिया जी से जानते हैं और बढ़ते हैं ज्योति जी की तरफ। ज्योति जी, ये जो है इसमें लिखा है आप आत्मा है, ये तो हमें पता है, लेकिन किस तरह से, मतलब किस तरह से ये एक्सप्लेन किया गया है, आप अपने तरीके से समझाएं सभी लिसनर्स को।
2: जैसा कि दूसरा अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन से बात कर रहे हैं, और अर्जुन क्योंकि विषाद में है तो सबसे पहले खुद का ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि जब हम कमजोर हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम स्वयं को भूल जाते हैं। और श्रीमद् भगवद गीता का जो दूसरा अध्याय है वो पूरा ही अपनी सेल्फ रियलाइजेशन पर ही फोकस कर रहा है कि हम कौन हैं और हम क्या बन करके चल रहे हैं। तो इसमें एक बहुत सुंदर श्लोक के द्वारा भी कहा गया है, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा ना भूये अजो नित्या शाश्वतोयम पुराणो ना हरन्ते हन्यामाने शरीरे। अर्थात है कि यह आत्मा किसी काल में न जन्मती है न मरती है, बल्कि यह अजन्मी नित्य सनातन और पुरातन है। माना शरीर के मारे जाने के बाद भी आत्मा का अस्तित्व खत्म नहीं होता, वो अजर अमर अविनाशी है। अगर हम साधारण शब्दों में कहें तो आत्मा को कोई भी मार नहीं सकता है, और प्रथम अध्याय में भी इस चीज को बहुत अच्छे से बताया गया है। और उसका जो स्वधर्म है, उसका स्वधर्म क्या है, वो श्री कृष्ण जो है, परमात्मा जो है, वो अर्जुन को बता रहे हैं। अर्थात हम सब आत्माओं को बता रहे हैं कि किसी भी, अगर हम स्वधर्म में टिक जाएं, अर्थात आत्मिक धर्म में टिक जाएं, तो कभी भी हम डरेंगे नहीं, भयभीत नहीं होंगे। तो वहां उनको वो क्षत्रिय धर्म याद दिलाते हैं कि क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर दूसरा कुछ कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। अर्थात इसमें ये बताया गया कि स्वतंत्र आत्मा किसी भी तरह के बंधन में बंधी हुई नहीं है, वो फ्री है, वो अपने डिसीजन ले सकती है, क्योंकि वो राजा है और ये शरीर की जो कर्म इंद्रियां हैं वो उसकी प्रजा है, उससे उसे कार्य करना है और उसके वशीभूत ना हो जाए। आज हम क्या हो गए हैं, बाहर की जगत की बात बाद में करें, लेकिन हम अपनी ही इंद्रियों के वशीभूत हो गए हैं।
0: बिल्कुल,
2: हमारी ही इंद्रियां, हमारी आंख जो चीज देखती है, जो चीज पसंद करती है, बस मन वही भाग रहा है। और ऐसे ही अगर देखें तो हमारे कान जिन बातों को सुनना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें तो कहीं प्रवचन होंगे, या कोई आपकी गली के अंदर भी आप देखें कि कोई कहीं कथा हो रही है, तो लोग पूछेंगे कि क्या वहां से इनविटेशन आया है, बुलाया गया है, तो ही हम जाएंगे, अदरवाइज नहीं जाते हैं। और कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा हो तो कहने की जरूरत ही नहीं है, वहां पे पहुंचे चले जाते हैं
0: बिन बुलाए मेहमान।
2: जबकि हर कोई चाहता नहीं है कि कोई वो चीजें सुने। तो माना कहीं ना कहीं हमारी कान की इंद्रियों को रस मिलने लगा है उस नेगेटिव बातों में। तो हम इंद्रियों के वशीभूत हो गए हैं और मन भी उसी में रमने लगा है। तो यहाँ पर इस अध्याय में बहुत अच्छे से क्लियर किया गया कि आत्मा का स्वधर्म क्या है। आत्मा इस शरीर में राजा है और आत्मा की तीन सूक्ष्म शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। अब मन के ये तीन तो शक्तियां हैं, लेकिन आत्मा अपने स्वधर्म कौन कौन से गुण हैं उसके, मूलभूत गुण अगर कहें, क्योंकि आत्मा को सतोगुणी कहा गया है, लेकिन धीरे धीरे धीरे धीरे डे बाय डे में आत्मा तमोगुणी बन गई है। तो सतोगुणी क्यों कहा गया, क्योंकि आत्मा के सात गुण हैं। अगर हम इसको एक फॉर्मूले के रूप में ले तो कहा जाता है KP² LHBP अर्थात K फॉर नॉलेज, हमारी जो ज्ञान है उसके लिए, P फॉर प्योरिटी, जो हमारी पवित्रता है, हर एक को पवित्र चाहिए, पवित्रता चाहिए, फिर P फॉर, क्योंकि स्क्वायर है, P फॉर पीस, L फॉर लव, H फॉर हैप्पीनेस, B फॉर ब्लिस और लास्ट P पावर। तो ये सात गुण आत्मा में निहित है। इन जब सातों गुणों को आत्मा महसूस करती है, उस पूरे ही अपनी चरम सीमा पर होते हैं वो गुण प्रैक्टिकल रूप में, तो आत्मा सतोगुणी कहलाती है। अब हम सब देखें अगर तो मनुष्य के मन में बहुत सारे संकल्प चलते हैं, विकल्प चलते हैं, लेकिन उनको चाहिए क्या, कहीं ना कहीं इसी धुरी में जाकर के टिक जाते हैं। आज इस ज्ञान की भी अज्ञानता हो गई है। ज्ञान को हम सब सोचते हैं शायद किताबी ज्ञान, लेकिन अपने प्रकृति का ज्ञान, खुद का ज्ञान होना, मानव वही संपूर्ण ज्ञान है, खुद के बारे में जानना। आज हमें दूसरे के मन में क्या चल रहा है वो तो हमें पता है,
3: खुद के मन में क्या है
2: वो नहीं पता है ना, उससे हम दूर हैं। तो मन की अपने आत्मा के स्वरूप का ज्ञान होना, अपनी प्रकृति का ज्ञान होना, इसको कहा गया ज्ञान। प्योरिटी अर्थात पवित्रता, जो पवित्रता हमारे मन में किसी के लिए भी दुर्भावना ना आए, उसको कहा गया प्योरिटी। और शांति, शांति की अगर बात करते हैं तो शांति जो है वो क्या चीज है, शांति के लिए लोग सोचते हैं शायद चुप बैठ जाना है ना। इसके लिए एक बहुत अच्छी कहानी सुनाई जाती है कि एक बार एक राज्य के अंदर ऐलान किया गया कि चित्र बनाना है शांति के ऊपर। तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे चित्र बनाए, लेकिन उसमें से दो चित्र डिसाइड किए गए, दो चित्र चुनाव करके आए। एक चित्र था जिसके अंदर बहुत सारी प्रकृति थी, ग्रीनरी थी, और एक चित्र था, अगर आपको भी बोला जाए तो आप क्या इमेज कर सकते हैं शांति के रूप में, अगर आपको कहा जाए तो आप क्या समझते हैं, आप क्या चित्र ड्रॉ करेंगे?
3: मैं अगर बोलूं तो पेड़ पौधे, झरना, सूरज, यही होता है
2: जी। बिल्कुल, उन्होंने भी एक पिक्चर तो यही ड्रॉ की कि जहाँ पे बहुत सुंदर प्रकृति, नेचर दिखाया हुआ था, और दूसरी तरफ एक पिक्चर बनाई जहाँ बहुत तूफान आ रहा है, बहुत ज्यादा वहाँ पे विनाशकारी दृश्य है, लेकिन उस दृश्य के अंदर एक चिड़िया पेड़ पर बैठी हुई बड़े प्यार से अपने बच्चों को दाना खिला रही है। तो राजा के सामने जब गया तो ऑफिस से कौन सा चित्र डिसाइड किया गया होगा, आप क्या समझते हैं, क्या वो नेचर वाला या फिर वो चीज जहाँ बहुत तूफान आ रहे हैं, बहुत ज्यादा बवंडर है, विनाशकारी दृश्य है, लेकिन उसमें फिर भी एक चिड़िया और अपने बच्चों के साथ एंजॉय कर रही है, किसको आप कहेंगे?
3: मेरे हिसाब से मैं समझ पा रही हूँ, जिसमें तूफान है और चिड़िया आराम से, क्योंकि चारों तरफ तूफान है लेकिन उसके अंदर शांति है और वो शांति से अपने बच्चों को खिला रही
2: है। तो यही चीज जो है वहाँ पे उसी चित्र को ही वहाँ पर भी डिसाइड किया गया और फाइनली लिया गया, और उस चित्र में से यही, तो ये चित्र हमें क्या दृश्य दिखा रहा है कि जब विपरीत परिस्थितियां आती है तब भी हम स्टेबल रहे, उसको कहा जाता है शांति। हमारा मन स्थिर रहे, हमारे अंदर हलचल ना हो, हम सिचुएशन को हैंडल करने की ताकत रखते हो, उसको कहा गया शांति। तो वो शांति की ताकत हमारे सबके अंदर है, लेकिन हम उसको यूज नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही प्रेम है, प्रेम का आज जो मीनिंग हो गया है वो बहुत विकृत हो गया है, जबकि प्रेम कहते हैं ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो, माना हर एक आत्मा से, हर एक प्रकृति की जीवों से, पंछियों से, हम पेड़ पौधों से समान भाव से प्यार करें, उसको कहा गया प्रेम। फिर आती है बात सुख की, तो जीवन में जब शांति आती है, प्रेम आता है, तो सुख की अनुभूति होने लग जाती है। और फिर लास्ट आनंद है, और आनंद का कोई विपरीत अर्थ शब्द नहीं है, आनंद अपने आप में ही बहुत परफेक्शन के साथ है, उसको ब्लिस कहा गया, और इसका कोई विलोम शब्द नहीं, क्योंकि पवित्रता का फिर भी अपवित्रता है, शांति का अशांति है, प्रेम का क्रोध है, लेकिन आनंद माना जो परमानंद की अनुभूति कराए। और लास्ट है, जब ये सारी चीजें आ जाती है तो हम पावरफुल बन जाते हैं, क्योंकि आत्मा अपने सारे गुणों में परफेक्ट हो जाती है। और इसी चीज को इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि आप वो प्योर सोल हो, आप वो प्योर आत्मा हो जिसके अंदर ये सारे गुण समाये हुए हैं। ये मैं और मेरा, मेरा जो कह रहे हैं वो विनाशी है, वो खत्म होने वाला है, लेकिन जो मैं है इसमें चेतन सत्ता है, उसको अगर हम पहचानेंगे तो हम अपनी परफेक्शन में आ जाएंगे और अपने कर्म पर ध्यान देंगे।
3: बिल्कुल, और ये जितनी भी सारी चीजें आपने बताई हैं, इसको कहीं बाहर से कमाना नहीं है या किसी से अर्जित नहीं करना है, ये सारी अपने अंदर है, बस इसको जानना है, इसको समझना है, बाकी भगवान ने ये इन बिल्ड हमारे लिए रखी है। बिल्कुल सही कहा, हम दूसरों को जानने की कोशिश करते हैं, हम कभी खुद को जानने की कोशिश नहीं करते हैं। वही आपने बड़ी खूबसूरती से बताया कि अगर आप खुद को जान लेते हैं, बस वही एक आत्मा का पाठ है, वही जो है पूरा परफेक्ट है आप खुद में। बहुत सही बात बोली। गीता के ज्ञान की हम बात कर रहे हैं और अध्याय दो है, नाम है ज्ञान योग, और इसमें हम चर्चा कर रहे हैं कि हम एक आत्मा है के बारे में। ज्योति जी ने बहुत खूबसूरती से बताया, और अब हम प्रिया जी की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं कि इस अध्याय में आगे क्या है। प्रिया जी बताइए।
4: आगे जैसा कि हम देखते हैं कि अर्जुन को वो बार बार याद दिला रहे हैं, समझा रहे हैं परमात्मा कि तुम्हें युद्ध करना ही है, जिसके लिए वो कहते हैं हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्माद उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। अर्थात पार्थ, अर्थात जो उनका स्टूडेंट अर्थात अर्जुन को उन्होंने कहा कि तुम चाहे मरकर के स्वर्ग पहुंचो या फिर जी

0: जीवित रहकर युद्ध करके इस पूरी सृष्टि पर जीत प्राप्त कर सुख को भोगो। तो इसीलिए तुम्हारा बेस्ट यही है कि तुम युद्ध करो। तो क्योंकि सिंपल कुछ किए बिना जाना और कुछ करके जाना, उसमें बहुत फर्क होता है। तो यहाँ उनको वो बार बार याद दिलाते हैं कि आपको युद्ध करना है, और युद्ध करने में हम कॉन्शियस ये नहीं हुए कि कौन जीतेगा या हारेगा, हमें कॉन्शियस होना है कि हमारी फाइट अच्छे से हो। तो फिर बात यहाँ आती है, स्पिरिचुअलिटी ये कहती है कि क्या हमें फिजिकल फाइट के लिए परमात्मा प्रेर रहा है, हमें वो गाइडलाइंस दे रहा है कि शुड वी गेट द वेपन्स, कि हमें हथियार उठाने हैं। पर यहाँ पर परमात्मा हमें हमारे गुणों के हथियारों की बात करता है कि जहाँ मेरा मेंटल फाइट है, जहाँ द्वंद है, जहाँ मैं कंफ्यूज हूँ, जहाँ डिलेमा स्टार्ट होते हैं, वहां मैं अपने फोकस करूं इंटरनल शक्तियों पर, जैसा कि ज्योति जी ने बताया कि ये सब चीजें मेरे पास, मुझे परमात्मा से आपने कहा इनबिल्ट है, गॉड गिफ्ट है, तो उस पर अगर मैं फोकस करता हूं तो मेरी ये फाइट मेरे लिए बहुत इजी हो जाती है
1: जी।
0: और फाइट मुझे करनी ही है, बिना फाइट किए मैं आगे बढ़ नहीं सकता। इसी योग को जो आपने कहा ज्ञान योग अध्याय का नाम है, तो यहाँ पर परमात्मा हमको संपूर्ण ज्ञान का परिभाषा डेफिनेशन वो ये कहते हैं कि आत्मा का ज्ञान ही संपूर्ण ज्ञान है। मीन्स अगर मैं अपने आप को नहीं जानता, अपने अस्तित्व को नहीं जानता, तो मैं अगर पूरी दुनिया का पूरा ज्ञान भी अर्जित कर लेता हूं तो भी मैं इनकम्प्लीट हूं। और दैट्स वाई देखा ये गया है कि जब हम हायर लेवल पर किसी बुलंदी पर किसी को देखते हैं तो एंड ऑफ द डे वो ये फील करते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ रह गया है। और वो क्या रह गया है कि खुद को जाना और खुद के बाद खुदा को पाना। ये चीज जो हमारी जिंदगी में रह जाती है उसी के लिए हमारे को परमात्मा या कृष्ण रूप में हमारे को बता रहे हैं। उसके बाद वो हमारे को याद दिलाते हैं कि हमारा जो मन बुद्धि संस्कार, जैसे कि ज्योति जी ने कहा, तो मन जो है वो कई तरह के थॉट्स को क्रिएट करने की एक फैक्ट्री है। बस इस फैक्ट्री में प्रॉब्लम ये है कि वो अपने प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस तो कर रहा है, यानी थॉट्स क्रिएट कर रहा है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि कौन सा माल आर का माल है, मीन्स रिजेक्टेड है। तो जिसमें बुद्धि हमको हेल्प करती है कि क्या रिजेक्टेड है, क्या सही है, क्या गलत है। जैसे मन नेगेटिव थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स, नेसेसरी, वेस्ट, टॉक्सिक, एलिवेटेड, राइट थॉट्स, बहुत तरह के थॉट्स करता है। और हमारे को बुद्धि गाइड करती है कि एलिवेटेड मीन्स ऐसे थॉट्स जिसमें हम सिर्फ दूसरों के लिए दुआएं करते हैं, ठीक है, जबकि उसी के बिल्कुल उलट हम देखते हैं कि टॉक्सिक थॉट्स, यानी जहां हम सिर्फ अपने लिए या दूसरों के लिए नुकसान की बातें सोचते हैं, मरने मारने की बातें करते हैं, जैसे कि सुसाइड करना, यानी वो व्यक्ति कितना ही टॉक्सिक थॉट्स में भरा हुआ होगा तो इसीलिए उसे टॉक्सिक थॉट्स कहते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो लास्ट आता है संस्कार। संस्कार एक रिकॉर्डिंग बॉक्स है, जैसे कि प्लेन्स में भी एक बॉक्स होता है जिसमें रिकॉर्ड किया जाता है सब कुछ, उसी प्रकार से आत्मा में अपने आप एक रिकॉर्डिंग बॉक्स है। और ये जानकर आपको हैरानी होगी कि कहते हैं कि मरने के बाद ऊपर धर्मराज और चित्रगुप्त बैठे हैं सबका हिसाब करने पर, नहीं, ये इंटरनली ही हम सोल्स के साथ ही फीड है, बिल्ट है, कि जो हमारा बुद्धि है, अगर उसकी पिक्चर अगर आप देखते हो तो एक तराजू के फॉर्म में होती है, वो धर्मराज का फॉर्म है, और जो हमारे संस्कार्स हैं, जो हमारा रिकॉर्डिंग पार्ट है, वो चित्रगुप्त है। और चित्रगुप्त को अगर हम उल्टा कर देते हैं दोनों शब्दों को तो वो बनता है गुप्त चित्र, अर्थात हम क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, देख रहे हैं, सोच रहे हैं, वो गुप्त रीति हर चीज सेकेंड बाय सेकेंड रिकॉर्ड हो रही है
1: जी।
0: और जब एंड ऑफ द डे, यानी जब मृत्यु आती है, तो व्यक्ति को ऊपर जाके नहीं, उस लास्ट मोमेंट्स में ही बुद्धि और संस्कार का, जो यहाँ पर धर्मराज और जो मैंने कहा चित्रगुप्त का फॉर्म है, वही वहां अंदर ही अंदर सब कुछ डिसाइड होता है। और फिर उसको नेक्स्ट बर्थ जो है मिलता है। और कहते हैं मरते वक्त व्यक्ति इसीलिए डेफ, डम्ब और ब्लाइंड हो जाता है, उसको बाहर के दुनिया से कट जाता है। उसके बाद उन्हें परमात्मा ये कहते हैं कि जैसे आप कर्म करते हो, तो कर्म करना है तो बिल्कुल न्यूट्रल होकर करना है। और उन्होंने विशेष ये कहा कि यावनार्थ उत्पादे सर्वतः संलुप्ते दुतके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः, अर्थात जब एक ब्राह्मण को परमात्मा प्राप्त होता है, यानी हम मनुष्य अगर परमात्मा के टू क्लोज या पूरी उसकी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, तो हमारे लिए दूसरे शास्त्रों के ऊपर डिपेंडेंसी उस तरीके से है जैसे कि मैं समुद्र के पास पहुंच गया और एक ग्लास में समुद्र का पानी लेकर खड़ा हूं, तो उस ग्लास की समुद्र के आगे खड़े होने पर कोई वैल्यू नहीं रहती।
1: बिल्कुल।
0: तो उसी प्रकार से परमात्मा को अगर मैंने पा लिया है तो वो शास्त्रों का वहां पर वैल्यू उस ग्लास के लेवल पे ही होता है कि जब शास्त्रों का ज्ञाता सागर मिल गया तो उसकी कोई वैल्यू नहीं। फिर परमात्मा अर्जुन को ये याद दिलाते हैं, जैसे कहा कि आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि इस क्षेत्र में आना, कुरुक्षेत्र जैसे बताया कि कर्म क्षेत्र, आप चाहे किचन में हैं या बेड पे सो रहे हैं, देन टू आप कुछ तो कर ही रहे हैं। अगर आप सिर्फ थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं तो भले वो एक्शंस नहीं है, कर्म नहीं है, पर वहीं कर्म को कराने का एक हिस्सा जरूर है। तो इसीलिए वो भी काउंट होते हैं। तो हम कर्म के बिना तो रह ही नहीं सकते हैं, ये पक्का है। इनफैक्ट हम सोते वक्त भी संकल्प कर रहे होते हैं, 4 to 5 थॉट्स हमारे चलते ही हैं। तो इसीलिए परमात्मा कहता है जब कर्म करो तो ऐसे करो जैसे कि बिल्कुल न्यूट्रल, जिसके लिए उन्होंने स्पेशल कहा कर्मण्येवाधिका रस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भुर्माते संगोऽस्त्व अकर्मणे। अर्थात जब आप कर्म करते हैं, हम कर्म करें, तो फल के कॉन्शियसनेस में रह करके ना करें, जो कि आज बिल्कुल ही उल्टा हो रहा है। हम टू मच कॉन्शियस अबाउट द रिजल्ट्स होते हैं और इस वजह से शायद हमारा जो पुरुषार्थ है, एफर्ट्स, वो हमारे को कहीं ना कहीं ऊपर नीचे हो जाता है, क्योंकि हम डर चुके होते हैं मैं पास होऊंगा या नहीं होऊंगा, मेरा ये काम बनेगा या नहीं बनेगा। हम फुल्ली उसमें कॉन्फिडेंट ना होने की वजह से भी, शेकिंग रहने की वजह से रिजल्ट्स अच्छे नहीं होते हैं। और फिर लास्ट में जो उन्होंने कहा कि कर्म जो करना है वो एकदम ऐसे, जैसे कि एक छोटी सी स्टोरी है जिसमें कहा कि ब्राह्मण ने एक व्यक्ति को कहा कि कर्म कैसे, मतलब उन्होंने पूछा कि कर्म कैसे करें, तो उन्होंने कहा कल जब आना तो कटहल लाना, चाकू लाना और तेल लेके आना। व्यक्ति नहीं समझ पाया कि क्यों। तो फिर जब वो व्यक्ति अगले दिन पहुंचा तो बोला कि अब तुम कटहल को काटो। तो जब उन्होंने कटहल काटा तो कटहल में से उसका एक व्हाइट मिल्क निकलता है जो बहुत स्टिकी होता है, तो उनका हाथ चिपक जाता है, वो अच्छे से वो काम नहीं कर पाते, हाथ में भी प्रॉब्लम होती है। तो वो कहता, अब ब्राह्मण कहता है कि अब आप हाथ धो लीजिए और हाथ धोने के पश्चात तेल लगा के कटहल काटिए। अब जब वो इस चीज को करता है तो अब वो इजीली कटहल को छीलता भी है, काटता भी है और सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लेता है। तो बोलता है बस आपको इसी तरीके से अपने जीवन में कर्म करने हैं कि कर्म हमको अपनी तरफ खींचते हैं, मिल्क की तरह वो चिपकते हैं हमारे हाथों से, यानी हमारे को कॉन्शियस कर देते हैं। लेकिन हम अगर तेल अर्थात परमात्मा की याद को उसमें घोल दें, लगा लें, तो हम कर्म कॉन्शियस नहीं होंगे, फल कॉन्शियस नहीं होंगे और हम बहुत अच्छे से कर्म कर पाएंगे।
1: कितने अच्छे से प्रिया जी ने कहानी बताई समझाने के लिए, बहुत मजा भी आया और काफी कुछ हमें समझ में आया। और साथ ही हम तो प्रिया जी और ज्योति जी से जुड़े ही हैं, साथ ही आपसे भी जुड़े हैं। आपका कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हैं ज्योति जी या प्रिया जी से, हमारा नंबर है 8010781078। गीता का ज्ञान चल रहा है, अध्याय 2 है जिसका नाम है ज्ञान योग। हम एक आत्मा है इसके बारे में हम बात कर रहे हैं और काफी सारी नॉलेज, काफी अच्छी बातें हमें ज्योति जी और प्रिया जी से जानने को मिल रही है। और अब इस अध्याय में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और इस वक्त अगर आपके जहन में कोई सवाल है या कोई ऐसी शंका है जो आप क्लियर करना चाहते हैं, नंबर है 8010781078। आप इस पर मैसेज कर सकते हैं और अपनी बात आप हम तक पहुंचा सकते हैं, अपना सवाल आप हम तक पहुंचा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं ज्योति जी के पास और इस अध्याय में भी हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो आगे की जो कहानी है, आगे जो बातें हैं, वो हम ज्योति जी से जानते हैं।
2: कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम तैव कवता मनीषिण जनम बंध विनर्मुक्ता पदम गच्छन्ते अनामयम। अर्थात इसका भावार्थ कहते हैं कि समतव बुद्धि वाले, जो जिनके बुद्धि के अंदर कभी हलचल नहीं आती, जिसको कहें एक रस अवस्था, तो ऐसी बुद्धि वाले ज्ञानी जन कर्म फल को त्याग कर, माना कर्मों से अतीत होकर, कर्म की चिंता ना करके, निर्विकार ही परम पद को प्राप्त करते हैं। भावार्थ यह है कि कर्मों के फल की आसक्ति स्थिति को ऊपर नीचे ले आती है, क्योंकि जैसे ही हमें ये पता चलता है कि अभी क्या होने वाला है, हम ये सोचने लग जाते हैं पता नहीं इसका क्या बेनिफिट होगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, तो हम कहीं ना कहीं उसमें हमारी स्थिति ऊपर नीचे होती है। लेकिन जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, वो अपनी सर्वश्रेष्ठ स्थिति में स्थित होकर जीवन में रहते हैं, मुक्ति की अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, जिसे कहा जाता है कर्मातीत स्थिति। इसमें दूसरा जो श्लोक कहा गया उसमें स्थित प्रगस्य का शब्द का यूज किया गया है। तो उसमें अर्जुन पूछते हैं कि हे केशव, परमात्मा से कहते हैं कि हे केशव, ये बताओ कि स्थिर प्रग, जो स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति हैं, उनके क्या लक्षण है, किसको कहेंगे हम जो स्थिर बुद्धि वाले हैं, जो एकरस स्थिति वाले हैं, जिनकी कर्मातीत अवस्था पहुंच गई है जिनकी, तो उनकी क्या क्या विचारधारा होगी। तो वहां श्री भगवान बोलते हैं कि हे अर्जुन, सभी कामनाओं का त्याग कर, जो व्यक्ति त्याग कर देता है और आत्मा से माना आत्मिक रूप में संतुष्ट हो जाता है, वो स्थित प्रज्ञा है। तो वहां पे माना, क्योंकि हमारी जो दुख का कारण है वो कामनाएं है, जहां कामनाएं आएंगी और वो कामनाओं का एक भय आ जाता है, उसी कामनाओं की इच्छाओं में जब हम फंस जाते हैं तो वहां ना तो, और मनुष्य जो स्थित प्रग होता है उसकी कोई भी तरह की कामना नहीं रखते, वो किसी पदार्थ की लालसा नहीं रखेगा। इसको अगर हम सिंपल वे में बोलें तो जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होता है उसके मन के अंदर, इसको आज की भाषा में कहें तो मन शांत, अर्थात मन में लगाए आइस फैक्ट्री, मुख में लगाए शुगर फैक्ट्री अर्थात मिठास होगी उसके मुख में, दिल में लव फैक्ट्री अर्थात सबके लिए प्यार होगा, तो जीवन उसका सेटिस्फैक्ट्री बन जाएगा, माना संतुष्ट हो जाएगा। तो ये तीनों चीजें मन की स्थिरता को शो करती हैं, हमारी वाणी में मिठास हो, हमारे मन में स्थिरता हो, शांति हो, और हमारे दिल में सबके प्रति एक समान भाव हो, तो कोई भी परिस्थिति आने पर हमारी स्थिति ऊपर नीचे नहीं होगी। और उसमें जो आगे चीजें बताई गई हैं कि जो व्यक्ति सहनशील है वही सुख दुख में समान अनुभव करता है उसका किसी भी व्यक्ति, क्योंकि जब हम शरीर से जुड़े हुए होते हैं तो शरीर की चीजों के प्रति हमारी आसक्तियां जागती हैं, और जब शरीर की चीजों के प्रति, देह की चीजों के प्रति आसक्ति जाग रही है तो हमारी खुद की स्थिति डामाडोल हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप ड्राफ्ट ड्रेस लेने जा रहे हैं और ड्रेस आप लेकर के आते हैं, लेकिन वो ड्रेस आपने अपनी पसंद से ली, आपने पहनी भी, लेकिन वो आपको कंफर्ट नहीं हो रही है तो आप उसमें कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे, चाहे वो दिखने में कितनी भी अच्छी है। इसी विधि से जब हम कोई चीज आकर्षण में तो आकर्षित हो जाते हैं, देह को देख रही है चीजें उसमें आकर्षित है, लेकिन जब हम उसको अपने जीवन में अप्लाई करते हैं तो वो चीज हमारे लिए सुटेबल नहीं होती है, तो वो हमारे दुख का कारण हो जाती है। तो यहाँ पर हमारे जो मन की स्थिति, एक बार एक व्यापारी थे और उनको, हीरो के व्यापारी थे, तो उनके एक व्यक्ति ने आकर के कहा कि आप जो है एक बहुत अमूल्य हीरा खो गया है। तो बैठे थे अपने सभी, कई साथ में साथी बैठे थे, वो दो मिनट के लिए कहा अच्छा ठीक है और आंख बंद की और शांत हो गए। थोड़ी देर के बाद फिर थोड़ी देर बाद फिर खबर मिली कि वो हीरा मिल गया है। उन्होंने फिर अपनी आंखें बंद की और एकदम शांत मुद्रा में बोला ठीक है। तो जितने भी साथी बैठे थे उन्होंने ये कहा कि एकदम से आप शांत हो गए, अगर शायद हम वहां हों प्रैक्टिकली सोच के देखें तो हम कितनी जल्दी अपनी स्थिति को हिला देंगे, हम फटाफट किया, अरे इतना अमूल्य हीरा खो गया, कहां खो गया। लेकिन जो सहनशील व्यक्ति है, जो स्थिर प्रज्ञ है, जिसकी बुद्धि स्थिर है, वहां पे वो शांत है। यही चीज उन्होंने पूछा भी, व्यापारी से भी जब पूछा तो वहां पे पूछने के बाद उन व्यापारियों ने बताया, व्यापारी ने उनको बताया कि मैं कुछ पलों के लिए चेक कर रहा था अपने मन की स्थिति को कि मेरे मन की स्थिति तो नहीं हिली, क्योंकि वो बहुत अमूल्य है, उस हीरे से भी अमूल्य मेरी मन की स्थिति है। तो जो स्थित प्रज्ञ, स्थिर बुद्धि व्यक्ति होते हैं वो अपने मन की स्थिति पर ध्यान देते हैं। वो किसी भी तरह के भय में आकर के भयभीत नहीं होते हैं, किसी भय से उनकी स्थिति पर प्रभाव नहीं आता है। आज कई चीजों का भय लोगों को सता रहा है, अंधकार का भय है, चीजों को खोने का भय है, कहीं ना कहीं मृत्यु का भय है। तो ऐसी बहुत सारी चीजों से व्यक्ति भयभीत है और उसके निर्णय गलत हो जाते हैं। और फिर क्रोधी व्यक्ति जो होता है वो भी मन

0: समय के लिए उनकी पत्नी को वहाँ से उठ के जाना पड़ा और उन्होंने उनके गले में, दोनों के गले में फूलों की माला डाल दी। और फूलों की माला डाली तो उन्होंने कहा कि जब तक मैं नहीं आती हूँ तब तक ये फूल, ये जो मालाएं हैं, ये मेरी जगह लेकर के कार्य करेंगे। तो जब वो आई काफी देर के बाद और पूरी शास्त्रार्थ कंप्लीट हुआ तो उन्होंने बोला कि ये चीज, फिर उन्होंने निर्णय भी दिया, उन्होंने कहा आदि शंकराचार्य विजयी हैं। तो सबने पूछा उसकी, आपने तो इस बीच में आप थे भी नहीं, तो आपने कैसे ये निर्णय ले लिया? तो कहा कि इस शास्त्रार्थ के मध्य में मेरे जो पति हैं मंडन मिश्र जी हैं, उनको क्रोध आया है और शंकराचार्य जी के फूलों की माला अभी तक ताजा है और जो उनके पति ने डाली हुई थी गले में वो मुरझा गए थे। कहा जब शास्त्रार्थ के मध्य में इनको जो क्रोध आया, उस क्रोध ने ये निर्णय दिया है कि ये जो है क्रोध कभी भी स्थिर नहीं रहने देता है। तो उन्होंने जिस चीज की बात कही कि उन्होंने जैसा निर्णय दिया कि जो व्यक्ति कभी भी चीज का ज्ञान रखता है, मन की स्थिरता रखता है, तो उसके अंदर किसी भी राग भय या क्रोध से वो मुक्त होता है, उसका उन चीजों की बुद्धि पर उसका प्रभाव नहीं आएगा। और इसका बहुत सुंदर जो एग्जाम्पल दिया गया है वो है कछुए की तरह हमें बनना है। कछुआ जो है वो कर्म क्षेत्र पर जब निकलता है तो वो अपनी इंद्रियों को फैला लेता है और जैसे ही वो कछुआ अपना कार्य पूरा कर लेता है तो अपनी इंद्रियों को उस कवच के अंदर समेट लेता है। बाहर चाहे कितनी आंधी तूफान आ रहा हो, लोग चिल्ला रहे हो, लेकिन उसकी स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं होता जब तक कि वो खुद ना चाहे। इसी विधि से हमें भी अपने जीवन को ऐसा ही बनाना है कि जब हम चाहेंगे, जब मैं आत्मा अपने शरीर के द्वारा जिस कार्य को करना चाहूं उस समय ही मैं एक्टिव मोड में हूं, अदरवाइज मैं अपनी शांत स्थिति में, अपनी संपूर्ण स्थिति में अपने अंदर आनंद का अनुभव करें। और यही चीजें आप देखते जाएंगे, जो जो लोग ज्ञान को समझने लग जाते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, या जिन्होंने अपने जीवन के अंदर बहुत सी परिस्थितियां देखी भी हैं लेकिन बहुत बखूबी उनको निभाया है, तो वो धीरे धीरे बहुत काम डाउन हो जाते हैं और उनकी स्थिति एकदम शांत हो जाती है। और यही चीज श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय हमें देता है। लेकिन ये चीजें तब होंगी जब हम आत्मिक स्थिति में टिक जाएंगे। तो आत्मिक स्थिति में टिकने के लिए और स्थिर प्रज्ञ बनने के लिए, अर्थात अपने मन को स्थिर रखने के लिए, इन सारी चीजों से हमें पहले जरूरत है खुद खुद को रियलाइज करने की।
1: जी, और वही ना, जैसे आपने कहा कि अगर कुछ सीखना है तो उससे पहले जो आप हैं
0: जी,
1: आपको बदलना पड़ेगा
0: जी।
1: आपको खुद को पहले समझना पड़ेगा, आप क्या चाहते हैं, आप अपनी आत्मा को समझना पड़ेगा। जब आप खुद को समझ पाएंगे तभी आप उस आगे बढ़ते हुए ज्ञान को समझ पाएंगे
0: जी,
1: आप ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे। समय के करीब आ रहे हैं, मतलब हम जाने के करीब आ रहे हैं, लेकिन बातें जो है वो खत्म नहीं हो रही है। एक बहुत ही प्यारा सा श्लोक ज्योति जी आपके सामने इसके बारे में सारी चीजें बताने वाली है। और अध्याय दूसरा है, ज्ञान योग है, इसमें बहुत सारे श्लोक और उसके जो भावार्थ प्रिया जी और ज्योति जी ने बताए हैं, ये बहुत ही खूबसूरती से इन्होंने हम तक पहुंचाए। और ज्योति जी के पास चलते हैं। ज्योति जी, अब आप जल्दी से इसके आगे के बारे में बताएं।
0: जैसा कि प्रिया जी ने बताया कि जब हम किसी एक चीज को बार बार फोकस्ड करते हैं तो उसी आधार पे हमारी बुद्धि वैसे ही चलने लगती है। तो अगला जो श्लोक श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनो नु विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर नावम इवाम भस्सी माना। अर्थात इसका अर्थ है कि जिस प्रकार पानी में नाव तैरती है और नाव के प्रचंड वायु दूर बहाकर ले जाती है अगर बहुत तेज वायु चल रही है, तो इसी प्रकार जब विचारशील व्यक्ति होता है तो उसकी इंद्रियों पर, मतलब जो इंद्रियां हैं, अगर वो किसी एक चीज पर फोकस्ड हो गई है, बार बार उसी चीज को देख रही है, वही इंद्री एक ही चीज पर उसका ध्यान केंद्रित है, तो उसके वो प्रभाव में बहता चला जाता है और उसकी बुद्धि का नाश हो जाता है और वो विषय विकारों में फंस जाती है। भावार्थ ये है कि तूफानों में भटकते हुए भी जो अपने मन बुद्धि को स्थिर कर दे, मन बुद्धि को एकाग्र कर ले, उसको कहा जाएगा कि

0: वो स्थित प्रज्ञ है, क्योंकि यहाँ इस पूरे ही इसमें आत्मा का और स्थिति की ही बात की जा रही है। माना कहने का अभिप्राय अगर हम इसको देखें, सिंपल वे में देखें, तो जो राजा की पोजीशन है, वो राजा की पोजीशन एक है कि आपने पहन लिया, मुकुट पहन लिया, ड्रेस पहन ली और वो सारी चीजें आप रेडी होकर के सिंहासन पर बैठ गए, वो राजा नहीं है। राजा माना जिसके अंदर वो राजापन की क्वालिटीज हो, जो उसके लिए जरूरी नहीं कि हमें वो पोशाक ही पहननी है, जरूरी नहीं है हमें सर पर ताज ही लेना है, लेकिन वो राजा वाली जो डिसीजन वाली क्वालिटीज है वो चीज हमारे अंदर होनी चाहिए। और आज वही राजा जो आत्मा इस शरीर का राजा है, इंद्रियां उसकी कर्मचारी हैं, आज उसी राजा ने इंद्रियों की अधीनता ले ली। इसीलिए आज हम जो राज्य जिसको कहा गया स्वराज्य, उस स्थिति से हम बहुत दूर हो गए हैं। और उसके लिए हमें चाहिए कि हम अपनी थोड़ी सी दिनचर्या पर फोकस्ड करें। कहा जाता है, इसमें बहुत अच्छी एक श्लोक में कहा भी गया है कि या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानी सा निशा पश्यतो मुने। अर्थात संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि है वह आत्म संयमी के लिए जागने का समय है। माना जब लोग सो रहे हैं, सोने का मतलब ये नहीं कि रात्रि में, आज के समय में अगर आप देखें आज की जो सिचुएशन चल रही है, आज 3 बजे से लोगों को नींद आनी शुरू होती है, पूरी रात वो जागते रहते हैं, 3 बजे से उनकी नींद का समय शुरू होता है। और जो ज्ञानी होगा, आत्म संयमी होगा, वो उसके जागने का समय है। यहाँ रात्रि की बात उस 3 बजे के समय से कही गई है, 3:30 के टाइम से कही गई, 4 बजे जिसको ब्रह्म मुहूर्त भी कहा गया है। तो अगर मुझे सेल्फ रियलाइजेशन करनी है, मुझे अपनी आत्मा, अपनी आत्म स्वरूप में टिकना है और अपनी स्थिति को भरपूर बनाना है, उसके लिए सबसे अच्छा समय दिया गया अमृत वेले का। उस समय हम अपने आप को चेक कर सकते हैं, क्योंकि उस समय हमारे पास कोई वर्कलोड नहीं है और हम डिसीजन देख सकते हैं कि मुझे आज पूरे दिन में, हम अपना शेड्यूल बना सकते हैं, हम परमात्मा के साथ कनेक्ट होकर के, हम नेचर से कनेक्ट होकर के उस पीस को फील कर सकते हैं, लेकिन वो टाइम हम सोने में गंवा देते हैं। इसीलिए आज हम आत्म संयमी के बजाय हम कहीं ना कहीं दैहिक वृत्तियों में फंसते जा रहे हैं। और ये पूरा ही पाठ जो है हमें यही सिखाता है कि हमें अपने तन के, जो तन का भान है, उसको हमें भूलना है और आत्मिक स्थिति में आत्मा को राजा की सीट पर बैठाकर डिसीजंस लेने हैं। तो वो व्यक्ति ही अपने गुणों को जान पाएगा, अपने आप को जान पाएगा और अपनी वीकनेसेस के ऊपर कंट्रोल कर पाएगा।
1: जी, बहुत खूब कहा ज्योति जी ने। और इसी के साथ अब जो हमारा अध्याय है वो खत्म हो चुका है, यानी कि जो सेकंड अध्याय है वो खत्म हो गया है और अब हम बढ़ेंगे थर्ड अध्याय की तरफ, जिसका नाम है कर्म योग। तो इससे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कर्म के बारे में बात होगी और ये सारी हम बातें करने के लिए अगले हफ्ते आएंगे। तो अभी फिलहाल दीजिए हमें इजाजत, हम जाते हैं, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप बाकी प्रोग्राम्स को एंजॉय करें और बने रहिए वीडियो मानव 107.8 FM पर। नमस्कार।

0: नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूँ सरिता आपके साथ और श्रोताओं, शुरू हो चुका है कार्यक्रम आत्मदर्शन। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस कार्यक्रम में बहुत सारे आध्यात्मिक प्रसंगों और कथाओं को हम आपके लिए लेकर आते हैं और स्टूडियो में होती हैं रागले खदासी जी, चरण आश्रित युगाचार्य श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। रागले खदासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। जी श्रोताओं, आजकल हम बात कर रहे हैं महाभारत ग्रंथ के अंदर समाहित बहुत सारी कथाओं के बारे में, और शायद इन कथाओं को आपने महाभारत जो सीरियल टीवी पर प्रसारित होता था उसमें देखा भी होगा, सुना भी होगा, लेकिन हम आपको रागलेखा दासी जी से पूरी व्याख्या, पूरी कथा सहित ये बता रहे हैं बहुत सारे प्रसंग। और पिछले एपिसोड में रागलेखा दासी जी हमें उस कथा के बारे में बता रही थी जहाँ पर भीम और हनुमान जी की भेंट हुई थी, और बहुत सुंदर ये वृतांत जो है रागलेखा दासी जी हमें बता रही थी। तो आगे इसमें आज इस कथा को आगे जारी करते हुए आगे की कहानी जानते हैं। जी रागलेखा दासी जी,
1: इस प्रकार जो भीम थे वो आगे बढ़कर कैलाश पर्वत के समीप कुबेर के राजभवन के पास एक सरोवर के निकट पहुँचे। भीमसेन ने वहाँ पहुंचकर उसका निर्मल जल जी भर कर पिया। महात्मा कुबेर इस सरोवर में जल क्रीड़ा किया करते थे। उस सरोवर और सुगंधित वन को देख कर भीमसेन बड़े प्रसन्न हुए। महात्मा कुबेर की ओर से हजारों क्रोधवश नाम के राक्षस तरह तरह के शस्त्र पहनावे से सुसज्जित होकर इस स्थान की रक्षा करते थे। उन्होंने महाबाहु भीम के पास आकर उनसे पूछा, कृपया बताइए आप कौन हैं? आपका वेश तो मुनियों का सा है, परंतु आप हथियार भी लिए हुए हैं, कहिए आप किस उद्देश्य से आए हैं? राक्षसों, मेरा नाम भीमसेन है, मैं धर्म या युधिष्ठिर का छोटा भाई हूँ और महाराज पांडु का पुत्र हूँ। राक्षसों ने कहा, ये यक्षराज कुबेर का प्रिय क्रीड़ा स्थान है, यहाँ मरणाधर्म मनुष्य विहार नहीं कर सकता, आप महाराज की आज्ञा ले लीजिए, फिर जल भी पी सकेंगे और कमल भी ले जा सकेंगे, क्योंकि द्रौपदी के कहने पर भीमसेन यहाँ पे सुगंधित कमल लेने आए थे। द्रौपदी जी ने कहा कि मैं कमल महाराज युधिष्ठिर को भेंट करना चाहती हूँ और मैं इसको काम्य वन ले जाऊंगी। तो उसी को ढूंढते ढूंढते भीम यहाँ पर आए हैं और यक्षों से उनका सामना हुआ, कुबेर के जो अनुचर थे।
0: जी जी,
1: और नहीं तो आप कमलों के तरफ झांक भी नहीं सकते। भीमसेन बोले, राक्षसों, राजा लोग मांगा नहीं करते, यही सनातन धर्म है। ऐसा कहकर भीमसेन उन राक्षसों की उपेक्षा कर स्नान करने के लिए उस सरोवर में उतर पड़े। जब वे राक्षसों ने उन्हें रोका, वे एक साथ ही शस्त्र उठाकर उन पर टूट पड़े। भीमसेन ने भी अपनी यमदंड के समान सुवर्ण मंडिता भारी गदा को उठाकर ठहरो ठहरो ऐसे चिल्लाते हुए उन पर आक्रमण किया। इससे राक्षसों का रोष भी बढ़ गया और वे चारों ओर से घेर कर उन पर तोमर कटी शादी अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे। उनके शस्त्रों के खंड खंड करके सरोवर के पास ही सैकड़ों वीरों को बिछा दिया भीम ने। उन्होंने यक्षराज कुबेर के पास जाकर बहुत डरते डरते युद्ध में भीमसेन के बल और पराक्रम का वर्णन किया। राक्षसों की बात सुनकर कुबेर बड़े हंसे और बोले, मुझे इन सब बातों का पता है, द्रौपदी के लिए भीमसेन को जितने कमल चाहिए उसमें ले जाए। राक्षसों का क्रोध ठंडा पड़ गया और वे भीमसेन के पास आए। पत्रिका आश्रम में भीमसेन की युद्ध की सूचना देने वाला बड़ा वेगवान तीखा और धूल बरसाने वाला वायु चलने लगा। अनेकों भयंकर उत्पात होने लगे। ऐसी विचित्र स्थिति देख के धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, पांचाली भीम कहाँ है? मालूम होता है वह कहीं कुछ भयंकर कर्म करना चाहता है अथवा कुछ भी कर बैठा है, क्योंकि अकस्मात होने वाले उत्पात किसी महान युद्ध की सूचना दे रहे हैं। युधिष्ठिर ने नकुल सहदेव से कहा कि जिस ओर भीम गया है उसी ओर हम सबको शीघ्र ही शीघ्र रास्ता चलना चाहिए। राक्षस लोग तो ब्राह्मणों को ले चले और घटोत्कच तुम द्रौपदी को ले चलो। उन्होंने शीघ्र ही जाकर एक सुंदर वन में कमल की सुवासित एक अत्यंत मनोहर सरोवर को देखा। उसी के तीर पर परम तेजस्वी भीमसेन दिखाई दिए, जिनके पास अनेकों मरे हुए यक्ष भी देखे। इस प्रकार भीमसेन को समझाकर उन्होंने सौगंधित कमल ले लिए और देवताओं के समान उस सरोवर में क्रीड़ा करने लगे। अर्जुन के आने की प्रतीक्षा करते हुए उन्होंने कुछ समय वहाँ पर गंध मादन के शिखर पर ही निवास किया। फिर उन्हें आकाशवाणी सुनाई दी, अब तुम यहाँ से आगे नहीं जा सकते, ये मार्ग बहुत दुर्गम है, इसलिए कुबेर के आश्रम से आगे ना बढ़कर तुम जिस मार्ग से आए हो उसी से नर नारायण के स्थान बद्रिकाश्रम को लौट जाए, क्योंकि ये सब देवताओं के स्थान है, तो आगे जाना अनुमति नहीं थी।
2: जी जी।
1: अब हम जटासुर के वध की बात करते हैं। एक समय धर्मराज के पास एक राक्षस आया, वो बोला, मैं समस्त शास्त्र वेताओं में श्रेष्ठ और मंत्र विद्या में कुशल ब्राह्मण हूँ। ऐसा कहकर वे सर्वदा पांडवों के धनुष और तरकश और द्रौपदी को उड़ा ले जाने की ताक में उन्हीं के पास रहने लगा। उस दुष्ट का नाम जटासुर था। एक समय भीमसेन वन में गए हुए थे, वो मशादी महर्षि गण स्नान करने चले गए। उसी समय जटासुर भयानक रूप धारण करके तीनों पांडव द्रौपदी और सारे शस्त्रों को उठाकर ले चला। उनमें से सहदेव किसी प्रकार पराक्रम करके छूट गए और उस राक्षस ने अपनी की कौशिकी नामक तलवार छीन कर जिस ओर भीमसेन गए थे उस ओर आवाज लगाने लगे। युधिष्ठिर उसके लिए भारी हो गए और उनके भार से दबकर उसकी गति उतनी तेज नहीं रही। तब धर्मराज ने नकुल और द्रौपदी से कहा, तुम उस मूल राक्षस से डरो मत, मैंने उसकी गति को कुटिल कर दिया है। अकस्मात इंद्र के समान गदाधारी भीमसेन दिखाई दिए। उन्होंने कहा, राक्षस उनके भाइयों और द्रौपदी को लिए जाता है। भीमसेन ने ललकारा, हे रे पापी, मैंने तो तुझे पहले ही शस्त्रों की परीक्षा करते समय पहचान लिया था, किंतु तू हमारे यहाँ ब्राह्मण वेश में रहता था, इसीलिए मैं तुझे कैसे मारता। ये राक्षस से ऐसा जान लिया जाए तो भी बिना अपराध के मारना उचित नहीं है, और जो बिना अपराध के मारता है नरक में जाता है। तू जहाँ जाना चाहता है वहाँ नहीं जा सकता, बट तुझे बक और हिडन के रास्ते में जाना होगा। भीमसेन के ऐसा कहने पर काल की प्रेरणा से राक्षस डर गया और उन सबको छोड़कर युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। फिर इन दोनों में बड़ा भयंकर बाहु युद्ध होने लगा। भीमसेन और जटासुर भी एक दूसरे को चोटे करने लगे। उन्होंने वज्र के समान वेग वाली शिलाओं से लड़ना आरंभ किया। अंत में वे आपस में एक दूसरे को घूसों की वर्षा करने लगे। इसी समय भीमसेन ने जटासुर की गर्दन पर बड़े वेग से मुक्का मारा, उससे वह राक्षस बहुत ढीला पड़ गया। उसे थका हुआ देख कर भीमसेन ने उसे पृथ्वी पर दे मारा और उसके सारे अंग चूर चूर कर दिए। कोहनी की चोट से उसका सिर अलग कर दिया।
0: जी श्रोताओं, बहुत ही खूबसूरत प्रसंग हम जान रहे हैं लागलिखा दासी जी से। अभी किस तरह से जो भीमसेन हैं वो पहुंचे थे कमल पुष्प लाने के लिए, और अब हमने जटासुर के वध की भी कथा लागलिखा दासी जी से जान ली है। अभी हमने जटासुर के वध की कथा को जाना और अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं लागलिखा दासी जी से अगली कौन सी कथा वो सुनाने वाली है। जी
1: जी। जटासुर के वध के बाद महाराज युधिष्ठिर फिर नर नारायण के आश्रम में जाकर रहने लगे। इस समय उन्हें अपने भाई अर्जुन का स्मरण हो आया है, क्योंकि अर्जुन तो 12 वर्ष के उसमें अज्ञातवास में गए थे, तो वो अभी अर्जुन को स्मरण कर रहे हैं। अर्जुन ने मुझसे कहा था कि मैं 5 वर्ष का स्वर्ग में अस्त्र विद्या सीखने के बाद यहाँ मृत्यु लोक में लौट आऊंगा। वे कहीं तो पैदल चलते थे और कहीं वो राक्षस लोग उन्हें कंधे पर बैठा कर ले जाते पांडवों को। 7वें दिन हिमालय की पवित्र पृष्ठ पर पहुंचे, वहाँ उन्हें राजऋषि विश्वकर्मा का पवित्र आश्रम देखा। पांडवों ने शास्त्र में पहुंचकर परम धार्मिक राजऋषि विश्वकर्मा को प्रणाम किया। राजऋषि ने पुत्रों के समान उनका अभिनंदन किया और उनसे सत्कृत हो पांडवों ने वहाँ 7 दिन रात-रात निवास किया। क्रमशः उन वीरों ने परम पवित्र गंध मादन के वन में प्रवेश किया। फिर उन्होंने फल फूल वाले वृक्ष से सुशोभित राजऋषि अरिष्टसेन का आश्रम देखा। राजऋषि बड़ी तपस्वी थे, उनका शरीर अत्यंत कृष्ण था, शरीर की नसें दिखाई देने लगी थी। अरिष्टसेन ने कहा, पूर्णिमा और प्रतिपदा की संधि में उस पर्वत पर केवल जल या पवन का ही सेवन करने वाले मुनिगण आकाश मार्ग से आते हैं। उस समय यहाँ भेरी पनव शंख और मृदंगों का शब्द भी सुनाई देता है। आप लोगों को यहीं बैठ बैठ कर उसे सुनना चाहिए। यहाँ से आगे तुम्हारे लिए जाना संभव ही नहीं है, क्योंकि अब आगे देवताओं की विहार भूमि है और उसमें मनुष्यों की गति नहीं हो सकती। इस कैलाश के शिखर को नांगकर केवल परम सिद्ध देवऋषि ही जा सकते हैं। यदि कोई मनुष्य चपलतावश जाने का प्रयत्न करता है तो उससे समस्त पर्वतीय जीव द्वेष करने लगते हैं और राक्षस लोग उसे लोहे की पर्चियों से मारते हैं। अतः जब तक अर्जुन आए तब तक आप यहीं निवास कीजिए। इस प्रकार वहाँ रहते हुए उनके वनवास का 5वां वर्ष भी बीत गया। तब हम एक प्रसंग लेते हैं भीम का सर्प के चंगुल में फंसना और युधिष्ठिर के द्वारा सर्प के प्रश्न का उत्तर। एक समय भीमसेन स्वेच्छा अनुसार वन की शोभा देखने के लिए आश्रम से बाहर निकले। उस समय उनकी कमर पर तलवार बंधी थी और हाथ में धनुष था। भीमसेन धीरे धीरे चले जा रहे थे, इतने में उनकी दृष्टि एक विशालकाय अजगर पर पड़ी जो एक पर्वत की कंदरा में पड़ा हुआ था। वह अजगर काल के समान विकराल और समस्त प्राणियों को भयभीत करने वाला था। भीमसेन को सहसा अपने निकट पाकर वह महासर्प अत्यंत क्रोध में भर गया और उसने बलपूर्वक दोनों भुजाओं के सहित उनके शरीर को लपेट लिया। अजगर को मिले हुए वर के प्रभाव से उसका स्पर्श होते ही भीमसेन की चेतना लुप्त हो गई। यद्यपि उनकी भुजाओं में 10,000 हाथियों का बल था तो भी सर्प के चंगुल में फंस कर वे बेकाबू हो गए। इधर राजा युधिष्ठिर बड़े भयंकर अनिष्टकारी उत्पात देख कर घबरा उठे। उन्होंने द्रौपदी से पूछा, भीमसेन कहाँ है? द्रौपदी बोली, उन्हें तो वन में गए बहुत देर हो गई। भीमसेन के पैरों का चिन्ह देखते हुए वे उस वन में उनकी खोज करने लगे। ढूंढते ढूंढते पर्वत के दुर्गम प्रदेश में जाकर उन्होंने देखा कि एक महान अजगर ने उन्हें जकड़ लिया है और वे निश्चेष्ट हो गए। युधिष्ठिर ने सर्प से कहा, आयुष्मान तुम मेरे इस अनंत पराक्रमी भाई को छोड़ दो, तुम्हारी भूख मिटाने के लिए मैं तुम्हें दूसरा आहार दूंगा। सर्प बोला, ये राजकुमार मेरे मुख में स्वयं आकर मुझे आहार रूप में प्राप्त हुआ है, तुम यहाँ से चले जाओ, यहाँ रुकने में कल्याण नहीं है, अगर रुके रहोगे तो कल तुम भी मेरे आहार बन जाओगे। युधिष्ठिर ने कहा, सर तुम कोई देवता हो या दैत्य हो या वास्तव में सर्प ही हो, सच बताओ, तुमसे युधिष्ठिर प्रश्न कर रहा है। जंगम बोलो तो सही, कोई ऐसी वस्तु जिसे पाकर अथवा जानकर तुम्हें प्रसन्नता हो, तब भीमसेन को कैसे छोड़ सकते हो? सर बोला, राजन मैं पहले जन्म में तुम्हारा पूर्वज नहुष नाम का राजा था। मैंने अनेकों यज्ञ की, तपस्या की, स्वाध्याय किया और अपने मानव इंद्रियों को विजय प्राप्त करी
2: जी।
1: उस समय सत्कर्मों से और अपने पराक्रम से मुझे तीनों लोगों का ऐश्वर्य प्राप्त हुआ था। उसी ऐश्वर्य को प्राप्त कर मेरा अहंकार बढ़ गया। मैंने मदोन्मत होकर ब्राह्मणों का अपमान किया। इससे कुपित होकर महर्षि अगस्त ने मुझे उस अवस्था में पहुंचा दिया। महाराज अगस्त की ही कृपा से आज तक मेरे पूरी जन्म की स्मृति लुप्त नहीं हुई। उसी के शाप के अनुसार दिन के छठे माह भाग में ये तुम्हारा भाई मुझे भोजन के रूप में प्राप्त हुआ, अतः मैं ना तो इसे छोड़ूंगा और ना ही उसके बदले दूसरा आहार लूंगा। किंतु एक बात है, यदि तुम मेरे पूछे हुए कुछ प्रश्नों का उत्तर अभी दे दोगे तो इसके बाद तुम्हारे भाई भीमसेन को मैं अवश्य छोड़ दूंगा। सर्प ने पूछा, राजा युधिष्ठिर बताओ ब्राह्मण कौन है और जानने योग्य तत्व क्या है? युधिष्ठिर बोले, नागराज सुनो, इसमें सत्य, दान, क्षमा, सुशीलता, क्रूरता का अभाव, तपस्या, दया, ये सद्गुण दिखाई देते हैं, वही ब्राह्मण है। जानने योग्य तत्व हो तो पर भ्रमी है और सुख दुख से परे है, यहाँ पहुँच कर भी उसे जाना मनुष्य के शोक से पार हो जाता है। अहिंसा, दया आदि सद्गुण तो शूद्रों में भी पाए जाते हैं, किंतु अतः तुम्हारी मान्यता के अनुसार तो वे भी ब्राह्मण कहे जा सकते हैं। तुमने सुख दुख से रहित पद बतलाया है, इसमें भी मुझे आपत्ति है। मेरे विचार से तो सुख दुख दोनों से रहित कोई दूसरा पद है ही नहीं। युधिष्ठिर ने कहा, यदि शूद्रों में सत्य उपयुक्त लक्षण है और ब्राह्मणों में नहीं है, तो वे शूद्र शूद्र नहीं है और ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं है। जिसमें ये सत्य आदि लक्षण हो उसे ब्राह्मण समझना चाहिए और जिसमें इसका अभाव हो उसे शूद्र कहना चाहिए। किंतु जिस प्रकार शीतल जल में उष्णता नहीं रहती और उष्ण स्वभाव वाले अग्नि में जल की शीतलता नहीं होती क्योंकि उसमें परस्पर विरोध है, इसी प्रकार जो वेद पद है उसे केवल अज्ञान का आवरण दूर करने के लिए अपने से अभिन्न समझना है, उसका कभी और कहीं भी वास्तविक सुख और दुख से संपर्क नहीं होता। सर बोला, राजन यदि तुम आचार से ही ब्राह्मण की परीक्षा करते हो तब तो जब तक उसके अनुसार कर्म न हो जाति व्यर्थ ही है। युधिष्ठिर ने कहा, मेरे विचार से तो मनुष्यों में जाति की परीक्षा करना बहुत कठिन है क्योंकि इस समय सभी वर्णों में सम्मिश्रण हो रहा है, सभी मनुष्य सभी जाति के स्नेह से संतान उत्पन्न कर रहे हैं, बोलचाल, मैथुन, मित्रवर्ती, जन्म मरण ये सब मनुष्यों को एक से देखे जाते हैं। इसलिए जो तत्वदर्शी विद्वान है वे शील सदाचार को ही प्रधानता देते हैं। जब बालक जन्म लेता है तो नाल छेदन के पहले उसका जातकर्म संस्कार किया जाता है, उसमें माता सावित्री कहलाती है और पिता आचार्य। जो तत्वदर्शी विद्वान है वे शील को ही प्रधानता देते हैं। जब बालक जन्म लेता है तो नाल छेदन के पहले उसका जातकर्म संस्कार किया जाता है, उसमें माता सावित्री कहलाती है और पिता आचार्य। जब तक बालक का संस्कार करके उसके वेद का स्वाध्याय नहीं कराया जाता तब तक वे शूद्र के समान है। यदि वैदिक संस्कार करके वेद अध्ययन करने पर भी शील और सदाचार नहीं आया तो उसमें प्रबल वर्ण संकट है, ऐसा विचार पूर्वक निश्चय किया गया है। जिसमें संस्कार के साथ शील और सदाचार का विकास हो उसे ही मैंने पहले ही ब्राह्मण बता दिया। सर बोला, युधिष्ठिर तुम जानने योग्य सभी कुछ जानते हो, तुमने जो मेरे प्रश्नों का उत्तर दिया उसे मैंने भली भांति सुन लिया। अब तुम मैं तुम्हारे भाई भी इनसेन को कैसे खा सकता हूँ। युधिष्ठिर ने कहा, सर्वराज तुम संपूर्ण वेद वेदांगों के ज्ञाता हो, बताओ किन कर्मों के आचरण से सर्वोत्तम गति प्राप्त होती है। अभी युधिष्ठिर महाराज प्रश्न कर रहे हैं और सर्व उत्तर दे रहे हैं। युधिष्ठिर बोले, दान और सत्य में कौन बड़ा है, अहिंसा और प्रिय भाषण इसमें किसका महत्व अधिक है किसका कम। सर बोला, प्रिय भाषण इनका गौरव लाघव कार्य की महत्ता के अनुसार देखा जाता है, किसी दान से तो सत्य का महत्व बढ़ जाता है और किसी सत्य भाषण से दाम बड़ा होता है। इस प्रकार कहीं तो प्रिय बोलने की अपेक्षा अहिंसा का अधिक गौरव है और कहीं अहिंसा से बढ़कर प्रिय भाषण का महत्व है। इस प्रकार इनके गौरव और लाघव का विचार कार्य की अपेक्षा से ही है। युधिष्ठिर ने कहा, मृत्यु काल में मनुष्य अपना शरीर तो यही त्याग देता है, बिना देह के वे स्वर्ग में कैसे जा सकता है और कर्मों के अवश्यम्भावी फल को कैसे भोगता है। सर्प ने कहा, राजन अपने अपने कर्मों के अनुसार जीव की तीन प्रकार की गति देखी जाती है, स्वर्गलोक की प्राप्ति, मनुष्य योनि में जन्म और पशु पक्षी आदि योनियों में उत्पन्न होना। यदि आलस्य और प्रमाद को त्याग कर वह अहिंसा का पालन करते हुए दान आदि शुभ कर्म करता है तो उसे पुण्य की अधिकता के कारण स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है और इसके विपरीत कारण उपस्थित होने पर मनुष्य योनि में और पशु पक्षी आदि योनियों में जन्म लेना पड़ता है। काम क्रोध लोभ हिंसा में तत्पर होकर जीव मानवता से भ्रष्ट हो जाता है और अपनी मनुष्य होने की योग्यता को भी खो बैठता है, वही तिर्यक की योनि में जन्म लेता है। फिर सत्कर्म का आचरण करने के निमित्त मनुष्य योनि में ही जन्म लेकर उसकी तिर्यक की योनि से उद्धार होता है। युधिष्ठिर बोले, सत शब्द स्पर्श रूप रस और गंध इसका आधार क्या है, इसका यथार्थ रीति से वर्णन करो, तुम सब विषयों को एक साथ ग्रहण क्यों नहीं करते। विषयों के उपभोग के समय बुद्धि के द्वारा ये मन किसी एक ही विषय में लगाया जाता है, इसलिए एक साथ इसके द्वारा अनेकों विषयों का ग्रहण करना संभव नहीं है। जिसे हम बुद्धि इंद्रिय और मन से युक्त होने को भोक्ता बताया है वही आत्मा या अनात्मा के चिंतन में लगी हुई उत्तम अदम बुद्धि को रूप आदि विषयों या प्रेरित करता है। ज्ञान ही आत्मा का स्वरूप है और वही सबका आधार है। युधिष्ठिर ने कहा, हे सर मुझे मन और बुद्धि का ठीक ठीक लक्षण बताओ। सर बोला, बुद्धि को आत्मा के आश्रित समझना चाहिए, इसलिए वे अपने अधिष्ठान भूत आत्मा की इच्छा करती है। बुद्धि को आत्मा के आश्रित समझना चाहिए, इसलिए वे अपने अधिष्ठान भूत आत्मा की इच्छा करती रहती है, अन्यथा वह आधार के बिना टिक नहीं सकती। विषय और इंद्रियों के संयोग से बुद्धि उत्पन्न होती है और मन तो पहले ही उत्पन्न है। बुद्धि स्वयं वासना वाली नहीं है, वासना वाला तो मन ही है। युधिष्ठिर बोले, बुद्धिमानों में श्रेष्ठ तुम्हारी बुद्धि बड़ी उत्तम है, तुम तो जो कुछ जानना है जान चुके हो, तुम्हारी दुर्गति के विषय में मुझे बड़ा संदेह हो रहा है। सर ने कहा, ये धन और संपत्ति बड़े बड़े बुद्धिमान और शूरवीर मनुष्यों को भी मोह में डाल देते हैं। मेरा तो ये अनुभव है कि सुख और विलास का जीवन व्यतीत करने वाले सभी मनुष्य मोहित हो जाते हैं। यही कारण है मैं भी ऐश्वर्य के मोह से मंदोन्मत्त हो गया था और मोह के कारण जब मेरा अधपतन हो गया तब सचेत हुआ। अब तुम्हें सचेत कर रहा हूँ महाराज, आज तुमने मेरा बहुत बड़ा कार्य किया। इस समय तुमसे वार्तालाप करने से मेरा वह कष्टदायक शाप निवृत्त हो गया। पूर्व काल में मैं जब चढ़ कर राजा था दिव्य विमान पर चढ़कर आकाश में विचरता रहता था। इसमें अहंकार के कारण मैं किसी को कुछ नहीं समझता था। जो भी इस त्रिलोकी में निवास करते थे सभी मुझे कर दिया करते थे। उस समय मेरी दृष्टि इतनी शक्ति थी कि जिसकी ओर आंख उठाकर देखता उसका तेज छीन देता था। मेरा अन्याय यहाँ तक बढ़ गया था कि 1000 महर्षियों ब्रह्म ऋषियों ने मेरी पालकी धोई। इस अत्याचार ने मुझे राज्य लक्ष्मी से भ्रष्ट कर दिया। मुनिवर अगस्त पालकी धो रहे थे, मैंने उन्हें लात मारी और तब एक रोध में भर कर उन्होंने कहा, अरे ओ सर तू नीचे गिर। तब मेरे राज सिंह गुप्त हो गए और मैं उत्तम विमान से गिर पड़ा। मुझे मालूम हुआ मैं सर्फ होकर नीचे मुख किए गिर रहा हूँ। अगस्त मुनि से याचना की, भगवान मैं प्रमाद व विवेक शून्य हो गया था, इससे आप घोर अपराध हुआ है, आप क्षमा करके ऐसी कृपा करें जिससे मेरे शाप का अंत हो जाए। तब धर्मराज युधिष्ठिर तुम्हें शाप से मुक्त करेंगे और इस अहंकार और घोर पाप का फल क्षीण हो जाएगा, इस समय तुम्हें फिर पुण्यों का फल प्राप्त होगा। महाराज तो ये है तुम्हारी भाई महाबली भीमसेन, तुम्हारा कल्याण हो और मुझे विदा दो, मैं पुनः स्वर्लोक को जाऊंगा। ये कहकर राजा महेश ने अजगर का शरीर त्याग दिया, दिव्य देह धारण करके वे पुनः स्वर्लोक में चले गए।
0: जी श्रोताओं, बहुत ही खूबसूरत प्रसंग जाना कि किस तरह से युधिष्ठिर जी ने जो है एक अजगर को उनके श्राप से मुक्ति दिलाई। राजा नहुष थे, वो स्वर्ग में विचरण करते थे, लेकिन एक ऋषि के श्राप के कारण उनको ये योनि मिली और किस तरह से युधिष्ठिर ने उनको उनके श्राप से मुक्त किया, ये कथा हमने जानी आज रागलेखा दासी जी से। तो श्रोताओं, आगे और भी कथाएं हैं, प्रसंग हैं जो हम इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। रागलेखा दासी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। जी तो श्रोताओं, आज के कार्यक्रम से हमें दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 पर आने वाले अन्य कार्यक्रमों को भी। फील गुड, फील लाइव।

मॉर्निंग रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूं साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूं रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूं। सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक आपके साथ रहती हूँ, मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के 7 दिन। और होती हैं बहुत सारी बातें। जी हाँ, आज क्या कुछ खास लेकर के आई हूँ, क्योंकि सेगमेंट लेकर के आ जाती हूँ। और सेगमेंट जो है हमारा पहला, वो है दिल धड़कने दो, जिसपे हेल्थ और फिटनेस की करती हूँ ढेर सारी बातें। और इसके बाद लेकर के आती हूँ सेगमेंट स्ट्रेच प्लीज, जिसमें बातें होती हैं योग से जुड़ी हुई। और उसके बाद आ जाता है हमारा अगला सेगमेंट, सेगमेंट का नाम है बहुत ही ज़्यादा खास, क्योंकि ये है पावर प्ले विद आरजे साक्षी, जिसमें स्पोर्ट्स की बात होती है। जिसके बाद आ जाता है आपका फेवरेट फेवरेट फेवरेट सेगमेंट, जिसका नाम है कौन बनेगा सेहतमंद, जिसमें आपसे पहेलियां पूछती हूँ और जिसका जल्दी से झटपट से आपको जवाब देना होता है। तो चलिए इस बार भी हम जुड़ जाते हैं और बहुत सारी करते हैं बातें। अगर आप कुछ खास कहना चाहते हैं, कोई दिल की बात मुझ तक पहुँचाना चाहते हैं, या फिर हमारे थ्रू किसी से कुछ कहना चाहते हैं, कोई गाना सुनना चाहते हैं, कोई फरमाइश है, तो जल्दी से सुन सकते हैं। नंबर बहुत ही आसान है, 8010781078। चलिए इसी के साथ लेती हूँ यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, जिसके बाद होंगी और भी बहुत सारी बातें। तो कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें लेकर के मैं आ जाती हूँ। सेगमेंट दिल धड़कने दो में एक बहुत ही खास टॉपिक के साथ आई हूँ। अच्छा, क्या आपके घर में भी जो है वो अगर कभी दूध फट जाता है तो आप देखते ही होंगे ना कि जब दूध फट जाता है तो उसके लिए क्या करते हैं ना, उसका जो पानी होता है हम निकाल के फेंक देते हैं और उसके बाद पनीर जो है हम उससे बना लेते हैं, तैयार कर लेते हैं। अब लेकिन ये जो पनीर है खाने में तो स्वादिष्ट होता है, इससे अलग अलग चीज़ें भी आप ज़रूर बना सकते हैं। कभी हम पनीर भुर्जी बना लेते हैं तो कभी हम कुछ सेट करके उसको कोई सब्जी पनीर की बना लेते हैं, लेकिन पानी का क्या? अब पानी जो उसका है, अब उसको तो हम ये सोच के फेंक देते हैं कि इसका तो कोई यूज़ ही नहीं है, ये तो ख़राब है। अब अगर आप भी फेंक देते हैं ना तो आज से रुक जाइए। कभी भी अगर दूध फट जाए या फिर ना भी फटे तो जानबूझ के आप जो दूध है इसको आप फाट सकते हैं, जिसकी वजह से आपको मिल जाएंगे इसके कई सारे गुण, क्योंकि अब आपको इसे फेंकना बिल्कुल भी नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि इसका जो है फ़ायदे बहुत सारे हैं। इस पानी के जो हम यूं ही फेंक देते हैं वो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, और क्यों है ये बताऊंगी कुछ ही देर में। फिलहाल लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रेस्ट 107.8 FM। फील गुड, feel live.

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक। हफ्ते के 7 दिन 2 घंटे का हमारा सफ़र जो है ये रहता है और बहुत सारी होती हैं बातें। फिलहाल आपको बता दूं मैं कि बात अब मैं कर रही हूँ बहुत ही एक खास टॉपिक की। बात हम कर रहे हैं ये जो जब दूध जो है वो फट जाता है, चाहे गलती से या चाहे आपने पनीर बनाने के लिए उसे फाड़ा हो या कुछ भी आप बना रहे हैं, कोई रसमलाई बना रहे हैं, रसगुल्ले बना रहे हैं, होता है ना पनीर के लिए हम उसके जो छेने के लिए हम फाड़ते हैं दूध को, तभी छेना बनता है, तो हम क्या करते हैं जो पानी होता है उसे हम फेंक देते हैं। अब मैं आपको बता दूं कभी भी आपके साथ ऐसा होता है कि गलती से फट जाता है या फिर आपने कोई चीज़ बनाने के लिए यानी कि पनीर या छेना बनाने के लिए अगर आप उसको फाड़ा है आपने दूध को, तो अब पानी फेंकने की उसकी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये जो पानी है ये प्रोटीन का पावर हाउस कहलाता है। जी हाँ, जब दूध फटता है तो आप उसे पनीर बनाते हैं, तो बचा हुआ पानी वो वे प्रोटीन से भरपूर होता है। वे प्रोटीन मांसपेशियों की ग्रोथ, मरम्मत और साथ ही रिकवरी के लिए बेहतरीन माना जाता है। और ये चाहे एथलीट्स हों या जिम जाने वाले जो भी लोग हों, उनके लिए तो वरदान से बिल्कुल भी कम नहीं है। आपने सुना होगा वे प्रोटीन जो है ये लेते भी हैं, जो जिम जाते हैं वो प्रोटीन लेते हैं जिसका नाम वे प्रोटीन जो है वो कहा जाता है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, वो एकदम बहुत ही प्योर प्रोटीन जो है वो होता है। इसमें यह होता है कि देखिए जैसे ये जो पानी है ये यानी कि जो दूध फट के जो पानी निकलता है, इसके बाद इसको क्या कहा जाता है अच्छे से, बहुत ज़्यादा इसको अच्छे से जो है प्रोसेस किया जाता है, इसको अच्छे से जो है पकाया जाता है, इसके बाद बिल्कुल सुखा दिया जाता है, इसका पाउडर बना दिया जाता है। तो बस वही पाउडर जो है वही वे प्रोटीन जो है उसे खाया जाता है, इनटेक किया जाता है। तो ये चाहे जिम जा रहे हैं एथलीट्स हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा कमाल है, वरदान से कम नहीं है। इसका सेवन करने से अपनी डेली प्रोटीन की ज़रूरत को आप पूरा कर सकते हैं। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप प्रोटीन के अच्छे सोर्स ढूंढ रहे हैं, तो अब आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो है वे प्रोटीन का बहुत ही अच्छा सोर्स है। जो फटा हुआ दूध होता है उसका जो पानी होता है जिसे हम फेंक देते हैं, मैं उसकी बात कर रही हूँ, वो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है प्रोटीन का। चलिए इसी के साथ अभी लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक, जिसके बाद होंगी और भी बहुत सारी बातें, तो आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि आपके लिए लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक। रोजाना मंडे टू संडे आपके साथ रहती हूँ, यानी कि हफ्ते के 7 दिन, और बहुत सारी होती हैं बातें। फिलहाल बातें हमारी चल रही हैं और आपको अभी बता रही हूँ मैं बहुत ही खास एक वेव प्रोटीन के बारे में, जो कि आपको मिलता है

तोक में ये इसके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। स्वास्थ्य आपका बनाए रखने में काफ़ी अच्छी है, आपकी गट हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा अहम भूमिका भी ये निभा सकता है अगर आप इसका सेवन करते हैं तो। डाइजेशन के लिए तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, इनफैक्ट हड्डियों को भी ये मजबूती देता है। कैल्शियम और फोस्फोरस जैसे मिनरल्स हड्डियों और ओरल हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। फटे दूध के पानी में अगर आप खनिजों की अच्छी मात्रा जो है ये पाई जाती है जो हड्डियों को मजबूत बनाने में काफ़ी काम करती है और ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारियों के जोखिम को भी कम करने में काफ़ी मददगार साबित हो सकती है। गर्मियों में या किसी भी समय जब आपकी बॉडी को एक्स्ट्रा डाइजेशन की ज़रूरत होती है या फिर हाइड्रेशन की ज़रूरत होती है तो पानी एक शानदार ऑप्शन हो सकता है ये जो है। और ये जो है भाई मैं आपको बता दूँ, इसमें मौजूद इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे पोटेशियम हमारी बॉडी में तरल पदार्थों को संतुलित बनाए रखने में काफ़ी मदद करते हैं जिससे आपकी हाइड्रेशन से भी आप जो है डिहाइड्रेशन से बच सकते हैं, हाइड्रेटेड रहेंगे। और ये जो सादे पानी से भी ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है क्योंकि ये सिर्फ पानी ही नहीं है बल्कि ये कुछ पोषक तत्वों का भी जो है वो भी प्रदान करता है। कुछ ऐसे पोषक तत्व इसमें मिलते हैं जो कि आपकी बॉडी को ज़रूरत है और काफ़ी ज़्यादा आपकी बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए इसी के साथ यहाँ पर अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

0: वेलकम बैक रेडियो हमारे रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप. मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग. और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक रोजाना मंडे टू संडे आपके साथ रहती हूँ. 2 घंटे का हमारा सफर है जिसमें होती हैं बहुत सारी बातें. फिलहाल हमारे सेगमेंट दिल रखने दो, मैं आपसे बातें मैं कर रही हूँ और बातें जो है वो हमारी चल रही हैं. ये जो दूध होता है जब फट जाता है तो पानी, इसका आप क्या करते हैं, फेंक देते हैं. लेकिन अब इसे फेंकना बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि ये प्रोटीन का बहुत ही अच्छा सोर्स है. साथ ही साथ ये आपको जो है डाइजेशन के लिए आपके बहुत अच्छा है. साथ ही आपको डिहाइड्रेशन से भी ये पानी बचा सकता है. हड्डियों को मजबूती जरूर देगा. साथ ही त्वचा और बालों के लिए भी वरदान है. इसमें मौजूद पोषक तत्व जो है ये विशेषकर क्योंकि प्रोटीन है और साथ ही विटामिंस है तो आपकी त्वचा और बालों के लिए, उसकी सेहत के लिए काफ़ी ज़्यादा एक बेहतरीन ऑप्शन है. तो आप प्रोटीन कोलेजन प्रोडक्शन के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. त्वचा को जवां और चमकदार दिखाए रखने में भी काफ़ी काम करता है. जबकि विटामिन और मिनरल्स जो है बालों को मजबूती और हेल्दी रखने में मददगार हैं, जो कि आपको इसी में मिल जाएगा. कुछ लोग सीधे या त्वचा पे या बालों पर भी इसे लगाना ठीक समझते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं. तो आप इसको क्या कर सकते हैं, किस तरह से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि जो पानी है या तो आप इसे सीधे पी सकते हैं, ये काफ़ी अच्छा है. अपने दाल सूप या ग्रेवी में भी इस पानी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं. आटा गूंदने के लिए भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं. और इसमें रोटियां जो है वो मुलायम और पौष्टिक बनेगी. अगर आप सोच रहे हैं कि रोटी अच्छी नहीं बनेगी, रोटी काफ़ी टेस्टी बनेगी और काफ़ी अच्छी बनेगी. इसी के साथ स्मूदी या शेक में मिला सकते हैं आप. सब्जियों को उबाल के उसके उसमें भी आप डाल सकते हैं. तो ये कई तरीकों से आप इसका जो है सेवन कर सकते हैं. अलग अलग चीज़ों के साथ इसका सेवन कर सकते हैं तो ये आपको जो है प्रॉब्लम नहीं बल्कि आपकी गट हेल्थ को सुधार लेकर के आएगा. तो चलिए इसी के साथ यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक. आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रेस्ट 107.8 FM. फील गुड, फील लाइव.
1: ज्वाला, समुंदर की लहरों को देखो जो बार बार हमारे करीब आकर जैसे कह रही हूँ कि आओ हमारे कंधों पर बैठ जाओ ताकि हम तुम्हें तुम्हारे देश तुम्हारे घर ले चलें. और मैं इनसे कह रहा हूं कि सिर्फ 2 दिन और, बेचारे डॉक्टर ने हमारे लिए किश्ती तैयार करवाई है जिसे हम तुम्हारे कंधों पर रखकर नाचते कूदते अपने घर चले जाएंगे.
2: और मैं ये कह रही हूं, भगवान ने हमें नया जन्म दिया है, नई धरती नया घर दिया है. हम क्यों ना प्यार में गुमसुम अपने सारे जन्म इसी जजीरे पे गुजार दें जहां से हमें कोई अलग ना कर सके.
1: ज्वाला, हमें कोई अलग नहीं कर सकता, कोई नहीं.
2: तुम उस कमीने दीवान को नहीं जानते भारत, और मेरे सीधे साधे पिताजी को भी नहीं जानते. वहां पहुंचते ही जबरदस्ती मेरी शादी दीवान से कर दी जाएगी.
1: ऐसा कभी नहीं हो सकता ज्वाला, मेरी जिंदगी कोई मुझसे छीन नहीं सकता.
2: तो फिर एक वादा करो.
1: मेरी जान मांग लो, जान मेरी.
2: सिर्फ इतना वादा कि अपने देश पहुंचने के बाद तुम मुझे एक पल भी अपने से जुदा नहीं करोगे. इतना याद रखोगे कि राजकुमारी चित्रलेखा मर चुकी है और तुम्हारी ज्वाला जिंदा है, सिर्फ तुम्हारे लिए.
1: ज्वाला, ये मेरा वादा है.

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ। जी हाँ, सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक रोजाना, मंडे टू फ्राइडे, और साथ ही सैटरडे संडे भी आपके साथ रहती हूँ, यानी कि हफ्ते के 7 दिन अब आपके साथ रहती हूँ। और बहुत सारी होती हैं बातें, आपको बता दूँ मैं कि अभी फिलहाल एक बहुत ही खास बारे में बात मैं कर रही हूँ, और बात मैं कर रही हूँ मेंटल हेल्थ और योग की। जी हाँ, क्योंकि हमारा सेगमेंट जो है ये शुरू हो गया, सेगमेंट का नाम है स्ट्रेच प्लीज। और देखिए, स्ट्रेच प्लीज में हम बात करते हैं योग की, मेडिटेशन की। अच्छा, अब मैं आपको बता दूँ मेंटल हेल्थ के बारे में हम बात कर रहे हैं। देखिए, अच्छा अगर आपको जीवन जीना है, आपको लाइफस्टाइल अपनी बेहतर बनानी है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ पर भी ध्यान दें। अब मेंटल हेल्थ में सुधार लाने के लिए या शांति मन में रखने के लिए ज़रूरी है कि आप रोज़ाना मैं कुछ 15 से 20 मिनट योग ज़रूर करें। अपने बॉडी के साथ साथ अपने माइंड को भी आप रिलैक्स और रिचार्ज कर सकते हैं, और वो कैसे, वो होता है योग से। जी हाँ, क्योंकि योगा जो है इससे ही होगा, यही हम सुनते हैं, यही कहते हैं। और आज कुछ ऐसी बातें लेकर के आई हूँ जो कि आपके मेंटल हेल्थ से कनेक्टेड है, यानी कि कुछ ऐसे योगा आसन की बात करेंगे जो कि आपके मेंटल हेल्थ में सुधार लेकर के आती है और आपको जो है स्वस्थ रखती है मेंटल तौर पर भी। अब ये बातें क्या है बताऊंगी कुछ ही देर में, फिलहाल कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक रोजाना मंडे टू संडे आपके साथ रहती हूँ। हफ्तों के सातों दिन मैं आपके साथ रहती हूँ। बहुत सारी होती हैं बातें, फिलहाल आपको बता रही हूँ कुछ ऐसे 5 योगा आसन जो कि आपकी मेंटल हेल्थ को मजबूती देते हैं। जी हाँ, सबसे पहले आता है भुजंगासन। जी हाँ, भुजंगासन बॉडी को कई तरीकों से फायदे पहुंचाता है और साथ ही ये जो आसन है ये पेट की चर्बी को कम करने से लेकर कमर दर्द और यहाँ तक कि मानसिक शांति दिलाने में भी ये आसन काफी कारगर है। भुजंग आसन करने से योगा आपको जो है, अगर आप ये भुजंग आसन करते हैं तो इससे आपको बेली फैट तो आपको घटता है, हटता है, साथ ही जो है आपके पेट में जो भी जो जमा फैट होता है ये तो हटेगा, साथ ही मेंटली भी आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा महसूस होगा। और भुजंगासन ये काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है और ये जो है ना सिर्फ आपकी गट हेल्थ, आपकी कमर दर्द, आपके जो है मेंटल पीस, क्योंकि कहीं ना कहीं कभी ना कभी जब हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, तो ज़रूरी है कि आप कुछ आसनों पर ध्यान दें, अपनी बॉडी पर ध्यान दें, जिससे आपको ढेर

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप. मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग. और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ. सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक मंडे टू संडे आपके साथ रहती हूँ, यानी कि हफ्ते के 7 दिन. और बहुत सारी होती हैं बातें. फिलहाल आपको बता रही हूँ मैं उत्तना आसन के बारे में. मैंने आपको बताया ये जो कुछ ऐसे आसन है जो कि आपके ना सिर्फ बॉडी के लिए बल्कि मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं. अब बात करेंगे बालासन की, जिसे चाइल्ड पोज भी कहा जाता है. और ये आसन भी मन को शांत और स्थिर रखता है. इस आसन को करने के बहुत ही आसान सा तरीका है. तो जब कभी आपका दिमाग अशांत आपको महसूस हो रहा है तो आप थोड़ी देर ये आसन कर लीजिए, आपको काफ़ी अच्छा महसूस होगा. बालासन करने के लिए आपको योगा मैट लेना है, घुटनों को आपको टिकाना है और बैठ जाना है. लंबी गहरी सांसें लेते हुए दोनों हाथों को आपको ऊपर की ओर उठाना है और फिर सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे की ओर लाना है और मैट पर टिका लेना है. और सिर को आपको मैट पर ही लगाकर रखना है. और इस आसन को आपको कम से कम 2 से 3 मिनट होल्ड करके रखना है. कोशिश करनी है कि आप होल्ड कर सके इस आसन को, तो आपके लिए ये मेंटल हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है. जिसके बाद आ जाता है जानू शीर्षासन. जी हाँ, जानू शीर्षासन करने से मन आपका शांत रहता है. और इसके अलावा ये आसन जो है डिप्रेशन, थकान, चिंता, सिर दर्द और साथ ही आपकी नींद की अगर कमी हो रही है, अनिद्रा की आपको समस्या हो रही है, कुछ भी ऐसे लक्षण दिख रहे हैं तो उसमें काफ़ी कारगर है. इसे करने के लिए आपको क्या करना है, योगा मैट लेना है और इस मैट पर दोनों पैरों को आपको सामने की ओर सीधा करते हुए बैठ जाना है. जब आपने अपने दाएं पैर को मोड़कर बाएं पैर को जांघ के पास आपको लेकर के आना है और दोनों हाथों को आपको सांस भरते हुए ऊपर की ओर सीधा करना है. सांस छोड़ते हुए आपकी बॉडी को आगे की ओर आपको झुकाना है और बाएं पैर के पंजों को आपको पकड़ना है, कोशिश करनी है. और इस स्थिति को आपको सर को आपको बाएं पैर से आपको घुटने पर रखना है. इस आसन को करने के लिए आपको 10 से 12 सेकंड आप कर सकते हैं, या अगर ज़्यादा हो सके तो आप 10 से 12 बार इस आसन को ज़रूर कीजिए. कुछ सेकेंड्स के लिए कीजिए, फिर धीरे धीरे इसका टाइम ड्यूरेशन जो है वो देखते रहिए, बढ़ाते रहिए. इससे आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा आपकी मेंटल हेल्थ को काम डाउन करने का. तो चलिए इसी के साथ अब यहाँ वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, जिसके बाद होगी और भी बहुत सारी. अगला सेगमेंट लेकर के आपके पास आ गई हूँ. सेगमेंट का नाम है पावर प्ले विद आरजे साक्षी, जिसमें आपके साथ कुछ कहानियां शेयर करने वाली हूँ. तो कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM. फील गुड, फील लाइफ.

वेलकम बैक रेडियो मैनव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप, मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक आपके साथ रहती हूँ, मंडे टू संडे यानी कि हफ्ते के 7 दिन। और बहुत सारी होती हैं बातें। बात अब मैं कर रही हूँ हमारे अगले सेगमेंट की, सेगमेंट का नाम है पावर प्ले विद आरजे साक्षी, जिसमें आज कुछ खास जानकारी लेकर के आई हूँ। जी हाँ, आपको बता रही हूँ कुछ ऐसी कहानियों के बारे में जो कि अनसंग हीरोज की है, जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया। बात करते हैं अब कमल प्रीत कौर की। जी हाँ, फ्रॉम डस्ट टू डिस्कस ये है। और मैं आपको बता दूं, कमल प्रीत की हम बात करें तो पंजाब की एक सिंपल किसान की बेटी, जिसके हाथ जो है वो घूमता नहीं बल्कि चक्रव्यूह तोड़ देता है। कमल प्रीत कौर एक छोटे से गांव की लड़की फ्रॉम पंजाब, और पंजाब के श्री मुख्तसर साहब डिस्ट्रिक्ट की ये लड़की है। और मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ एक आम लड़की तो बिल्कुल भी नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। बचपन से ही स्पोर्ट्स में इनकी रुचि थी, लेकिन स्कूल में बस एक ही फोकस होता था और वो है पढ़ाई। जी हाँ, देखिए पढ़ाई जो है इस पर ही सारा फोकस इनका होता था। लेकिन जब कमल प्रीत ने पहली बार डिस्कस थ्रो किया, तो देखिए उसी थ्रो ने उनको सब कुछ जो है उनका बिल्कुल सब कुछ हिला दिया। कोच ने कहा इस लड़की में बात है, अगर इसी फोकस के साथ ये काम करे तो इंडिया का नाम रोशन करेगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम थी डिस्कस का प्रैक्टिस ग्राउंड बिल्कुल नहीं था और इक्विपमेंट्स अफोर्ड करना मुश्किल था, पर फिर भी उन्होंने मिट्टी के मैदान पर प्रैक्टिस जारी रखी। कमल प्रीत बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू ब्रीच द 65 मीटर मार्क इन डिस्कस थ्रो, और फिर टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में इंडिया को फाइनल तक इन्होंने पहुंचा दिया। उनका थ्रो ओलंपिक मेडल में कन्वर्ट तो नहीं हो पाया, पर इंडिया की एक्सपेक्टेशंस जरूर उन पर टिक गई थी, और आगे भी हो सकता है कि ये जरूर कोशिश करें और एक मुकाम जरूर हासिल करें, मेडल जरूर हासिल करें। जब मिट्टी से निकली बेटी चक्री घुमाती है तो दुनिया के मेडल भी झुक जाते हैं, और ये जरूर होगा अगली बार। और ये जो कोशिश है बिल्कुल जारी है कमल प्रीत जी की। चलिए इसी के साथ यहाँ पर लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक, जिसके बाद होगी और भी बहुत सारी बातें। तो आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

0: सुनार जी,
1: ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है, दिन के वक्त जब ये फुहारे।
2: कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
1: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
2: ये तो रोज निकलता होगा।
1: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
2: 9 बरस लंबी थी ना?

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप. मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आए हूँ रिचार्ज मॉर्निंग. और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ. सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक रहती हूँ आपके साथ, मंडे टू संडे यानी कि हफ्ते के 7 दिन. बातें हमारी चल रही हैं बहुत सारी. आपको बता दूं मैं कि अब बात मैं कर रही हूँ क्योंकि हमारा सेगमेंट चल रहा है पावर प्ले विद आर्टिस्ट. साक्षी में कुछ ऐसे अनसंग हीरोज की कहानियां लेकर के आ जाती हूँ जिन्हें सुनकर आप भी कहेंगे क्या बात है, लेकिन कहीं ना कहीं सितारे खो गए. लेकिन खोने हम ऐसे नहीं देंगे क्योंकि इनकी कहानी आपको बताऊंगी तो आप भी हैरान हो जाएंगे. बात अब मैं कर रही हूँ कबड्डी की छोटी शेरनी रितु नेगी की. जी हाँ, ये जो कबड्डी के मैदान में जब उतरी, मैदान छोटा हो या जिंदगी, रितु हर टैकल के बाद और स्ट्रांग होती रही. रितु नेगी एक हिमाचली लड़की जिसके कबड्डी का पहला जो टेस्ट है वो स्कूल में उनका मिला. और वो स्कूल की एक इकलौती लड़की थी जो भाई बॉयज के अगेंस्ट कबड्डी खेला करती थी. लोग कहते थे कि इसे शादी इससे कौन करेगा, और ये तो कबड्डी खेलती है तो इससे शादी तो कोई नहीं करेगा. पर रितु ने सोसाइटी के सब नॉर्म्स इग्नोर किए. उन्होंने हिमाचल वुमेन्स टीम ज्वाइन करी और उसके बाद नेशनल जो है वो नेशनल चैंपियनशिप ये जीत गए और फिर इंडियन वुमेन्स नेशनल कबड्डी टीम की कप्तान भी बनी. एशियन गेम्स 2023 में रितु ने इंडिया को गोल्ड मेडल दिलाने में मेजर रोल प्ले किया. जमीन से जुड़ी रितु आज भी अपने गांव के ट्रेनिंग ये जो है वो बच्चों को देती हैं, यानी कि लड़कियों को देती हैं और नए प्लेयर्स को और ज्यादा मोटिवेट करती हैं. वो गिरती है, उठती है और फिर से वही खड़ी हो जाती हैं और उसी जज्बे के साथ खड़ी होती हैं कि उनको अब अगला मेडल लेकर के आना है. रितु की कबड्डी जिंदगी का लेसन बन गई. और आप देखिए कि कितना कमाल कि गोल्ड मेडल लाने में भी, इंडिया को भारत का नाम रोशन करने में भी रितु का काफी बड़ा हाथ है इसमें. तो चलिए इसी के साथ यहाँ पर आपको बता दूं अगली आपको कहानी की भी आपको बताऊंगी किसकी आपको बताने जा रही हूँ. लेकिन उससे पहले अभी लेने वाली हूँ एक छोटा सा ब्रेक. आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM. फील गुड, फील लाइव.

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप, मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक रहती हूँ आपके साथ, और बहुत सारी होती हैं बातें हफ्ते के साथ दिन। और देखिए, अभी फिलहाल हमारा सेगमेंट जो है वो चल रहा है, सेगमेंट का नाम है पावर प्ले विद आरजे साक्षी, जिसमें कुछ ऐसे अनसंग हीरोज की आपको कहानी बता रही हूँ जिन्हें सुनकर आप भी कहेंगे कि सच में इन्होंने भारत का इतना नाम रोशन किया, कहीं आज ये तैयार खो तो नहीं गया। लेकिन बिल्कुल भी हम खोने नहीं देंगे, हम इन्हें याद करते रहेंगे कि इन्होंने देश के लिए कितनी मेहनत करी है। बात अब मैं कर रही हूँ यहाँ पर द फेंसिंग फाइटर भवानी देवी की। जी हाँ, देखिए, जब जिंदगी ने तलवार बन के अटैक किया, भवानी ने मास्क पहनकर उसे फेस किया। भवानी देवी की मैं बात कर रही हूँ, भवानी देवी जब जिंदगी ने तलवार बनकर उन पर अटैक किया ना, तो उन्होंने मास्क तो पहन लिया। लेकिन देखिए, मैं बात यहाँ पर अब इनकी जर्नी की करती हूँ। पहली इंडियन फेंसर जिन्होंने ओलंपिक्स के में जो है फेंसिंग इवेंट में क्वालिफाई किया, चेन्नई की भवानी को जब फेंसिंग का नाम सुना तो उन्होंने पहली बार सोचा स्पोर्ट्स का इंडिया से क्या लेना देना। लेकिन उसी स्पोर्ट में करियर इन्होंने बनाया। ट्रेनिंग के लिए इटली और फ्रांस तक जाने का खर्चा उन्होंने लोन और क्राउड फंडिंग से मैनेज किया। 2014 एशियन चैंपियनशिप में ब्रोंज मेडल इन्होंने जीता। 2020 में हिस्ट्री लिखी, इंडियाज फर्स्ट ओलंपिक फेंसर की इन्होंने हिस्ट्री लिखी। भवानी ने एक ऐसे स्पोर्ट में नाम कमाया जहाँ लोगों का वो उसकी स्पेलिंग तक नहीं पता थी। जिंदगी के हर अटैक का सिर्फ एक जवाब था, भवानी की फेंसिंग स्क्वाड। और ये जो है, इन्होंने नाम तो रोशन कर दिया, इंडिया का नाम इन्होंने रोशन किया, भारत का नाम इन्होंने रोशन किया, जहां किसी को पता भी नहीं था कि ये फेंसिंग है क्या, वहां पर इन्होंने खेल के पहले सबका जो है दिल जीत लिया। चलिए, इसी के साथ यहाँ लेती हूँ अब एक छोटा सा ब्रेक, आपका ही मजा आइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक आपके साथ रहती हूँ मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के 7 दिन। और बहुत सारी होती हैं हमारी बातें, फिलहाल बातें हमारी चल रही हैं और अभी आपको बता रही हूँ मैं अपने सेगमेंट्स लेकर के आती हूँ। लेकिन अगले सेगमेंट पर ज़रूर जाऊँगी क्योंकि आपका फेवरेट सेगमेंट है कौन बनेगा सेहतमंद। लेकिन उससे पहले बता दूँ, अगर आप ये एपिसोड सुन रहे हैं और ये मिस कर जाते हैं, कोई भी बात दोबारा सुनना चाहते हैं, तो आप घबराने वाली कोई बात नहीं है। चाहे आप भाई फरीदाबाद में हो या दुनिया में कहीं पर भी, वर्ल्ड में कहीं पर भी, आप भाई जल्दी से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और वो भी कुछ ही सेकंड्स में। आपको बस क्या करना है, अपना मोबाइल फ़ोन लेना है, चाहे एंड्रॉयड हो या iOS, मोबाइल फ़ोन हो वो लेना है, प्ले स्टोर ऐप स्टोर पर जाना है, हमारी इंटरनेट ऐप को डाउनलोड कर लेना है और उसके बाद आप सुन सकते हैं ये कमाल के पॉडकास्ट सुन सकते हैं। जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं हमारे एक्सपर्ट से, बहुत सारे जो है वो इन्फॉर्मेशन मिल सकती है आपको। तो अब भाई आपको कुछ नहीं करना है, आप कभी भी कहीं से भी आप हमारे साथ यानी कि रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ जुड़ सकते हैं। बस अब यहाँ पर लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइए, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ और साथ ही अगला सेगमेंट भी ला रही बहुत ही ज्यादा खास ये सेगमेंट होने वाला है। सेगमेंट का नाम है कौन बनेगा सेहतमंद, जिसमें पहेलियां आपसे पूछती हूँ। आज की क्या है खास पहेली पूछूंगी, लेकिन फिलहाल अभी कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक आपके साथ रहती हूँ, मंडे टू संडे यानी कि हफ्ते के 7 दिन। और बहुत सारी हो रही है हमारी बातें। फिलहाल आपका फेवरेट सेगमेंट लेकर के आ गई हूँ, कौन बनेगा सेहतमंद, जिसमें आपसे पहेलियाँ पूछती हूँ, जो देता है सही सटीक रोजाना जवाब देता है। जब भी मैं पहेली पूछती हूँ पूरे महीने जो रहता है कंसिस्टेंट, उनको मिलता है मौका मुझसे मिलने का, रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के स्टूडियो आने का और सभी आरजे से मिलने का। बातें हमारी चल रही हैं और आपको बता दूं मैं अभी कि अभी बात मैं कर रही हूँ बहुत सारी और आपसे पहेली पूछ रही हूँ, तो जल्दी से झटपट से इसका जवाब देना है। नंबर बहुत ही आसान है 8010781078। तो जो पहेली आज की है भाई ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आपको इसका बहुत जल्दी से जवाब देना है। पहेली है, मस्तिष्क का काम करूँ आसान, न्यूरा ट्रांसमिशन में मेरा योगदान, मेरी कमी से हो मूड खराब, मानसिक स्वास्थ्य पर पड़े असर बेहिसाब, बताओ कौन हूँ मैं? मैं बी विटामिन का हिस्सा हूँ, बीन्स और साबुत अनाज में हूँ समाया, बताओ कौन हूँ मैं? तो जल्दी से इसका झटपट से जवाब देना है। एक बार फिर से मैं पहेली को दोहरा देती हूँ, मस्तिष्क का काम करूँ आसान, न्यूरो ट्रांसमिशन में मेरा योगदान, मेरी कमी से हो मूड खराब, मानसिक स्वास्थ्य पर पड़े असर बेहिसाब, बताओ कौन हूँ मैं? मैं विटामिन बी में का हिस्सा हूँ, बीन्स और साबुत अनाज में हूँ समाया, बताओ कौन हूँ मैं? फटाफट से इसका जवाब आपको देना है। नंबर बहुत ही आसान है 8010781078। चलिए अभी आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। फील गुड फील लाइव।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक, मंडे टू फ्राइडे, और साथ ही सैटरडे संडे भी आपके साथ रहती हूँ। यानी कि हफ्ते के 7 दिन अब आपके साथ रहती हूँ। 2 घंटे का हमारा सफर है। आपसे पहली मैंने पूछी क्योंकि हमारा सेगमेंट चल रहा है, सेगमेंट का नाम है कौन बनेगा सेहतमंद, जिसमें आपसे पहेलियां पूछती हूँ। तो आज की हमारी पहेली है, मस्तिष्क का काम करूं आसान, न्यूरो ट्रांसमिशन में मेरा योगदान, मेरी कमी से हो मूड खराब, मानसिक स्वास्थ्य पर पड़े असर बेहिसाब, बताओ कौन हूँ मैं। विटामिन बी का हिस्सा हूँ, बीन्स और साबुत अनाज में समाया हूँ। तो चलो आपको इसका जवाब जो है वो देना था, और फटाफट से हमारे पास सबसे पहले सटीक जवाब जो है यार चला है हमारी आज के लिसनर जो है आंचल की ओर से। आंचल बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने, और इसका जवाब है विटामिन B6, इसका जवाब है बिल्कुल सही जवाब है, कंग्रेचुलेशंस। और इसी के साथ चलिए यहाँ पर अब पहला जवाब तो हमारे पास आ गया है। अगली एक और पहेली आपसे पूछने वाली हूँ, वो कौन सी है बताऊंगी कुछ ही देर में। फिलहाल कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप. मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग. और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक रहती हूँ आपके साथ मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के 7 दिन. और बहुत सारी होती हैं बातें. फिलहाल आपको बता रही हूँ आज की हमारी पहेली, क्योंकि सेगमेंट चल रहा है. सेगमेंट का नाम है कौन बनेगा सेहतमंद, जिसमें आपसे पहेलियाँ पूछ रही हूँ. तो आज की हमारी बड़ी आसान सी पहेली, पहली पहेली तो मैंने पूछ ली है, सेकेंड यानी कि दूसरी पहेली का वक्त जो है ये हो चला है. और पहेली है, आंखों की रोशनी का हूँ पहरेदार, रात में दिखने में करता हूँ उद्धार, मेरी कमी से हो अंधेरा, रात की दुनिया लगे घनेरा, बताओ कौन हूँ मैं. गाजर और हरी सब्जियों में मेरी पहचान है, बताओ कौन सा विटामिन हूँ मेरी पहचान है. इसका फटाफट से आपको जवाब देना है. नंबर बहुत ही आसान है, 8010781078 ये हमारा नंबर है. एक बार फिर से मैं पहेली जो है वो दोहरा देती हूँ. आंखों की रोशनी का हूँ पहरेदार, रात में दिखने में करता हूँ उद्धार, मेरी कमी से हो जाए अंधेरा, रात की दुनिया लगे घनेरा, गाजर और हरी सब्जियों में मेरी पहचान, बताओ कौन सा हूँ मैं विटामिन, क्या है मेरी पहचान. फटाफट से इसका जवाब आपको देना है. नंबर बहुत ही आसान है, 8010781078. चलिए अब कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM. फील गुड, फील लाइफ.

0: वेलकम बैक रेडियो मैंने वृष्णा 7.8 FM सुन रहे हैं आप. मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग. और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक, मंडे टू संडे, हफ्ते के 7 दिन हम आपके साथ रहती हूँ और बहुत सारी होती हैं बातें. फिलहाल एक पहेली आपसे पूछी मैंने, जिसका फटाफट से जवाब आ चुका है. हमारी लिसनर ने यह जवाब दिया है. लिसनर का नाम है प्रियंका. प्रियंका मिश्रा जो है इनका नाम है. उन्होंने जवाब दिया है सेक्टर 21 से, इन्होंने मैसेज करके मुझे जवाब दिया है. आपको बता दूं, एक बार पहेली मैं फिर से दोहरा देती हूं. आंखों की रोशनी का हूं पहरेदार, रात में दिखने में करता हूं उद्धार. मेरी कमी से हो अंधेरा, रात की दुनिया लगे घनेरा. गाजर और हरी सब्जियों में मेरी पहचान, बताओ क्या है मेरा विटामिन का नाम, क्या है मेरी पहचान. तो इस विटामिन का नाम है विटामिन ए. जी हाँ, और इसका सही भी अपने देखिए बहुत सारे लोगों ने इसका जवाब दिया है, सभी ने जवाब दिया है, लेकिन इसका सबसे सटीक और पहला जवाब जो है वो आया है हमारी लिसनर की ओर से. लिसनर का नाम जो है वो है प्रियंका मिश्रा. चलिए इसी के साथ वक्त जो है ये हो चला है आपसे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक की इजाज़त लेने का, तो आप कहीं मत जाइए, आगे और भी करती हूँ बातें. तो जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM. फील गुड फील लाइफ.
1: ना इज्जत की चिंता, ना फिक्र कोई अपमान की, जय बोलो बेईमान की, यही पहचान है भक्तजन.
2: गुरुदेव, यही बात यदि संगीत धारा में बहकर कहें तो आनंद आ जाए.
1: हाँ गुरुदेव. ना

महाराज पधारे, चिमटा चरस चिलम और चेले साथ साथ हैं सारे। टिकटे लेकर भी गाड़ी में खड़े शरीफ बेचारे, और ये देखो

0: वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ। सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक रहती हूँ आपके साथ, मंडे टू संडे यानी कि हफ्ते के 7 दिन। और यहाँ पर आपको बता दूँ मैं कि एक पहेली आपसे पूछी है मैंने, दो पहेलियाँ आपसे पूछी। सबसे पहले सटीक जवाब दिया है हमारी लिसनर आंचल ने, और दूसरा जवाब जो है हमें दिया है हमारी आज की लिसनर ने, और जिनका नाम है प्रियंका मिश्रा। बिल्कुल सही, दोनों के ही जवाब रहे। अलग अलग मैंने आपसे जो है पहेलियाँ पूछी और आपने दोनों ही जवाब जो है दिए हैं आप दोनों ने ही। चलिए इसी के साथ कंग्रेचुलेशंस, और इसी के साथ अब वक्त जो है ये हो चला है आपसे इजाज़त लेने का। जी हाँ, वक्त ये कहता है कि अब इजाज़त तो लेनी होगी, क्योंकि ये वादा आपसे करती जाती हूँ कि कल होगी मुलाकात, होंगी बहुत सारी बातें, लेकिन आपको ना तब तक के लिए अपना ख्याल रखना है बहुत। देखिए यहाँ पर बातें जो है ये तो होती रहेंगी बहुत सारी, लेकिन अब मुझे चलने का जो है वो टाइम हो चला है, यानी कि मुझे इजाज़त का टाइम जो है ये हो चला है, तो अब मुझे दीजिए इजाज़त। लेकिन आप कहीं मत जाइए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए। जुड़े रहिए और सुन रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।
1: नमस्कार,
2: नमस्कार।
1: कहिए

0: रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम में हूं दीक्षा आपके साथ, और टाइम हुआ है एक ऐसे प्रोग्राम का जो जुड़ा है आप ही से, आप ही की सुरक्षा से। प्रोग्राम का नाम है सुरक्षा संवाद, जो हम खास तौर पर से लेकर आते हैं फरीदाबाद पुलिस के साथ मिलकर आपकी सुरक्षा के मद्देनजर। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो भी ऑफ कोर्स आप ही की सुरक्षा से जुड़ा है, बहुत सारे अलग अलग पहलू हैं, और साथ ही हम बात करेंगे करियर के बारे में भी। करियर के बारे में क्यों बात करेंगे, क्योंकि करियर भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, और करियर ऐसी फील्ड में बनाया जाए जो आम जनता की सुरक्षा के लिए हो तो फिर कहने ही क्या। हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं बहुत ही खास मेहमान, मिस हिमाद्री कौशिक, आईपीएस बैच 2019 और फरीदाबाद की डीसीपी हेडक्वार्टर्स। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो मानव रचना।
1: थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर, और मुझे बहुत ही इट्स अ प्रिविलेज टू बी एबल टू टॉक अबाउट दिस टॉपिक विद एवरीवन। थैंक यू।
0: सो हिमाद्री जी से बहुत सारी बातें हम करने वाले हैं, और बात करने वाले हैं आपकी सुरक्षा को लेकर। अब जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो आम जनता की सुरक्षा में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है साइबर क्राइम का। साइबर क्राइम इसलिए क्योंकि मैम डायरेक्टली उसको भी देख रही हैं, और साइबर क्राइम के साथ साथ आम जनता की सुरक्षा की भी बात करेंगे। हिमाद्री जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि आम जनता को ये तो पता है कि डीसीपी क्राइम या डीसीपी साइबर क्राइम कौन होते हैं, लेकिन हेडक्वार्टर्स के बारे में उनको जानकारी नहीं है। तो एक मैं थोड़ा सा चाहूँगी आप हमें ओवरव्यू दें कि आप अपने विभाग की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभा रही हैं।
1: जैसे कि आप जानते होंगे, लोग भी जानते होंगे, फरीदाबाद में 3 जोन्स हैं, उनके रिस्पेक्टिव डीसीपीज हैं। उसके अलावा क्राइम टीम्स हैं जहां डीसीपी क्राइम है। डीसीपी हेडक्वार्टर्स एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें सब देखते हैं, जैसे हमारे व्हीकल मैनेजमेंट, हमारे पुलिस स्टेशन की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका मैनेजमेंट, पोस्टिंग्स, इंटर जोन पोस्टिंग्स क्या हैं, उसके अलावा कंप्लेंट मैनेजमेंट, हमारी सिक्योरिटी ब्रांच होती है विच डज ऑल द पासपोर्ट वेरिफिकेशन। सो आई वर्क इन दिस, माई ऑफिस इज इन द सेम प्लेस एज द कमिश्नर ऑफ पुलिस, एंड आई वर्क डायरेक्टली अंडर हिम एंड टेक केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं इकोनॉमिक ऑफेंसेज विंग आर्थिक अपराध शाखा और तीनों जोन्स के साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन को भी देखती हूँ।
0: जी,
1: तो आई एम श्योर मैं काफ़ी चीज़ें मिस आउट कर रही हूँ, बट ब्रॉडली दिस इज द वर्क।
0: एक ओवरऑल व्यू में हमें पता चल गया कि आप क्या क्या करिए, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन मुझे लगता है सबसे मुश्किल होता है। आप पुलिस में भी हैं और आप एडमिनिस्ट्रेशन भी देख रही हैं, तो एक तरफ तो आपको बहुत स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है, दूसरी तरफ एडमिनिस्ट्रेशन में आपको प्यार से भी बात करनी पड़ती है, ये भी एक चैलेंज होता है।
1: एब्सोल्युटली, जैसे एक तरह से, वैसे तो पुलिस के सभी, मतलब सभी पोस्ट्स एक तरह से सब बहुत बड़ी एचआर एक्सरसाइज है, बिकॉज वी आर मैनेजिंग वन ऑफ द लार्जेस्ट डिपार्टमेंट्स, एंड वो भी ऐसा डिपार्टमेंट इन विच डिसिप्लिन इज द बिगेस्ट थिंग। सो यू नो इट हैज़ इट्स ओन चैलेंजेस, बट बहुत ज़्यादा अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस भी है ह्यूमन बींग्स को कैसे मैनेज करते हैं, कैसे मोटिवेट करते हैं, स्पेशली एक यूनिफॉर्म्ड सर्विस में।
0: जी बिल्कुल, और ये मुझे लगता है कि हम पुलिस को बहुत स्ट्रिक्ट समझते हैं, पर बहुत मुश्किल होती है पुलिस की जॉब, आसान नहीं होती, क्योंकि 24 घंटे आपको कार्यरत रहना ही पड़ता है, आप अपनी ड्यूटी पर ही हैं, आप छुट्टी बहुत कम लेते हैं, क्योंकि अक्सर हम सुरक्षा संवाद में जब भी किसी पुलिस अधिकारी से बात करते हैं तो उनको अपना फोन आधे घंटे के लिए जब साइड पर रखना होता है वो सबसे बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि उसके बाद नॉनस्टॉप उनके फोन पर जितने फोन आते हैं, कॉल बैक करते हैं, फिर कॉल वेटिंग आती है, वो एक आपका जो दायरा है वो इतना बड़ा होता है, अपराधों से जुड़ा हुआ होता है कि आप 15 मिनट के लिए भी शांत नहीं बैठ सकते।
1: एब्सोल्युटली, जिस कारण जैसे हम काफी ट्राई करते हैं, रिसेंटली भी हमने कुछ इनिशिएटिव्स लिए अपने फोर्स के लिए। देखिए फोर्स, मतलब मैं आपको ऐसे एक उदाहरण दूं, तो आप जब कोई नेगेटिव चीज़ देखते हैं रोड पे, एक एक्सीडेंट देख लेते हैं या कुछ भी, मैं तो कहती हूँ एक अगर आप एक जानवर का भी एक्सीडेंट देख लेते हैं तो आपका मूड खराब हो जाता है, आप घर जाते हैं आपका थोड़ा मूड ऑफ हो जाता है, आप किसी का कोई ब्लडी कोई चीज़ देख लेते हैं, तो आप सोचिए एक ऐसा व्यक्ति जो सुबह से रात तक यही देख रहा है।
0: बिल्कुल,
1: मतलब नॉट टू साउंड मोरोस, पर जैसे इतने वही लोग हैं जो सारे डेड बॉडी डिस्पोज कर रहे हैं, हर सीन ऑफ क्राइम पे जा रहे हैं, सो वी डोंट वैल्यू दिस इनफ दैट उनकी मेंटल हेल्थ भी इसी चीज़ से शेप हो रही है, उनको नेगेटिविटी के बीच में रह के भी खुद को पॉजिटिव रखना है। तो हम कई इनिशिएटिव्स लेते रहते हैं सबके काउंसलिंग कराने के, सबको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस रहा है पीछे मेडिटेशन और योगा पे, बिकॉज डिस्प्रोपोर्शनेट डिजीजेज हैं। अभी रिसेंटली हमने आई हेल्थ कैंप लगाया था, फिर से हम हार्ट हेल्थ कैंप लगाएंगे, तो पुलिस फोर्स में आप देखेंगे थोड़ा ये डिस्प्रोपोर्शनल रहती हैं ये वाली इशूज़। सो आई अंडरस्टैंड वो पब्लिक के लिए हैं, बट उनके लिए भी होना कोई चाहिए टू टेक केयर ऑफ देयर वेलफेयर।
0: बिल्कुल, और वो आप बखूबी करेंगे मुझे लगता है। सुरक्षा संवाद में बातों का सिलसिला जारी है। वक्त एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 के साथ। मैं हूं दीक्षा आपके साथ, और आज हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं डीसीपी हेडक्वार्टर्स आईपीएस हिमाद्री कौशिक।

0: वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम है उदीक्षा आपके साथ. प्रोग्राम का नाम है सुरक्षा संवाद इन एसोसिएशन विद फरीदाबाद पुलिस. और हमारे साथ आज स्टूडियो मौजूद हैं आईपीएस हिमाद्री कौशिक जी, डीसीपी हेडक्वार्टर्स फरीदाबाद पुलिस. बातों का सिलसिला जारी है और आगे जान रहे हैं देश की सुरक्षा से जुड़े कुछ सवाल. शहर को और ज्यादा सुरक्षित कैसे बनाया जा सकता है, क्राइम को कैसे खत्म किया जा सकता है, ऐसी कुछ बातें और इन बातों का कुछ सोल्यूशन. मैम, अब जानना चाहेंगे फरीदाबाद के बारे में. फरीदाबाद में अपराध का जो दायरा है वो थोड़ा बढ़ गया है. बहुत सारे लोगों को कई बार ऐसा लगता है कि शहर में जो गुंडागर्दी है वो ज़्यादा हो गई है. ख़ास तौर पर से अगर मैं ये वेब सीरीज़ या क्राइम सीरीज़ जो चल गई हैं उनके बाद बहुत सारे युवाओं का जो बातचीत करने का तरीका है वो बदल गया है. लोग इंटरनेट से इतना कुछ सीख रहे हैं कि वो अपने तक नहीं रख पा रहे, वो चीज़ें दूसरों पर इम्प्लीमेंट कर देते हैं. गुस्सा बढ़ गया है, एजिटेशन बढ़ गया है. और ये अक्सर हम अपने शोज़ में जागरूक भी लोगों को करते हैं कि आप इन चीज़ों से इन्फ्लुएंस मत होइए. अगर आपको इन्फ्लुएंस होना ही है तो किसी अच्छे इन्फ्लुएंसर से होइए. तो आपको क्या लगता है ये क्राइम बढ़ने की सबसे ज़्यादा वजह क्या इंटरनेट है या फिर वैसे ही लोगों का तनाव में रहना है?
1: देखिए, दो चीज़ें हैं. पहली बात तो क्राइम बढ़ना, तो एक और चीज़ है कि पुलिस की थोड़ी एक्सेसिबिलिटी बढ़ी है. इन द सेंस कि अगर आप कहीं पुलिस स्टेशन में जाते हैं तो आपका केस वहाँ पे रजिस्टर होगा, वहाँ पे कोई ग्रीवेंस है तो आपको उसको एस्केलेट करेंगे एसीपी, डीसीपी, कमिश्नर ऑफ पुलिस, डीजीपी, हर लेवल पे. तो अब हमारा एक्सेस टू ऑल ऑफिसेज लोगों का है, रिपोर्टिंग मैकेनिज्म्स हैं, हमारे पास ऑनलाइन कंप्लेंट्स आती हैं, हमारे पास फ़ोन पे कंप्लेंट्स आती हैं. तो जो एक पहले होता था कि लोग थाने जाने से डरते थे, इकट्ठे होके 10 लोग साथ में जाते थे, अब ऐसा नहीं है. लार्जली हम भी देखते हैं थानों में काफ़ी लोग आते हैं, अपनी इश्यूज रिपोर्ट करते हैं. तो ये जनरली काफ़ी लोग कहते हैं, बट आप देखेंगे एज अ प्रोपोर्शन ऑफ कंप्लेंट्स हम कितनी क्राइम रजिस्टर करते हैं, तो आप देखेंगे स्टेटिस्टिकली रजिस्ट्रेशन बढ़ा है. और स्टेटिस्टिकली देखा जाए तो पिछले 3 साल में फरीदाबाद का क्राइम नहीं बढ़ा है, कम हुआ है सक्सेसिवली. तो एक टू डाइग्रेस अ लिटिल, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नोबेल लॉरेट हैं इन इकोनॉमिक्स, डैनियल कानेमैन. सो ही टॉक्स अबाउट परसेप्शन बायस. तो प्रॉब्लम क्या है कि सोशल मीडिया चैनल्स इतने बढ़ गए हैं और एवेन्यूज ऑफ रिपोर्टिंग इतने हो गए हैं, इतने सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, इतने सारे फेसबुक हैंडल्स हैं, इंस्टाग्राम हैंडल्स हैं, जो सेम न्यूज़ को 5 बार दिखाएंगे तो आप 5 बार वही देखेंगे. तो शायद हमारा आइडिया एंड परसेप्शन, जो एक लिमिटेड इन्फॉर्मेशन पहले शायद रेडियो से आती थी और वो भी मतलब एक ही जगह से आती थी और या न्यूज़पेपर्स से आती थी, लिमिटेड होता था. अब नाउ वी आर बम्बार्डेड विद सो मच इन्फॉर्मेशन अबाउट एक्सेसिव क्राइम दैट देर इज़ अ परसेप्शन. बट ऑफकोर्स आई एग्री कि इन्फ्लुएंस तो है ही, इतने सारे टीवी सीरीज हैं जिसमें क्राइम इज़ मतलब क्राइम को हम बहुत ही ग्लैमरस बना रहे हैं, तो वो तो काफ़ी यूथ अट्रैक्ट हो रहे हैं उस चीज़ में. बट उसमें भी देर आर अ लॉट ऑफ इनिशिएटिव्स. वी हैव बीन लॉजिंग एफआईआर्स अगेंस्ट म्यूजिक, अगेंस्ट म्यूजिशियंस जो मतलब इस तरह की चीज़ को बढ़ावा देते हैं. ऐसे म्यूजिशियंस को परफॉर्म करने की जब परमिशन मिलती है उसमें भी हम उनको लिमिटेड परमिशन देते हैं कि आप इस कंटेंट के ऊपर नहीं गाएंगे. और जो लोग ये क्रिमिनल पोस्ट्स करते हैं उनके लिए ये है कि देखिए, जैसे अनोनिमिटी उन्हें लगता है इंटरनेट पे है, बट आयरॉनिक ये बात है कि आप कुछ बोल दोगे रोड पे तो शायद नाम ना आए सामने, पर अगर आप इंटरनेट पे कुछ बोलते हैं तो वी कैन ऑलवेज ट्रेस इट बैक, इरिस्पेक्टिव ऑफ वीपीएन यूज्ड, इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर टॉर यूज्ड, हमें हमेशा पता कर सकते हैं कि ये कौन कर रहा है. और इस मैटर पे भी हम काफ़ी एक्शन ले रहे हैं. सो आई होप आई एम आंसरिंग द व्हाट यू आस्क्ड.
0: मैम, थोड़ा सा साइबर क्राइम की तरफ चलते हैं, क्योंकि साइबर क्राइम जब आप, एक समय था 2022 का आंकड़ा मैं जो इंटरनेट पर देख रही थी, 10 लाख के आसपास रिपोर्ट्स आती थी. 2025 में ये आंकड़ा 22.5 लाख के आसपास हो गया. इतनी रिपोर्ट्स आ रही हैं, अरबों रुपए का फ्रॉड हो रहा है, सरकार अलग अलग कैंपेन्स चला रही है, पुलिस अपनी तरफ से अलग अलग तरीकों से लोगों को अवेयर करने की कोशिश कर रही है, कॉलेजेस में जा रहे हैं, RWAs के साथ मिलकर हम रेडियो के माध्यम से कोशिश करते हैं लोगों तक पहुंचने की कि साइबर क्राइम से बच के रहना है और डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज़ नहीं होती है. लेकिन फिर भी आप सुबह अगर अखबार खोलते हैं 7:30 बजे तो आपको हर दूसरे पेज पर या पहले पेज पर कई बार ऐसी खबरें दिखाई देती हैं कि इस परिवार से 85 लाख लूट लिए, किसी ने अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई जो है वो डिजिटल अरेस्ट से डर कर दे दी. अब यहाँ पर ये सवाल आता है कि ये डिजिटल अरेस्ट जब है ही नहीं कोई चीज, सो इतनी अवेयरनेस के बाद भी क्यों लोग फंस रहे हैं, कैसे फंस रहे हैं? क्योंकि हम हर तरीके से कोशिश कर रहे हैं, आप हर तरीके से कोशिश कर रहे हैं लोगों तक ये संदेश पहुंचाने की कि इनसे नहीं डरना है।
1: जी देखिए, अभी भी ये इंस्टेंसेस आ रहे हैं जैसे आप कह रहे हैं डिजिटल अरेस्ट के स्पेसिफिकली, तो जो ये साइबर क्रिमिनल्स हैं दे आर यूजिंग सम बैकग्राउंड इंटेलिजेंस, मुझे ऐसा लगता है कि वो बैकग्राउंड चेक कर रहे हैं लोगों का। क्योंकि आप देखेंगे ज्यादातर एक एज के से ज्यादा लोग, थोड़े मतलब सीनियर सिटीजन, रिटायर्ड प्रोफेशनल्स, क्योंकि शायद हम भी उतना ही प्रयास कर रहे हैं अवेयरनेस जनरेशन का, हम भी हर बार न्यूज़पेपर में देते हैं, इतनी सारे साइबर राहगीरी हो रहे हैं जिसमें हम स्कूल्स कॉलेजेस जा रहे हैं, सबसे बात कर रहे हैं, जिस भी माध्यम से ये मैसेज जा सकता है लोगों तक पहुंचा रहे हैं, फिर भी कुछ लोग अभी भी डर जाते हैं। देखिए मतलब वो आपके डर के ऊपर अटैक कर रहे हैं, दे आर गोइंग फॉर दैट फियर कि हाँ लोग डरेंगे हम जब बोलेंगे कि आपका ये सामान पकड़ा गया। कई बार ऐसा होता है, हमें लगता है कि उन्हें कैसे हमारी इन्फॉर्मेशन है कि मेरा ये कोरियर आ रहा है, बट एक्चुअली आप देखेंगे घर में ऑलमोस्ट आजकल इतना ज़्यादा ई कॉमर्स है कि रोज़ एक ना एक डिलीवरी तो आ ही रही है, एक की या किसी और की जितने

0: ज्यादा सदस्य हैं, समटाइम्स टू अ डे, तो आपको हमेशा लगता है कि एक तो मेरा पैकेज रस्ते में है ही, तो शायद उसी की बात हो रही हो. तो आप ये ध्यान रखिए कि अगर आपको लग रहा है ना कि नहीं इसको सही पता है, क्योंकि सही में मेरा एक पैकेज आ रहा है, आजकल तो घर में रोज एक ना एक पैकेज आ रहा है, तो अगर वो कह भी रहे हैं कि आपका कुछ आ रहा सामान पकड़ा गया, तो वो बिल्कुल गलत बोल रहे हैं. जैसे आपने बताया डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज़ होती नहीं है, और ये लोगों को डरा के उनके पैसे लिए लेने का एक तरीका है. अपार्ट फ्रॉम डिजिटल अरेस्ट, मैं ये भी कहूँगी कि जैसे डिजिटल अरेस्ट आपके डर के ऊपर प्रे करता है, इट प्रेज ऑन योर फियर, इसी तरह से एक दूसरा भी स्कैम है काफ़ी प्रोमिनेंट, इन्वेस्टमेंट फ्रॉड, जिसमें स्टॉक मार्केट में निवेश करने के नाम पे या हाई रिटर्न्स के नाम पे लोग टेलीग्राम पे इन्वेस्टमेंट ग्रुप्स ज्वाइन कर रहे हैं, उनको 17-18% का रिटर्न प्रॉमिस किया जाता है मंथली, तो और लोग पैसे देते रहते हैं. और इसमें पुलिस के लिए भी ये बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि आप देखिए वो व्यक्ति 7-8 महीने से पैसे दे रहा है, और 7-8 महीने बाद जब वो अपने पैसे वापस मांगते हैं तो उनको पता लगता है ये स्कैम है. तो वो फ्रॉड 7-8 महीने पहले शुरू हो गया, वो पैसे 7-8 महीने जाने पहले शुरू हो गए. तो हम भी जब इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं तो बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है, क्योंकि 7-8 महीने में तो ये पैसे बिल्कुल गायब हो जाते हैं,
1: कहीं जगह चले जाते हैं,
0: कहीं जगह. एग्जैक्टली. तो आप, मैं ऐसा मानती हूँ कि हमें कई बार पूछना चाहिए खुद से कि क्या ये चीज टू गुड टू बी ट्रू है, क्या पॉसिबल है आज आप कोई लीगल तरीके से किसी को 17-18% प्रॉमिस करो, और मतलब ये किस तरह से बड़े इंटेलिजेंटली आपको बताएंगे कि हम डायरेक्टली स्टॉक मार्केट से डील कर रहे हैं, तो हमारा ब्रोकरेज नहीं है कि ये नहीं है, मतलब इस टाइप का आपको कुछ बताएंगे. तो ये जैसे जनरली लोगों को जानकारी होगी कि आपके जो डीमैट अकाउंट है उसमें स्टॉक्स हैं, तो वो आपके पैन कार्ड से ही लिए जाएंगे, जाहिर सी बात है. ये चीज़ आप ऑनलाइन जाके ऑफिशियल साइट से, जैसे म्यूचुअल फंड्स हैं तो कैम्स ऑनलाइन से या कहीं से भी चेक कर सकते हैं अपने पैन कार्ड की डिटेल्स जाके देख के. कोई और अगर अपने आईडी से ले रहा है तो वो पैसा हो सकता है आपको ना मिले. ये टेलीग्राम पे ज्वाइन किए हुए ग्रुप्स में की बातों में मत आइए. आप इन पे इनकी चीज की लालच में नहीं पड़ना है कि मुझे कोई इतना रिटर्न दे रहा है या स्टॉक मार्केट में निवेश करने को कह रहा है. अगर आपको करनी है इन्वेस्टमेंट तो प्लीज आप अपने बैंक को कॉन्टैक्ट कीजिए
1: जी,
0: या जो भी रजिस्टर्ड ऑपरेटर्स हैं उनको कॉन्टैक्ट कीजिए. तो ये भी एक अलग तरीके का साइबर फ्रॉड है जिसके बारे में लोगों को अवेयर होना चाहिए.
1: बिल्कुल बिल्कुल. और इन्वेस्टमेंट, मुझे लगता है दो चीजें बहुत बड़ा फ्रॉड का एक कारण बनती है. एक लालच, आप ग्रीडी हो जाते हैं कि आज मेरा 50 लाख 80 लाख बन के हमें एक साल में मिल जाएगा. दूसरा डर, आपको ये फंसा देते हैं कि आपका पैसा जो है वो टेररिज्म में कहीं इन्वॉल्व हो गया है या फिर चाइल्ड ट्रैफिकिंग में हो गया है, तो वो डर जाते हैं. और बुजुर्ग खास तौर पर से डर जाते हैं. और इनफैक्ट हमने ऐसे ऐसे केसेस भी सुने हैं जहां पर उन्होंने अपना घर तक बेच दिया, अपनी एफडीज तक तोड़वा के पैसा ट्रांसफर कर दिया. इनफैक्ट बैंक्स को भी आजकल ट्रेनिंग दी जा रही है कि अगर आपके पास कोई बुजुर्ग इस तरीके से आ रहा है, और लखनऊ में एक हाल ही में केस भी हुआ था जहां पर कोई बुजुर्ग गई थी लेडी जो डिजिटली अरेस्ट थी, 3 दिन से वो गई थी अपनी एफडीज तोड़वाने, तो एम्प्लॉयज ने उनको बात करने में कहीं ना कहीं उनको शक हुआ और उन्होंने उनको काउंसिल किया और उसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया, तो वो डिजिटल अरेस्ट का केस जो था वो पकड़ा गया. तो ये बहुत जरूरी है अवेयरनेस, लोगों तक जानकारी पहुंचाना.
0: इसी रिलेशन में एक एक्चुअली बहुत अच्छा इनिशिएटिव है हरियाणा पुलिस का
1: जी.
0: हमने एक HDFC बैंक के साथ फिलहाल DGP हरियाणा ने एक डुअल OTP सिस्टम शुरू किया है, जिसमें आप चूज कर सकते हैं कि दूसरा OTP किस ट्रस्टेड इंसान के साथ जाएगा. स्पेशली जैसे सीनियर सिटीजन है, वो अगर अपने बच्चों का या अपने स्पाउस का नंबर दे दें तो एक डबल चेक हो जाता है. तो कंसिडरिंग ये वल्नरेबल कुछ सेक्शंस, डुअल OTP बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है हमें. इसी की तरह अभेद्य जैसे ऐप है, उसमें भी यही प्रोविजन है कि हमें जो ऐसे सस्पिशियस कॉल्स आ रहे हैं वो पता लग जाए. अपार्ट फ्रॉम दैट, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक ऐप है, सेंट्रल गवर्नमेंट की M-Kavach.
1: बिल्कुल.
0: M-Kavach मेरे पास भी, मेरे भी फोन में है. ये जैसे हम ट्रू कॉलर ऑपरेट करते हैं है उसी तरह की, पर एक ऑफिशियल वेबसाइट. तो जो भी ब्लैकलिस्टेड नंबर M-Kavach पे हैं वो हमें बता देंगे. वो हमें जैसे नॉर्मल कॉल लगता है,
1: फ्रॉड
0: नंबर्स है, VOIP कॉल उसमें बता देगा. तो अभेद या M-Kavach ये काफ़ी वो है. और जैसे ये लोग अपना मोडस ऑपरेंडी एडवांस कर रहे हैं, ऐसा नहीं है. हम भी काफ़ी काफी एडवांस हो चुके हैं इसमें इन्वेस्टिगेशन में, एंड आई एम श्योर वी विल कम अप विद द सॉल्यूशंस दैट कैन मिनिमाइज दिस प्रॉब्लम फॉर पीपल.
1: बिल्कुल, क्योंकि इतने साइबर फ्रॉड के केसेस बढ़ चुके हैं कि अब मुझे लगता है कि लोगों को फिजिकल डकैती से कम डर लगता है और साइबर से ज्यादा डर लगता है, क्योंकि अब हर कोई एक छोटे से फोन में पूरी दुनिया है उसके, जिसमें उसके सारे बैंक अकाउंट्स हैं, जिसमें उसके ईमेल में पासवर्ड्स हैं, और डेटा कहाँ कहाँ पहुंच रहा है, कैसे हैक हो रहा है, कोई नहीं जानता है.
2: तो बहुत सी बातों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन बहुत सीरियस बातें हो जाती हैं जब हम बात करते हैं सुरक्षा की. तो इन सब बातों के बीच में एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक तो बनता है, और अगर आपको ये बातें अच्छी लग रही हैं, ये जानकारी आपको पसंद आ रही है, तुम्हारे इंटरनेट रेडियो की ऐप रेडियो मानव रचना डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से, और इस पूरी बातचीत को आप आरजे दीक्षा के फोल्डर में जाकर सुन सकते हैं और शेयर कर सकते हैं जिसके साथ भी आप शेयर करना चाहें पूरी दुनिया में कभी भी किसी भी वक्त. अभी वक्त है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का.

0: फिर फील लाइव रेडियो मानव रचना 107.8 FM, आपके अपने शहर का पहला रेडियो स्टेशन। और इस पहले रेडियो स्टेशन पर चल रही है बहुत ही स्पेशल बातचीत। प्रोग्राम का नाम है सुरक्षा संवाद, आपकी सुरक्षा को लेकर खास इन्फॉर्मेशन जो हम फरीदाबाद पुलिस के साथ मिलकर लेकर आते हैं। और आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ हमारी मुख्य मेहमान है हिमाद्री कौशिक जी, जो की DCP हेडक्वार्टर्स है, साथ ही साइबर क्राइम से जुड़ी हुई जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको देख रही हैं। और ऐसी कुछ जानकारी साइबर क्राइम से जुड़ी हुई आज हमारे साथ शेयर भी करी हैं, क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है जिस पर बातचीत करना बेहद जरूरी है। तो बातचीत चल रही है हिमाद्री जी के साथ। मैम, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी बच्चों को, यंगस्टर्स को लेकर एक बहुत बड़ा चीज जो है, गेमिंग की दुनिया से बहुत बच्चे जुड़ रहे हैं और गेमिंग में बहुत पैसा गवा भी रहे हैं और ब्लैकमेल भी हो रहे हैं, अपने पेरेंट्स का भी बहुत पैसा वो लगा देते हैं। और उसके बाद जब पकड़ा जाता है, तो हाल ही का केस है कि एक बच्चे ने सुसाइड कर लिया सिर्फ इस बात से क्योंकि गेमिंग में पैसा बहुत लगा दिया था उसने, और बाद में जब उसके घर वालों को पता चलता तो उससे वो डर गया था। और ये कुछ केसेस हैं जो दिल्ली NCR के हैं, ज्यादा दूर के नहीं हैं। कोई एक केस आता है जहां पर कोरियन कल्चर से इतना इन्फ्लुएंस हो जाते हैं बच्चे के, तीनों जो बहनें थी उन्होंने सुसाइड कर लिया। सो ये यंगस्टर्स को हम इंटरनेट की दुनिया से अलग भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें बचा के भी रखना है। सो कैसे, पेरेंट्स को क्या एडवाइस करना चाहेंगे या उन बच्चों को क्या एडवाइस करना चाहेंगे?
1: देखिए, मतलब एक तो इस बारे में एज अ पुलिस ऑफिसर एडवाइस है, तो एज अ पुलिस ऑफिशियल आई से कि आपको कुछ पेरेंटल कंट्रोल एप्स यूज करनी चाहिए टिल अ सर्टेन एज एटलीस्ट, कि आपको पता रहे कि फोन पे क्या है। मतलब अभी काफ़ी पॉपुलर पेरेंटल कंट्रोल एप्स हैं, वो कौन सी चीज़ें एक्सेस कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। आप कुछ IPs भी ब्लॉक कर सकते हैं अपने घर के इंटरनेट से, कि ये खुलेगा ही नहीं ये गेम। तो पेरेंट्स को तो कुछ ऐसे ऐप्स रखना अपने पास, एक आपको वॉच रखने की तो ज़रूरत है टिल अ सर्टेन लेवल, बिकॉज देखिए बच्चों का यही है कि जैसे पर्सपेक्टिव का प्रॉब्लम है, उनको अभी नहीं समझ में आ रहा है ये क्या हो रहा है, पर जब कुछ हो जाएगा तो फिर उसके बाद समझ में आएगा। और बच्चों के लिए भी, अगर ये कुछ बच्चे सुन रहे हैं, और पेरेंट्स के लिए एज नॉट अ पुलिस पर्सन, एज इन जनरल सेंस ये एडवाइस है कि आपको थोड़ा अपने बच्चों को कॉन्फिडेंस देना होगा, ताकि वो आपसे इतना ना डरें कि कुछ हो जाए तो आपको बताएं ना। आपको उनको काउंसिल करके बस डराना नहीं है कि ये मत करो, क्योंकि देखिए काफी चांसेस हैं कि डराने से नहीं ये सिचुएशन सॉर्ट
0: हो जाते हैं, चुप हो जाएं। करना बंद कर,
1: तो आपको उनको ये भी कॉन्फिडेंस दिलाने की जरूरत है कि बाय चांस कभी भी कुछ हो जाता है तो मुझे बताओ। हमारे लिए सबसे बड़ी स्ट्रेंथ तो यही है कि वो बच्चे अपनी बात अपने पेरेंट्स से शेयर करें। सो बिकॉज वी आर इन द 21st century, एंड काफ़ी पेरेंट्स ये समझते भी हैं मुझे लगता है आज के दिन, कि आपका रिलेशनशिप अपने बच्चों के साथ ऐसा होना पड़ेगा कि आपको वो कुछ इशू हो तो बताएं। एंड बिकॉज अ लॉट ऑफ मे बी टीनेजर्स और यूथ वुड बी लिसनिंग होपफुली, आई ऑल्सो वॉन्ट टू से कि देखो, आपको अभी शायद नहीं समझ आए और हम जो बात कर रहे हैं आपको लगेगा कि ये न्यूज़पेपर में किसी के साथ हो रहा है या पता नहीं कहाँ हो रहा है दुनिया में, ये आपके साथ हो रहा है, आपके पड़ोसी के साथ हो रहा है। और मतलब ये ना हम कई बार इमेजिन नहीं कर सकते जो हम पढ़ते हैं, दैट वी कुड बी देम, बट वी कुड एब्सोल्युटली बी देम अपार्ट फ्रॉम गेमिंग। मतलब कैजुअल कमेंट्स कई बार किसी की पिक्चर पे, कभी अपने प्राइवेट डेटा किसी से शेयर कर दिया, फिर वो वायरल हो जाना, किसी का ब्लैकमेल करना, मतलब आप विक्टिम तो हो ही सकते हैं, पर अगर आप ये किसी के साथ करते हैं जो एक कैजुअल बुलिंग आप जिसको समझ रहे हैं, पहले जो बुलिंग होती थी फिजिकल होती थी स्कूल्स में, उसमें फिर भी टीचर डांट देते थे एक बार को, अब जो साइबर बुलिंग है या साइबर क्राइम है, सेक्सुअल साइबर क्राइम है, उसमें आप एक ट्रेल छोड़ रहे हैं, अ ट्रेल दैट कैन नॉट बी इरेज्ड, तो वो कंप्लेंट होगी तो उसके बाद एक्शन लिया जाएगा। तो यू हैव टू ऑल्सो बी अवेयर दैट दिस इज, हम जो करें इरिवर्सिबल है, वो क्लिक इरिवर्सिबल है। एक चीज आपने इंटरनेट पे डाल दी तो आप उसे डिलीट कर दो, पर वो फॉरएवर इंटरनेट पे हो जाती है। सो वी हैव टू बी केयरफुल फ्रॉम बोथ एंड्स, हमें विक्टिम भी नहीं बनना है और मतलब अनकॉन्शियसली विदाउट इंटेंशन हमें कल्प्रिट भी नहीं बन जाना है। तो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रेन।
0: बहुत सारी कंट्रीज हैं जिन्होंने बच्चों के लिए, टीनेजर्स के लिए सोशल मीडिया बैन कर दिया है, ऑस्ट्रेलिया उनमें एक बड़ा देश है जिसने बैन किया है। क्या आपको लगता है कि ये एक सोल्यूशन है कि कुछ हद तक बच्चों के साथ होने वाले साइबर क्राइम को कंट्रोल किया जा सकता है?
1: देखिए, मतलब देर आर बोथ साइड्स टू इट, बट मुझे लगता है व्हेन वी बैन समथिंग तो हम थोड़ा सा उसका अट्रैक्शन भी कई बार बढ़ा देते हैं। तो मतलब वो देखिए हमारे यहाँ अब फोन्स कितने रीजनेबली प्राइस्ड हैं, तो वो बच्चे एक फोन खरीद के एक सिम कहीं से अरेंज करके स्कूल ले जाएं, एक दूसरे को दिखाएं और उसको हम मतलब डीमनाइज करें, तो ये तो आई थिंक एक पॉलिसी लेवल पे हमें ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि क्या हम बैन करके ये समझना पड़ेगा कि एक्सेस बंद कर सकते हैं. दूसरा ये भी पॉइंट है कि इंडिया जैसी कंट्री जिसमें इतने रिमोट एरियाज हैं, आज एजुकेशन गांव-गांव तक पहुंच रही है, लोगों के पास एक्सेस टू रीडिंग मटेरियल है, और जो चीज आप यहाँ फरीदाबाद में पढ़ रहे हैं इंडिया के सबसे रिमोट एरिया में भी बच्चे के पास वो है. दे कैन कम्पीट पीपल फ्रॉम रूरल एरियाज और रिमोट एरियाज, पहाड़ पे बैठे बच्चे भी अब पहाड़ों पे आइलैंड्स पे कम्पीट कर सकते हैं. यू मस्ट बी सीइंग देयर इज सेक्युलराइजेशन ऑफ एजुकेशन एंड एवरीबॉडी इज हियर. तो क्या वो एक्सेस बंद करना हमारे लिए ठीक है? क्योंकि इंटरनेट अगर आप लोगों के लिए बंद करेंगे तो उनके लिए भी करेंगे फॉर चिल्ड्रन. सो वी हैव टू असेस द पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स, बट एट द एंड ऑफ द डे अगर इंटरनेट रहे भी तो उसे रेगुलेट करना जरूर

0: वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM, आपके अपने शहर का पहला रेडियो स्टेशन सुन रहे हैं आप और मैं हूं दीक्षा आपके साथ। प्रोग्राम का नाम है सुरक्षा संवाद। इस खास सीरीज को हम आपके लिए लेकर आते हैं फरीदाबाद पुलिस के साथ मिलकर, और आज हमारी खास मेहमान है DCP हेडक्वार्टर्स IPS 2019 बैच हिमाद्री कौशिक जी। से हम बहुत सारी बातें करें, लेकिन इन बातों के साथ साथ हम बात करें हैं करियर की भी, क्योंकि करियर के बारे में बात करना भी जरूरी है। जब आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज या पुलिस सर्विसेज में होते हैं तो आपकी जिम्मेदारियां अलग लेवल पर होती हैं, लेकिन चाह कर भी इस फील्ड में बहुत सारे बच्चे नहीं पहुंच पाते हैं क्योंकि उन्हें सही रास्ता नहीं पता होता। तो स्वयं जानते हैं हिमाद्री जी से कि अगर कोई भी बच्चा या उनके माता पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा इन सिविल सर्विसेज की तैयारी करे तो कैसे शुरुआत होनी चाहिए और क्या खास तैयारी करनी चाहिए।
1: अब साइबर से हटकर थोड़ा सा चलते हैं एक आम इंसान की तरफ। लोगों को पुलिस से डर क्यों लगता है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो अक्सर लोग कहते हैं ना कि पुलिस के चक्कर में नहीं फंसना है। अभी भी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि बहुत रिपोर्ट्स रजिस्टर हो रही हैं, बहुत सारे जो क्राइम हैं वो रजिस्टर हो जाते हैं, पहले नहीं होते थे। पहले लोग 10-10 इकट्ठे होके तब पुलिस स्टेशन जाते थे, जो हमने अक्सर देखा भी है, पहले ऐसा ही होता था। आज लोग ऑनलाइन फटाफट से रिपोर्ट रजिस्टर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक आम इंसान या फिर एक आम लड़की जो सड़क पर चल रही है, अगर उसके साथ कुछ गलत होता है तो वो डरती है पुलिस के पास जाने से कि कहीं उसी पे कोई डाउट तो नहीं हो जाएगा, कहीं उसी को ही तो फंसा नहीं लिया जाएगा, या उसके घर वाले कहेंगे कि तुम पुलिस को क्यों इन्फॉर्म कर रही हो। सो ऐसे में पुलिस से लोग ना डरें और एक साथ देकर अपराध को रोकने में मदद करें, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? कोई ऐसे नंबर्स या कोई ऐप जिसके थ्रू बिना पहचान के भी वो अपनी कंप्लेंट दर्ज कर सकें?
2: देखिए, इसमें दो साइड्स हैं। एक साइड तो पहली तो ये है कि डेफिनेटली आप हमें ईमेल कर सकते हैं, आप 112 पे कॉल कर सकते हैं। 112 पे आप जब कॉल करेंगे और अपना इशू बताएंगे, वहाँ कोई आएगा, एक्शन लेगा, और मतलब एनीबडी कैन कॉल। एंड वी गेट अ लॉट ऑफ कॉल्स फ्रॉम विमेन एंड वेरी विद अ लॉट ऑफ प्राइड आई कैन से कि

0: फरीदाबाद में एवरेज टाइम इज लेस देन 7 मिनट्स फॉर एन ERV टू रीच टू अ कंप्लेनेंट.
1: ओके,
0: तो वी आर रीचिंग इट, रीचिंग द प्लेस ऑल्सो इन टाइम. ऐसे भी आप कर सकते हैं, आप थाना जाके अपना इशू बता सकते हैं. देर आर विमेन पुलिस स्टेशन इन ईच जोन. एंड दूसरा साइड अगर मैं बताऊँ तो अनोनिमस कंप्लेंट्स का प्रॉब्लम ये है कि फिर वी आर अनेबल टू चेक कि ये मैलिशियस इंटेंशन से तो नहीं दी जा रही. क्योंकि देखिए विक्टिम तो वो भी होता है जिसके अगेंस्ट एक गलत कंप्लेंट आ जाए.
1: बिल्कुल.
0: तो ये वाला सिस्टम जब अनोनिमस कंप्लेंट्स में हम एक्शन लेते थे तब हमें समझ में आया कि ये भी लोग मिसयूज कर रहे हैं अनोनिमिटी
1: इस चीज का.
0: गलत लोग गलत किसी पे एलिगेशन लगाने में उनके लिए भी हार्मफुल है. बट डेफिनेटली मैं हमारे इनिशिएटिव्स की बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा फीमेल्स अब हैं हमारे फोर्स में. देर आर अ लॉट ऑफ फीमेल ऑफिसर्स, फीमेल पोस्टेड इन महिला थाना. तो अगर वो जाना चाहें, अपनी समस्या बताना चाहें, जा सकते हैं. मैंने पर्सनली भी यहाँ पे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स देखे हैं कई बार उनके बाहर भी फीमेल्स और राइडर्स प्रेजेंट रहते हैं
1: ताकि
0: PCRs खड़ी होती हैं. तो वो जाके उनको बता सकते हैं अगर उनके साथ ईव टीजिंग या इस तरह का कोई इंसिडेंट होता है. प्लीज़ आप रिपोर्ट करो. और मैं पेरेंट्स को भी यही करूँगी कि आपको भी लोगों को सपोर्ट करना चाहिए अपने बच्चों को टू रिपोर्ट क्राइम. बिकॉज इट इज़ नॉट जस्ट अ ड्यूटी टू आर ओन सेल्फ, टू आर सेल्फ एस्टीम कि हमें अच्छा नहीं लगता हमारे साथ कुछ हो जाए, हम कुछ करें नहीं. एक इनजस्टिस लगता है. सो वी विल ट्राई आर बेस्ट टू एक्ट ऑन इट. एंड ऑल्सो एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द सोसाइटी. हो सकता है आप नियरली मिस कर गए हो कोई क्रिमिनल आपके साथ कोई चीज़ होते हुए, तो बाकी सबके सब भी उस चीज़ से बच सकते हैं. और रहा पुलिस से जो एक डर है उसकी बात, तो अब आई एम थिंकिंग इट्स अ लिटिल बेटर एंड आई होप इट विल गेट बेटर, कीप गेटिंग बेटर.
1: जी बिल्कुल. अब बहुत सारी बातें हमने आपसे क्राइम की कर ली हैं, शहर को ठीक करने की कर ली हैं. अब बच्चों के करियर के बारे में जैसे हमने शुरुआत में कहा था हम बात ज़रूर करेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हमको देख रहे हैं और सुन रहे हैं जो सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं, जो सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं, UPSC या स्टेट सिविल सर्विसेज. उनका सपना होता है कि एटलीस्ट हम देश की सेवा इस तरीके से कर सकें. क्या तरीका होता है, क्योंकि आप एक अच्छी स्टूडेंट हैं, स्कूल में आपके मार्क्स बहुत अच्छे आए 10th और 12th में, उसके बाद आपने इंजीनियरिंग करी बिट्स पिलानी से, और उसके बाद साथ साथ सिविल सर्विसेज की भी तैयारी करी आप, मास्टर्स भी करी आपने. तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ये एक ट्रैक आपका शुरू से ही था कि सिविल सर्विसेज की तरफ जाना है, या फिर बाद में फील हुआ कि मार्क्स अच्छे आ रहे हैं तो ये भी ज़रूर ट्राई करना चाहिए, या गाइडेंस मिली क्या?
0: देखिए मैं अपना पहले आपको अपना पर्सनल जर्नी बताती हूँ. मैंने 12th के बाद मैंने इंजीनियरिंग करी, मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया और मैं बिट्स पिलानी गोवा कैंपस में केमिकल इंजीनियरिंग करी. दैट पॉइंट इन टाइम मुझे बिल्कुल भी नहीं था कि सिविल सर्विसेज देना है.
1: जी.
0: मैंने एक 6 मंथ्स आई ऑल्सो वर्कड फॉर 6 मंथ्स इन एन इन्वेस्टमेंट बैंक, एंड वो मुझे बहुत अपील नहीं किया. एंड काफ़ी टाइम से मेरे को रीडिंग का काफ़ी शौक था. तो द मोर आई वुड बुक्स आई वुड रीड अबाउट आर हिस्ट्री या इंडिया, मुझे लगता था कि ये भी एक फील्ड है जहाँ पे हम कुछ सब्सटैंटिव वर्क कर सकते हैं जिससे हमें एक्चुअली सेटिस्फैक्शन मिले. तो फिर उसके बाद मैंने अपना जॉब छोड़ के ये सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू करी. एंड फॉर्चुनेटली मेरा पहले इनकम टैक्स IRS इनकम टैक्स में हो गया 2017 में, और 2019 में IPS में. ये तो मेरी पर्सनल जर्नी रही है. सबकी अपनी अलग जर्नी होती है. कुछ लोगों को बचपन से अपनी कॉलिंग पता होती है कि
1: यही करना है
0: UPSC करना है. कुछ लोगों को बाद में पता लगता है. इट डज नॉट मैटर, जब भी अगर आपको ये करना है. बट स्टिल एक चीज़ पे मैं बहुत स्ट्रेस करूँगी कि आपको अपने ग्रेजुएशन से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए. कि आप UPSC देने के लिए आप ऐसे नहीं कर रहे हो कि आप पढ़ाई कॉलेज में ना पढ़ाई करो. या मैं मुझे काफ़ी लोगों ने कई बार पूछा हम ऐसे कॉलेज में एडमिशन ले लें जहाँ जाना ना पड़े, क्लासेस
1: साथ साथ तैयारी
0: करते रहें. तो मुझे इन माय पर्सनल ओपिनियन ये बहुत अच्छा आइडिया नहीं है. कॉलेज इज़ इम्पॉर्टेंट, दैट एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट. एट द एंड ऑफ द डे आप वहाँ से जो चीज़ सीख के निकलेंगे, भले ही आप इंजीनियरिंग करें, मेडिकल करें, कॉमर्स करें, आर्ट्स करें, उससे भी आपकी एक मतलब उससे आपकी एम्प्लॉयबिलिटी बनती है, एक लर्निंग बनती है टू बी वेरी प्रैक्टिकल. सिविल सर्विसेज काफ़ी कम्पिटिटिव एग्जाम है.
1: Absolutely.
0: और मैं तो ये भी कहती हूँ कि आई हैड अ लॉट ऑफ लक ऑन माई साइड. एवरीबडी इज वर्किंग हार्ड. इतने सारे बच्चे हैं कंट्री में जो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं. मेरे जितनी ही पढ़ाई काफ़ी लोगों ने भी की होगी, बट बहुत ज़्यादा एलिमेंट ऑफ लक इन्वॉल्व है.
1: जी.
0: सो यू कैन नॉट जस्ट थ्रो इट ऑल, थ्रो ऑल ऑफ इट. I feel a lot of people do not agree with me, but I feel that you should do your graduation properly. Give due respect to that degree, और आप उसको you should earn that degree. और उसके बाद time है, अब तो आप एक graduation कर लें, आप post graduation भी कर लें, तो
1: भी
0: you can give your 5 attempts if you want or however many you want. तो उसमें कोई issue नहीं है. फिर आप उसकी तैयारी करें. And for preparation, मतलब वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स आई कीप सेइंग एंड इट गोज बैक टू आवर अर्लियर डिस्कशन, कि आज की दुनिया में डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं.
1: बिल्कुल.
0: बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस हैं. तो पर्सनली मैंने 3 साल जो मेरा मतलब दोनों अटेम्प्ट्स और प्रिपरेशन मिला के 3 साल मैंने सारा सोशल मीडिया डिलीट कर दिया. आई वॉज नॉट ऑन फेसबुक, नॉट ऑन इंस्टाग्राम. व्हाट्सएप पे मैं थी एंड टू टॉक टू माई पेरेंट्स. आई रिमेंबर एक फ़ोन लॉक ऐप है, सो आई टू लॉक माई फ़ोन फॉर 12 आवर्स सो दैट आई डोंट लुक एट इट. मैं मतलब कहीं नहीं, मेरे सब फ्रेंड्स वर वर्किंग, कोई इंडिया में कोई इंडिया के बाहर. तो मुझे ये था कि अगर मैं सोशल मीडिया पे इतना टाइम स्पेंड करूँगी तो मैं यही सोचते रह जाऊँगी कि यू नो बाकी लोग अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, मैं क्यों
1: सिर्फ पढ़ रही हूँ,
0: बैठ के रूम में पढ़ रही हूँ. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज़ समथिंग आई फाइंड इन कॉमन विद एवरी वन जो अब सिविल सर्विसेज क्वालिफाई करें, कि उन्होंने अपने डिस्ट्रैक्शंस लिमिट कर लिए. क्योंकि ना वो सोशल लाइफ के साथ साथ देने वाला तो थोड़ा ये एग्जाम नहीं है.
1: बिल्कुल बिल्कुल.
0: इट्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क.
1: एब्सोल्युटली.
0: एंड मतलब आई एम सेइंग दैट मोर हार्ड वर्क देन आईक्यू इन दैट सेंस, बिकॉज द सिलेबस इज सो वास्ट.
1: एब्सोल्युटली.
0: दैट इफ यू थिंक यू आर स्मार्ट इनफ टू डू इट विदाउट हार्ड वर्क, इट इज गोइंग टू बी क्वाइट डिसअपॉइंटिंग.
1: बिल्कुल.
0: आपको लगता है हम बहुत इंटेलिजेंट हैं, हमसे ऐसे हो जाएगा, तो वो
1: ऐसा नहीं होता.
0: मुझे मुश्किल लगता है.
1: मैं यही बताना चाहती हूँ कि अगर आपको लग रहा है कि आपके 12th में या 10th में 95+ मार्क्स आए हैं, परसेंटेज आपकी अच्छी आई है, ग्रेजुएशन भी आपने बहुत अच्छे मार्क्स से करी है, और फिर आपको लग रहा है अरे हम तो IAS बन ही जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है. IAS वो भी बन सकता है जो 67% लाया हो. Absolutely. क्योंकि वो फिर उसकी तैयारी अपने तरीके से करता है, मेहनत से करता है. और जैसा हिमाद्री जी ने कहा कि सोशल मीडिया 3 साल के लिए बंद किया था, तो एक्चुअली में सोशल मीडिया बंद करने से आपके डिस्ट्रैक्शंस कम हो जाते हैं. दुनिया में क्या चल रहा है ये आपको अखबार के थ्रू पढ़ना होता है सुबह सुबह उठ के. द हिंदू काफ़ी फेमस है इसके लिए. हाँ. जिसको आप सुबह उठते ही देखें, और देखने के बाद आपको पढ़ना होता है उसको अच्छे से, 1 घंटा लगाकर, 1.5 घंटा लगाकर, उसके बाद आप बाकी चीज़ों का टाइम टेबल बना के चलते हैं, तो मुझे लगता है चीज़ें ज़्यादा बेटर होती हैं.
0: एब्सोल्युटली.
1: सो करियर से जुड़ी बातें भी चल रही हैं और सुरक्षा से जुड़ी बातें भी चल रही हैं. हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं IPS हिमाद्री कौशिक जी, DCP हेडक्वार्टर्स फरीदाबाद पुलिस. वक्त है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का.

0: गुड फील लाइव रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम में हूं दीक्षा आपके साथ। प्रोग्राम का नाम सुरक्षा संवाद, खास पहल हमारी आप तक आपकी सुरक्षा से जुड़े कुछ सवाल पूछने की एक्सपर्ट्स द्वारा यानी ऑफिसर्स द्वारा। और हमारे साथ आज स्टूडियो मौजूद हैं डीसीपी हेडक्वार्टर्स हिमाद्री कौशिक जी, आईपीएस 2019 बैच, और इनसे हम बातचीत करें हैं बहुत सारी आप ही की सुरक्षा को लेकर, आपके अपने शहर को लेकर, साइबर क्राइम को लेकर, लेकिन साथ ही सिविल सर्विसेज के बारे में भी बातचीत जान रहे हैं और इनके जीवन से जुड़ी हुई कैसे वर्क लाइफ बैलेंस को मैनेज किया जाए, ये भी कुछ सवाल हैं जो हम इनसे जरूर पूछ रहे हैं। हिमाद्री जी, जब आपने तैयारी करी सिविल सर्विसेज की, तो कोचिंग लेने का कंसेप्ट, क्योंकि आजकल कोचिंग जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, दिल्ली फेमस है कोचिंग के लिए, और जैसा कि राजेंद्र नगर में बहुत सारे आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट मिल जाएंगे, बच्चे आते हैं पढ़ाई छोड़कर, यहाँ पर बहुत फीस देते हैं, ऑनलाइन भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े टीचर्स आज की तारीख में जो फ्री में ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं, और जिसकी वजह से बहुत बदलाव भी आया है कि छोटे छोटे गाँव के बच्चे, छोटे छोटे शहरों के बच्चे बाहर निकल कर आ रहे हैं, सिविल सर्वेंट बन रहे हैं। सो आप क्या कहना चाहेंगी कि कोचिंग लेना ऐसे फिजिकली ज्यादा फायदेमंद है, अगर कोई दिल्ली एनसीआर का बच्चा है तो वो जरूर ले, या फिर सिर्फ आप ऐसी कोचिंग जो ऑनलाइन आपको मिल रही है उससे भी आप आगे बढ़ सकते हैं?
1: देखिए, मैं अपना पर्सनली बताऊं तो वैसे आई एम फ्रॉम देहरादून, बट आई डिड मूव टू दिल्ली फॉर सिविल सर्विसेज प्रेपरेशन, बट समहाउ मेरा टाइमिंग ऐसे हो गया दैट आई कुड नॉट जॉइन कोचिंग।
0: ओके,
1: आई जॉइंड अ कोचिंग, आई कुड नॉट अटेंड, क्योंकि मैं वो कोचिंग से पहले ही प्रीलिम्स दे दिया था इस तरह से, जो भी मतलब बिकॉज ऑफ सर्कमस्टेंसेज मैंने जीएस की कोचिंग नहीं कर पाई, एंड समहाउ डिस्पाइट बीइंग एन इंजीनियर आई डिसाइडेड टू टेक इकोनॉमिक्स ऑप्शनल, तो उसमें भी मोस्टली सेल्फ स्टडी ही रहा। सो आई थिंक विदाउट कोचिंग इट्स डेफिनेटली पॉसिबल, अ लॉट ऑफ पीपल आर डूइंग इट, और ऑनलाइन इतने ज़्यादा रिसोर्सेज हैं कि आप 100% अगर आपके पास उस चीज़ का एक्सेस नहीं है तो भी आप कर सकते हैं, और बिल्कुल कर सकते हैं, और अगर वो अफोर्डेबल चॉइसेस नहीं है, देखिए ऐसा है, कई लोगों का लाखों नहीं खर्च करके होता, कई लोगों का बिल्कुल अपने आप से घर पे बैठ के पढ़ के भी हो जाता है, बट वन थिंग थोड़ा सा ये था कि व्हाई वुड आई मूव अवे फ्रॉम होम, फिर वो एनवायरनमेंट थोड़ा सा हेल्प करता है,
0: पढ़ाई का एक एनवायरनमेंट
1: माहौल चाहिए होता है, घर पे मतलब थोड़ा कम्फर्ट होता है, देखिए कम्फर्टेबल एटमोसफियर में वो खुद को वो पिंच नहीं होता है, तो ना केवल वो डिफिकल्ट जगह है वो, मतलब घर इतने ऐसे हैं, एक एक रूम में सब रह रहे होते हैं, अपना कर रहे होते हैं, दैट प्लेस इज डिफिकल्ट, बट आप नीचे, आप वहाँ पे बाहर जाते हो तो आपको दिखता है कि सब लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कोई ना कोई बुक पे है, कोई बुक ले रहा है, कुछ कर रहा है, तो दैट हेल्प मी, इफ इट्स द काइंड ऑफ थिंग दैट हेल्प्स यू तो वेल एंड गुड, अदरवाइज कितने लोग घर से कर रहे हैं। और कोचिंग, तो कोचिंग का फ़ायदा ये है कि बिकॉज जैसे मैंने कहा सिलेबस इतना वास्ट है, तो मुझे ऐसा लगा अगर कोचिंग लेते हैं तो आपको थोड़ा जल्दी पता लग जाता है कि क्या पढ़ना है, बट फॉर श्योर दैट कोचिंग इज़ नॉट गोइंग टू, मतलब दैट इज़ नॉट द थिंग जिससे आपका क्लियर होने वाला है, मैक्सिमम वो थोड़ा एड कर देगा, बट 95% आपका खुद का एफर्ट है।
0: बिल्कुल, आपको थोड़ा सा तरीका बता देगा कि तरीका क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, बट पढ़ना आपको ही है तो उसके लिए फोकस आपको करना होगा। और मुझे लगता है आजकल YouTube पर इतनी वीडियोस हैं कि अगर आप एंशियंट हिस्ट्री को उठाते हैं और उसका एक टॉपिक अगर आप मौर्य डाल देते हैं तो मौर्य डायनेस्टी के लिए इतनी वीडियोस आ जाती हैं कि आप उसको इजीली समझ सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं।
1: जी बिल्कुल, वीडियोस हैं, रिसोर्सेज हैं, रिटन रिसोर्सेज हैं, न्यूज, मतलब बट ये मैं कहूंगी न्यूज, जैसे आपने कहा न्यूज पेपर जरूर पढ़ना चाहिए, लोग न्यूज कंपाइलेशन पढ़ते हैं, बट न्यूज इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर न्यूज पेपर।
0: बिल्कुल बिल्कुल, और एनसीईआरटी की किताबें जो आप बचपन में मिस कर जाते थे, सिक्स क्लास ऑनवर्ड्स वाली, आपको लगता था सिर्फ एनुअल एग्जाम के लिए चाहिए, वो आपको पढ़नी पड़ेंगी दोबारा से, वो आपको समझनी पड़ेंगी, एक एक लाइन आप उसमें से मिस नहीं कर सकते, एक एक डायग्राम भी आप छोड़ नहीं सकते। सो बहुत सारी तैयारी चाहिए होती है, लेकिन तैयारी के बाद जो रिजल्ट आता है वो कमाल का होता है, बहुत खुशी देता है। अब हिमाद्री जी, जो आखिरी चीज़ मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, वर्क लाइफ बैलेंस और फैमिली में अगर दो सिविल सर्वेंट्स एक साथ रह रहे हैं, मैं हमारे लिसनर्स को और व्यूअर्स को ये भी बताना चाहूँगी कि हिमाद्री जी के जो बेटर हाफ हैं वो फरीदाबाद के डिप्टी कमिश्नर हैं और वो भी एक आईएएस ऑफिसर हैं, सो ये घर में जो माहौल रहता है बहुत सीरियस रहता है, क्योंकि इतनी सारी, आप जो हैं वो आप पुलिस विभाग में हैं और वो एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है 24 घंटे कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता होगा, तो उसको कैसे बैलेंस करते हैं?
1: जी, एक्चुअली फॉर्चुनेटली हम कॉलेज बैच में थे, मतलब कॉलेज सेम कॉलेज एक बैच आगे आयुष उस फिल्म में, तो आई फील दैट वैसे तो जोवियल ही रहता है घर पे, तो हम कोशिश करते हैं काम की बात ही नहीं करें, बट ऑब्वियसली दिन के इश्यूज होते हैं उसके बारे में एक दूसरे में जानते हैं, सो वी डिस्कस इट समटाइम्स, बट ऑल्सो फॉर्चुनेटली आई हैव टू चिल्ड्रेन, टू लवली चिल्ड्रेन, तो उनके साथ व्हेनेवर आई गो बैक होम तो बिल्कुल भूल जाता है आदमी दिन कहाँ गया कैसा गया, एंड दैट बिकम्स योर होल थिंग. वाइल चैलेंजेस हैं, ऑफकोर्स चैलेंजेस हैं, टाइम लिमिटेड होता है दोनों सर्विस में है, बट पर्सनली बहुत अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ जाती है, आप दूसरे इंसान के इशूज समझ सकते हैं, दैट आई नो कि if he's not able to come somewhere, I completely understand because half the time I'm not able to go somewhere. Yeah. तो हमारे वो वाले hassles कम रहते हैं
2: कि दूसरे को समझते हैं
1: कि तुमने ये नहीं किया, तुमने ये नहीं किया. जब we don't have that, we try to support each other. थोड़ी बहुत तैयारी भी साथ में की थी, so we understand that struggle. So all in all, it just goes fine and not at all serious. बिल्कुल भी serious माहौल नहीं रहता. We try to, I have two children and one dog, and all of us try to spend the evenings together and have a good time.
2: बिल्कुल. अब मैं आपसे यही जानना चाहूँगी चलते चलते कि क्या टिप्स देना चाहेंगी उन लोगों को जो आपको भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और अपने बच्चों को सिविल सर्विसेज की तरफ थोड़ा सा इंस्पायर करना चाहते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोफेशन है जो वाकई आप जब ब्यूरोक्रेसी में होते हैं तो आप कुछ बदलाव लाने की ताकत रखते हैं. हम कमियां बहुत निकालते हैं कि इस सोसाइटी में ये ठीक नहीं हो रहा है या ऐसी पॉलिसीज होनी चाहिए, लेकिन पॉलिसी मेकर एक्चुअली में आप तभी बनते हैं जब आप सिविल सर्विसेज की तरफ जाते हैं, या तो आप पॉलिटिशियन हो, जो हर किसी के बस की बात नहीं होती है. तो ये एक रास्ता है एक आम इंसान के लिए देश को बदलने का.
1: जी डेफिनेटली, मैं अगर पेरेंट्स या स्टूडेंट्स इस करियर की तरफ थोड़ा भी इंक्लाइंड हैं तो मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि मैं आपको थ्री पर्सपेक्टिव से बताऊँगी. सबसे पहला, क्या आप एक्चुअली कुछ कर सकते हैं? मैं इतना ज़्यादा फारफिश तो नहीं कहूँगी कि आप कुछ बदल सकते हैं, क्योंकि वो तो आगे जाके होता है. क्या आप लोगों की मदद कर सकते हैं? आप रोज़ एक एक दिन इतने लोगों से मिलेंगे जो इतनी ज़्यादा, मतलब इतने परेशान होंगे, उनकी कुछ आवश्यकताएं होंगी, कई लोगों को शायद आप मदद ना कर पाओ, पर रोज़ आप जब ऑफिस जाओगे आप ऐसे 10-15 लोग होंगे जिनके लाइफ में आप कुछ बेटर कर सकते हो, जो आपके पास अपने सबसे दुखी और सबसे, स्पेशली पुलिस में मैं देखती हूँ, सबसे वल्नरेबल में आते हैं, एंड यू कैन हेल्प देम. सो देर इज़ डेफिनेटली अ सेटिस्फैक्शन ऑफ डूइंग समथिंग सब्सटेंटिव दैट हेल्प्स पीपल, अगर आपको लगता है कि वो आपके लिए एक मोटिवेटिंग फैक्टर है. सेकेंडली, अगर आपके लिए मोटिवेटिंग फैक्टर है जॉब सेटिस्फैक्शन, तो मतलब नॉट टू साउंड लाइक, बट वेरी ऑनेस्टली, आपको इस एज पे, जो जिस एज पे आप सिविल सर्विसेज ज्वाइन करोगे, जो एक्सपोजर मिलेगा इट इज़ ट्रिमेंडस. वो मतलब आपको इतनी ज़्यादा वर्किंग्स ऑफ द गवर्नमेंट, और जिस लेवल पे आप ज्वाइन करोगे, दैट इज़ ऑल्सो समथिंग दैट यू नो यू विल नॉट फाइंड इन अ लॉट ऑफ प्लेसेस, तो वो भी काफ़ी अच्छा करियर पाथ रहता है. एंड द थर्ड थिंग आई वॉन्ट टू से इज दैट पेरेंट्स अपने बच्चों को मोटिवेट करें इस चीज़ के लिए, और फॉर द राइट रीजन्स टू, एंड आई एम श्योर ऑल रीजन्स आर राइट रीजन्स इन दैट सेंस, पर आप उनको बताएं कि ये एक करियर है वेर यू विल फाइंड जॉब सेटिस्फैक्शन, इट इज़ नॉट अ जॉब, इट इज़ अ करियर, एंड यू विल फाइंड एन अपॉर्चुनिटी टू मेक अ डिफरेंस एट द राइट प्लेसेस. और ओवरऑल मुझे लगता है सेटिस्फैक्शन रेट सर्विसेज में काफ़ी रहता है, पीपल आर जनरली हैप्पी विद वेयर दे आर, सो बट आई वुड प्रेफर इफ पीपल डिड नॉट चेज इट फॉर द रॉन्ग रीजंस, लाइक दे वांट सम पावर और सम व्हाटएवर, वो होगा तो होता तो वो भी है, बट फिर भी मतलब दैट इज़ नॉट द मोटिवेशन आई थिंक इट्स बेटर.
2: जी बिल्कुल, यानी सेवा पहले पावर बाद में, अगर आप वो चीज़ लेके चलेंगे तो शायद सक्सेसफुल भी जल्दी होंगे और कुछ बदलाव ला पाएंगे आप सोसाइटी में. फुटबॉल बहुत अच्छा खेली है ये अपने कॉलेज में, और ये एक जवाब भी था जो इनके लिए इंटरव्यू में बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित हुआ था. चलते चलते बस ये भी बता दीजिए कि ये फुटबॉल का जो प्यार था आपका, इसने वाकई आपको, क्योंकि जब मैं आपके बारे में पढ़ रही थी तो उसमें सिविल सर्विसेज का जो आपने इंटरव्यू दिया उसमें ये बहुत बड़ी एक चीज साबित हुई थी कि एक लड़की फुटबॉल इतना ज्यादा खेलती है और उसने अपने फॉर्म में भी फिल किया हुआ है.
1: जी जी जी बिल्कुल. एक्चुअली मेरा इंटरव्यू वाज वन ऑफ द रीजंस आई मेड इट. तो मुझे जो सर थे मेरे पैनलिस्ट वो ही वॉज वेरी एंड आई न्यू अबाउट हिम, वो काफ़ी मतलब ही वॉज अ वेरी रिनाउंड पर्सन, और थोड़ा सा मुझे लगता है मुझे इंस्टिगेट करने के लिए ही सेड कि लड़कियाँ थोड़ी फुटबॉल खेलती हैं, तो आई आंसर्ड इट फॉर हिम एंड वेरी प्लेजेंटली, बिकॉज एक्चुअली क्या होता है ना, आप थोड़े से फेमिनिस्ट टाइप के होते हैं तो आप इस बात पे गुस्सा हो जाते हैं, तो बट आई न्यू टू नॉट रिएक्ट बिकॉज आई ऑल्सो न्यू अबाउट हिम एंड यू नो आपको इंटरव्यू में टेस्ट करेंगे, तो ही आस्क्ड मी हाउ कम, सो आई टोल्ड हिम ऑनेस्टली बचपन से काफ़ी कजिन्स वगैरह होते थे तो हम लोग साथ में फुटबॉल खेलते थे, नेचुरली आई वॉज बेटर एट फुटबॉल, तो आई वॉज प्रिपेयर्ड बिकॉज मैंने फुटबॉल लिखा था कि उसके बारे में टेक्निकल कुछ पूछ सकते हैं इंडियन टीम के बारे में, तो आई आंसर दोज थिंग्स एंड एंड अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग एल्स इट्स ऑलवेज बीन अ पैशन, मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है, अब अपॉर्चुनिटी कम मिलती है बट एब्सोल्युटली लव द गेम,
2: बिल्कुल, और पुलिस सर्विसेज में अगर आप फिट हैं और स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं तो एक बहुत बड़ी चीज होती है,
1: जी जी,
2: सो बहुत सारी बातें आज हमने जानी शहर को खूबसूरत बनाना और क्राइम फ्री बनाने से लेकर अपने करियर को किस डायरेक्शन में लेकर जाना है, सिविल सर्विसेज की तरफ कैसे तैयारी करनी है, ये सब हमने जाना। फिलहाल हिमाद्री जी बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके और उम्मीद है दोबारा कभी फिर बातचीत होगी और बहुत से और मुद्दों पर बातचीत होगी, हमारे इस प्रोग्राम सुरक्षा संवाद में हमारा साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर, और मुझे भी बहुत अच्छा लगा ये सारे टॉपिक आपके साथ डिस्कस करके और मुझे भी खुद भी कुछ इनसाइट्स मिले आपसे बात करते हुए जी।
2: So, बहुत सारी बात हमने आज सुरक्षा संवाद में की है, ज्यादा अगर आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमारी इंटरनेट रेडियो ऐप रेडियो मानव रचना iOS और प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, और साथ ही किसी के साथ भी शेयर करना चाहें दुनिया भर में आप शेयर कर सकते हैं, हमारी YouTube वीडियो या Instagram पर अपने कमेंट जरूर शेयर कीजिएगा और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM, मुझे यानी दीक्षा को दीजिए इजाजत।

0: हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर मैं लेकर आ गई हूं आपके लिए प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर हम चल रहे हैं ऐसे खास ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जो सही मायने में देखा जाए तो अनसंग हीरोज ऑफ सोसाइटी कहलाती हैं। आपको पता है मैं आपको अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस, इंडिविजुअल्स, ऐसे लोगों से मिलवाती हूँ जो मानवता की राह पर चल रहे होते हैं। ऐसे लोग जिन्हें मैं अनसंग हीरोज ऑफ सोसाइटी कहती हूँ, लेकिन दरअसल वो हीरोज ऑफ सोसाइटी होते हैं, रियल हीरोज ऑफ सोसाइटी होते हैं। ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो गुमनामी में काम कर रही हैं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो ढेर सारा मानवता का काम कर रही हैं, इन्हीं के बारे में ये खूबसूरत सा कार्यक्रम है। आज की इस कड़ी में हम जिनके बारे में बात करने वाले हैं, जिनके साथ मानवता की राह पर चलने वाले हैं, वो है माया केयर फाउंडेशन। माया केयर फाउंडेशन से आज हमारे साथ ज्योति मोरे जी जुड़ी हैं, जो कि वहाँ की एचआर हैं पुणे से। ज्योति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के स्टूडियो में।
1: नमस्कार भावना जी।
0: ज्योति जी, माया केयर फाउंडेशन की अगर बात की जाए तो मुझे बताइए कि माया केयर फाउंडेशन की शुरुआत कब और कैसे हुई?
1: जी, माया केयर फाउंडेशन जो कि मंजरी गोखले जोशी, उनकी लेट मदर डॉक्टर विद्या गोखले एंड अभय जोशी, इन्होंने इसकी नींव रखी है 2009 से।
0: जी,
1: तब से हम ये काम कर रहे हैं।
0: जी,
1: और ये हम स्पेशली करते हैं बुजुर्गों के लिए और विकलांगों के लिए।
0: जी,
1: तो बुजुर्गों के लिए करते वक्त हमारे फाउंडर के मन में ऐसे ख्याल आते थे
0: जी,
1: जिनके बच्चे जो बाहर के हैं, बाहर जाते हैं, अब्रॉड जाते हैं या फिर ऐसे अलग स्टेट में जाते हैं
0: जी,
1: तो फिर यहाँ पर बुजुर्ग व्यक्ति बहुत अकेले पड़ जाते हैं
0: जी,
1: और उनकी जो रोजमर्रा की जो चीजें होती है, जो उनकी जरूरतें होती हैं, जैसे कि अस्पताल लेकर जाना, बैंक में जाना, तो ये घर में रहकर, खुद के घर में रहकर अगर किसी ने कोई व्यक्ति उनको प्रोवाइड किया, उनको एक व्यक्ति अगर उनको दिया, तो वो आसानी से अपने घर में रहकर ही ये सारी चीजें कर सकते हैं और एक खुशहाल और एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं
0: जी।
1: ये चीज हमारे फाउंडर के मन में आए
0: जी, और उसके बाद शुरुआत हुई माया केयर फाउंडेशन की। जैसे कि इसका नाम है, देखिए भाई, अगर हम बात करें तो माया केयर फाउंडेशन ही ये कहता है कि एक ऐसी फाउंडेशन है जहां आपको केयर मिल रही है। अब इसमें सबसे पहले आते हैं बुजुर्ग और साथ में आते हैं विकलांग लोग। आप खुद सोच कर देखिए कि वो लोग जो बहुत ज्यादा भाग दौड़ नहीं कर सकते हैं, जो लोग इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में थोड़ा सा ठहर गए हैं, उनका ख्याल कौन रख रहा है? अब आप सोच कर देखिए कि आज के जमाने में जहाँ कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है और लोग अपना करियर बनाने के लिए अपने घरों से दूर या तो दूसरे देशों में काम कर रहे हैं या फिर दूसरे राज्यों में काम कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में परेशानी होती है कि भाई आप खुद सोच कर देखिए कितना मुश्किल हो जाता है उन लोगों के लिए जब घर पर उनके घर के जो माता पिता हैं या बुजुर्ग हैं वो अकेले होते हैं और वो दूसरे देश में या फिर दूसरे राज्य में सिर्फ मोबाइल फोन के जरिए या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सिर्फ उनका चेहरा देख पाते हैं, परेशानी देख पाते हैं, पर मदद नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में अगर ऐसा कोई सदस्य है जो इनकी मदद कर सके तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। और यही खूबसूरत सा काम किया माया केयर फाउंडेशन ने। कैसे किया, इसकी शुरुआत कैसे हुई, किस प्रकार ये लोग सुविधाएं दे रहे हैं, इसके बारे में करेंगे बात। लेकिन उससे पहले लेने वाले एक छोटा सा प्यारा सा म्यूजिकल ब्रेक। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के साथ। फील गुड, फील लव।

0: Dim tana na dir tanum tana dere na dim tana na dir tanum tana dere na dim tana na dir tanum tana dere na dim tana na dir tanum tana dere na dim tana na dir tanum dir tana dir tana.
1: Welcome back, friends. आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम. मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर प्रोग्राम है मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी. मानवता की राह पर हम चल रहे हैं ज्योति मोरे जी के साथ, जो कि एचआर प्रोफेशनल है माया केयर फाउंडेशन से. सो माया केयर फाउंडेशन एग्जैक्टली क्या करती है, चलिए जानते हैं ज्योति जी से. ज्योति जी, किस प्रकार के काम करते हैं आप माया केयर फाउंडेशन में?
2: जी, माया केयर फाउंडेशन में हम बुजुर्गों के लिए सेवाएं प्रदान करते हैं, जैसे कि उनके बैंक खाता का पंजीकरण करना या फिर उसके लिए जो भी काम होते हैं उस तरीके के काम, उनके घर जाकर उनके साथ छोटे छोटे खेल खेलना. क्योंकि क्या होता है ना, अक्सर ये बुजुर्ग ना घुटनों की वजह से या फिर आँखों की रोशनी की वजह से ठीक से दिखाई नहीं देता है, तो फिर वो जरा सा अस्पताल जाने के लिए आनाकानी होता है या फिर अखबार नहीं पढ़ सकते, कुछ किताबें नहीं पढ़ सकते, या फिर बुजुर्गों को अभी कुछ ऐसे टेक्निकल जो होते हैं लैपटॉप या फिर फोन कैसे चलाते हैं ये पता नहीं होता, ये ऑनलाइन पेमेंट कैसे करते हैं ये पता नहीं होता. और जब घर के सभी लोग बाहर जाते हैं तो फिर घर में वो बहुत अकेलापन महसूस करते हैं. तो इसके लिए हमने एक ऐसा प्रोग्राम बनाया कि हमारे जो वॉलंटियर्स हैं, जो हमारे स्वयं सेवक हैं, वो उनके घर जाकर उनके साथ बैठते हैं, उनके साथ छोटे मोटे खेल खेलते हैं, उनके अपॉइंटमेंट पर उनको अस्पताल लेकर जाते हैं, फिर से घर आकर छोड़ते हैं, बैंक के काम करते हैं, सारे उनको जो भी कुछ पढ़ना है, उनकी रुचि है उस अनुसार उनको पढ़कर सुनाते हैं. तो इस तरीके का काम बुजुर्गों के लिए माया केयर से किया जाता है. और दूसरा काम हमारा चलता है बिंदु प्रोजेक्ट. बिंदु प्रोजेक्ट मीन्स विकलांग के लिए हमने 2020 में हमने ये प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसको हम बिंदु प्रोजेक्ट कहते हैं. बिंदु प्रोजेक्ट में हमने बहुत सारे ऐसे विकलांग बच्चे बच्चियाँ ये इनका चयन किया जो कि बोल नहीं सकते हैं, जिनको दिखाई नहीं देता है, जो कि चल नहीं सकते हैं. ऐसे हमने एक टीम बनाई जिससे कि जो बोल नहीं सकता है उसका डाटा टीम, जो चल नहीं सकता है उसकी पावर टीम, और जो आंखों से देख नहीं सकता है लेकिन उसकी आवाज़ बहुत सुरीली होती है या फिर उनके आवाज़ में बहुत ताकत होती है, तो इसका हमने उनके काम के लिए यूज किया. तो इस तरीके से माया केयर इन दोनों की कामों के लिए अभी काम करी, इन दोनों भी दुर्बल घटकों के लिए ये काम कर रही है.
1: सो दोस्तों, माया केयर फाउंडेशन बेसिकली अगर देखा जाए तो बुजुर्गों का ख्याल रख रही है, विकलांगों का ख्याल रख रही है, वो उनकी वो लाठी बन रही है जिस लाठी के लिए दरअसल उन्होंने सोचा था कि आने वाले समय में शायद बच्चे हमारी बुढ़ापे की लाठी बनेंगे, या फिर विकलांग का सहारा बन रही है माया केयर फाउंडेशन. वो फाउंडेशन बन रही है सहारा जो दरअसल बेसहारा है. अब बेसहारा इसलिए नहीं है क्योंकि वो चल फिर नहीं सकते हैं, मूक हैं, बधिर हैं या नेत्रहीन हैं, लेकिन इसलिए सहारा बन रही है क्योंकि उनकी विकलांगता को कम करने की कोशिश कर रही है और वो उनको वो स्वाभिमान देने की कोशिश कर रही है जिस स्वाभिमान का वो इंतजार कर रहे हैं, और वो अलग अलग अपॉर्चुनिटीज के रूप में है. किस प्रकार से है इसके बारे में करेंगे बात. जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के साथ. सुना रही हूँ आप लोगों को एक प्यारा सा गाना, बड़ा कहीं मत जाना, फील गुड फील.

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर प्रोग्राम है मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर हम चल रहे हैं माया केयर फाउंडेशन के साथ। माया केयर फाउंडेशन भारत के अलग अलग राज्यों में काम करती है और विदेशों में रह रहे बुजुर्गों के जो बच्चे हैं उनके लिए भी काम करती है। अब आप सोचिए ना कि आप तो चले गए हैं अब्रॉड और वहां पर जाने के बाद आप अपने लिए एक अच्छा करियर बना रहे हैं। भाई अच्छी अपॉर्चुनिटी आई, आपने एक अच्छा करियर चूज किया और उस अपॉर्चुनिटी को लेते हुए आप अपने परिवार के सदस्यों का भविष्य बनाना चाहते हैं, लेकिन परेशानी ये है कि आपका परिवार तो कहीं भारत में पीछे छूट गया है, सो उनका ख्याल कौन रखेगा। ऐसा ख्याल रखने के लिए माया केयर फाउंडेशन है जो इस प्रकार का काम कर रही है। बहुत सारे ऐसे विकलांग हैं जिन्हें नौकरी नहीं मिल पाती है, जिन्हें जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाती हैं, उन विकलांगों का सहारा बन रही है माया केयर फाउंडेशन। ज्योति जी हमारे साथ हैं जो कि उनकी एचआर हैं। ज्योति जी मुझे बताइए कि एक तरफ तो आप बुजुर्गों की सेवा कर रही हैं, विकलांगों के लिए आप बड़ी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने की कोशिश कर रही हैं, अलग अलग किस्म के काम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, इसके साथ साथ महिला सशक्तिकरण पर भी आप लोग काम कर रहे हैं। सो किस प्रकार से आप अलग अलग प्रोग्राम्स रन करते हैं इन विकलांगों के लिए, महिलाओं के लिए?
1: जी, हमारे यहाँ अगर आप देखेंगे तो 90% तो महिलाएं ही हैं
0: जी
1: जो कि विकलांग हैं, और उनके लिए हमने एक शक्ति शक्ति करके एक पावर शक्ति पावर करके एक प्रोजेक्ट चलाया था
0: जी,
1: जिसमें 8 मार्च को जब महिला दिन होता है
0: जी,
1: तो हम सभी जो हमारे माया केयर में जो जो महिलाएं हैं वो इकट्ठा होकर ऑनलाइन ही हम कार्यक्रम करते हैं जी, और उसमें हम अलग अलग तरीके से जिसे जो आता है या जिसे जो पसंद है उस अनुसार वो कार्यक्रम करता है, वहाँ पर प्रेजेंटेशन देता है। और दूसरा ये कि उनको जब भी नीड होती है, जैसे कि दिवाली है या फिर 8 मार्च को उनका सम्मान है 8 मार्च को, तो उस टाइम हमने उनको पेड लीव रखी है ताकि वो उसका उपयोग करें अपने परिवार के लिए, अपने खुद के लिए। ये महिलाओं के लिए हमने ज्यादा रखा है और ऑनलाइन वो काम करती हैं, कहीं पर उनको जाने की जरूरत नहीं होती और इससे वो बहुत स्फूर्ति से और अच्छा काम करती हैं।
0: दोस्तों अगर महिलाओं की बात की जाए तो माया केयर फाउंडेशन दरअसल महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की कोशिश कर रही है। अब अगर महिलाओं की सबसे बड़ी परेशानी है उनकी मोबिलिटी, एक परिवार है जिसका ख्याल रखना है और दूसरी तरफ एक करियर है जिसको देखना है, अब ऐसे में परेशानी ये होती है कि अक्सर महिला को परिवार को चुनना पड़ता है। भाई घर में अगर छोटा बच्चा है और वो एक बहुत अच्छी माँ है तो उन्हें उस बच्चे को छोड़कर नौकरी करने जाना बड़ा मुश्किल लगता है। सो ऐसे में महिलाओं को जॉब अपॉर्चुनिटीज दी जाती हैं जो वर्क फ्रॉम होम किस्म की होती हैं, जहां पर कि वो अपने घर पर रहकर ही अपने आप अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हैं, इंडिपेंडेंट बन सकती हैं, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव कर सकती हैं, लेकिन साथ के साथ अपने परिवार का ख्याल भी रख सकती हैं। सो इस प्रकार का काम करने की कोशिश कर रही है माया केयर फाउंडेशन। और वहीं पर मैं बुजुर्गों की बात करूं या विकलांगों की बात करूं, सो अक्सर आपने देखा है कि सरकार की ढेर सारी स्कीम्स होती हैं जहां पर ये कहा जाता है कि भाई आप विकलांगों को नौकरी जरूर देंगे, लेकिन परेशानी ये है कि कई बार विकलांगों को यही नहीं पता होता है कि उन्हें कहां और किस ऑर्गेनाइजेशन में जाकर अप्लाई करना है। दूसरी तरफ परेशानी होती है कि उनके पास कई बार इस प्रकार के स्किल्स नहीं होते हैं जिन स्किल्स पर वो काम कर सके। तो ज्योति जी मुझे बताइए, क्या आप लोग अपस्किलिंग का भी काम करते हैं विकलांगों के लिए, महिलाओं के लिए?
1: हाँ हाँ, जरूर जरूर। हम क्या करते हैं कि हम जब उनका चयन करते हैं, उनका रिक्रूटमेंट करते हैं हमारे यहाँ, तब हम उनको ट्रेनिंग भी देते हैं
0: जी।
1: उनके क्या क्या खामियां हैं या फिर उनके क्या स्किल्स हैं, उसके दौरान हम उनको ट्रेन करके उनको ट्रेनिंग में ही ऑन जॉब ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी उनको देते हैं
0: जी,
1: कि जिससे वो थोड़ा सा प्रैक्टिकली वो सब सीख जाए और सही काम में लग जाए, तो इसलिए वो थोड़ा सा फिर वहाँ पर वो आत्मनिर्भर होने लगती हैं। क्योंकि OJT में हम क्या करते हैं, उनका थोड़ा पेमेंट भी देते हैं
0: जी,
1: ऑन जॉब ट्रेनिंग ही उसे कहते हैं कि जॉब का ट्रेनिंग देते देते काम भी देना, तो इसमें ये पेड होता है, तो इसमें अगर वो आत्मनिर्भर होने लगी या उसको बहुत इसमें आनंद आने लगा कि नहीं मैं अभी कुछ करूंगी, अब मैं सही में अभी आत्मनिर्भर होने लगी हूँ,
0: जी
1: तो वो जरूर इसमें हिस्सा लेती हैं, फिर और ट्रेनिंग सीखती हैं, आगे जाती हैं। बहुत सी महिलाएं हमारे यहाँ, जो भी ऊपर जितनी भी मेरी सहपाठी हैं, सारी महिलाएं हैं,
0: जी
1: इसमें आपको ये लोग ज्यादा थोड़ा कम ही है।
0: सो दोस्तों, महिलाओं के लिए ये जरूरी है कि उन्हें अपस्किल समय समय पर किया जाए, खास तौर पर वो महिलाएं जो कि घरों पर रहती हैं, वो महिलाएं जो अभी फिलहाल कहीं पर भी नौकरी नहीं कर रही हैं। तो सबसे पहले उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है, उन्हें अपस्किल किया जाता है, फिर उनके स्किल्स के कैपेबिलिटी के हिसाब से ना सिर्फ ये डिसाइड किया जाता है कि वो कहाँ पर जाती हैं और कहाँ पर वो किस तरीके का काम कर सकती हैं, लेकिन जिस दौरान उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है उस दौरान उन्हें स्टाइपेंड भी दिया जाता है, जो अपने आप में बहुत मोटिवेटिंग होता है। तो इस प्रकार का काम हो रहा है माया केयर फाउंडेशन में। अब अगर आपको ऐसा लगता है कि आप किसी ऐसे विकलांग को जानते हैं, आप महिलाओं को जानते हैं, किसी बुजुर्ग को जानते हैं, तो आप ये जरूर जानना चाहेंगे कि लोग उसका फायदा कैसे उठा सकते हैं, इस माया केयर फाउंडेशन से लोगों को कैसे बेनिफिट मिल सकता है, इसके बारे में करेंगे बात। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर प्रोग्राम है मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर आज हम चल रहे हैं माया केयर फाउंडेशन के साथ। माया केयर फाउंडेशन ढेर सारा नेकी का काम कर रही है, खास तौर पर बुजुर्गों के लिए, विकलांगों के लिए, महिलाओं के लिए। अब ज्योति जी, बात कर रहे हैं हम बुजुर्गों की, महिलाओं की, सो मुझे बताइए, मान लीजिए कि कोई विकलांग है, सो विकलांग लोगों को अक्सर ये पता ही नहीं होता है कि वो खुद अपने पैरों पर खड़े कैसे हो सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले उनकी विकलांगता और दूसरी सबसे बड़ी परेशानी कि वो जाकर नौकरी कहाँ पर ले। सो किस प्रकार से माया केयर उनकी मदद करती है, और अगर कोई माया केयर से जुड़ना चाहता है किसी नौकरी के लिए या फिर किसी अपॉर्चुनिटी के लिए, तो वो किस तरीके से जुड़ सकते हैं?
1: जी जी, हमारी वेबसाइट भी है
0: जी,
1: www.mayacare.org
0: जी,
1: और हमारा ईमेल एड्रेस भी है
0: जी,
1: service@mayacare.org
0: जी,
1: और हमारे हमारे हेल्पलाइन नंबर्स भी हैं
0: जी,
1: 9552510400, और दूसरा भी नंबर है 9552510411
0: जी।
1: इन दोनों नंबर पर और वेबसाइट पर और ईमेल्स पर आप हमें, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और ये भी है कि हम फेसबुक पर पोस्ट करते हैं, लिंक्डइन पर हमारी पोस्ट होती है, इंस्टा पर हमारी पोस्ट होती है, तो उसके तहत भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे साथ आपका जो भी मेल आता है या फिर आपका कॉल आता है, तो हम तुरंत वो कॉल उस डिपार्टमेंट

0: डिपार्टमेंट में जाता है रिक्रूटमेंट के, वहाँ से कॉल जाता है, उसके बाद उनका इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू के बाद उनको ट्रेनिंग के डिपार्टमेंट में जाने के लिए हम ग्रुप में ऐड करते हैं
1: जी।
0: उसके बाद उनका ट्रेनिंग शुरू होता है। ट्रेनिंग के समय जो भी महिला या फिर जो भी विकलांग पर्सन हो
1: जी,
0: उनको हम ट्रेनिंग के साथ साथ जॉब देना शुरू करते हैं।
1: क्या बात है।
0: और इस प्रकार से वो हमसे जुड़ने लगते हैं। फिर हम उनको अपील भी करते हैं कि अगर आपके कुछ रिश्तेदार हो या फिर कुछ फ्रेंड सर्कल हो, आप जरूर हमें बता सकते हो
1: जी। सो भाई, अगर आपकी नजर में कोई ऐसे विकलांग हैं जिन्हें किसी भी प्रकार के अपॉर्चुनिटी की जरूरत है, कुछ ऐसे बुजुर्ग हैं जिन्हें थोड़े से साथ की जरूरत है, कंपेनियनशिप की जरूरत है, या कहना चाहिए थोड़े से अकेलेपन से वो गुजर रहे हैं, सो इन सारी चीजों का ख्याल रख रही है माया केयर फाउंडेशन। यानी माया केयर फाउंडेशन वो एक ऐसी फाउंडेशन है जो अलग अलग राज्यों में ना सिर्फ इस प्रकार से बुजुर्गों का ख्याल रख रही है, साथ के साथ विकलांगों का ख्याल रख रही है, लेकिन उन्हें अपस्किल कर रही है, उन्हें सेल्फ इंडिपेंडेंट बना रही है, और साथ के साथ उनके जीवन को एक नई राह देने की कोशिश कर रही है। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। वक्त एक छोटे से प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक का। फील गुड, फील लाइव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर प्रोग्राम है मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर हम चल रहे हैं माया केयर फाउंडेशन के साथ। आज हम ढेर सारी जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं माया केयर फाउंडेशन की। अब बात करते हैं ज्योति जी आपके चैलेंजेस के बारे में। तो सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि आप बहुत सारे लोगों की मदद करते हैं, लेकिन इतनी बड़ी पॉपुलेशन और इतने सारे विकलांग, इतनी सारी महिलाएं, इतने सारे बुजुर्ग और इतनी कम अपॉर्चुनिटीज, किस प्रकार के चैलेंजेस फेस करते हैं आप लोग?
1: जी जरूर, हमने बहुत चैलेंजेस फेस किए हैं
0: जी।
1: बेसिकली हमारे फाउंडर ने अभी तक तो 2020 तक तो हमारे फाउंडर अपने जेब से ही सारा कुछ खर्चा उठाते थे माया केयर का। उसके बाद फिर हमारा प्रोजेक्ट बिंदु जब आया तो हमारे थोड़ा बहुत फंड हमें मिलने लगा, लेकिन वो भी इतना नहीं है कि हम हमारे लोगों के लिए पेमेंट्स हो सके उनके, या फिर उनकी उनके लिए हमें जो करना है कि उनको आत्मनिर्भर बनाना है, उनको उनके जो भी हमें ऊपर लाना है उनको, उसके लिए जिसकी भी जितनी भी ज़रूरत है तो अभी के लिए तो वो कम ही है। क्योंकि क्या है, माया केयर अभी पूरे इंडिया में है, 72 सिटीज में हम चल रहे हैं और वहाँ के सारे बिंदुज हमारे साथ हैं, बुजुर्ग हमारे साथ हैं। इतना ही नहीं, माया केयर के बाहर भी नेपाल हमने ओपन किया है और यूके में भी हमारी बहुत सारी सर्विसेज शुरू हैं, वहाँ पर भी हमारे 5 सिटीज शुरू हैं और अभी तक हमने 45,000 सर्विसेज बुजुर्गों की कंप्लीट की है और लगभग 5,000 लोगों को हमने ट्रेन करके प्लेसमेंट किया है उनका। तो इस प्रकार से ये सब करने के लिए हमने इतने चैलेंजेस भी झेले हैं इसके साथ जी। और पर्सनल डोनेशन बहुत कम आता है, ये तो एक है हमारा। और दूसरा ये कि हम जो बुजुर्गों के लिए काम करते हैं उसके लिए हमें कोई डोनेशन नहीं देता
0: जी।
1: सारे लोग डोनेशन अगर देना है तो प्रोजेक्ट बिंदु के लिए दे सकते हैं, लेकिन बुजुर्गों के लिए कोई मदद नहीं करते
0: जी।
1: वो हमारे ही इसमें करना पड़ता है, तो ये हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है।
0: तो दोस्तों, अक्सर अगर मैं एनजीओस की बात करती हूँ, और ये कार्यक्रम आप लंबे समय से रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर सुन रहे हैं, एक परेशानी हर एनजीओ या फिर हर फाउंडेशन के साथ आती है और वो है फंड्स की। देखिए, जब कभी भी हम अच्छे और नेकी के काम के लिए जाते हैं तो हमारे पास बहुत सारी ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है, हमारे अंदर दिलों में जज्बा होता है, लेकिन परेशानी ये है कि मात्र एनर्जी और जज्बे से काम नहीं चलता है, जरूरत होती है पैसों की भी। अब जब आप अच्छा काम कर रहे हैं तो आप किसी को भी पीछे नहीं छोड़ सकते हैं। मान लीजिए कि किसी बुजुर्ग को आपकी जरूरत है तो आप ये तो नहीं कहेंगे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के पास इतने एडिक्वेट फंड्स नहीं है कि हम आपकी सेवा नहीं करेंगे। सो वहां पर हम सामने आ सकते हैं, यानी हम इनके लिए मदद का हाथ बढ़ा सकते हैं। जिस प्रकार से माया केयर फाउंडेशन अलग अलग चैलेंजेस से गुजरकर आज 72 सिटीज में न सिर्फ भारत के अलग अलग बुजुर्गों की मदद कर रही है, बहुत सारे विकलांगों को अपॉर्चुनिटीज दे रही है, बहुत सारी महिलाओं को स्वावलंबी बना रही है, मुझे लगता है कि माया केयर फाउंडेशन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पिलर की तरह आ रही है। लेकिन जरूरत है कि कुछ लोग उनके साथ जुड़े। सो अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि आप इनके लिए मदद का हाथ बढ़ा सकते हैं, तो डेफिनेटली मौका मिल रहा है आपको। बताने वाली हूँ आपको कि आप इनके साथ कैसे जुड़ सकते हैं। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड फील लाइव।
2: ना इज्जत की चिंता, ना फिक्र कोई अपमान की, जय बोलो बेईमान की, यही पहचान है भक्तजन।
3: गुरुदेव, यही बात यदि संगीत धारा में बहकर कहें तो आनंद आ जाए।
2: हाँ गुरुदेव। ना

का जूठ संग है महाराज पधारे, चिमटा चरस चिलम और चेले साथ साथ है सारे।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर प्रोग्राम है मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर हम चल रहे थे आज माया केयर फाउंडेशन के साथ ज्योति जी, जो कि उनकी एचआर हैं पुणे से। ज्योति जी, मुझे बताइए कि अगर कोई आपके साथ वॉलंटियर करना चाहता है, किसी को आपकी जो ये सोच है माया केयर फाउंडेशन की वो बहुत पसंद आई है और उन्हें ऐसा लगता है कि मैं कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ, या कोई आपके साथ एसोसिएट होकर इन ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी लोग हैं, विकलांग हैं या फिर बुजुर्ग हैं या महिलाएं हैं, उनकी मदद करना चाहता है, तो ये किस प्रकार से किया जा सकता है, कोई माया केयर फाउंडेशन से कैसे जुड़ सकता है?
1: जी, हमारे जो हेल्पलाइन नंबर्स हैं
0: जी,
1: आप उससे जुड़ सकते हो, 9552510400
0: जी,
1: और 9552510411
0: जी,
1: और आप हमें मेल कर सकते हो service@mayacare.org, और इसके साथ साथ आप वेबसाइट से भी हमारे साथ जुड़ सकते हो, www.mayacare.org।
0: देखिए भाई दोस्तों, ज्योति जी ने जरूर बताया है कि आप इनके साथ कैसे जुड़ सकते हैं। आप इन्हें ईमेल कर सकते हैं, आप इनकी वेबसाइट पर जा सकते हैं, आप इन्हें कॉल कर सकते हैं, लेकिन मैं तो यही कहूंगी, इन 72 सिटीज में अगर आप हैं, सो इन 72 सिटीज में से देखिए आप नियरेस्ट सिटी में हैं या उसी शहर में हैं जहां पर माया केयर काम कर रही है। उन शहरों में अगर आपके पास थोड़ा सा समय है, आपके पास थोड़ा सा इन्फ्लुएंस है, आप शायद एक ऐसे कॉर्पोरेट में काम करते हैं जहां पर कि आप विकलांगों को नौकरी दे सकते हैं, शायद आप ऐसे इंसान हैं जिसके पास थोड़ा सा समय होता है वीकेंड पर और आप बुजुर्गों की सेवा करके आ सकते हैं, शायद आप ऐसे हो जो महिलाओं को किसी तरीके की ट्रेनिंग दे सकते हैं। इन सब तरीकों से आप जुड़ सकते हैं, आप इनके साथ वॉलंटियर कर सकते हैं, आप इनके साथ एसोसिएट हो सकते हैं, और अगर खुदा ना खास्ता आप उस कैटेगरी में हैं जहां आपके पास समय की बहुत कमी है, लेकिन अगर आपके पास थोड़ा सा धन है, सो आप इन रिसोर्सेज के लिए, इन चीजों के लिए, इस नेकी के काम के लिए अपना धन भी इन्हें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, इसके लिए आप जुड़ जाएंगे माया केयर फाउंडेशन के साथ, यानी आप इनके साथ कनेक्ट हो सकते हैं इन हेल्पलाइन नंबर्स पर, या फिर आप डायरेक्टली इनकी वेबसाइट पर जाकर इनसे कनेक्ट हो सकते हैं, सोशल मीडिया पर आप जाकर इनके साथ कनेक्ट हो सकते हैं, लेकिन मैं ये कहूंगी कि इस नेकी के काम में आप इनके साथ जरूर जुड़िए। ज्योति जी, बहुत सारे लोग आपको फिलहाल सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना के जरिए, ना सिर्फ उन्होंने माया केयर फाउंडेशन के बारे में करीब से जाना, लेकिन उन्हें समझ में आया कि माया केयर फाउंडेशन कितना खूबसूरत सा काम कर रही है। जाते जाते हमारे सभी लिसनर्स को क्या मैसेज आप देकर जाना चाहेंगी?
1: जी जरूर, अभी तक तो हमने माया केयर 72 सिटीज में ओपन किया है। एक्चुअली हमारी ये इच्छा है कि हम 100 सिटीज में जाएं। हर एक सिटी में हमारा एक सिटी कोऑर्डिनेटर होता है, आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करते हैं तो सिटी कोऑर्डिनेटर आपका कॉल जरूर उठाएगा और सिटी कोऑर्डिनेटर आपके लिए वॉलेंटियर भी चयन करेगा, लेकिन ये सब होता रहेगा। ये सब हमने स्टेप वाइज या फिर हमारी सोच से हमने ये बनाया है तरीका जिससे हम आपके साथ काम कर रहे हैं, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ आज कि भावना जी यहाँ पर हमारा इंटरव्यू ले रही हैं, इसके लिए तो हम उनके शुक्रगुजार हैं। और दूसरा ये कि आप सब श्रोता जो अभी हमें सुन रहे हैं, उनके भी मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि माया केयर फाउंडेशन आज 16-17 सालों से काम कर रहा है। हमारा ये निवेदन है, हमारे फाउंडर ने दो दुर्बल घटक चयन किए कि जिनके समाज में बहुत ज़्यादा संख्या में ये दुर्बल घटक हैं, लेकिन लोगों के लिए ये थोड़ा सा ज़्यादा दुर्लक्षित होता जा रहा है। ये तो हमें चाहिए कि आपका जो भी पार्ट इसमें आता है कि आपको अगर वॉलंटियर होना है, आपको आपकी फैमिली में अगर खुदा ना खास्ता कोई विकलांग है तो उनके लिए कुछ नौकरी लगानी है, तो प्लीज़ आप इसके लिए हमारे हमारे यहाँ मेल कर सकते हैं, हमें हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं, और इन दुर्बल घटकों के लिए आप ज़रूर मदद करते हैं, हमें किसी भी प्रकार की मदद हमें चलेगी।

0: क्योंकि क्या है कि हमने देखा है कि हम ये जो प्रोवाइड कर, ये जो सर्विस हम दे रहे हैं ये पूरी तरीके से फ्री सर्विस है। जो बुजुर्गों के लिए हम सर्विस देते हैं ये फ्री है, इसलिए जो भी ज़रूरतमंद है वो ज़रूर यहाँ पर कॉल करे या हमें मैसेज करे, नेक्स्ट डे आपको सर्विस मिल जाएगी। और जो भी ये हमें सुन रहे हैं श्रोतावर्ग, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़िए और हमारी विकलांग टीम जो ये बहुत बड़ा बैक ऑफिस का काम कर रहे हैं, जिसमें बहुत सारे हमारे सहपाठी हैं जो भी बहुत विकलांग होने के बावजूद इतना अच्छा काम कर रहे हैं, आपको पता भी नहीं है। अगर आप वेबसाइट पर जाकर हमारे विकलांग लोगों की कहानियां पढ़ोगे तो आपको यकीन नहीं होगा कि ये लोग भी काम कर सकते हैं। तो प्लीज़ यह हमें एक मौका दीजिए कि हम भी ऊपर आए, और ये माया केयर इस वर्ल्ड की एक यूनिक संस्था है कि जो घर से ही काम देती है। कोई ओनली ट्रेनिंग देता है लेकिन काम नहीं देता, लेकिन यहाँ पर ट्रेनिंग भी होता है, काम भी होता है, और ये फ्री सर्विस देती है। ये बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए।
1: सो दोस्तों, इस चैलेंज को हम सब मिलकर खत्म कर सकते हैं और इसे एक खूबसूरत अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। माया केयर फाउंडेशन फ्री ऑफ कॉस्ट बुजुर्गों का ख्याल रख रही है, महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन साथ के साथ उन्हें जॉब अपॉर्चुनिटीज भी दे रही है। जितनी भी माया केयर फाउंडेशन का टेक्निकल बैकअप है या फिर कहना चाहिए सर्विस सेंटर्स हैं, वो सब विकलांग लोग संभाल रहे हैं। सो आप सोच सकते हैं कि कितने सारे लोग इनके साथ जुड़े हैं और इस माया केयर फाउंडेशन को आज 72 सिटीज तक पहुंचा दिया है। आप भी इनका हिस्सा बन सकते हैं। सो मेरी बस यही गुजारिश है, इस कार्यक्रम में मैंने आपकी मुलाकात करवाई माया केयर फाउंडेशन से, बस अब आप अपनी सुविधा और कहना चाहिए कन्वीनियंस के हिसाब से इनके साथ कब और कैसे जुड़ते हैं ये आप पर डिपेंड करता है, लेकिन एक कदम मानवता की ओर उठाना तो बिल्कुल बनता है। इसी बात पर तहे दिल से धन्यवाद ज्योति जी, आज आपने अपना कीमती समय निकाला, हमारे सभी लिस्टर्स को इतनी बेहतरीन जानकारी दी,
0: धन्यवाद। थैंक यू।
1: दोस्तों, वक्त है आपसे इजाजत लेने का, लेकिन आप कहीं नहीं जाने वाले, आप जुड़े रहने वाले अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन के साथ। आरजे भावना को दीजिए इजाजत, होगी मुलाकात अगले हफ्ते। टिल देन फील गुड फील लाइफ।
2: मैं जिंदगी

0: Hi, this is Benny Dayal. You're listening to Radio Manav Rachna, 107.8 FM.
1: फ्रेंड्स एंड वेलकम टू रेडियो मानव रचना 107.8 FM. मैं हूँ आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी विमेन एम्पावरमेंट. आपको पता है कि ये एक ऐसा कार्यक्रम है जो शायद हमारे रेडियो स्टेशन का सबसे लंबा कार्यक्रम है. महिला सशक्तिकरण पर पिछले इतने लंबे समय से मैं आपके लिए कार्यक्रम लेकर आई हूँ जिसमें मैं आपको सशक्त महिलाओं से मिलवाती हूँ. ऐसी सशक्त महिलाएं जो सशक्तिकरण का काम कर रही हैं, ऐसी सशक्त महिलाएं जो आने वाली पीढ़ी को सशक्त कर रही हैं, और ऐसी सशक्त महिलाएं जो अपने आप में एक मिसाल हैं. आज इस कड़ी में हम जिनसे मिलने वाले हैं उनका नाम है डॉक्टर उषा यादव. ये चेयरपर्सन है विद्या भारती पब्लिक स्कूल की, और न सिर्फ ये चेयरपर्सन है लेकिन ये एक सशक्त और डायनेमिक महिला है. इनकी जीवन की कहानी इन्हीं की जुबानी आज हम इनसे बहुत सारी बातें करने वाले हैं. उसके लिए करेंगे इनका स्वागत रेडियो मानव रचना 107.8 FM के स्टूडियो में. डॉक्टर उषा, आपका बहुत बहुत स्वागत है.
2: थैंक यू.
1: उषा जी, कार्यक्रम का नाम है महिला सशक्तिकरण, और अगर मैं महिला सशक्तिकरण की बात करूं तो हर महिला के लिए सशक्तिकरण की परिभाषा जो है वो बिल्कुल अलग होती है. तो आपसे अगर मैं ये जानना चाहूं कि आपके नजरिए में महिला सशक्तिकरण क्या है तो क्या कहेंगे आप?
2: मैं भी यही कहना चाहूंगी कि महिला सशक्तिकरण का अर्थ है महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और राजनीतिक रूप में इतना मजबूत और स्वतंत्र बनाना है कि वो अपने जीवन के फैसले खुद ले सके.
1: जी देखिए भैया, महिलाएं अगर देखा जाए तो बिल्कुल आजाद है, बिल्कुल स्वतंत्र है, लेकिन पर्यावरण या फिर अगर हम कहें कि आसपास का जो माहौल है वो उन्हें आज भी बहुत सारी बेड़ियों में बांध कर रखता है. सबसे बड़ी बेड़ी जिसमें महिलाएं आज भी बंधी हुई हैं वो है जिम्मेदारी की बेड़ी. हालांकि ये जिम्मेदारी परिवार है, ये जिम्मेदारी समाज है, ये जिम्मेदारी उनका अपना घर है, लेकिन कई बार उनके जीवन के कुछ अहम पड़ावों में ये बेड़ियां वाकई बेड़ियां लगने लगती हैं. तो सशक्तिकरण वहां है जहां महिलाओं को बराबरी का हिस्सा मिल रहा है, जहां महिलाओं को बराबरी का मौका मिल रहा है. जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ. एक छोटा सा प्यारा सा म्यूजिकल ब्रेक यानी आपको सुना रही हूँ एक बेहतरीन सा गाना, फील गुड फील.

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण के खूबसूरत से कार्यक्रम में। आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर उषा यादव से, जो चेयरपर्सन है विद्या भारती पब्लिक स्कूल की। और एजुकेशनिस्ट होने के नाते मैं इन्हें एम्पावर्ड तो बिल्कुल समझती हूँ, लेकिन अच्छी बात यह है कि जो एजुकेशनिस्ट होती है ना, वो आने वाली पीढ़ी को भी एक नई राह दिखा पाती है। उषा जी, हर सदी में महिलाओं के पास अलग अलग किस्म के चैलेंजेस थे। मतलब कभी तो आप याद करें, महिलाएं पैदा ही नहीं हो पाती थी, बच्चियां पैदा ही नहीं हो पाती थी, कन्या भ्रूण हत्या एक बहुत कॉमन सी चीज थी हमारे देश में। फिर धीरे धीरे शायद ये समस्या कम हुई, फिर हम आगे बढ़े, फिर एजुकेशन का अधिकार नहीं था, फिर एजुकेशन का अधिकार मिला। आज महिलाएं स्वावलंबी हैं, अपनी आर्थिक रूप से स्वतंत्र हैं, बहुत सारी चीजों को उन्होंने पाया है, लेकिन आज भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मिसिंग हैं। क्या लगता है, क्या चैलेंज है आज के जमाने का?
1: चैलेंज में शिक्षा का तो बहुत अभाव है, अभी गांव में तो बहुत कम होता है, भ्रूण हत्या लिमिट से ज्यादा होती है, जिसमें कि हम लोगों का कंट्रोल

0: जरूरी नहीं होता। शिक्षित डॉक्टर भी इस तरह के करते हैं तो वो गलत है। और मैं यही बताना चाहूंगी कि जैसे महारानी लक्ष्मीबाई की, मुझे सुभद्रा कुमारी चौहान ने की कवित्री थी, उन्होंने बताया था बहुत अच्छी कविता लिखी है, बूंदेले हर बोलो में मुख, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी।
1: जी तो देखिए भाई, ये जो सशक्तिकरण है ना, इस सशक्तिकरण को आगे फैलाना तो बहुत जरूरी है, लेकिन परेशानी ये है कि क्या हम अपनी अभी की जो चैलेंजेस हैं उनसे निकल पाए हैं या नहीं। और उनसे निकलने के लिए सबसे पहली जरूरत है शिक्षा की। जुड़े रहिएगा रेडियो 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइफ।

0: क्या
1: फिर कोई बावर मुहब्बत की अपनी

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूँ आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर प्रोग्राम है वी यानी वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण की। इस कड़ी में आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर उषा यादव से, जो चेयरपर्सन हैं विद्या भारती पब्लिक स्कूल की। डॉक्टर उषा, अब बात करते हैं आपके सशक्तिकरण की। आप चेयरपर्सन हैं विद्या भारती पब्लिक स्कूल के, साथ के साथ आप सामाजिक कार्य में काफी ज्यादा अग्रणी हैं। मुझे बताइए कि क्या कभी जिंदगी में आपने कोई ऐसा सशक्तिकरण भरा कोई डिसीजन लिया हो, या कोई ऐसा आपका कदम जहां आपको लगा हो कि मुझे कोई इस बात का आज भी मलाल नहीं है, लेकिन मैंने जो कदम लिया उससे मैं आज एक सशक्त महिला हूँ। आपकी जर्नी को आप कैसे डिफाइन करेंगे?
1: मैंने सीमित धारणाओं को तोड़कर जिम्मेदारी को स्वीकार किया और आत्म करुणा के साथ निर्णय लेने की क्षमता विकसित की। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें मैंने विश्वास और दृढ़ता से मैंने अपने जीवन का नियंत्रण पाया। क्योंकि मैंने भी एजुकेशन भी प्राप्त की तो बड़े मध्यम वर्ग से मैं हूँ और बहुत अच्छे से मैंने मेहनत करके विद्या प्राप्त की और मध्यम वर्ग परिवार में ही मेरा विवाह हुआ। वहाँ भी मैंने बहुत अच्छे से अपने निर्णय लिए, लेकिन मुझे निर्णय लेने में कोई आपत्ति नहीं आई क्योंकि मेरे परिवार ने मेरा साथ दिया।
0: वाकई देखिए, हम हमेशा ये कहते हैं कि महिलाएं अगर आगे बढ़ना चाहती है ना, तो उसकी सबसे छोटी इकाई लेकिन सबसे अहम इकाई होती है उसका परिवार। और अगर परिवार आपके साथ है ना, तो आप जीवन की बड़ी से बड़ी युद्ध को, बड़ी से बड़ी जंग को जीत सकते हैं। तो आई थिंक सशक्तिकरण के लिए सबसे पहली जरूरत है घर में सोच का बदलाव। अगर आपकी सोच बदल रही है तो सशक्तिकरण आप फैला भी पा रहे हैं और सशक्तिकरण को आप महसूस भी कर पा रहे हैं। वक्त एक छोटे से प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक का सुना रही हूँ आप सभी को एक बेहतरीन सा गाना। जुड़े रहिएगा अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन के साथ, यानी रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड फील लाइफ।
2: ये हुई ना बात।

0: यहाँ तो नहीं आया बेटी, पुल पे होगा शायद।
1: वहाँ अकेला क्या कर रहा है?
2: Welcome back, friends. आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM, एफआरजी भावना, और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी वुमेन एम्पावरमेंट। भाई सैटरडे की शाम है, यानी महिला सशक्तिकरण पर बात करनी है। महिला सशक्तिकरण पर जब बात करती हूँ तो आपको एक सशक्त महिला से मिलवाती हूँ। आप उनके जीवन के पन्नों को पलट कर सुनते हैं और साथ के साथ आप उनके सशक्तिकरण से बहुत कुछ सीख सकते हैं। अगर मैं डॉक्टर उषा यादव की बात करूँ तो इन्होंने कोई भी दुनिया का अलग काम करने के बारे में नहीं सोचा, इन्होंने वो सोचा जो शायद नॉर्मल लोग कहते हैं कौन सा नया काम है। जी हाँ, लेकिन यही वो सबसे पहला बीज है जो सशक्तिकरण फैला सकता है। जब शिक्षा आप किसी को दे देते हैं ना, तो आप उनके जीवन को बदल देते हैं, आप उनके जीवन को एक सोच देते हैं, आप उनके जीवन को एक समझ देते हैं। और यही खूबसूरत सा काम आज की हमारी बहुत ही खास गेस्ट डॉक्टर उषा यादव कर रही है। डॉक्टर उषा, अगर मैं जेंडर इक्वालिटी की बात करूँ तो अक्सर आपने देखा है कि हम ये कहते हैं कि बहुत सारी इक्वालिटी आ रही है, आज हमारी लड़कियां लड़कों के बिल्कुल बराबर है, महिलाएं पुरुष से कंधा मिलाकर चल रही हैं, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं बहुत चीजें हैं जो सही नहीं है। क्या लगता है, क्या है ये चीजें कि जेंडर इक्वालिटी की तरफ आने के लिए हमें और किन चीजों की जरूरत है?
3: हमने शिक्षा कानून में काफी प्रगति की, लेकिन लैंगिक समानता के लिए समाज में अभी भी पितृसत्तात्मक मानसिकता की कमी है।
2: वाकई देखिए ना, मतलब हमेशा हम देखते हैं ना, माइंडसेट की प्रॉब्लम है, जहाँ पर लोगों के विचार ही नहीं बदल रहे हैं। घर परिवार में आज भी ये फीलिंग है कि ये लड़की है और ये तो शादी करके दूसरे घर चली जाएगी, तो इसके ऊपर पैसा नहीं लगाना चाहिए, बेटे पर लगाइए, वो इन्वेस्टमेंट है। तो जब तक ये वाली फीलिंग रहेगी ना, तब तक हमारी ये जेंडर इक्वालिटी आएगी ही नहीं। और ये कहाँ से आ सकती है? ये हमारे घरों से आ सकती है, ये हमारी सोच से आ सकती है। और अगर हमारे देश का एक एक इंसान बिल्कुल ऐसी सोचने लग जाए ना, तो हम अपने देश के पूरे विचारों को बदल सकते हैं। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। एक प्यारा सा गाना सुना रही हूँ, फील गुड फील लाइक।

तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर, जाग जरा तू जाग जरा, तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर, जाग जरा तू जाग।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानवरचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानवरचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी वुमेन एम्पावरमेंट। आज हम बहुत सारी बातें कर रहे हैं डॉक्टर उषा से। डॉक्टर उषा, अभी हमने ना बात की है जेंडर इक्वालिटी की और हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या मतलब जेंडर इक्वालिटी वाकई कहीं है। अब ऐसे में एक सवाल उठता है, अक्सर आपने देखा होगा, खास तौर पर मैं अगर रूरल सेटअप की बात करूं तो अर्बन से ज्यादा रूरल में और शायद अर्बन में भी एक बड़ी परेशानी है। जब कभी भी एक लड़की अपना करियर आगे बढ़ा रही होती है तो करियर और परिवार, इन दोनों के बीच में आता है सबसे पहले चॉइस परिवार की। और लड़कियों को अक्सर ये कहा जाता है कि आप परिवार को चूज करो। आपने भी सुना होगा, देखा होगा, बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जिन्होंने अच्छा खासा करियर, चाहे वो डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं या फिर वो किसी भी अच्छी पोस्ट पर हैं, उन्होंने अपना करियर क्यों छोड़ दिया? क्यों? क्योंकि परिवार के देखरेख की जरूरत थी। छोटा सा बच्चा पैदा होता है तो उसके बाद एक महिला को कहा जाता है भाई अब आप नौकरी करना करें। तो मुझे बताइए कि क्या ऐसा किया जा सकता है कि लड़कियां अपना करियर भी आगे बढ़ा सके, अपनी पहचान बरकरार रह सके और साथ के साथ अपने परिवार का भी ख्याल रख सके?
1: करियर और परिवार के बीच संतुलन बनाने के लिए जिम्मेदारियों का बंटवारा और टाइम मैनेजमेंट और आपसी समझ बहुत जरूरी है। महिलाएं घर के कामों में पति को भागीदारी बढ़ाकर फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स का उपयोग करके और काम व घर के बीच बाउंड्रीज बनाकर दोनों में संतुलन बना सकती है।
0: डॉक्टर उषा, आपने कहा कि फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स और पुरुषों से घर के कामों में थोड़ी से सहयोग मांगने की, क्या आपको लगता है कि ये बदलाव वाकई आ सकता है? मतलब पुरुष जो हैं वो एक ऐसे माइंडसेट के साथ जीते हैं जहां उन्हें ऐसा लगता है कि ये काम हमारे काम नहीं है, और चलिए मान लीजिए कि हम ये कहें कि वो ये करना चाहते भी हैं तो उन्हें इसका कहीं ज्ञान ही नहीं होता है क्योंकि उन्हें बचपन से सिखाया ही नहीं जाता है, तो ऐसे में क्या किया जाए?
1: उसमें महिलाएं अपना पूरा सहयोग करें, तन मन से उनको समझाए कि भाई ये काम आप लोग भी हमारे साथ करोगे तभी तो हम उन्नति कर सकेंगे और तभी हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे।
0: हाल ही में मैंने एक छोटा सा सर्वे करने की कोशिश की थी डॉक्टर उषा, और उसमें ना मैंने बहुत सारी यंग लड़कियों से पूछने की कोशिश की थी कि क्या वो आगे बढ़कर शादी करना चाहती हैं और एक परिवार का हिस्सा बनना चाहती हैं। बहुत सारी लड़कियों का ये कहना था कि हम इसलिए शादी नहीं करना चाहते हैं क्योंकि उसके बाद हमारी आइडेंटिटी और हमारा करियर दोनों ही खत्म हो जाता है, क्योंकि शादी के बाद हम एक परिवार का हिस्सा बनते हैं और जिस नए परिवार में हम जाते हैं हमें पहले उसके हिसाब से ढलना होता है। चलिए वो भी कर लें, लेकिन उसके साथ साथ उसके लिए हमें अपने करियर को सैक्रिफाइस करना होता है। और अक्सर ये ऐसा होता है कि आप दूर दराज के एरिया में चले जाते हैं, शादी तो आपकी कहीं भी हो सकती है, और कई बार ऐसा भी होता है कि उस परिवार में लोग उन्हें अपने करियर को आगे ले जाने के लिए हाँ ना करें। और ये एक बहुत बड़ा कारण है कि जो हमारी अर्बन पॉपुलेशन है या फिर मैं अपने शहरों की पॉपुलेशन की बात करूं तो वहां पर आज की लड़कियां शादी नहीं करना चाहती हैं। और आप देख भी रही हैं कि आजकल शादियों की उम्र 25, 22, 23 ना होकर 31, 32, 33 हो गई है। सो क्या लगता है इन चीजों पे कहीं हम रोक लगा सकते हैं या कोई बदलाव लाया जा सकता है?
1: बदलाव तो शिक्षा के द्वारा ही ला सकते हैं हम।
0: जी जी, तो शिक्षा के जरिए आप क्या कहती हैं, कैसे बदलाव ला सकते हैं हम?
1: शिक्षा यदि एजुकेटेड होगा तो वो समझेगा अपने मन की बात को, वो जैसे हस्बैंड है वो वाइफ को समझा सकता है, वाइफ हस्बैंड को समझा सकती है, तभी तो काम आगे बढ़ सकता है, तभी संतुलन बन सकता है परिवार का।
0: देखिए डॉक्टर उषा ने ना बड़ा सही कहा है कि सबसे पहले जरूरत ये है कि पुरुष और महिला ये दोनों आपस में सामंजस्य बैठाएं, क्योंकि ये बड़ा जरूरी है कि अगर आप अपने घर की इकाई में हैं, आपकी जो सबसे छोटी इकाई मानी जाती है, समाज की सबसे छोटी इकाई आपका परिवार है, आपका घर है। अब सब कुछ घर से शुरू होता है, परवरिश घर से शुरू होती है, सोच माइंडसेट घर से शुरू होता है, यहाँ तक कि आपके विचार आपके घर से होते हैं। आप अपने घर में जो देख रहे होते हैं ना बिल्कुल वैसा ही आप दूसरों के साथ करते हैं। डॉक्टर उषा, अगर मैं आपके घर की बात करूं तो आपके बच्चे ये देखते हैं कि मम्मी सुबह तैयार होती हैं और उनकी एक जिम्मेदारी है, उन्हें स्कूल भी देखना होता है, उन्हें सामाजिक कार्य भी देखने होते हैं, तो उन्होंने शायद ये एक्सेप्ट कर लिया है कि आने वाले समय में हमारे जो स्पाउस या हमारे काउंटर पार्ट या हमारे जो परिवार के सदस्य हैं वो सब कहीं ना कहीं जॉब कर रहे होंगे या कहीं ना कहीं किसी तरीके के बिजनेस में होंगे, तो ये एक्सेप्टेंस जैसे आपके परिवार में आई है, आपको लगता है कि बहुत सारे घरों में अभी एक्सेप्टेंस आ गई है?
1: ज्यादातर परिवारों में अब आ गई है, जो कि दोनों कर रहे हैं, जहाँ सर्विस तो हस्बैंड भी उसका सहयोग कर रहा है और लेडीज भी कर रही है आपस में।
0: देखिए भाई, बहुत सारा बदलाव आ गया है और कुछ बदलाव आना बाकी है, लेकिन इस बदलाव को कौन ला सकता है? हम सब मिलकर ला सकते हैं, और मिलकर हम इस बदलाव को जानते हैं कैसे ला सकते हैं, सबसे पहले अपने घर में इस बदलाव को इम्प्लीमेंट करके। तो करिए एक छोटा सा प्रयोग, जैसे कि हम जब स्कूल में होते थे तो हम छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स करते थे ना, ऐसे छोटे से एक्सपेरिमेंट्स अपने घर से शुरू करिए। अपने घर के बच्चों को इक्वल जिम्मेदारी दीजिए, चाहे वो बेटा है या बेटी है, और अपने घर के पुरुषों को भी जिम्मेदारी देने की कोशिश करिए। जब वो इसमें इन्वॉल्व होंगे, जब ये जिम्मेदारी के रूप में वो करेंगे, और अगर वो मना कर देना कि मुझे नहीं आता, तो आप भी अडिग होकर करवाइए। तो छोटे छोटे कामों से शुरुआत करेंगे ना, तभी जाकर बड़ी जिम्मेदारियां निभाने लायक वो बन जाएंगे। करिए ये छोटा सा एक्सपीरियंस और जुड़े रहिए रेडियो 107.8 एफएम के साथ। फील गुड, फील नाइस।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी वेमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण का खूबसूरत सा कार्यक्रम। ढेर सारी सशक्त महिलाओं से हम बात करते हैं, वो महिलाएं जो सशक्त हैं, वो महिलाएं जो बदलाव लाना चाह रही हैं, वो महिलाएं जो बदलाव की ओर हैं, और वो महिलाएं जो बदलाव को सपोर्ट करती हैं। आज हमने ढेर सारी बातें की डॉक्टर उषा यादव से, जो चेयरपर्सन है विद्या भारती पब्लिक स्कूल की और साथ के साथ एक बहुत ही सोशली एक्टिव महिला है। उषा जी, तहे दिल से धन्यवाद कि आज आपने अपना कीमती समय निकाला और हमारे सभी लिसनर्स को इतनी बेहतरीन जानकारी दी। जाने से पहले क्या खास मैसेज या संदेश आप उन्हें देकर जाना चाहेंगी?
1: मैं सभी को ये संदेश देना चाहूंगी कि पुत्र और पुत्री में कोई अंतर नहीं करे, दोनों को पढ़ाया जाए, काम भी बरोबर बांट दिया जाए। और जैसे सुबह मैंने तो अपने बच्चों को भी ये, जब छोटे बच्चे थे तो मेरे पास भी एक लड़का एक लड़की थे, दोनों बच्चों को मैं सुबह एक ही काम के लिए चाय बनाने के लिए खड़ा करती थी तो दोनों को खड़ा करती थी और सुबह दोनों को जल्दी उठाती थी। और ये शिक्षा नहीं थी कि लड़का रात को लेट आए या लड़की जल्दी आए, ये नहीं, सबको बरोबर मैंने उसमें रखा।
0: वाकई देखिए भाई, ये कहते हैं ना प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। डॉक्टर रूषा ने अपने दोनों बच्चों को हमेशा समानता से पाला और आज एज एडल्ट्स वो दोनों अपने आप को समान महसूस कर रहे हैं। ना बेटे को ये लगता है कि भाई बहू सारा काम करेगी, ना बेटी को ऐसा लगता है कि ये सारी मेरी जिम्मेदारी है। सो अगर इसी प्रकार की भागीदारी, इसी प्रकार की जिम्मेदारी हर घर में निभाई जाए तो हमारा देश ही बदल जाए। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर उषा जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।
1: मैडम आपसे मिलके मुझे भी बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद।
0: और दोस्तों, वक्त है आपसे इजाजत लेने का। आपसे ले रही इजाजत, लेकिन आप कहीं नहीं जाने वाले हैं, आप जुड़े रहने वाले हैं अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के साथ। फील गुड फील लाइफ।
2: तुम्हें अपनी माशूका की कसम, खींच के रख दो उसकी तस्वीर यहाँ, इससे बड़ा तोहफा और क्या हो सकता है।

0: Narang and you're listening to Radio Manarachana 107.8.
1: हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं लेकर आ गई हूं आपके लिए प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। आपको तो पता ही है मानवता की राह पर एक खास कार्यक्रम, जिसमें हर हफ्ते मैं आपको ऐसे शख्स से मिलवाती हूँ जो मानवता की राह पर चल रहे होते हैं, जिनमें आज भी इंसानियत जिंदा है। एक तरफ हम सब ये कहते हैं कि आज के जमाने में इंसानियत खत्म हो गई है और इंसान इंसान न होकर मशीन बन गया है, सेल्फिश हो गया है, लेकिन आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इंसानियत को जिंदा रखे हुए हैं और अपनी इस दुनिया से और साथ के साथ अपने इस खूबसूरत से जेस्चर से बहुत सारे लोगों का जीवन बदलने की कोशिश कर रहे हैं। इस कड़ी में आज हम जिनसे बात करने वाले हैं, उनका नाम है कविता वैद्य गुप्ता। कविता गुप्ता जी को-फाउंडर हैं विन ओवर कैंसर की। इसी के साथ साथ ये इन्वेंटर हैं इंडिजीनियस कॉटन फैब्रिक बेस्ड ब्रेस्ट प्रोस्थेसिस की, और इसी के साथ साथ देखा जाए तो ये टेडेक स्पीकर भी हैं। ढेर सारे अवार्ड्स इन्होंने जीते हैं। और महिलाओं की मैं बात करूं, वेमेन ऑफ इंडिया अवार्ड 2016 इन्हें मिला है, इंडियन वेमेन अचीवमेंट अवार्ड 2017, नारी चेतना अवार्ड 2018 और अवार्ड बाय वेमेन इकोनॉमिक फोरम 2019। जिस तरीके का काम ये कर रही हैं, मुझे पता है आने वाले समय में जो सवाल मैं पूछूंगी, जो कहानी आप सुनेंगे, आपकी आंखें नम जरूर होने वाली हैं। लेकिन ये कहानी इतनी ज़रूरी है कि आप तक ज़रूर पहुंचिए, क्योंकि ये एक ऐसी कहानी है जो शायद हम सबको पता होनी चाहिए। सो आज मानवता की राह पर मैं चलने वाली हूँ।

0: रीता वैद्य गुप्ता जी के साथ, और उसके लिए मैं करूंगी इनका स्वागत रेडियो मनोवृष्ण 107.8 एफएम के स्टूडियो में।
1: थैंक यू भावना, थैंक यू सो मच फॉर सच अ नाइस इंट्रोडक्शन।
0: कविता जी, सबसे पहला सवाल, विन ओवर कैंसर, यानी डेफिनेटली आपका जो एनजीओ है ये कैंसर के लिए काम करता है, मुझे बताइए इसका ओरिजिन और इसके ओरिजिन के पीछे का कारण क्या रहा?
1: इसके ओरिजिन के पीछे मेरे हस्बैंड थे, सीए अरुण गुप्ता, और ये उनका ही इनिशिएटिव था। जब उन्हें खुद कैंसर डायग्नोज हुआ
0: जी,
1: तब उन्होंने और कैंसर पेशेंट से बात करनी शुरू करी, और उन्होंने देखा कि बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो कॉमन है कैंसर पेशेंट्स में। तो उन्होंने एक जज्बा दिखाया कि नहीं, मुझे सिर्फ अपने लिए नहीं काम करना है, मुझे और पेशेंट्स की भी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। और इस एनजीओ का जन्म मैं कहूँगी एक हॉस्पिटल रूम से हुआ, जहाँ पे उनको खुद कीमो लग रही थी, और वहीं से हमने ये काम करना स्टार्ट करा। सबसे पहले हमने देखा कि क्या कॉमन प्रॉब्लम्स आ रही हैं कैंसर पेशेंट्स को, हम उनकी किस तरह से मदद कर सकते हैं, हम किस तरह से कैंसर के बारे में जागरूकता फैला सकते हैं। तो इस एनजीओ की जो शुरुआत है वो 2015 में हुई, और जिस समय मेरे हस्बैंड अपने, जिसे कह सकते हैं, वर्स्ट कीमोज ले रहे थे उस टाइम पर
0: जी।
1: जब लोग अपना जज्बा छोड़ देते हैं, उस टाइम पे ना सिर्फ हमने अपना जज्बा संभाला, हमने प्रेरणा दी और कैंसर पेशेंट्स को भी उससे लड़ने के लिए।
0: देखिए भाई, दिल को छूने वाली कहानी। जैसे अगर आप देखें, अक्सर लोगों को अगर किसी भी जटिल या फिर ऐसी बीमारी होती है जिसे हम जानलेवा कहते हैं, ऐसी बीमारी होने पर लोग ये नहीं सोचते हैं कि चलिए मैं औरों की जान बचा लूं, हर इंसान ये सोचता है चलिए अपनी पीड़ा कम कर लेते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर मानवता कूट कूट कर भरी होती है, और शायद कुछ ऐसे ही, मुझे ऐसा लगता है कि खास लेजेंडरी अरुण जी रहे, जिन्होंने शुरुआत की विन ओवर कैंसर की, यानी खुद तो एक बहुत ही जटिल लड़ाई वो लड़ रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने बहुत सारे लोगों की जान बचाने की कोशिश की, और उनके इस सपने को आगे लेकर जा रही है ना सिर्फ उनकी पत्नी कविता गुप्ता जी, लेकिन साथ के साथ उनकी दो बड़ी प्यारी बच्चियां भी। कविता जी, ये तो मैंने लोगों को बताया कि आप अलग किस्म की ब्रेस्ट प्रोथेसिस और ब्रास बनाती हैं उन सभी महिलाओं के लिए जिन महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरी हो चुकी होती है और उनके ब्रेस्ट का रिमूवल हो चुका होता है। अब मुझे बताइए कि आप कैंसर पेशेंट्स की मदद कैसे करती हैं?
1: सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जो मैंने प्रोस्थेसिस इजाद किया, इसके पीछे की कहानी बहुत दिलचस्प है।
0: जी।
1: जब मेरे हस्बैंड के कीमोस चल रहे थे 2016 में, उस टाइम पर उनका इलाज कर रहे थे डॉक्टर सुमन
0: जी।
1: एक दिन उन्होंने मुझे बोला कि मैम, आप लोग एनजीओ चला रहे हो तो आप मेरे ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स जो हैं, जो गरीब तबके से हैं, उनको ये प्रोस्थेटिक ब्रा सर्जरी के बाद नहीं मिलता है पहनने के लिए, क्योंकि ये किसी भी पैनल में नहीं आता है, ये कोई भी इंश्योरेंस कंपनी नहीं करती है और वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो आप प्लीज़ इनको कहीं से डोनेट करवाइए। तो वो मैंने उस टाइम पर, मुझे खुद नहीं पता था कि प्रोस्थेटिक ब्रा क्या होती है, पहले मैंने इंटरनेट की मदद से खुद समझा कि ये क्या होती है, इसकी क्या ज़रूरत है। फिर मैंने उस समय, क्योंकि हमारा इसमें कोई भी नॉलेज नहीं थी, कोई एक्सपीरियंस नहीं था, तो मैंने एक और एनजीओ से वो ब्रा एक पेशेंट को दिलवाई, जो कि डॉक्टर साहब ने उसको बहुत नकारा, मुझे गुस्सा किया कि मैम ये फोम की बनी हुई है और ये पेशेंट्स को और ज़्यादा नुकसान करेगा, हीट होगी, बैक्टीरिया पनपेगा, स्वेट होगा, फ़ायदा करने की बजाय नुकसान देगा। साथ में उन्होंने मुझे समझाया कि ये सिर्फ हम सोचते हैं कि औरतों के लिए कॉस्मेटिक यूज़ है, कि सिर्फ उनको लगे ना कि हमारी एक ब्रेस्ट नहीं है दूसरी, एक कॉस्मेटिक बाहरी सुंदरता के लिए, जबकि इसका एक मेडिकल यूज भी है। इसके अंदर थोड़ा वेट होना चाहिए, जिससे कि जो बॉडी में हमारे दोनों तरफ भगवान ने वेट इक्वल दिया है, जब हम एक लेडी की ब्रेस्ट रिमूव कर देते हैं तो बॉडी की एक तरफ से उसका थोड़ा वेट भी हट जाता है। तो इस वजह से लॉन्ग रन में जाके उसको लेडी को कंधे में दर्द रहने लग जाएगा, उसके कमर में दर्द रहने लगेगा धीरे धीरे, और बहुत केसेस में लॉन्ग टर्म में स्पाइन तक टेढ़ी होने लग जाती है। तो इसके, ये इसका मेडिकल यूज है और ये जरूरी है पेशेंट्स को पहननी। तब मैंने ये सब चीज़ समझ के मैंने उनसे प्रश्न किया कि सर फिर हम क्या कर सकते हैं इस चीज़ के। तो उन्होंने बोला आप खुद सोच लो, आप खाली बैठे रहते हो यहाँ हॉस्पिटल में सारा दिन, और वो चीज़ मेरे को कहीं ना कहीं छू गई। और सबसे पहले मैंने जो ओपीडी में और ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स आते थे जो हॉस्पिटल में एडमिट, मैंने उनसे बात करनी शुरू करी, तो पता चला कि इस चीज़ की नीड इतनी ज़्यादा है कि एक लेडी के लिए अपनी ब्रेस्ट का खोना और ज़्यादा शॉकिंग होता है कैंसर से डायग्नोज होने के।
0: बाप रे,
1: कहती हैं कि कैंसर से तो मुझे पता है मैं ठीक हो जाऊंगी, डॉक्टर ठीक कर देंगे, पर मेरी ब्रेस्ट तो नहीं वापस आएगी, मैं कभी सुंदर तो नहीं लगूंगी।
0: ओह माय गॉड,
1: तो वो चीज़ मुझे कहीं ना कहीं छू गई। मैंने कहा क्या कर सकती हूँ, क्या सोच सकती हूँ। मुझे दिमाग में आया कि इंडिया में हम कॉटन फैब्रिक यूज़ करते हैं सबसे ज़्यादा, क्योंकि कॉटन अपने आप में एंटी माइक्रोबल होता है, तो क्यों ना मैं उससे कुछ करूँ। और बस वहीं से वो शुरुआत हुई, और मैं कुछ प्रोटोटाइप बनाती थी घर पे कॉटन फैब्रिक्स को यूज़ करके, फिर डॉक्टर सुमंत को दिखाती, फिर वो मुझे फीडबैक देते थे कि इसमें अब आप सॉफ्टनेस लेकर आओ, इसमें इस तरह से यूज़ हो। तो 6-8 महीने में मेरा प्रोडक्ट तैयार हो गया, और दिसंबर 2016 से हमने ये प्रोस्थेटिक ब्रा जो है सबसे पहले एम्स में फ्री बांटनी स्टार्ट करी
0: जी।
1: और तब से आज तक हम 10,000 पेशेंट्स को ये बांट चुके हैं, कितनी सारी महिलाओं को। और हम हर साल एक फीडबैक लेते हैं जिसमें पता चलता है कि कितनी खुश हैं वो औरतें ये पाकर, कितनों ने घर से बाहर जाना शुरू कर दिया, कईयों ने अपनी नौकरी वापस ज्वाइन कर ली है
0: जी।
1: इसकी वजह से बहुत सारी लेडीज ऐसी थी कि जिन्होंने मतलब उनको शर्म आती थी अपने बेटे अपने और रिलेटिव्स के सामने जाने में, वो अब बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रही हैं सब तरह। तो ये देख के एक बहुत दिल को राहत मिलती है एक बहुत ज़्यादा, कि हाँ एक मैंने कुछ ऐसा इजाद किया जो आज हज़ारों हज़ारों महिलाओं को मदद कर रहा है।
0: वाकई देखिए, एक तरफ तो मेडिकल ट्रीटमेंट जो ढेर सारे ऑन्कोलॉजिस्ट करते ही हैं, लेकिन अगर हम इमोशनल सपोर्ट की बात करें या उस चीज़ की बात करें जो शायद एक महिला की पहचान होती है, उनके स्तन, और अगर वो स्तन ही रिमूव कर दिया जाए तो ना वो तरीके से कपड़े पहन सकती हैं, क्योंकि क्या सारी कैंसर की जितनी भी पेशेंट्स हैं उन महिलाओं के लिए अलग कपड़े डिज़ाइन किए जाएंगे। और ये एक बहुत चैलेंजिंग कंडीशन है जहाँ आप अपने जीवन के काफ़ी साल स्तन के साथ होते हैं और सडनली वो रिमूव कर दिया जाता है, तो आप एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। लेकिन उन्हें वो कॉन्फिडेंस वापस देने की कोशिश कर रही हैं कविता गुप्ता जी। सो अब बात करते हैं कविता जी, आपकी इस पूरी टीम की। एक तरफ तो आपको ये ख्याल आए कि चलिए भाई महिलाओं के लिए स्तन बहुत जरूरी है और उनके लिए ब्रेस्ट प्रोस्थेसिस लिया जाए, और उसी के साथ साथ उनके लिए इस प्रकार की ब्रास बनाई जाए जिससे कि वो उन्हें पहन सके। बट ये काम बिल्कुल आसान नहीं होगा। घर पर 6 महीने में आपने जब एक प्रोडक्ट डेवलप किया तो उसको इतने सारे लोगों के लिए डेवलप करना बड़ा मुश्किल हुआ होगा। सो कैसे शुरुआत की, कैसे है आपकी टीम और कैसे कर पाती हैं ये काम?
1: मेरी टीम में आज मैं बहुत गर्व के साथ कह सकती हूँ कि मेरी टीम में 99% लेडीज हैं
0: जी।
1: उसमें से मोस्टली अंडर प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से है। एक रूरल हरियाणा के गांव में हमने अपनी वर्कशॉप लगाई है जहाँ पर 5 से ज्यादा लेडीज आज की डेट में काम करती हैं, ये ब्रेस्ट प्रोस्थेसिस बनाती हैं वहाँ पर
0: जी।
1: और उनके अंदर भी मैं चेंज देख रही हूँ, पिछले 5 साल में कितना सशक्त हुई है वो, अपने ही फैमिली में अपने बच्चों को और अच्छी एजुकेशन दे पा रही हैं, अपनी फैमिली को और अच्छे से सपोर्ट कर पा रही हैं। साथ में हमारी जो बैक ऑफिस टीम है उसके अंदर 2 ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर्स हैं जिन्होंने हमारे से ही ब्रेस्ट प्रोस्थेसिस लिया और फिर उन्होंने रुचि दिखाई कि मैम हम आपके साथ काम करना चाहते हैं, आप हमें काम दीजिए। तो उनमें से 2 जो अब वो आज खुद उस स्थिति से ऊपर आकर और अब वो खुद और पेशेंट्स की काउंसलिंग करती हैं साथ में, तो ये सब चेंजेस देख के ना मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। मतलब रियल हैप्पीनेस जो है ना, वो हैप्पीनेस इज इन गिविंग एंड एम्पावरिंग अदर वुमेन।
0: एक्चुअली भाई देखिए, कहीं ना कहीं मैं ये डेफिनेटली मानती हूँ कि जब आप कोई भी अच्छा कदम उठाते हैं और कोई भी अच्छा या नेक काम करने की राह पर चलते हैं तो आपको बहुत सारे हेल्पिंग हैंड्स मिलते हैं, लेकिन वो जो डगर होती है ना, वो डगर होती बड़ी मुश्किल भरी है और उन चैलेंजेस को फेस करना आसान नहीं होता है। लेकिन हिम्मत अगर आपके अंदर है तो आप उस हिम्मत के साथ उस डगर को पार कर जाते हैं। भाई कैंसर के लिए बहुत सारी संस्थाएं काम कर रही हैं, लेकिन जिस तरीके से कैंसर फैल रहा है मुझे ऐसा लगता है शायद जितनी संस्थाएं खुली हैं उतनी भी कम है। सबसे पहली परेशानी ये है कि आज भी लैक ऑफ अवेयरनेस है कैंसर को लेकर। लोगों को पता ही नहीं है जो रोजमर्रा की गलतियां वो कर रही हैं, उन रोजमर्रा की गलती से वो एक दिन कैंसर का शिकार हो सकते हैं। सो एक तरफ तो ये जरूरी है कि ये अवेयरनेस लोगों तक पहुंचे, तो आप लोग कैंसर पेशेंट्स को अवेयरनेस भी देते हैं और साथ के साथ उनके लिए बहुत तरीके की मदद भी करने की कोशिश करते हैं। कैसे करती हैं ये सब आप?
1: कैंसर अवेयरनेस देखिए कैंसर पेशेंट से ज्यादा पूरी सोसाइटी में होनी बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो एक मिथ मिटाना जरूरी है कि कैंसर एक लाइलाज बीमारी है
0: जी।
1: उससे पहले एक मिथ ये है कि कैंसर एक बीमारी नहीं है
0: जी।
1: कैंसर 250 से ज्यादा तरीके की बीमारियां हैं जिसका डॉक्टर इलाज करता है एक तरीके से, और उसको हम एक ग्रुप ऑफ डिजीज बोल सकते हैं जो एक से तरीके की जो सेल की मैग्नेंसी से
0: जी
1: होती है वो कैंसर कहलाया जाता है ठीक। पर जब हम देखते हैं तो कैंसर के प्रकार बहुत होते हैं, जैसे अगर हम मोटा मोटी देखें तो ब्लड कैंसर हो गया
0: जी,
1: सॉलिड ट्यूमर्स वाला हो गया जिसे हम कार्सिनोमास बोलते हैं, और मसल वाला हो गया जिसको हम सार्कोमास बोलते हैं
0: जी।
1: तो ये तो जब अगर कोई भी किसी को मान लीजिए आज कैंसर होता है तो वो अपनी तुलना किसी और कैंसर पेशेंट से ना करे, क्योंकि आपका कैंसर उसके कैंसर से अलग हो सकता है।
0: yes.
1: जैसे मेरी स्पेशलिटी मैं कहूंगी ब्रेस्ट कैंसर में
0: जी।
1: तो मैं ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स को भी यही समझाती हूँ कि आपकी और उनकी जर्नी सेम हो सकती है, पर सेम दवाई आपको क्या रिएक्ट करेगी और दूसरे को क्या रिएक्ट करेगी वो अलग हो सकता है, क्योंकि आपका जेनेटिक स्ट्रक्चर आपकी बॉडी अलग है और उनकी बॉडी अलग है
0: जी।
1: तो हमें ये अवेयरनेस फैलानी बहुत जरूरी है कि सारे कैंसर पेशेंट्स एक जैसे नहीं होते हैं।
0: यस,
1: बहुत आज कैंसर का ट्रीटमेंट जो है वो बहुत नई नई तकनीकें ईजाद हो गई हैं और लाइलाज बीमारी ये नहीं रही है। तो कैंसर इज डेथ ये वाली मिथ सोसाइटी से निकालनी बहुत जरूरी है
0: जी।
1: साथ में एक कैंसर अवेयरनेस जो कि गवर्नमेंट भी कर रही है टोबैको सिगरेट के पैकेट्स पे दिखा के, वो तो है ही है, साथ में अपने लाइफस्टाइल को हम सुधार के भी कैंसर से बच सकते हैं
0: जी।
1: एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल आजकल हम जी रहे हैं, अपने खान पान को सुधार के हम कैंसर से जी सकते हैं। दूसरा मैं एक क्योंकि ये अक्टूबर है ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ है, तो ये अवेयरनेस सिर्फ इस मंथ तक नहीं सीमित रहनी चाहिए। मैं बहुत सारे अवेयरनेस टॉक्स लेती हूँ, बहुत सारे वर्कशॉप्स लेती हूँ जहाँ सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन सिखाया जाता है
0: जी।
1: और मैं सबको यही बोलती हूँ कि ये अक्टूबर में ना कराएं, आप पूरे साल कराएं प्लीज, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर एक इस तरीके का कैंसर है जो शुरुआती लक्षणों में हम पकड़ सकते हैं, और अगर शुरुआती लक्षणों में हमने इसे पकड़ लिया तो उससे जान बचाई जा सकती है, ब्रेस्ट बचाई जा सकती
0: yes.
1: है, उससे जो है आपका इलाज बहुत आसान हो सकता है
0: जी।
1: आज के अगर हम सिनेरियो देखें तो इंडिया में हर 8 में से एक विमेन हाई रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर
0: yes.
1: तो एक सिर्फ पूरे महीने में आपको एक मिनट देना है अपने आप को सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करने में, जिससे आप ब्रेस्ट कैंसर के शुरुआती लक्षणों को पकड़ सकते हैं और डॉक्टर के पास जाके एक बार कंफर्म कर सकते हैं कि मेरे को ये लक्षण आ रहा है, प्लीज़ आप चेक करो कहीं मुझे ब्रेस्ट कैंसर तो नहीं हुआ।
0: Yes.
1: और 90% टाइम वो जो गांठ है या कोई लक्षण है वो आपके हार्मोनल चेंजेस से भी हो सकते हैं
0: जी।
1: पर वो जो 10% चांस है हमें वो नहीं छोड़ना है।
0: yes.
1: क्योंकि इतने सारे आज मैं हजारों ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स के साथ इंटरेक्ट कर चुकी हूँ, और जो एक चीज कॉमनली निकल के आती है वो यही निकल के आती है कि ट्रॉमा ऑफ लूजिंग द ब्रेस्ट वॉज मोर देन ऑफ ट्रॉमा बींग डायग्नोस्ड विद कैंसर। तो मैं नहीं चाहती कि कोई भी लेडी इस ट्रॉमा से गुजरे, उसके लिए उसको अपने आप को पूरे महीने में सिर्फ एक मिनट देना है।
0: दोस्तों जब कभी भी हम अवेयरनेस की बात करते हैं ना, तो बीमारी को लेकर हमारी एक ही सोच होती है कि ये हमें नहीं होगी, ये तो किसी और को होगी। और जब कभी भी हम ये सोचते हैं ना, हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि बीमारी कभी भी दस्तक देकर तो नहीं आती है, और ना ही वो पिक एंड चूज कर रही है। कहीं ना कहीं आपको भी देखना है कि जिस प्रकार से पोल्यूशन बढ़ रहा है, जिस प्रकार से हम ऐसी लाइफस्टाइल्स जी रहे हैं जो शायद हेक्टिक जरूर कहलाती है, लेकिन डिजीज के मायने में ये लाइफस्टाइल जो है ये बहुत घातक है। और हम एक लंबे अरसे तक इस लाइफस्टाइल को तब तक अपनाए रखते हैं जब तक हमें किसी बीमारी का सामना नहीं करना पड़ता है। सो जरूरी है कि वक्त रहते एक्शन जरूर लें। बहुत सारी जगह आपने देखा होगा मेमोग्राफी कैंप्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, महिलाएं झिझक के कारण नहीं जाती हैं। सभी महिलाओं से रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपकी सोसाइटी में, आपकी मार्केट्स में, आपके घर के आसपास या आपके ऑफिशियल एरिया में कहीं पर भी अगर इस प्रकार के कैंप्स ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं तो मात्र 10 मिनट का टाइम लगेगा, आप जाइए और अपना चेकअप जरूर कराइए और निश्चिंत हो जाइए। कविता जी, अब एक अहम सवाल, जब कभी भी हम कैंसर पेशेंट की बात करते हैं, देखिए वो कैंसर पेशेंट तो एक अलग ही लड़ाई लड़ रहा होता है, लेकिन उसके साथ का जो परिवार होता है उसका

0: वो शायद कहना चाहिए मेंटल हेल्थ का बैलेंस है वो बिगड़ चुका होता है। आप तो इस जंग को लड़ चुकी हैं और अब इतना धैर्य आप में है कि आप बहुतों को इस जंग से लड़ने की हिम्मत दे रही हैं। छोटे छोटे बच्चे जिनके पेरेंट्स को कैंसर हो जाता है, या फिर कहना चाहिए ऐसी पत्नियां या पति जिनकी पत्नियों को कैंसर हो जाता है, उनके लिए लाइफ डगमगा सी जाती है। किस प्रकार से उन्हें इस प्रकार की अवेयरनेस दी जाए, या उन्हें आप कैसे मैनेज करती हैं कि उन्हें यह समझाया जाए कि कैंसर के इलाज के दौरान एक पेशेंट को किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है?
1: देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। एक हम बहुत अच्छी लाइन कहते हैं कि कैंसर डजंट हैपन टू अ पर्सन, इट हैपन्स टू द फैमिली।
0: यस,
1: ये पूरी फैमिली को मिलके से लड़ना चाहिए। जब मेरे हस्बैंड को कैंसर हुआ तो एक शॉकिंग न्यूज़ थी,
0: बिल्कुल,
1: और दोनों बेटियां बहुत छोटी थी उस टाइम, उन तक इस न्यूज़ को पहुंचाना और ज़्यादा मुश्किल था।
0: यस,
1: बट हमने बैठ के उनसे बात करी, उन्हें सब कुछ बताया कि बेटा ऐसा ऐसा है। पर उसके साथ मेरे हस्बैंड ने एक बहुत अच्छी चीज़ बताई कि बेटा जो हो गया वो हो गया, हम ये लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन जो हमारी नॉर्मल लाइफ है वो वैसे ही जारी रहनी चाहिए
0: जी।
1: उसमें कहीं कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। तुम जिस तरह से स्कूल कॉलेज जाते हो वैसे जाओ, जैसे फ्रेंड्स के साथ जाते हो वैसे जाओ, जिस तरह से तुमने उस दौरान, हम मेरे दो कजन्स की शादी थी, बच्चों ने वो अच्छे से इंजॉय करी, तो उस चीज का जो इम्पैक्ट था वो मेरे हस्बैंड पे भी बहुत अच्छे से आया। उनको कहीं भी इस गिल्ट में हमने आने नहीं दिया कि आपकी वजह से हमारी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो गई।
0: यस yes.
1: तो ये तो हो गया कि हम पेशेंट को किस तरह से, फिर केयर गिवर जो होता है, मैं कहती हूँ वो दोहरी लड़ाई लड़ता है
0: एक्चुअली।
1: पेशेंट फिजिकली कैंसर से लड़ रहा है तो जो केयर गिवर है वो भी उतना ही इमोशनली और मेंटली उस लड़ाई से लड़ रहा है। साथ में उसको अब और भी काम देखने हैं
0: yes.
1: जो आपका पार्टनर या वो भी, और अगर मान लीजिए वो पेशेंट आपका बच्चा है तो माँ बाप के लिए वो और भी मुश्किल हो जाती है लड़ाई
0: जी।
1: तो उस समय सिर्फ खाली, आजकल हम एक काम करते हैं, एक नए डॉक्टर्स उभर के हैं, साइको ऑनकोलॉजिस्ट
0: जी,
1: तो वो ना सिर्फ पेशेंट्स की काउंसलिंग करते हैं, वो केयर गिवर्स की भी काउंसलिंग करते हैं। हम जो अपने सपोर्ट ग्रुप मीटिंग्स करते हैं जहाँ पे हम पेशेंट्स को आपस में मिलवाते हैं, वहाँ हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपने मेन जो आपका जो प्राइमरी केयर गिवर है उसको भी साथ में लेकर आइए, क्योंकि जब लोग आपस में एक दूसरे से बात करते हैं, एक जैसे लोग बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक उनको बहुत राहत मिलती है कि ये लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं है
0: yes.
1: कोई और भी है इसमें जो ऐसी लड़ाई लड़ रहा है, और कहीं ना कहीं कुछ ऐसी टिप्स शेयर होती हैं आपस में जो जिसे कहते हैं ना नॉलेज का आदान प्रदान होना
0: yes.
1: और वो नॉलेज आपकी एकेडमिक नॉलेज नहीं होती, वो एक इमोशनल नॉलेज होती है
0: एक्चुअली।
1: और तो इसलिए ये सपोर्ट ग्रुप मीटिंग्स बहुत जरूरी हैं फॉर द इमोशनल हेल्थ ऑफ केयर गिवर्स एंड द पेशेंट्स एज वेल बोथ।
0: दोस्तों, जब कभी भी मैं किसी भी ऐसी बीमारी की बात करती हूँ ना जिससे आपको जान गंवाने का डर बना रहता है, सो एक चीज हमेशा होती है कि आसपास के लोगों को ना जिस दिन वो बीमारी डायग्नोज की जाती है उस दिन से एक अजीब सा डर और खौफ मन में समा जाता है, और वो खौफ होता है न जाने कितना समय है। एंड बिलीव यू मी, बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनका कैंसर डिटेक्ट ही तब होता है जब वो थर्ड स्टेज पर होता है या फोर्थ स्टेज पर होता है, और तब उसके बाद जब डॉक्टर्स ये कहते हैं कि बहुत कम समय बचा है, काश आप पहले आते तो ये ठीक हो पाते, तो तब ऐसा लगता है कि काश हमने इसे जल्दी डायग्नोस करवा लिया होता। लेकिन अर्ली डायग्नोस तभी पॉसिबल है जब आप अपने रेगुलर चेकअप्स करवाएं, जो हमारे भारत में, या मुझे कहना चाहिए कि हमारे समाज में, बहुत ही अनकॉमन चीज़ है। हम बहुत बड़ी अमाउंट को बाकी सारी चीज़ों पर खर्च कर देते हैं, लेकिन अपने हेल्थ चेकअप्स पर हम उन पैसों को कभी खर्च नहीं करते हैं, ये सोचते हुए कि ये जो चेकअप्स हैं ये व्यर्थ का कॉस्ट है। सो कैंसर जैसी बीमारी से बहुत अर्ली स्टेज पर डिटेक्ट होने से आप बड़ी आसानी से बड़ा ही नॉर्मल जीवन जी सकते हैं और आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं, लेकिन आपके पास ये अवेयरनेस या ये नॉलेज होनी चाहिए। कविता जी, अब बात करते हैं फाइनेंसिस की। एनजीओ तो चलते हैं, काम भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन सबसे बड़ी जरूरत है कि जब आप खुद स्ट्रगल कर रही हैं, अब तो आपकी लाइवलीहुड भी आपके ऊपर है, दो बेटियों की जिम्मेदारी आप पर है, और उसके बाद बहुत सारे कैंसर पेशेंट्स को आप सपोर्ट करवा रही हैं, चाहे फिर वो ब्लड कैंसर के पेशेंट्स हैं, और बहुत सारी महिलाओं को आप इस प्रकार की जो प्रोस्थेसिस है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दे पा रही हैं, सो कैसे मैनेज करती हैं आप ये?
1: देखिए, इसके अंदर सबसे जो कहूंगी कंट्रीब्यूशन सबसे बड़ा है वो CSRs का है
0: जी।
1: बहुत सारी कंपनीज हमें अपने CSR इनिशिएटिव के अंडर सपोर्ट कर रही हैं, साथ में बहुत सारी फंडिंग, इंडिविजुअल फंडिंग जिसको हम बोलते हैं
0: जी।
1: बहुत सारी फैमिली मेंबर्स मेरे ऐसे हैं जो रेगुलर डोनेट करते हैं, फ्रेंड्स हैं ऐसे जो रेगुलर डोनेट करते हैं, और कुछ फंड रेजिंग प्रोग्राम्स हम किस तरह से चलाते हैं। पर हाँ, मैं ये कहूंगी कैंसर NGO होने के नाते हमेशा एक फंड क्रंच बना रहता है, क्योंकि फंडिंग आती है उसी समय चली जाती है, क्योंकि कैंसर का इलाज थोड़ा महंगा है
0: जी,
1: आप कह सकते हैं तो। पर हाँ, भगवान की दया से बना हुआ है, आज हमें 5 साल हो गए और हर साल हम जितने पेशेंट्स को ये ब्रास बांट पाते हैं वो नंबर बढ़ता ही जा रहा है। पहले हम सिर्फ दिल्ली NCR में बांट रहे थे, आज हम टाटा मेमोरियल बॉम्बे में भी बांट रहे हैं, CMC वेल्लोर में भी बांट रहे हैं। तो इस तरह से वर्ड ऑफ माउथ से चीज़ें बढ़ रही हैं, और फंडिंग भी बस उतनी ही चाहिए ही भी होगी आगे। तो मैं सबसे गुजारिश करूंगी, अगर कोई डोनेट करना चाहता है हमें तो हमारी वेबसाइट पे जाके डोनेट कर सकता है।
0: दोस्तों वाकई मतलब देखिए, जब कभी भी मैं किसी भी NGO से पूछती हूँ कि आप नेकी का काम करने तो चले हैं, लेकिन नेकी आप अपने घर से ही कितने दिनों तक कर सकते हैं, जो अपने आप में एक चैलेंज है, लेकिन डेफिनेटली इसमें बहुत सारे लोगों की जरूरत होती है और वो लोग हम बन सकते हैं। कविता जी, अब मुझे बताइए, मान लीजिए कि कोई आपके साथ वॉलंटियर करना चाहता है, बहुत सारी महिलाएं आपको सुन रही हैं, कोई आपके साथ एसोसिएट होना चाहता है और साथ के साथ मान लीजिए कि कोई कंट्रीब्यूट करना चाहता है, तो क्या तीनों प्रोविजंस में वो आपके साथ जुड़ सकते हैं, और अगर हाँ तो कैसे?
1: हाँ, आप अगर किसी कैंसर पेशेंट्स की मदद करना चाहते हैं, और मदद सिर्फ फाइनेंशियली नहीं होती
0: जी,
1: आप अपना समय भी देख के आप टाइम डोनेट कर सकते हैं अपना, उसके लिए हमारी वेबसाइट है www.winovercancer.net, उस पर जाके एक वॉलंटियर फॉर्म है, आप वो भर सकते हैं, या फिर आप हमें डायरेक्टली मेल कर सकते हैं winovercancer.net@gmail.com पे। और अगर आप हमारे को कोई फाइनेंशियल डोनेशन देना चाहते हैं तो उसका लिंक भी अवेलेबल है हमारी वेबसाइट के ऊपर www.winovercancer.net पे। तो जो डोनेशन होती है वो सिर्फ फाइनेंशियल डोनेशन नहीं होती, टाइम डोनेट करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है जितना फाइनेंशियल डोनेशन।
0: जिस प्रकार से हम महिलाओं की अवेयरनेस की बात कर रहे हैं, साथ के साथ समाज के अवेयरनेस की बात कर रहे हैं, तो क्या इस प्रकार के अवेयरनेस कैंपेन्स भी आप चलाती हैं, और क्या इसमें भी लोग कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं?
1: हाँ जी, मैं

0: वाकई हम सब इनकी मदद कर सकते हैं और मैं आप सभी से पर्सनल अपील करूंगी कि ये मदद का हाथ आगे बढ़ाइए। विन ओवर कैंसर एक बहुत ही खास फाउंडेशन है, एक बहुत ही खास संस्था है जो न सिर्फ कैंसर पेशेंट्स की मदद कर रही है लेकिन बहुत सारी ब्रेस्ट कैंसर की महिलाओं को इस प्रकार का जीवन दान दे रही है जो जीवन दान उन्हें हमेशा चाहिए। दवाइयों से वो अपने कैंसर को तो जीत पाती हैं लेकिन एक बार उनका ब्रेस्ट चला जाता है तो एक अजीब किस्म का जिंदगी में खालीपन आ जाता है, उनकी पर्सनालिटी में खालीपन आ जाता है जिसको भरने की कोशिश कर रही हैं कविता गुप्ता जी। और देखिए भाई, मैं हमेशा ये कहती हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपने दुख से ऊपर उठकर लोगों के दुख को समझें, जो कविता जी ने बखूबी समझा है। कविता जी, आज इस प्लेटफॉर्म से मैं चाहती हूँ जिस चीज को शायद आप हर रोज अपने अवेयरनेस सेशन में या लोगों को बताने की कोशिश करती हैं, कुछ बेसिक मिथ्स जो महिलाएं ब्रेस्ट कैंसर को लेकर रखती हैं, क्या आप उन्हें आज इस प्लेटफॉर्म से बस्ट करना चाहेंगी और उन्हें डूज और डोंट्स बताना चाहेंगी?
1: देखिए, सबसे पहले मैं तो आपको कहूंगी कि जो भी इंफॉर्मेशन हमें व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पे मिल रही है उसको एक बार क्रॉस चेक जरूर करिए
0: जी,
1: किसी भी ऑन्कोलॉजिस्ट के साथ
0: जी।
1: ठीक है, तो एक बहुत बड़ा मिथ जो फैल रहा है वो है कि ब्लैक ब्रा पहनने से
0: ब्रेस्ट
1: कैंसर हो जाता है, जो बिल्कुल गलत है। अंडरवायर ब्रा पहनने से ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है, जो बिल्कुल गलत है। आपको बहुत सारी लेडीज को गांठ पता चल जाती है पर वो उसको चेक नहीं कराती ये सोच के कि इसमें दर्द नहीं है। 90% टाइम्स जो कैंसर की गांठ होती है उसमें दर्द नहीं होता है
0: जी।
1: तो ये सोच के किसी भी लंप को, किसी गांठ को नजरअंदाज ना करें कि उसके अंदर दर्द तो हो नहीं रहा है, कोई बात नहीं
0: जी।
1: फिर एक और जो बहुत बड़ा मिथ है वो ये है कि हम किसी प्रकार की बायोप्सी या FNAC जो एक टेस्ट होता है, नीडल वाला जो टेस्ट होता है, वो करवाएंगे तो हमारा कैंसर फैल जाएगा
0: जी।
1: ऐसा कुछ नहीं होता है, कैंसर इस तरह से नहीं फैलता है। अगर वो फैला होगा तो वो पहले से ही फैल चुका होगा आपके। तो इस तरीके की जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिलती हैं सोशल मीडिया के थ्रू, उसको प्लीज एक बार किसी डॉक्टर के साथ डिस्कस कर ले कि भाई हमने ये कहीं पे पढ़ा है या सुना है तो ये सही है कि नहीं है। डीओज लगाने से कैंसर हो जाता है। फिर एक बहुत बड़ा मिथ आजकल चल रहा है कि चीनी खाने से कैंसर हो जाता है।
0: Oh my God.
1: चीनी खाने से तो बहुत सारी बीमारी हो जाती है क्योंकि हम ओबीज हो जाते हैं।
0: Yes.
1: तो चीनी कोई कैंसर पेशेंट्स का खाना नहीं है चीनी।
0: Exactly.
1: कि कैंसर सेल को उसके ऊपर ही फीड करना है, ऐसा नहीं है। कैंसर सेल तो अपने आप ही बढ़ते हैं। तो प्लीज ये ना सोचे कि चीनी बंद कर देंगे तो हमें कैंसर नहीं होगा। चीनी का और कैंसर का, चीनी और ओबेसिटी का डायरेक्ट है नाता, पर चीनी और कैंसर का डायरेक्ट कोई नाता नहीं है। तो इस तरीके के बहुत सारे मिथ्स हैं जो चल रहे हैं, तो उनको बस्ट एक डॉक्टर ही कर सकता है, मैं तो कहूंगी।
0: वाकई, और मुझे ऐसा लगता है कि कविता जी, जब आप इन सेशंस को लेने जाती होंगी अवेयरनेस, आपको बड़ा कई बार आश्चर्य होता होगा कि लोग न जाने किन चीजों पर विश्वास कर लेते हैं और डॉक्टर्स बेचारे जो इतनी अच्छी सलाह आपको देने की कोशिश कर रहे हैं आप उनकी बात ही नहीं सुनते हैं। तो बहुत सारी मिथ्स हैं। देखिए, वाकई महिलाओं को तो मैं जरूर कहूंगी रात भर अगर आप ब्रा पहनकर सो रहे हैं तो आपको कैंसर हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। इसी प्रकार अंडरवायर ब्राज अगर आप पहन रहे हैं या फिर काले रंग की ब्रा पहन रहे हैं, देखिए हर चीज का सिर्फ एक डायरेक्ट नाता नहीं है। हाँ, अगर आप हर रोज काला पहन रहे हैं, आप सन से एक्सपोज्ड हैं, सो उसके दूसरे कारण हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कैंसर से पीड़ित हो जाएंगे। सो जानकारी सही लीजिए और जरूरी है कि डॉक्टरी सलाह लेते रहे। तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूंगी कविता जी, आज आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने हमारे सभी लिसनर्स को इतनी बेहतरीन जानकारी दी। जाते जाते क्या खास संदेश आप देकर जाना चाहेंगे इन सभी लिसनर्स को?
1: एक खास संदेश मैं देना चाहूंगी कि एक लाइन बहुत फेमस है कि जॉय ऑफ गिविंग
0: जी,
1: और मैं कहती हूँ कि इट्स द पावर ऑफ गिविंग। मैंने जब ये काम स्टार्ट करा वो शायद मेरी लाइफ का वर्स्ट पीरियड था
0: जी।
1: मेरे हस्बैंड कैंसर से जूझ रहे थे, उनका कैंसर का बहुत रिग्रेस ट्रीटमेंट चल रहा था जिससे कि वो काफी बीमार रहते थे, और उस टाइम पे मैंने ये काम शुरू करा। और जब मैं एक एक पैकेट प्रोस्थेटिक ब्रा का, जिसको हम डिग्निटी पैक बोलते हैं
0: जी,
1: मैं खुद एम्स जाती थी उस टाइम पर और बांटती थी, और जब मैं एक एक पैकेट अपने हाथ से देती थी तो मुझे एक पावर महसूस होती थी। वो पावर क्यों महसूस होती थी कि मैं हर समय ये सोचती थी कि मैं कितनी ब्लेस्ड हूँ।
0: Yes.
1: मेरे पास फाइनेंसेस हैं हस्बैंड का इलाज कराने के लिए, मेरे पास नॉलेज है कि उनका क्या ट्रीटमेंट चल रहा है। जो यहाँ पर आ रही हैं ये लेडीज, इनको कोई नॉलेज नहीं है, इनके पास इस तरीके के कोई भी साधन नहीं है कि ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आराम से इलाज करा।

0: तो वो चीजें देख के मुझे खुद अपनी प्रॉब्लम से लड़ने के लिए एक अलग शक्ति मिलती थी. तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि आई ऑलवेज फाइंड द पावर इन गिविंग. तो हमारी अपनी प्रॉब्लम्स लाइफ आज के में कोई ऐसा नहीं है जिसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो. तो अपनी प्रॉब्लम से ऊपर होके अगर हम किसी एक जने की भी मदद करके आप देखिए कभी, तो आपको जो वो पावर महसूस होगी ना अपनी प्रॉब्लम से लड़ने के लिए, वो भगवान एक अलग ही शक्ति देता है.
1: डेफिनेटली मैं ये कहती हूँ कि अगर आपको भगवान दुख दे रहा है ना, तो उसको बर्दाश्त करने की शक्ति और उस शक्ति से ऊपर उठकर कुछ नेकी का काम करने की राह जरूर दिखाता है. और आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत सारे ट्रॉमेटिक टाइम से गुजरे हैं, लेकिन जब वो उस टाइम से बाहर निकल कर आए हैं तो वो इतिहास क्रिएट कर चुके होते हैं. और कुछ ऐसा ही खूबसूरत सा काम कविता वैद्य गुप्ता जी कर रही हैं. ढेर सारी शुभकामनाएं हम आपकी ऑर्गेनाइजेशन को देंगे, और मैं तो इस पूरे समाज की तरफ से आपको धन्यवाद कहूंगी कि आप इतना बेहतरीन काम कर रही हैं. और मेरी पर्सनल अपील सभी से कि भाई इस प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप हाथ जोड़कर जरूर काम करें. तहे दिल से धन्यवाद कि आज आप हमारे स्टूडियो में आए.
0: थैंक यू भावना जी. थैंक यू.
1: दोस्तों वक्त है आपसे इजाजत लेने का, लेकिन आप कहीं नहीं जाने वाले हैं. आप जुड़े रहने वाले हैं रेडियो मानव रेस्ट 107.8 FM के साथ. मुझे यानी आरजे भावना को दीजिए इजाजत. फील गुड, फील लाइव.

रेडियो मानवृष्णा 107.8 एफएम. मैं आ चुकी हूँ आप लोगों के पास में. मैं हूँ प्रांका और प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ. और ये मेरी लाइफ में आप सभी का स्वागत है, जहाँ मैं होती हूँ आपके पास 1 बजे से 3 बजे तक, जहाँ गाने आपको सुनाती हूँ और होती है ढेर सारी बातें. और आज बातों के साथ साथ मैं सिर्फ अकेले ही आपसे बात नहीं करने वाली हूँ, बल्कि एक ऐसी शख्सियत मेरे शो में, आज इस प्रोग्राम में हमारे साथ होने वाली है, स्टूडियो में होने वाली है, जिनसे आपको भी बहुत कुछ सीखने, जानने, सुनने को मिलेगा. ये कौन है इनके बारे में मैं जरूर बताऊंगी. चलिए पहले नाम बता देती हूँ आपको. इनका नाम है डॉक्टर शेफाली गुप्ता. लेकिन इनकी बाकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाली हूँ थोड़ी सी देर में, क्योंकि अभी प्रोग्राम शुरू हुआ है. और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पहले ही जैसे हम शुरुआत करते हैं तो एक गाना सुनाती हूँ, और वो गाना होता है मेरी पसंद का. तो आज भी मेरी पसंद के गाने से इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं. और साथ के साथ आप अपनी पसंद सुनना चाहते हैं, या कोई आप मैसेज शेयर करना चाहते हैं हमारे साथ में, या कोई गाना किसी को आप डेडिकेट करना चाहते हैं, कोई दूर बैठा है उसको आप गाना सुनाना चाहते हैं, अपने दिल की बातें उन तक पहुंचाना चाहते हैं, तो नंबर है हमारा 8010781078. तो चलिए एंजॉय करते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल सा गाना. मैं हूं प्रांका आपके साथ, रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर.

0: ये गाना आपने सुना रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर. मैं हूँ प्रांका और प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ. और आज स्टूडियो में हमारे साथ में है डॉक्टर शेफाली गुप्ता और ये एक एजुकेशनिस्ट हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, स्टूडेंट काउंसलर हैं. साथ के साथ इन्होंने पॉलिटिकल साइंस में PhD की है और कई नेशनल इंटरनेशनल प्रोग्राम्स में ये यूथ को मोटिवेट कर चुकी हैं और समाज और युवाओं के लिए लगातार काम कर रही हैं. और इनका बहुत बहुत स्वागत है. और ये तो सिर्फ चंद चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, अभी तो बहुत कुछ इनसे जानना बाकी है. इनसे हम जानेंगे ढेर सारी बातें, हम इनकी लाइफ से जुड़े जो ऐसे कुछ ऐसे मुश्किल भरे पल रहे हम सब की ज़िंदगी में होते हैं, लेकिन ये कैसे उनको पार करके आज इस मुकाम पर पहुंची है हम इनसे जानेंगे. सबसे पहले मैम स्वागत करते हैं आपका इस प्रोग्राम में.
1: बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका. सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार. मैं जी बहुत खुश नसीब हूँ कि आपने मुझे यहाँ मौका दिया आने का और श्रोताओं से बात करने का मौका दिया. उन सबसे मैंने बहुत सीखा है और आगे भी सीखती रहूंगी. यही मेरा एक एम है समाज के लिए कुछ
0: जी. समाज में जब कुछ कर दिखाने की बात आती है बहुत सारे लोग बात करते हैं, बहुत सारे लोग इस पर डिस्कशन करते हैं, डिबेट करते हैं, लेकिन जब ग्राउंड पर जाकर के कुछ काम करने की चीज़ वो बात आती है ना, तब बहुत सारे लोग तो सिर्फ ये सोचकर बैठ जाते हैं कि कौन ही हमारा साथ देगा या इससे क्या ही बदलाव होने वाला है या इतने सारे लोग हैं हम क्या ही कर पाएंगे. ये सोच ही कई बार ना हमें जो हम अच्छा कर सकते हैं उसको हमें पीछे कर देती है. लेकिन ये चीज़ शेफाली जी ने नहीं सोची, आज इसीलिए इस प्रोग्राम में हमारे साथ में हैं. शेफाली जी, अब तक का सफ़र आपका कैसा रहा ये तो मैं ज़रूर जानूंगी, लेकिन यहाँ तक आप पहुँचिए इसके लिए एक सोच जरूरी होती है. वो सोच डेवलप जो होती है ना वो बचपन से होती है. आपके केस में भी ऐसे ही हुआ होगा, तो अपने बारे में बताइए, अपनी जो आपकी जो जर्नी रही है अभी तक की, कैसे आपने कैसे अपना मुकाम शुरू किया बताइए इसके बारे में.
1: मैं एक ही चीज में बिलीव करती हूँ कि जिंदगी खूबसूरत है, बस जीने की जरूरत है.
0: करेक्ट.
1: इसी के सहारे मैं आगे बताना चाहूंगी कि मैं एक सैन्य अधिकारी की पत्नी हूँ, शिक्षा विशेषज्ञ, स्टूडेंट काउंसलर, रिलेशनशिप काउंसलर, और इसके साथ साथ मैं एक ईयर टू ईयर NGO जिसके साथ मैं 6-7 साल से जुड़ी हुई हूँ, जो मेंटल हेल्थ पर काम करते हैं. और मैं ब्यूटी पेजिंग ग्रूमर, मीडिया पर्सनैलिटी, एक क्षितिज इंडियन आइकोनिक पोएट संस्था है
0: जी.
1: उसमें मैं ज्यूरी रही हूँ फॉर लास्ट 7 ईयर्स
0: जी.
1: एंड RN टॉक्स की ज्यूरी रही हूँ. ईयर टू ईयर में आपको बताया रिलेशनशिप काउंसलर हूँ. AVM में टीचर्स ट्रेनर, क्योंकि मैं एजुकेशनिस्ट हूँ पहले. TRM में कंटेंट राइटर हूँ. मैं अपने आज के समाज को प्रेरित करने के लिए वहाँ कुछ ना कुछ लिखती रहती हूँ. ULB में स्टूडेंट काउंसलर हूँ, जहाँ बहुत सारे स्टूडेंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जुड़े हुए हैं. इसके साथ साथ मैं ग्लोबल पब्लिक स्पीकर हूँ. मैंने अपने बहुत सारे लेक्चर्स ऑनलाइन ऑफलाइन लिए हैं, दुबई, कैलगरी, कैनेडा, और बहुत सारे अलग अलग तरह की जगह से यूनिवर्सिटीज मेरे साथ जुड़ी हुई हैं. सो आजकल के दौर में नए जमाने के स्टूडेंट, या आप कह सकते हैं जैन जी के साथ जुड़े, मुझे बहुत पसंद है. वो मुझे एक सोल सेटिस्फेक्शन मिलता है, उनसे बात करके नई चीजें सीखने मिलती हैं, और एक तरह से उनको मार्गदर्शन देने का काम मैं हमेशा करती आई हूँ. इसके साथ साथ क्योंकि मैंने PhD किया है पॉलिटिकल साइंस में, मेरा टॉपिक मीडिया से रिलेटेड था, इसीलिए मीडिया मेरे लिए बहुत दिल के करीब है, मेरा पैशन है. सो मैंने रेडियो द्वारिका में काम किया है, NewsX में थोड़े दिन काम किया है, वेयर आई वॉज करेक्टिंग द कंटेंट्स एंड ऑल. सो इस तरह मेरी जर्नी की शुरुआत में इंस्पिरेशन मुझे पेरेंट्स मेरे 21-22 ईयर्स तक तो साथ थे ही. उसके बाद भी उन्होंने कभी भी, हम दो सिस्टर्स हैं, उनको ये नहीं फील होने दिया कि हम गर्ल्स हैं. आजकल बोला जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उन्होंने उस टाइम में हम सबको इतना एजुकेट किया कि आज हम दोनों अपने पैरों पर खड़े हैं और हम इस समाज में कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं. फिर मेरे हस्बैंड क्योंकि आर्मी में हैं, जगह जगह पोस्टिंग रही हमारी, तो हमारे साथ जितनी सीनियर लेडीज थे, जितने हमारे साथ फ्रेंड सर्कल बना, हमारी फ्रेटर्निटी बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत है, जहाँ हम हाई और लोज ऑफ लाइफ साथ में शेयर करते हैं. सो उनसे हमने बहुत सीखा, सीखते सीखते बच्चे हुए, बच्चे बड़े हो गए, अपनी अपनी जगह चले गए, फिर बच्चों ने हमें सिखाया, बच्चों ने मुझे सिखाया आज के टाइम में सोशल मीडिया का इम्पैक्ट क्या होता है.
0: Correct.
1: कैसे हम लर्निंग को अपडेट कर सकते हैं. हमारी लर्निंग उस टाइम की है जहां हम लिखा करते थे, आजकल लैपटॉप आ गया है आपका, इतनी सारी चीजें आ गई हैं, फिर आपको सोशल मीडिया में एवरीडे अपलोड करने के लिए कुछ चाहिए होता है, तो इतना ज्यादा प्लेथोरा ऑफ कंटेंट है कि आपको क्या देखना है क्या नहीं देखना है, कितना सेफ रहना है एआई के जमाने में, इतने फ्रॉड्स होते हैं, ये सब चीजें मैंने अपने दोनों बच्चों से सीखी। आज भी दोनों मेरे को यही बोलते हैं, मम्मी यू हैव गिवन योर लाइफ टू अस, नाउ इट इज योर टाइम टू फ्लरिश एंड गिव बैक टू द सोसाइटी। सो मेरी पूरी फैमिली मेरे पीछे साथ में खड़ी है, जो हूँ आज मैं वो उनकी वजह से, माई सिस्टर, माई पेरेंट्स, हस्बैंड, माई चिल्ड्रन, ऑल आर एट द बैक ऑफ मी।
0: तो बिल्कुल इतना सब कुछ आपने बताया, आप मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, आप रिलेशनशिप कोच भी हैं और बहुत सारी चीजें, आप एनजीओ भी चला रही हैं, फिर आप एक आर्मी ऑफिसर की वाइफ हैं, मतलब इतना सब कुछ कि मैं किसी एक चीज से तो आपको नहीं आपको कुछ कह पाऊंगी। हाँ ये जरूर कहूंगी कि मल्टीटास्किंग लेडी से हम बात कर रहे हैं जिन्होंने हर क्षेत्र में अपने जो है हाथ आजमाए हुए हैं और अभी भी काम कर रही हैं। कभी जब आप पीछे मुड़कर खुद को देखती हैं और जब आप ये देखती हैं कि मैंने कितना सब कुछ कर लिया है, एक ख्याल तो मन में आता ही होगा, तो क्या थॉट आता है पहले आपके दिमाग में?
1: सबसे पहले तो मैं बताऊंगी इसका श्रेय पूरा मेरी आर्मी फ्रेटर्निटी को जाता है। जब आप आर्मी में होते हैं, आपके हस्बैंड आगे पोस्ट होती है, तो आप अपने आप खुद बच्चे मैनेज करते हैं, घर मैनेजमेंट होता है, तो हाफ ऑफ द मैनेजमेंट हमें इवेंट मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, होम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, देन वी ट्रैवल अलोन, वी डू एवरीथिंग अलोन। ये एक जो पावर आर्मी ने मुझे दी है, उसमें मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि जितने भी काम हम मल्टीटास्किंग के आज कर पाए हैं, इट वॉज द ग्रूमिंग डन बाय दैट। सो आई ओ माई मल्टीटास्किंग एबिलिटी and many more things to my army fraternity. Thanks to my juniors and seniors. I learnt a lot from them. बहुत कुछ सीखने मिला मुझे उनसे। और दूसरा उन्होंने मुझे ये बताया, क्योंकि हम बहुत सारे स्टेज शोज करते हैं, हम कंपेयर करते हैं। I have already done almost more than 2000 stage shows. I have compared a lot, more than 4000, 5000 shows there. So एक अंदर जो आत्मविश्वास होता है, मैंने एनसीसी सर्टिफिकेट किया था, उसमें था मेरे में आत्मविश्वास, पर मैरिज के बाद कभी बच्चे हो जाते हैं, आप अपने में इतना बिजी हो जाते हैं कि आर्मी ने वो कॉन्फिडेंस दिया मेरे को आगे बढ़ने के लिए कि मैं अपने ऊपर खुद सबसे पहले भरोसा करूं। सो आई बिलीव इन माई सेल्फ एंड आज तक मैं अब खुद को पहली प्रायोरिटी देती हूँ। माई सेल्फ केयर इज माई फर्स्ट प्रायोरिटी इन माई लाइफ, देन एनीथिंग एल्स कम्स इन माई लाइफ, इवन फॉर द फैमिली ऑल्सो। जब मैं अपनी केयर कर पाऊंगी तभी मैं फैमिली की केयर कर सकती हूँ।
0: करेक्ट, बहुत सही बात आपने बोली कि जब मैं अपना ध्यान रख पाऊंगी, जब मैं स्ट्रांग रह पाऊंगी, तभी मैं दूसरों का ध्यान रख सकती हूँ। और ये एक बहुत ऐसी गहरी सच्चाई है जो हम सब जानते भी हैं, वाकिफ है, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं हम अपने आप को ताक पर रखते हैं दूसरों की वजह से। इस पर हम बात करेंगे क्योंकि महिलाओं के लिए सबसे मैं कहूंगी कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो सुननी चाहिए, मैम से जरूर बात करेंगे। डॉक्टर शेफाली गुप्ता हमारे साथ में इस प्रोग्राम में, प्रोग्राम का नाम है ये मेरी लाइफ और मैं हूँ प्रांगाम के साथ।

0: आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ये मेरी लाइफ रेडियो मानवश नाउ 107.8 FM पर. मैं हूं प्रांक आपके साथ और प्रोग्राम में इस वक्त हमारे साथ मेरे बिल्कुल सामने स्टूडियो में बैठे हैं डॉक्टर शेफाली गुप्ता, जिनसे आज हम बहुत सारी बात कर रहे हैं. ये काफ़ी प्रेरणादायक शख्सियत हैं जिन्होंने अपने शिक्षा से, अपने अनुभव से काफ़ी कुछ अचीव किया है. तो इनसे हम बात कर रहे हैं. अभी जैसे आपने कहा कि जब तक आप स्ट्रांग नहीं रहेंगे तब तक आप कहीं ना कहीं, ये सच्चाई भी है कि खुद को स्ट्रांग रखना ज़रूरी है. फैमिली को तभी हम टेक केयर कर पाएंगे, तभी हम अपने करियर में आगे बढ़ पाएंगे, हम खुद के लिए अच्छा कर पाएंगे, राइट. आज की जो महिलाएं हैं वो इतना ज़्यादा बिजी हैं कि अपने ऊपर ध्यान ही नहीं दे पाती हैं, परिवार को देखने में, अपने करियर को बनाने में इतना डूब जाती हैं कि अपने ऊपर वो ध्यान ही नहीं रहता. और कहीं ना कहीं फिर जब एक एज आती है, जब हम उस चीज़ को अनुभव करने का, जब वो एक्सपीरियंस करने का जब वो पल आता है ना, तब हम अपने हेल्थ को लेकर परेशान होते हैं, अपने आप को लेकर परेशान होते हैं. आप क्या कहना चाहेंगी, क्या मैसेज देना चाहेंगी महिलाओं को?
1: आपने बिल्कुल सही कहा. आज के दौर में हम आर्टिफिशियल दुनिया में इतना आगे भाग जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि एक इतने खूबसूरत इंसान हम थे. आप सोचो जब हमारा बचपन था कितना सुंदर होता था, किसी चीज की फिक्र नहीं थी, बेफिक्र रहते थे हम. आज के टाइम में बच्चों का बचपन भी धीरे धीरे छिनता जा रहा है, बाहर गेम्स कोई नहीं खेलने जा रहा है. अब थोड़ा सा कॉन्शियसनेस आई है लोगों में, समाज में, पर अभी थोड़ा टाइम लगेगा. और जहां तक आज की नारी की बात करते हैं, आज की नारी मल्टीटास्किंग जैसे आपने बोला वो करते हैं, लेकिन मैं जो सोचती हूँ, आपको अपनी बॉडी को ऐसे ट्रीट करना है जैसे आप अपनी बॉडी के ऊपर होमवर्क कर रहे हैं. जब हम क्लास में जाते हैं, हम कुछ सुनते हैं, फिर हम होमवर्क करते हैं घर आकर, ऐसे ही हमारी बॉडी एक हमारा पार्ट है जिसको हमें लुक आफ्टर करना है. वो बेबी की तरह है, उसके लिए हमें बहुत सारा होमवर्क करना होता है. आप मॉर्निंग में मेडिटेशन करिए, ग्रेटिट्यूड रखिए, योगा करना चाहते हैं योगा करिए, निकालिए अपने लिए टाइम. ब्यूटीफुल सुंदर वर्ल्ड है, कितनी सुंदर दुनिया है वहां सुबह की, ऑक्सीजन मिलती है सीधा. अपनी बॉडी के लिए जो सुबह काम कर सकते हैं आप, एक घंटा नहीं, एक घंटा शुरुआत होती है, 5 मिनट से तो करिए. स्टार्ट विद 5 मिनट्स, 10 मिनट्स बढ़ाइए, नेक्स्ट वीक 20 मिनट्स बढ़ाइए. कुछ चंद लम्हे उस इंसान को दीजिए जिसको सुबह उठ के आप शीशे में देखते हैं और वो आप हैं. लुक एट द मिरर एंड से यस दिस इज मी, टुडे इज गोइंग टू बी माय डे. आज मैं जो चाहती हूँ वो मैं लेकर आऊंगी. शाहरुख खान ने भी बोला है ना, किसी चीज को इतनी शिद्दत से चाहो कि सारी कायनात उसे मिलाने में आपका साथ देती है. तो यही अगर आप अपनी बॉडी के लिए केयर करना सीखेंगे, सेल्फ लव सीखेंगे. और शायद मैंने प्रियंका बताया था आपको, आजकल बटरफ्लाई हग बहुत चल रहा है. दैट इज यू पुट योर राइट हैंड ऑन योर लेफ्ट शोल्डर, पुट योर लेफ्ट हैंड ऑन योर राइट शोल्डर एंड से दिस इज मी, आई लव यू, आई लव माई सेल्फ. सो ये जो बटरफ्लाई हग है ये एक मैजिकल हग होता है. आप शीशे में उस इंसान को जिसको आप 24 आवर्स चलाते हैं किसी दुनिया में बाहर की, उसमें थोड़ा सा टाइम देके देखिए, देखिए ये मैजिक दिखेगा आपको. दिखना शुरू विद इन सेकेंड शुरू हो जाता है, बिकॉज ये अफर्मेशन है. इनको सच्चे दिल से कर रहे हैं, अफर्मेशन होते हैं ना, दिस इज मी, आई द डे इज बाउंड टू बी माई डे टूडे एंड इट विल हैपन. यू आर गिविंग द यूनिवर्स ऑल दीज यू नो ऑरा, योर ऑरा इज क्रिएटिंग अ वाइब्रेशन इन द यूनिवर्स. तो आपकी चीजें अच्छी होंगी.
0: बिल्कुल,
1: सोच पे निर्भर करता है. मैं कहती हूँ आजकल की जितनी नारी हैं उनको यही बोलती हूँ कि आपके पास वो पावर है, आपके पास व्हाट्सएप है, आप उसमें डीपी लगाते हैं. मैं उसको बोलती हूँ डिस्प्ले पॉजिटिविटी. आप क्यों पॉजिटिव सोच नहीं रख सकते? बिल्कुल रख सकते हैं. आपका आधा 50% काम उस पॉजिटिव सोच रखने से खत्म हो जाएगा. अगर आप सोचते हैं आज मुझे ये करना है तो आपका आधा काम तो हो गया, उसके बाद तो आपको थोड़ा सा काम ज्यादा आगे करना है. तो सभी नारियों से मेरी यही एक मेरा कहना है कि आप सबसे पहले अपनी इस खूबसूरत इंसान को जिसको आप शीशे में देखते हैं उसे टाइम दीजिए, उसको ठीक रखिए, स्वस्थ रखिए और खुश रखिए.
0: बिल्कुल,
1: तो आप अंदर से मन खुश होगा तो आप बाहर से भी स्वस्थ रहेंगे.
0: जी, तो जादू की झप्पी बहुत जरूरी है, ये मैम भी कह रही हैं. तो अपने आप को पहले जादू की झप्पी देना शुरू कीजिए और अपने लिए अच्छा कहना, अच्छा सोचना शुरू कीजिए. और ये ना मैं बहुत मानती हूँ कि अगर मान लीजिए किसी के साथ में कोई झगड़ा हो गया या कोई ऐसी बात हो गई है ना, और उसके बाद दिमाग में वही चीज़ें चलती रहती है और आप जैसा फिर सोचते हो ना वैसा ही आप रिएक्ट करने लगते हो. आप आपके जो एक्शंस है ना वो भी बिल्कुल वैसे हो जाते हैं जो आप सोच रहे होते हैं. अगर आप अग्रेसिव कुछ सोच रहे हैं तो वो अग्रेसिव जो एक्शंस हैं वो दिखाई देते हैं. तो इसीलिए इसके उलट आप सोचिए. आपको हमेशा अपने मन में प्यार रखना है, अच्छापन रखना है. अच्छा हर इंसान होता है, लेकिन उस चीज को बस अब आपको उस शैडो से निकल करके सामने लाना है. फिर आप देखिएगा आपकी पर्सनालिटी, आपने खुद भी कभी यकीन नहीं किया होगा, और ये खुद मैम कह रही हैं, और इतना एक्सपीरियंस. अभी हम और बहुत सारी बातें मैम से जानेंगे, साथ के साथ मैं सुना रही हूँ गाना. तो इस वाली बात पे मुझे एक गाना याद आ रहा है, मैं आपको सुनाती हूँ, बहुत मोटिवेट करेगा आपको ये गाना. रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम की मेरी लाइफ, और मैं हूँ प्रांका आपके साथ.

0: गाने जो मैं आपको सुना रही हूँ आपको कैसे लग रहे हैं जरूर बताइएगा। नंबर है हमारा 8010781078, रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर। मैं हूँ प्रांका आपके साथ और प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ। और हमारे साथ में है डॉक्टर शेफाली गुप्ता, जो कि एक एजुकेशनिस्ट है, मोटिवेशनल स्पीकर, स्टूडेंट काउंसलर है। इन्होंने पॉलिटिकल साइंस में PhD किया हुआ है और कई नेशनल इंटरनेशनल प्रोग्राम्स में यूथ को मोटिवेट करती हैं। इसी के साथ ही के रिलेशनशिप कोच हैं और बहुत सारी चीजें जो लगता है जो ये कर रही हैं उनसे अभी जानना बहुत कुछ बाकी है। लेकिन पहली चीज जो सबसे पहले मेरे दिमाग में, जैसे कि आपने कहा कि आप आर्मी ऑफिसर की वाइफ हैं, और कहीं ना एक ये सवाल सबके जहन में रहता है कि मुश्किल होता होगा ना, ऐसे कि एक डर रहता है हमेशा, राइट? एक मन में हमेशा डर बना रहता है, साथ में बच्चों को भी टेक केयर करना है, घर भी देखना है, तो कैसे मैनेज, मतलब सबसे पहले तो सल्यूट है आपको, कैसे आप मैनेज कर पाती हैं इतना सब कुछ और कैसे उस डर से आप बाहर निकल पाती
1: हैं? कहते हैं खुदा ने शायद हम लोगों को चुना है इतने सारे लोगों में जो स्ट्रांग लेडीज हैं कि हम इस डर से ऊपर निकल सकते हैं, इसीलिए उन्होंने हमें आर्मी ऑफिसर्स की पत्नी के लिए चुना है शायद, क्योंकि हमारा जो डर है वही हमारी ताकत है।
0: करेक्ट।
1: हम लोग साथ में रहते हैं, हमारे यूनिट है, ब्रिगेड है, या कोई भी हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है आर्मी में, वो सब इतना साथ में एक दूसरे के साथ रहते हैं कि हमें लगता ही नहीं हम अकेले हैं या डर हमें कभी साथ लेगा। जैसे हम सिस्टर्स आपस में एक घर की तरह रहते हैं, फैमिली की तरह रहते हैं, वैसे ही हमारे साथ हमारे सुख दुख में हम सब एक दूसरे के साथ एक फैमिली की तरह काम करते हैं, तो कभी अकेलापन नहीं लगता है। इट्स अ बिगर लार्जर ब्यूटिफुल फैमिली Which we carry with us. So, डर का तो सवाल ही नहीं उठता है। और दूसरा डर हमें इसलिए भी नहीं लगता है क्योंकि हमारे हस्बैंड एक देश के लिए कुछ कर रहे हैं और वो एक बहुत गर्व की बात है। आपने देखा होगा पिछले कुछ टाइम में जो जो इंसिडेंट्स हुई हैं वो हमारे लिए बहुत गर्व से सर ऊंचा करने वाली बात है, देश के गौरव के लिए, राष्ट्र के गौरव के लिए, गरिमा के लिए। और मैं बहुत ज्यादा अपने आप को गौरवान्वित फील करती हूँ ये कहते हुए कि बाकी सब चीजों से ऊपर जो मेरी आज पहचान है वो यही है कि मैं आर्मी ऑफिसर की पत्नी पहले हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत सम्मान का विषय है।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, कहीं ना कहीं सपोर्ट, कहीं ना कहीं वो केयर, वो प्यार, वो भी कहीं की आगे बढ़ने में सपोर्ट देती है। वही एक सपोर्ट और होता है जो हमारे लाइफ सिस्टम होते हैं, हमारे जो अपने परिवार वाले होते हैं, आप इसे जो भी नाम दे सकते हैं मुझे बताना अगर आपने कोई नाम दिया हुआ है अपने किसी लव्ड वन का, लेकिन इनका सपोर्ट ना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप कुछ कर रहे हैं लाइफ में और जितना आपने अचीव किया है इसमें अपनों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, तो क्या क्या कहना चाहेंगे
1: कि बिल्कुल सही कहा। हाँ,
0: जी
1: इस सपोर्ट के बिना तो कोई आगे नहीं बढ़ता है।
0: बिल्कुल।
1: मेरे फादर हमेशा कहते हैं हमारे पास कुछ सर्कल्स होते हैं, हमारा जो इनर सर्कल है उसमें सिर्फ हम हैं, इट्स मी आई, जिसके ऊपर सारे लोग टिके हुए हैं। सेकंड सर्कल में आपके हस्बैंड और बच्चे आते हैं जो आपकी फैमिली बनते हैं, उनका भी आपके ऊपर बहुत सारी निर्भरता रहती है, उनको मेंटली सपोर्ट करना है, फिजिकली सपोर्ट करना है, फाइनेंशियली सपोर्ट करना है बच्चों को आपको, तो हस्बैंड वाइफ मिलकर ये चीजें आगे प्लान करते हैं। अब बच्चों का साथ हमेशा रहता है, वो हमेशा बच्चे रहेंगे चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, सो ये सपोर्ट हमारे सेकंड सर्कल का है। थर्ड सर्कल में हमारे आते हैं हस्बैंड के पेरेंट्स और गर्ल के पेरेंट्स, सो इन चारों भी हमारे ऊपर डिपेंड है क्योंकि हम ये इनको सपोर्ट करते हैं, मेंटली भी लुक आफ्टर करना होता है उनको, उनकी आज की जरूरतें पूरी करनी होती हैं। ऑल्दो आजकल मैंने देखा है बहुत सारे पेरेंट्स और सब हैं जो अपने आप में खुद ही इतने इंडिपेंडेंट हैं कि वो कर लेते हैं, और कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जो केयर के लिए भी हमें मिल जाती हैं। उसके बाद फिर हमारा आउटर सर्किल आता है जहां हमारे फ्रेंड्स हैं जो हमारी जिंदगी हैं। आजकल के दुनिया में फ्रेंड्स होना और फ्रेंडशिप खत्म होना मैंने बहुत यंग बच्चों में देखा है। आप लोग फ्रेंडशिप को सिर्फ वहां तक देखते हैं जहां आप एंजॉयमेंट देखते हैं, आप वहां तक फ्रेंडशिप को देखते हैं जहां आप ये चाहते हैं कि अच्छा आज हम यहाँ चलेंगे, आज हम यहाँ खाना खाएंगे, आज हम मूवी साथ में देखेंगे, पर फ्रेंडशिप इससे ऊपर है। ये फ्रेंडशिप आपकी जो बनती है आपके इस सर्किल में ये आपके फैमिली बन जाती है। कुछ टाइम के बाद आपका फैमिली फ्रेंड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और फ्रेंड्स फैमिली में कन्वर्ट हो जाते हैं. आप देखिएगा 50 साल के ऊपर जितने भी लोग हैं उनकी लाइफ लाइन ही फ्रेंडशिप फ्रेंड्स होते हैं. वो लुक फॉरवर्ड करते हैं आज सुबह आज कहाँ जाएंगे, आज हमारी किटी पार्टी, स्पेशली लेडीज का, इवन जेंट्स का भी स्टैग पार्टीज होती है. सो उनके लिए फ्रेंड्स उनकी जान है हम लोगों के लिए, जिनसे हम सीखते हैं, साथ में ग्रो करते हैं, साथ में सुख दुख को आपस में करते हैं. तो कहा भी ये गया है, एवरी मोमेंट हैज लव इन इट, एवरी आवर हैज हैप्पीनेस इन इट, इफ यू लूज इट इट बिकम्स मेमोरी एंड इफ यू लिव इट इट बिकम्स लाइफ एंड आवर लाइफ इज आवर फ्रेंड्स. सो ये सारी सर्कल्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट है. इसके बाद हमारा मिला के जो बनता है दैट इज हमारा राष्ट्र निर्माण, जहां हम अपनी फैमिली के साथ अपनी सोसाइटी को क्या दे सकते हैं.
0: बिल्कुल,
1: हमने जितना सीखा बचपन से आज तक क्या हम उसका 1% भी अपनी सोसाइटी में गिव बैक कर पाए हैं. आप अपने अंदर झांक कर देखिएगा, कई बार होता है हम डोनेशन के लिए जाते हैं, कहीं ओल्ड एज होम में जाते हैं, किसी एनजीओ में काम करते हैं, बच्चों के साथ काम करते हैं, बहुत सारे ऐसे विकलांग लोग हैं, स्पेशल नीड्स के हैं जिनसे हम बातें करते हैं, कैंसर पेशेंट्स के साथ बातें करते हैं. इतनी सारी चीजें अगर हम करते हैं ये आपके दिल को सुकून देती हैं. ये सारी चीजें आपके लिए खुद के इम्प्रूवमेंट के लिए हैं, जिसके लिए आप ग्रेटिट्यूड शो करते हैं कि हमें इतना कैपेबल आज समाज ने बनाया है कि हम उसका बहुत आभारी है कि हम उसको वापस भी ये करेंगे. दुनिया बहुत छोटी है, छोटी सी जिंदगी है, इसी में हमारी जिंदगी एक अच्छे ग्रेटिट्यूड के साथ निकल जाती है. सो मैं हमेशा एक मेरा बहुत मंत्र है मेरा प्रियंका, वो शेयर करती हूँ श्रोताओं के साथ आपके साथ. मैं अपना GPS खुद लेकर चलती हूँ. आप मोबाइल उठाते हैं, आप GPS लगाते हैं, मेरा GPS मेरे साथ रहता है. G इज फॉर ग्रेटिट्यूड, P इज फॉर पॉजिटिविटी एंड S इज फॉर स्ट्रेंथ, नो योर स्ट्रेंथ. बहुत सारे बच्चे हैं जो भूल जाते हैं उनकी स्ट्रेंथ क्या है, क्योंकि वो कंपटीशन में आ जाते हैं.
0: जी, जी, जी.
1: पर उनको अगर अपनी स्ट्रेंथ आज पता चल जाए, आज लाइनें खुली हुई है बच्चों के लिए करियर में. आप म्यूजिक में अच्छे हैं, ड्रम बजाने में अच्छे हैं, आप पहले टाइम में होता था डॉक्टर इंजीनियर और IAS और यही सब चलता था, आज तो लाइन्स ही लाइन्स हैं, जहां आप जाएंगे वहां जा सकते हैं. सो आई कैरी माई GPS विद माई सेल्फ एंड आई रिक्वेस्ट आपके सारे श्रोताओं से अपने GPS को अपनी एक कीवर्ड बना लीजिए और दुनिया देखिए कितनी सुंदर खूबसूरत हो जाएगी.
0: वाओ, अगर थॉट चेंज हो जाए तो सब कुछ हम ही है. ये थॉट ना बहुत कम लोगों के अंदर होता है, लेकिन जिनके अंदर होता है ना उनके बात करने का तरीका, उनका उनकी प्रेजेंस ही बहुत स्ट्रांग होती है. ये आप भी कर सकते हैं अगर आप अपने लिए जिस तरीके से मैम कह रही हैं कि अच्छे वर्ड्स जो हैं वो हमेशा, और ये हर कोई डिजर्व करता है, हम जो हैं या जिस भी पोजीशन पे हैं हम सब अच्छा डिजर्व करते हैं. राइट, आप जो भी कर रहे हैं आप उसको प्रेज करें. राइट, और कभी भी ग्रैटिट्यूड मत भूलिए, उसको हमेशा रखिए. तो ये छोटी सी चीज़ जो समझ लेता है वो अपने आप को स्ट्रांग बना लेता है. रेडियो वाणा वैष्णव 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ये मेरे लाइफ और मैं हूँ प्रियंका आपके साथ.

0: इस गाने को आपने सुना रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर. मैं हूँ ब्रागा और प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ, और हमारे साथ में है डॉक्टर शेफाली गुप्ता. शेफाली, बहुत सारी बातें हम आपसे कर रहे हैं. अच्छा, कभी एक ऐसा पल आया जो कि मुझे लगता है कि हर किसी के लाइफ में ना कभी ये आता है कि वो चार लोग क्या कहेंगे. तो ये वाली चीजें ना सभी की लाइफ में होती है, है ना. कोई ना कोई ऐसा एक्सपीरियंस होता ही है, और आई एम श्योर मुझे पता है आपके पास भी एक ऐसा एक्सपीरियंस होगा ही. तो बताइए कि आपके लाइफ में भी कुछ ऐसा हुआ है इंटरेस्टिंग.
1: बिल्कुल, इंटरेस्टिंग तो कई बार हुआ है
0: जी,
1: पर अब मुझे उन लोगों पे बहुत दया आती है, तरस आता है कि कैसी सोच है.
0: और यहाँ पता मैं क्या कहती हूँ, यहाँ मैं कहती हूँ मुझे फर्क नहीं पड़ता.
1: बिल्कुल, मैं अपनी फेवरेट हूँ. कुछ लोगों की सोच वहाँ वहीं तक सीमित होती है.
0: करेक्ट.
1: और मैंने अपनी आउटर लेयर इतनी स्ट्रांग की हुई है कि मुझे उनकी सोच से फर्क नहीं पड़ा. कुछ सोच थी, पहले मैं स्पोर्ट्स में थी, एनसीसी में थी, उसके बाद आर्मी ऑफिसर से मैरिज हुई, फिर मैंने पढ़ाई की, फिर जैसे जैसे मुझे सक्सेस धीरे धीरे मिलती गई, बहुत काम किया है. आई हैव डन ऑन फील्ड्स, ऑनलाइन ऑफलाइन बहुत काम किया है मैंने, और अभी भी मैं करती रही हूँ. पर कुछ लोग हैं जिनको ये लगता है कि ये कैसे आगे बढ़ गए, इनमें तो शायद ये खुदी थी ही नहीं, क्योंकि उनकी सोच ही वहीं तक है. सो आने वाले टाइम में, पिछला टाइम, अभी का टाइम, अब ये नहीं मैटर करता मेरे लिए, बिल्कुल नहीं मैटर करता है, क्योंकि वो उनका ब्रॉटअप है, उनकी सोच है, और वो वहीं तक है. मैं कहां से कहां पहुंच गई, बट वो वहीं की वहीं है. सो दैट वे आई डोंट इवन कंपेयर विद एनीबडी इन दिस वर्ल्ड. मैं कर रही हूँ, मेरा सोल सेटिस्फेक्शन है, मेरा अपना जिंदगी है, और मैं अपनी तरह से अपनी जिंदगी को डील करती हूँ.
0: अगर कोई फेस कर रहा है अभी ये करंट और हमारा प्रोग्राम सुन रहा है, बड़ा परेशान के चार लोगों ने दिखते नहीं है लेकिन परेशान कर रखा है, और वो उभर ही नहीं पा रहे इस चीज से, और इस वक्त वो हमें सुन रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे?
1: ऑलवेज रिमेम्बर, आई एम द बेस्ट.
0: यस,
1: नोबडी इज बेस्ट देन यू. यू नो, हमें जब मैं डिबेट में पार्टिसिपेट करती थी स्कूल टाइम में, मुझे याद है मेरे फादर बोलते थे आप शीशे में देखकर अपनी प्रैक्टिस करो. तो मैं हमेशा शीशे में देख के वर्बेटम पूरा प्रैक्टिस करती थी. आई ऑलवेज यूज टू स्टूड फर्स्ट देयर. सो मैं एक ही चीज उनकी याद रखती हूँ, बोलते हैं जब आप अपना काम कर रहे होते हो तो ये सोचो दूसरे को किसी को कुछ नहीं आता. बस, सो आई एम द बेस्ट. रिमेम्बर दिस थिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ योर हार्ट. जिस तरह से आपको एक यूनिक इंसान भगवान ने बनाया है, कि हमारे तो फिंगरप्रिंट्स भी नहीं मैच होते आपस में. सो हाउ कैन वी से कि चार लोग क्या कहेंगे, सोचना ही नहीं है. हमारे फिंगरप्रिंट यूनिक है, मीन्स हम यूनिक है, हमसे आगे कोई नहीं है दुनिया में. सो ऑलवेज रिमेम्बर, हम एक ब्यूटीफुल सोल है, बहुत सुंदर है, और बहुत अच्छा काम दुनिया के लिए करके जाएंगे, कुछ नाम कमा के जाएंगे, कुछ यादें छोड़ कर जाएंगे.
0: आप रिलेशनशिप काउंसलर भी हैं, रिलेशनशिप की जब बात आती है आप क्या कहना चाहेंगे, आपकी क्या राय है इसको लेकर?
1: कुछ बच्चों से मेरी बात हुई है जो यूनिवर्सिटी लेवल पर है, हमने एक सर्वे भी किया था इस बारे में. सो रिलेशनशिप को लोग आजकल सीरियसली नहीं ले रहे हैं. उनके मन में है कि एक्सपेक्टेशन एक दूसरे से ज्यादा है. बोथ हस्बैंड वाइफ आर वर्किंग, सो दे आर एक्सपेक्टिंग टू मच फ्रॉम ईच अदर. अगर आप जिंदगी को हल्का फुल्का ले लेते हैं तो क्या चला जाएगा? इट्स अ ब्यूटीफुल लाइफ टुगेदर. एंड हमने देखा होगा हमारे पुराने टाइम में लोग ये सब सोचते ही नहीं थे. किसी ने कुछ कह दिया, दूसरे बार में सॉरी बोल दिया, बात आगे चली गई. अभी वो थोड़ा सा भी अगर कोई बोलते हैं सॉरी तो ब्रेकअप हो जाता है, फिर उनको स्ट्रेस हो जाता है, उनको डिप्रेशन हो जाता है. सो हमारे, मेरे हिसाब से तो डिप्रेशन कुछ नहीं है, स्ट्रेस कुछ नहीं है, होता है, साइंटिफिकली इट इज प्रेजेंट, बट ये आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे ले रहे हैं, कितना डीपली आप अपने अंदर उसको ले रहे हैं, और उसकी भी टेक्निक्स हैं. सो मैं ये बोलूंगी रिलेशनशिप के लिए आपको बहुत स्ट्रांग देना पड़ेगा. एक दूसरे को रेस्पेक्ट दीजिए. आपने शायद, मेरे ख्याल से शाहरुख खान का एक इंटरव्यू मैंने देखा था, उसमें था कि कभी भी वो अपनी फ्रेंड से भी तू करके बात नहीं करते हैं. इवन काजोल इज वेरी गुड फ्रेंड ऑफ हिम, बट वो कभी भी तू करके बात नहीं करते, हमेशा आप करके बात करते हैं. या शाम को, यार आ जाओ, शाम को चाय पीते हैं, उन्होंने कभी यार नहीं बोला. ये ऑलवेज इज आज शाम को टाइम है तो आ जाना, आप साथ में बैठते हैं, यूज अ रेस्पेक्टेबल लैंग्वेज विद ईच अदर, एक दूसरे को आप सम्मान देंगे तो ये गिव एंड टेक रिलेशनशिप होती है जहां आप एक दूसरे को कभी भी लाइटली नहीं लेते हैं. एक लड़की है जिसने अपनी जिंदगी पूरा टाइम पेरेंट्स के पास दी है, उसके बाद वो आपके पास आई है. एक बॉय है जिसने पूरा टाइम अपने पेरेंट्स का साथ दिया है, वो आपके साथ रहने के लिए आया है. सो ये दोनों का एक बहुत ब्यूटीफुल रिलेशनशिप साथ में है. इस बीच में ये नहीं आना चाहिए कि आपके पेरेंट्स ने ये किया, मेरे पेरेंट्स ने ये किया, या मेरे घर में ऐसा हुआ, आपके घर में ये हुआ. दोनों का ब्रॉटअप अलग है, दोनों का स्टडी मटेरियल अलग है जहाँ आप पढ़े हैं, हो सकता है साथ में पढ़े हो. सो एक दूसरे को रेस्पेक्ट देना आजकल के टाइम में बहुत इम्पोर्टेंट है. आपकी टंग से क्या बाहर जा रहा है या इन अ वे हेल्दी के लिए अंदर क्या जा रहा है, दोनों चीजों का डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप कभी भी ये नहीं बोल सकते कि आज मेरे पार्टनर को ये नहीं आता. आपने उसको जज किया, जजमेंट खत्म कर दीजिए. जहाँ जजमेंट खत्म हो गया वहीं आपको ले गए, तो बहुत सुंदर इंसान है. और जिससे आपने मैरिज किया वो कैसे गलत हो सकता है. हमारे

0: आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ये मेरी लाइफ रेडियो माने वैष्णव 107.8 एफएम पर। मैं हूं प्रियंका और हमारे साथ में है डॉक्टर शेफाली गुप्ता। डॉक्टर शेफाली, हेल्दी रिलेशनशिप को अगर रन करना है तो उसकी की क्या है?
1: हेल्दी रिलेशनशिप की एक बहुत अच्छी की है कि खुश रहिए, क्योंकि आजकल की जिंदगी में सबसे एक्सपेंसिव चीज खुशी है।
0: करेक्ट,
1: जिसका कोई मोल नहीं है। और आपके पास तो भगवान ने फ्री में स्माइल दी है। कुछ भी कोई बोलता है, छोटी सी स्माइल देके प्यार से बात कर लो,
0: करेक्ट,
1: चीजें अपने आप सुधर जाएंगी। छोटी छोटी चीजों को बड़ा बनाना खत्म कर दीजिए, चीजें आपको लगेगा बहुत सिंपल हो गई है। किसी ने आपको हर्ट कर दिया तो जस्ट ब्लेस देम, एक दूसरे को छोटी छोटी चीजों में। आज मैंने देखा था, आई थिंक 2 दिन पहले किसी एक कपल के बीच में लड़ाई हुई, इतना गुस्सा आ गया, इतना एंगर हो गया उसमें कि उन्होंने उसको थप्पड़ी मार दिया, तो वायलेंस हो गया, डोमेस्टिक वायलेंस का केस हो गया। सो इतनी सारी चीजें बहुत एक्सट्रीम स्टेप पर क्यों जाने दें हम इन चीजों को? जब हम दोनों की लाइफ है तो हम दोनों अपनी लाइफ को कैसे जिएंगे ये हमारे हाथ में है, है ना। सो आप छोटी छोटी खुशियों को बांटिए। आज नहीं मन हो रहा उसका खाना बनाने का, कोई नहीं, बाहर से खा लीजिए, बाहर चली जाइए। आज नहीं आपको हो रहा कि कुछ तबीयत ठीक नहीं है, हो सकता है हस्बैंड का मूड हो अकेले थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने का, तो गिव हिम सम स्पेस। ऐसी आपका मन है तो गिव हर सम स्पेस, यू नो, इट्स अ वाइस वर्सा। आपको स्पेस देनी है, आपको रिलेशनशिप मेंटेन करनी है, ईगो साइड में रखनी है। आजकल हम सभी, आपने देखा है, सभी वर्किंग वुमेन है, वर्किंग मैन है, सो ये जो ईगो आ जाती है ना 30 इयर्स के बाद, ईगो से बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। इन सबको साइड में रख के अच्छी जिंदगी बिताइए, एंड दिस इज द की।
0: करेक्ट। एक चीज मैं भी इसमें ऐड करना चाहूंगी कि बहुत जरूरी है एक दूसरे को स्पेस देना, राइट, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मन करता है कि आप अकेले बैठो, बहुत सारे सवाल जो हम अकेले में ही उसका सोल्यूशन ले सकते हैं, लेकिन ये चीज ना समझ में नहीं आती है आज के टाइम पर। और एक चीज जो मुझे लगता है अगर रिलेशनशिप में ये हो जाए तो एक बेहतर रिलेशन चलेगा, वो ये है कि जो अच्छी चीज़ है ना हमेशा उस पर ध्यान दें। हम क्या करते हैं, बुरी चीज़ें हम याद रखते हैं, जहन में अपने रखते हैं, इसके बाद जब थोड़ा सा भी झगड़ा होता है तो वो सारी बुरी चीज़ें फिर वो सामने आती हैं।
1: ये साइंटिफिकली ह्यूमन नेचर है।
0: यस,
1: इट्स अ ह्यूमन नेचर, नॉट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ ओनली। ये हम कहीं भी देखेंगे तो हमारा नजर सबसे पहले उस पर ही जाती है कि नेगेटिव क्या है। सपोज समबडी इज वेरी वेल ड्रेस्ड, सो आप कॉम्प्लीमेंट करते करते ही आपको पता चल जाएगा इसमें क्या कमी है।
0: राइट,
1: तो ये एक ह्यूमन नेचर है जिसको अगर आप अवॉइड करेंगे तो इट कैन बी वेरी ब्यूटीफुल।
0: बिल्कुल, और इसे बिल्कुल चेंज किया जा सकता है। लाइफ बहुत अलग कहे कि 360 के एंगल पे चेंज हो जाएगी अच्छे वे में। रेडियो वाना वैष्णव 107.8 एफएम पर मैं हूं प्रियंका, आपके साथ हर प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ।

तेरी कचरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा तू जाग जरा तेरी कचरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा तू

0: आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ये मेरी लाइफ रेडियो माने वैष्णव 107.8 एफएम पर। मैं हूं प्रियंका और हमारे साथ में है डॉक्टर शेफाली गुप्ता। डॉक्टर शेफाली, आपने नेशनल इंटरनेशनल कई सारे सेमिनार्स अटेंड किए हैं, आप स्पीकर रही हैं, है ना? तो आज का जो यूथ है, आप उनको क्या कहना चाहेंगी और क्या आप अपने सेमिनार्स में यूथ को बताती हैं, क्या उनको आगे के लिए करना चाहिए, आप क्या कहना चाहेंगी जो इस वक्त लोग आपको सुन रहे हैं उनके लिए?
1: हमने सब जगह ये सुना भी है, पढ़ा भी है और ये सच है कि आज का यूथ देश का निर्माण करता है, देश का भविष्य बनाता है। हमारे हर सेक्टर में जहाँ जहाँ आज यूथ है, कुछ कॉलेजेस में है, कुछ वर्क कर रहे हैं, कुछ परेशान हैं, कुछ बटरफ्लाई एग्जीक्यूटिव्स हैं, अलग अलग ओहदे पर हैं, बहुत सारा कुछ अच्छा भी काम कर रहे हैं। सो मैं यूथ से यही कहना चाहती हूँ, सबसे पहले बिलीव इन योरसेल्फ, अपने ऊपर, खुद के ऊपर विश्वास रखिए। और मुश्किलों का आना पार्ट ऑफ लाइफ है, उसमें से हंस के जाना आर्ट ऑफ लाइफ है, ये हम सभी जानते हैं। इस पर अमल करिए। ईच मॉर्निंग वी आर बोर्न अगेन। पिछला कल क्या था उससे सीख कर हमें आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए डेवलपमेंट में, हमेशा लर्निंग कभी खत्म नहीं होती। आप कहीं भी किसी से भी कुछ भी सीख सकते हैं। इवन आप अगर रोड पर भी जा रहे हैं, कुछ ऐसे इंसान होंगे जो आपको एकदम अट्रैक्ट करते हैं, कुछ ऐसे इंसान होंगे जो आपको लगता है ये तो ठीक ही नहीं है। सो हर जगह से आपकी लर्निंग होती है, हर जगह से। आप अपने पर विश्वास रखें, कीप लर्निंग, बी कंसिस्टेंट एंड प्लीज अपनी मेंटल हेल्थ पर ध्यान दीजिए। इसकी बहुत सारी टेक्निक्स हैं मेंटल हेल्थ पर, माइंडफुलनेस है, ग्रेटिट्यूड है, योगा है, मेडिटेशन है, और बहुत सारी अलग तरह की कलाएं हैं, पेंटिंग है, गो इन द गार्डन। आजकल तो हमारे पास बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हो गई है, हैदराबाद जैसी जगह है जहाँ आपको एक प्लेस अलॉट कर दी जाती है, वहां पर आप जाकर मेडिटेट करके वापस आ सकते हैं। ये ऑफिसेज में भी उन्होंने शुरू कर दिया है, छोटा सा जंगल टाइप बना दिया, वहां पर आप एक राउंड लेकर भी वापस आ सकते हैं। तो इस तरह की स्पेसेस हमारे यहाँ अवेलेबल हो गई है बिग सिटीज में। इसी तरह आप अपने आप को रिजुविनेट कर सकते हैं, पर रुकना नहीं है, चलते जाना है, अपने आप को मोटिवेट रखना है। जहां आप रुक गए वहां आपको लगेगा अब बस हो गया।
0: करेक्ट।
1: तो यहां से निकलना हमारे हाथ में है, ये पावर सिर्फ हमारे हाथ में है, अपने आप को, खुद को मोटिवेट रखने की।
0: और सिर्फ यूथ के लिए ही नहीं बल्कि सबके लिए, मतलब जब तक आप जिंदा हैं, आप सांस ले रहे हैं, तब तक आप लर्निंग जारी रखिए, क्योंकि एक बहुत जरूरी है ह्यूमन के लिए, राइट? तो बातें बहुत सारी हैं और आपका कोई सवाल है, कोई मैसेज आप करना चाहते हैं, पूछना चाहते मैम से, तो नंबर है हमारा 8010781078।

0: आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ये मेरी लाइफ रेडियो माने वैष्णव 107.8 एफएम पर। मैं हूं प्रियंका और हमारे साथ में है डॉक्टर शेफाली गुप्ता। आपने एनजीओ के बारे में भी बात की कि आप एनजीओ से जुड़ी हैं, तो ये एनजीओ क्या करता है और इसके बारे में कुछ बताइए।
1: मैं काफी सारी एनजीओ से जुड़ी हुई हूँ। एक एनजीओ है एयर टू एयर, जिसमें वो सिर्फ मेंटल हेल्थ पर काम करते हैं।
0: ओके।
1: लोगों से सुनते हैं, लोगों को आजकल लिसनर्स चाहिए, तो लोग उनसे अपनी प्रॉब्लम को जस्ट डिस्कस करते हैं। कोई जजमेंट नहीं है, कोई सॉल्यूशन नहीं, कुछ नहीं, दे जस्ट गिव देयर टाइम।
0: और ये एंड कोई भी जाकर
1: कर सकता है। देन दे गिव अ प्लेटफॉर्म टू अ पर्सन कि आप आइए, अपनी शर्म को साइड में रखकर आप ओपन अप होइए, बी कॉन्फिडेंट एंड बी अ पार्ट ऑफ इट। सो इट्स ईयर टू हियर। एंड देयर इज अनदर ऑर्गेनाइजेशन विच इज कार्या केयर। वहां पर मैंने एक बहुत अच्छा इंसिडेंट मैं आप सबसे श्रोताओं से आपसे सबसे शेयर करना चाहूंगी। आगरा में इनका एक अवार्ड फंक्शन था। सो ये मेरे कजिन का है, मेरे हस्बैंड के कजिन है, उन्होंने किया है। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जहां हम एक पुअर बच्चों को एजुकेट भी करते हैं, पूरी दुनिया दिखाते हैं। सो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। सो वहाँ उन्होंने मेरे को बोला कि आप जाइए उधर और जाकर आप अवार्ड फंक्शन में एज अ चीफ गेस्ट रहिएगा। सो मैंने उसको अटेंड किया। इतना मुझे सुकून मिला वहाँ जाकर, क्योंकि वो सारे बच्चे, ऑलमोस्ट उस टाइम में वो 150 से ज्यादा बच्चे थे, उनको ताज में बैठाया, ताज होटल में आगरा। उनको वही प्रोग्राम, उन्हीं से प्रोग्राम भी कराया, उनको एज अ सेलिब्रिटी फील कराया, खाना खिलाना, उनको रूम्स दिखाना, उनको ताज के अंदर की सारी चीजें विजिट कराना। मुझे इतना अच्छा लगा। उसमें से एक बच्चा था जो मे बी शायद 18 इयर्स का था, वो उसने मुझे बोला कि मैं यहाँ इस ताज के सामने दूसरी साइड बैठकर मैं भीख मांगा करता था, लेकिन मुझे किसी ने इस एनजीओ के बारे में बताया, यहाँ से मैंने पढ़ना शुरू किया। आज मुझे ताज के अंदर आके लग रहा है कि मैंने सपना जो देखा वो पूरा होता हुआ लग रहा है। अब मैं कुछ बनूंगा आगे और मैं यहाँ आऊंगा बनने के बाद अपने बलबूते पर। तो मतलब उन्होंने उन 150 बच्चों को सपने दिखाए कि आप अच्छा पढ़िए, अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दीजिए, अच्छी जिंदगी को जीजिए। उसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो मजदूरों के बच्चे थे, बहुत सारे थे जो स्लम एरिया से आए हुए थे, कुछ तो आगरा में सीमित थे वो सारे। मुझे बहुत अच्छा लगा उन बच्चों से बात करके। एक ऐसा इनिशिएटिव जो शायद हमें करते रहना चाहिए। एक और यहाँ पर एक है जो ब्लाइंड लोगों के लिए काम करते हैं, वो भी एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। सो अलग अलग तरह के लोगों के साथ काम करने में आपको सोल सेटिस्फेक्शन मिलता है।
0: अच्छा, एक के सोचने वाली स्थिति भी है कि किसी टाइम पर लोग बातें किया करते थे, सुना करते थे, लेकिन आज के टाइम पर कितनी कमी हो गई है कि हमें अपनी बात शेयर करने के लिए कोई हमें सुने, उसके लिए हमें जाना पड़ रहा है। जबकि एक टाइम पर लोग आसपास होते थे, अपने अपने परिवार वाले, दोस्त, पड़ोसी, सभी जो मिलकर एक
1: इसमें प्रियंका न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई ना,
0: बिल्कुल
1: उसकी वजह से भी बहुत फर्क पड़ता है।
0: यस। तो ये एक चीज, लेकिन हाँ, कभी कोई आपके आसपास ऐसा हो जो हमेशा चुप रहता है और ज्यादा बात नहीं करता है, कभी भी उससे कुछ ऐसी बात ना कहिएगा, क्योंकि बहुत कुछ मन के अंदर होता है। और कभी बैठ करके सिर्फ उसकी बात सुनिएगा। ऐसे भी हम कहते हैं ना कि हम कैसे हेल्प करें, आप ऐसे भी मदद कर सकते हैं। बहुत अच्छी चीज जो बहुत बढ़िया होगी उसके लिए भी और आपके लिए भी। रेडियो माने वैष्णव 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम की मेरी लाइफ और मैं हूं प्रांक आपके साथ।

0: क्या
1: फिर कोई बावर मुहब्बत की

0: आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ये मेरी लाइफ रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर. मैं हूं प्रांका आपके साथ और इस वक्त काफ़ी सारी बातें हम डॉक्टर शेफाली गुप्ता से कर चुके हैं और जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि हमारे साथ में हैं ये और ये जो हैं ये एजुकेशनिस्ट हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, स्टूडेंट काउंसलर हैं और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि नेशनल इंटरनेशनल प्रोग्राम्स में यूथ को मोटिवेट करते हैं. आप सोचिए कि कितना सारा एक्सपीरियंस इनके पास में है और उसी एक्सपीरियंस से हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, इनसे जान रहे हैं कि अपने आप को कैसे बढ़ाना है. और जब भी हम ये चीज़ सोचते हैं ना कि हमें अपने आप को किस तरह से आगे लेकर जाना, समाज में कैसे अपने आप को वो दर्जा देना है, इसमें काफ़ी सारे चैलेंजेस भी आते हैं ना. तो आप क्या कहेंगी जितने भी लोग आपको सुन रहे हैं, यूथ हैं या जो भी हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगी उनके लिए?
1: बहुत सारे श्रोताओं को मैं यही एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि जो चैलेंजेस आते हैं, चैलेंजेस तो लाइफ में आएंगे पर उनसे भागना नहीं है, एक तो उनका सामना करना है, दूसरा उन चैलेंजेस को ब्रेक करिए. अगर आप एक ही बार में वो चैलेंज फेस करते हैं तो आपको लगता है ओ माय गॉड ये तो बहुत बड़ा चैलेंज आ गया, इसे कैसे पार हो पाएंगे. लेकिन उस चैलेंज को अगर आप छोटे छोटे पीसेस में लेते जाएंगे तो आपका चैलेंज नीचे नीचे ही सुधरता जाएगा. अगर आप उसको ओवरलोड करने के लिए छोड़ देंगे तो बहुत बड़ा हीप बन जाता है उसका.
0: करेक्ट.
1: तो आप हमेशा ब्रेक करिए, अपने दिन को प्लान करिए. अगर चैलेंज आते हैं आपके पास कि चलो आज हमें ये चैलेंज आया, इसको किस समय पूरा करना है, तो आपके माइंड उसमें उलझ गया. उसका सॉल्यूशन तो नहीं निकलेगा इतनी जल्दी क्योंकि आप चैलेंज का सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, वो तो नहीं निकलना है, उसमें टाइम लगेगा थोड़ा सा. पर अगर आप उसके बारे में ओवर थिंकिंग करेंगे तो वो चैलेंज और बड़ा हो जाएगा. इसको सबसे पहले छोटे छोटे उसमें ब्रेक करिए, पार्ट्स में एक एक करके उन पार्ट्स को सॉल्व करने की कोशिश करिए. एक प्लान बनाइए, एक डिसिप्लिनरी प्लान बनाइए कि हाँ इस टाइम से इस टाइम तक ये करेंगे, इस टाइम से इस टाइम तक ये करेंगे. उस बीच में थोड़ा सा अपने लिए एंटरटेनमेंट का भी टाइम रखिए जिससे आपका माइंड थोड़ा सा फ्रेश हो जाए एंड देन अगेन कम ऑन टू दैट चैलेंज. ये हर फील्ड में होता है, कोई ऐसी फील्ड दुनिया में बनी ही नहीं है जो चैलेंज के बिना प्रोग्रेस नहीं हो.
0: करेक्ट.
1: आप आज प्रेजेंटेशन दे रहे हैं उसमें भी एक चैलेंज है, सीईओ बैठकर कहीं मीटिंग दे रहा है वो भी एक चैलेंज है, पता नहीं कौन सी प्रॉब्लम कब आ जाए. आप एज अ मीडिया पर्सनैलिटी है, आपका कौन सा टेक्निकल ग्लिच आ जाए, यू नेवर नो.
0: बिल्कुल.
1: सो इस तरह से हर फील्ड के चैलेंजेस हैं, उनका सामना बहुत हिम्मत के साथ करना है और उसका सॉल्यूशन निकालना है. चैलेंजेस को प्रॉब्लम नहीं समझना है, उसके सॉल्यूशन के साथ उसको देखना है. प्रॉब्लम देखेंगे तो वो बड़ा लगेगा. इस तरह से आप उसको ब्रेक कर करके प्लान बना के सॉल्व कर सकते हैं. और अगर जहां आप नहीं कर पाते हैं वहां अपने सीनियर्स की मदद लीजिए. बिल्कुल. अगर आपके लाइफ में हर तरह से हमारे पास काउंसलर्स हैं, रिलेशनशिप काउंसलर, स्टूडेंट काउंसलर हैं, और भी आगे आप जाना चाहते हैं, आपके हो सकता है बॉस बहुत अच्छे हो, आपके फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा हो, कुछ ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छी है, पूरा समाज आपकी हेल्प के लिए खड़ा है, आप अकेले नहीं हैं. चैलेंजेस में अकेला मत समझिए अपने आप को, आपके सराउंडिंग, आपका समाज, सब आपके साथ हैं.
0: जी, तो ढेर सारी बातें आज हमने डॉक्टर शेफाली गुप्ता से की. थैंक यू सो मच मैम, आप हमारे साथ जुड़ी.
1: थैंक यू.
0: चलते चलते सभी लोगों का
1: प्लेजर एंड ऑनर.
0: तो जितने भी लोग आपको सुन रहे हैं, आप चलते चलते आपका क्या मैसेज होगा उन सबके लिए?
1: आई ऑलवेज से कैरी योर जीपीएस ऑलवेज विद यू, ग्रेटिट्यूड पॉजिटिविटी एंड नो योर स्ट्रेंथ, वर्क ऑन इट. सो कैरी योर जीपीएस एंड डिस्प्ले पॉजिटिविटी इन दिस वर्ल्ड. टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ.
0: जी,
1: योर सेल्फ केयर इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड वी लीड अ हैप्पी लाइफ. दिस लाइफ इज ब्यूटिफुल, बहुत खूबसूरत जिंदगी है. जितना हैप्पीनेस के साथ आप जिएंगे उतना ही इस जिंदगी को आप बहुत कुछ देकर जाएंगे.
0: जी, इस प्यारे से मैसेज के साथ में चलिए, मेरे चलने का भी वक्त हो गया है, तो मुझे दीजिए इजाजत. आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाकी आगे आने वाले प्रोग्राम्स को एंजॉय कीजिए और सुनते रहिए रेडियो मानव वैष्णव 107.8 FM. दीजिए इजाजत. Bye.

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर हाजिर है आपका दोस्त फहीम लेकर यादों का सफर। दोस्तों, आज जिस कवि के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ, उनका नाम है डॉक्टर कुंवर बेचैन। उन्होंने बहुत सारे गीत लिखे, बहुत सारी कविताएं लिखी और बहुत सारी गजलों को भी उन्होंने जन्म दिया। उनके बहुत सारे शागिर्द हैं। उन्हीं में से एक उनके शागिर्द हैं जो कहते हैं कि हम कुंवर बेचैन के चेले हैं, जिन्होंने कविता का का और जीवन का जा भी सिखाया था। ऐसा कहना था उनके शागिर्द का। लेकिन दोस्तों, शागिर्द का और भी बहुत कुछ कहना था डॉक्टर कुंवर बेचैन के बारे में। वो सारी बातें आपके साथ साझा करूंगा, लेकिन फिलहाल आवाज की दुनिया के सभी दोस्तों को फहीम का नमस्ते, आदाब।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप हैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, आज बात हो रही है डॉक्टर कुंवर बेचैन के बारे में। और जैसा कि मैंने आपसे जिक्र किया था कि उनके वैसे तो बहुत सारे शागिर्द हैं, उन्हीं में से एक शागिर्द हैं जिनका कहना है कि हम कुंवर बेचैन के चेले हैं जिन्होंने कविता काका और जीवन का जा भी सिखाया। तो इस तरह का प्रभाव पड़ता था कुंवर बेचैन के शागिर्दों पर। दोस्तों, डॉक्टर कुंवर बेचैन की अगर हम बात करें तो उनका जन्म 1 जुलाई 1942 को उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद के उमरी गांव में हुआ था। वो गोपाल दास नीरज के बाद मंच पर सराहे जाने वाले कवियों में सबसे आगे माने जाते हैं। कुंवर बेचैन ने आधुनिक गजल को समकालीन जामा पहनाते हुए आम आदमी के दैनिक जीवन से जोड़ा है। उन्होंने गजल की संरचना समझाने वाली एक अति महत्वपूर्ण पुस्तक जिसका नाम है गजल का व्याकरण, उस पुस्तक को लिखा है। अगर कभी आपका इत्तेफाक हो तो आप इस पुस्तक को जरूर खरीदिएगा और पढ़िएगा, जिसका नाम है गजल का व्याकरण। बहुत सारी गजलें इन्होंने लिखी हैं और गजल लिखने का जो तरीका है उस तरीके को इन्होंने बड़ी खूबसूरती से लोगों को समझाने का प्रयास भी किया है। इसके अलावा गीत भी बहुत सारे लिखे और कविताएं भी लिखी हैं। तो आज डॉक्टर कुंवर बेचैन की कविताओं का जिक्र होगा, उनकी गजलों की बात होगी और बात होगी उनके गीतों की भी, लेकिन सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप मैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, बात उस समय की है जब मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता था। तब कविता लिखने का एक जुनून हुआ करता था मेरे अंदर। मेरा परिचय तब किसी के मार्फत मुरादनगर के हिसाली गांव निवासी सुकवि श्री दयाशंकर अश्क से हुआ था। बातों बातों में उन्होंने मुझे बताया कि गाजियाबाद में तो सुप्रसिद्ध कवि डॉक्टर कुंवर बेचैन रहते हैं। पता पूछकर मैं बेचैन जी के घर नेहरू नगर पहुंचा। वो घर पर ही मिल गए, उनसे मुलाकात हुई। उनसे मिलकर ये महसूस ही नहीं हुआ कि उनसे मेरी पहली मुलाकात है। मुझ में कविता लिखने के साथ उसे सुनाने का भी शौक था। मेरे निवेदन पर बेचैन जी ने मेरी कविता सुनी। कविता में तो कोई बात कविता जैसी नहीं थी, लेकिन उन्होंने मेरा हौसला बहुत बढ़ाया। उन्होंने मेरी कविता की बहुत तारीफ की और मुझे बहुत सारी दुआओं से भी नवाजा था। लेकिन दोस्तों, इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें हैं जो उनके साथ बैठ कर के उनके शागिर्द ने की थी। वो सारी बातें फहीम आपको बताएगा। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर यादों का सफर।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप हैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, डॉक्टर कुंवर बेचैन ने मुझे पहली बात जो बताई थी वो ये थी कि प्रकृति में या घर में बाहर अंदर जो भी वस्तुएं हैं उनको जिंदगी से जोड़ो, फिर कविता में उसे ढाल दो। मैं उनकी बात से इतना प्रभावित हुआ कि उनसे मिलने गाहे बगाहे उनके घर जाने लगा। इस बीच मैं लाल क्वार्टर मोहल्ले में रहता था, वहां मैंने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर स्वर स्वामिनी तरुण समिति बना डाली। सभी ने तय किया कि लाल क्वार्टर मोहल्ले में एक कवि सम्मेलन करवाएंगे और इस सिलसिले में अश्क जी से बात भी हो गई। उनके मार्फत ओश के सुप्रसिद्ध कवि वेद प्रकाश सुमन जी से मिलना हुआ, कवि सम्मेलन की बात बनी। तय हुआ कि कुंवर बेचैन जी का इस कवि सम्मेलन में अभिनंदन करेंगे। अब दोस्तों, कुंवर बेचैन के शागिर्दों ने उनको कवि सम्मेलन में आमंत्रित किया, और अगर किया तो क्या वो आए? आए, फिर क्या हुआ? ये सारी बातें आपके साथ साझा करूंगा। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर यादों का सफर।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप मैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, डॉक्टर कुंवर बेचैन के बारे में बात हो रही है और बात हो रही है उनके एक ऐसे शागिर्द के बारे में कि जिनसे उन्होंने बहुत कुछ सीखा था। उसी शागिर्द का कहना है कि मेरा बचपन का दोस्त और सहपाठी कवि चरण शंकर प्रसून और मैं बेचैन जी के घर पहुंचे, उनसे आग्रह किया, वो मान गए। हमने कहा कि इस मोहल्ले में हम एक कवि सम्मेलन करा रहे हैं, उसमें आएंगे तो हम सबको अच्छा लगेगा, और वो हमारी बात को मान भी गए। मोहल्ले में घर घर जाकर हमने चंदा इकट्ठा किया और कवि सम्मेलन करवा डाला। बेचैन जी का अभिनंदन किया, जैसा भी किया अपनी सामर्थ्य के अनुसार किया। वेद प्रकाश सुमन जी ने संचालन करके कवि सम्मेलन में 4 चांद लगा दिए। 2 दिन के बाद मैं फिर बेचैन जी से मिला। बात बात में मैंने कहा कि समिति की ओर से एक स्मारिका निकालनी है, अपनी कोई कविता दे दीजिए, इसे हम कवर पेज पर प्रकाशित करेंगे। बेचैन जी ने हमें जो कविता दी वो माँ शारदे पर लिखा छंद था। वो कुछ यूं था, नित ज्ञान गुमान के आंगन में कुछ भोर रहे कुछ सांझ रहे, मुस्कान की गोद भरी ही रहे पर पीर भी मेरी ना बांझ रहे, मन में कुछ और रहे ना रहे मन मानव का मन मांझ रहे, वरदान दे माँ मन मंदिर में बजती नवगीत की सांझ रहे, मन मंदिर में बजती नवगीत की सांझ रहे। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं फहीम के साथ यादों का सफर।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप मैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, बात चल रही थी डॉक्टर कुंवर बेचैन के बारे में, उनके शागिर्दों के बारे में, कवि सम्मेलन के बारे में जहां उनको आमंत्रित किया था, और उसके बाद उनसे उनकी एक कविता ली गई थी जिसको छपवाने की बात हुई थी, और वो कविता उन्होंने सुनाई भी थी। उस कविता को सुनकर उनका शागिर्द कहता है कि मेरे मुंह से निकल गया कि हम इसे 3 महीने में प्रकाशित कर देंगे। उस समय पद्म भूषण गीत ऋषि गोपाल दास नीरज, राजेंद्र राजन और उर्मिलेश जी ने डाक से अपनी रचनाएं हमें भेजी। हमने भी साहस करके पैसे जुटाए और एक स्मारिका प्रकाशित कर ही दी। 3 महीने के बाद मैं बेचैन जी के पास स्मारिका लेकर गया। उनके घर के गेट पर बाहर ही खड़ा था। बाहर बेचैन जी आए, दरवाजा खोला, मैंने स्मारिका उनके हाथ पर रख दी। ये देखकर वो इतना खुश हुए कि मेरा हाथ पकड़कर घर के अंदर ले गए। अपनी पत्नी यानी हमारी मम्मी जी, उन्हें मैं मम्मी जी बुलाता था, उनके पास ले जाकर मेरी ओर इशारा करते हुए बोले, ये होती है सच्ची लगन, जो कहा वो किया। उन्होंने मुझे खूब खूब आशीर्वाद दिए। इसके बाद तो उनसे मिलने का सिलसिला ही चल निकला। इसके बाद क्या हुआ दोस्तों, वो सारी बातें आपके साथ में साझा करता रहूंगा। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर फहीम के साथ यादों का सफर।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप में फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर।
1: दोस्तों, बात हो रही है कुंवर बेचैन के बारे में और उनके शागिर्द के बारे में। उनके शागिर्द आगे बताते हैं कि कुंवर बेचैन जी अब मेरे काव्य गुरु ही नहीं, मेरे मार्ग दर्शक पिता भी बन चुके थे। मैं उन्हें गुरु जी कहकर बुलाने लगा। जो भी कविता मैं उनके पास लिखकर के ले जाता, वो उसमें थोड़ा बहुत संशोधन जरूर कर दिया करते थे। मेरे जैसे दो तीन और भी कविता लिखने वाले उनके पास आया करते थे, जैसे अनिल असीम, नित्यानंद तुषार, गोविंद गुलशन, पवन खत्री, अमिताभ मासूम, इस तरह के बहुत सारे लोग आते थे उनसे सीखने के लिए। गुरुजी ने हम सबको कहा कि भाई देखिए, ऐसा है, तुम सब अलग अलग दिनों में आते हो, मेरे भी कवि सम्मेलन होते रहते हैं, मैं बाहर भी रहता हूँ, इसलिए एक दिन कोई ऐसा हो जिसमें सब अपनी अपनी कविताएं लेकर आए। तय हुआ कि गुरुवार की शाम सब आया करेंगे। अब दोस्तों, गुरुवार का दिन तय हो गया। अब इस दिन कौन कौन गुरुजी से शिक्षा लेने आता था, कौन कौन अपनी कविताएं लेकर के आता था, वो सारी बातें आपके साथ होंगी, लेकिन सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप मैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, बात चल रही थी कुंवर बेचैन जी के शागिर्दों के बारे में कि बहुत सारे शागिर्द उनसे सीखना चाहते थे। अब कुंवर बेचैन जी के पास इतना समय था नहीं कि अलग अलग दिनों में लोगों को सिखा सकें। तो उनका कहना था कि भाई कोई एक दिन ऐसा मुकर्रर कर लो कि जो मैं आप सबको एक साथ सिखा सकूं। तो दिन तय हुआ गुरुवार का। बस फिर क्या था, गुरुजी के ड्राइंग रूम में हम गुरुवार को तय समय पर पहुंचने लगे। शर्त थी कि सब अपनी अपनी नई कविताएं लेकर आएंगे, उसी पर चर्चा हुआ करेगी। पहले गुरुवार आने वाले कवियों की संख्या 3-4 ही थी, लेकिन धीरे धीरे संख्या 4 से 6, 6 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और फिर 35 से 36 तक पहुंच गई। वो दौर हमारा गोल्डन पीरियड था। उस दौरान हमने कविता की बहुत सारी जो बारीकियां होती हैं वो अपने गुरुजी से सीखी और किसी के द्वारा कविता में कमी बता देने का हम लोग बुरा भी नहीं माना करते थे। बड़ी स्वस्थ आलोचना हुआ करती थी, क्या गीत, क्या गजल, क्या मुक्तक, क्या छंद, सभी विधाओं की व्याकरणिक जानकारियां हमें होने लगी थी। तो दोस्तों, ये तो थी कुंवर बेचैन के शागिर्दों की बातें, लेकिन उनकी बातों का सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ है। आज ये पहला एपिसोड है। दूसरे एपिसोड में आपसे बहुत सारी बातें करूंगा डॉक्टर कुंवर बेचैन के बारे में और उनके शागिर्दों के बारे में। फिलहाल आपसे इजाजत चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिए, आसपास सफाई का ख्याल रखिए, आसपास पेड़ पौधे लगाएं और सुनते रहें रेडियो मानव रचना 107.8 FM। चलता हूँ, फिर मुलाकात करूंगा। अपना ख्याल रखना। शुभ रात्रि, शब्बा खैर।

0: खैनी गुटका जर्दा पान ले रहा है सबकी जान। उठता है जब धुआं सिगरेट का, मंजर होता है वो मौत का। कैंसर की बीमारी लाता, फेफड़ों में धुआं भर जाता। परिवार वाले होते चिंतित, नहीं लगता नशे बिना कहीं चित।
1: समय रहते नशे को खत्म कर दो, वरना समय आने पर नशा तुम्हें खत्म कर देगा। रेडियो मानवरचना 107.8 देता है ये संदेश, नशे से रहे दूर, बनाए स्वस्थ देश।

0: मिट्टी से गहरा रिश्ता रखता हूँ। अरे भाई किसान का बेटा हूँ, ये गर्व से कहता हूँ।
1: किसान भाइयों, आज आपसे बात हो रही है फसल के भंडारण की, यानी कटाई के बाद फसल का भंडारण कैसे किया जाए। तो जो बातें आपके साथ में साझा करूंगा उनको जरा ध्यान से सुनना। भाई देखिए, फसल की कटाई के बाद आप लोगों के द्वारा कुछ फसल को बीज के लिए और कुछ फसल को अपने उपयोग के लिए स्टोर कर लिया जाता है। किसान भाइयों, आपके द्वारा जो फसल अपने लिए रखी जाती है उसका भंडारण वो ड्रम या अन्य किसी बंद मुंह वाले कंटेनर में किया जाता है, ताकि जरूरत पड़ने पर उसका उपभोग किया जा सके। लेकिन फसल का भंडारण करते समय बरती जाने वाली कुछ सावधानियां भी हैं, उनका भी आपको ध्यान रखना है। जैसे बीज के लिए जो भंडारण किया जाता है उसमें कीटनाशक का उपयोग किया जाता है, ताकि उसे आगे की बुवाई के लिए सुरक्षित रखा जा सके। ज्यादातर किसानों द्वारा फसल का भंडारण जूट के थैलों में या फिर बोरियों में किया जाता है। इसके अलावा कुछ और भी जरूरी बातें हैं आपके भंडारण से संबंधित, वो सारी बातें करूंगा। आप सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर अन्नदाता।

दोस्तों, हम कितने भी मॉडर्न क्यों ना हो जाएं, लेकिन बिना किसान की मेहनत के जिंदा नहीं रह सकते। किसान भाइयों, आज बात हो रही है फसल के भंडारण के बारे में। भंडारण से पहले फसल को सूरज की रोशनी में सुखाना बहुत जरूरी होता है। फसल की कटाई का जो काम है ना, वो ज्यादातर मशीनों के जरिए किया जाता है, जिसकी वजह से फसल में नमी होती है। अगर इसी तरह से फसल का भंडारण किसान भाइयों के द्वारा किया जाता है तो फसल के खराब होने की संभावना ज्यादा हो जाती है। इसीलिए फसल की कटाई के बाद कुछ दिनों के लिए फसल को सूरज की रोशनी में सूखने दें, ताकि उसमें नमी ना रहे, और इसी के साथ साथ अनाज को अच्छे से साफ भी कर लेना चाहिए। होता क्या है, फसल की कटाई के वक्त बहुत सारे जो दाने होते हैं ना, वो टूट जाते हैं, या उसमें धूल मिट्टी हो सकती है, और जो कुछ तिनके हैं जिनकी जरूरत नहीं है, वो तिनके भी आ जाते हैं, जो कि फसल की रौनक को कम कर देते हैं। फसल को स्टोर करने से पहले उसकी अच्छे से सफाई जरूर करनी चाहिए, ताकि फसल को फफूंद जैसी समस्याओं से बचाया जा सके, क्योंकि इस तरह की जो बीमारियां होती हैं, जब भी फसल को लगती हैं, आपकी फसल बर्बाद हो जाती है। इसलिए किसान भाइयों, इन सारी बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। करेंगे कुछ और भी बातें करेंगे, जैसे फसल का स्टॉक कैसे करना चाहिए, इन सारी बातों को आपके साथ साझा करूंगा, लेकिन सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर।

दोस्तों, किसान वो भगवान है जो खुद का पेट खाली रखकर दूसरों का पेट भरता है। किसान भाइयों, बात हो रही है आज फसल के भंडारण के बारे में। आपकी फसल पककर के तैयार हो जाती है और जब उसकी कटाई हो जाती है, फिर बात आती है कि इस फसल को हम कहां पर स्टोर करें। तो इसके लिए कुछ बातें बहुत जरूरी हैं, वही बातें आपके साथ मैं साझा कर रहा हूं। कभी भी जो फसल का भंडारण है ना, पुराने और पहले से इस्तेमाल किए गए बोरों में बिल्कुल ना करें। क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है, फसल के खराब होने की और उनमें और भी ज्यादा रोग लगने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अगर किसान भाइयों द्वारा पुराने बोरों का उपयोग किया जा रहा है तो उन्हें अच्छे से धो लेना चाहिए ताकि फसल में कोई भी रोग ना लग पाए। और इस बात का भी ध्यान रखें, स्टॉक की गई फसल के बोरों को दीवार से बिल्कुल सटा कर ना रखें। किसान भाइयों, आप लोगों के जरिए फसल का भंडारण जिन बोरों में किया जाता है ना, उन्हें दीवार से सटाकर रखने से आपकी फसल में नमी आ सकती है, क्योंकि बारिश के मौसम में दीवारों पर सीलन या नमी बहुत जल्दी आ जाती है, जिसकी वजह से फसल पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। अब इसके बाद फसल को कीटों से बचाने के लिए क्या करना चाहिए, ये भी सुन लीजिए। नीम के पाउडर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी कभी स्टॉक की गई फसल में घुन जैसे कीट लग जाते हैं, जो फसल को अंदर से खोखला कर देते हैं। इन कीटों से बचने के लिए नीम से बने पाउडर का इस्तेमाल भी किसानों के द्वारा किया जा सकता है, जिससे स्टॉक की गई फसल को सुरक्षित रखा जा सके। तो इस तरह से किसान भाइयों, आप अपनी फसल को बेहतर तरीके से रख सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं, इन बातों का ख्याल रख करके। करूँगा कुछ और भी जरूरी बातें हैं आपकी फसल के स्टोर के बारे में, वो सारी बातें बताऊंगा। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर अन्नदाता।

दोस्तों एक दिन जीकर देखो जिंदगी किसान की, कैसे वो मिट्टी से सजा देता है थालियां हिंदुस्तान की। किसान भाइयों, बात हो रही है भंडारण के बारे में, और जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया था, फसल का स्टॉक बोरों में किया जाता है। तो नीचे फर्श पर लकड़ी के तख्ते बिछा दें या फिर चटाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि फसल सुरक्षित रह सके। और वो जो आपकी जगह है जहां पर आप भंडारण करेंगे, उस जगह को हम कह सकते हैं भंडार गृह। भंडार गृह को मेलाथियान के घोल से अच्छे से धो लेना चाहिए, इस बात का खास ध्यान रखना है। फसल का भंडारण करते समय ये बात जरूर ध्यान रखें, फसल को साफ जगह पर ही स्टोर करें। और जो आपका भंडार गृह है वो जितना साफ होगा उतनी ही आपकी फसल सुरक्षित होगी, इसलिए सफाई का हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। इसके अलावा किसान भाइयों, फसल का स्टॉक करना बहुत ही महत्वपूर्ण काम होता है, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। फसलों को सुरक्षित भंडारण के लिए बहुत सी वैज्ञानिक तकनीकें अपनाई जाती हैं। इन तकनीकों की वजह से फसल में जो फफूंद लग जाती है, इस फफूंद से आप अपनी फसल को बचा सकते हैं। लेकिन कभी कभी लोगों को भंडारण की पूरी तरह से जानकारी ना होने की वजह से आधी से ज्यादा फसल का नुकसान हो जाता है। तो मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि आपका किसी भी तरह का नुकसान हो किसान भाइयों, इसीलिए हर बार मैं आपसे जो बात करता हूँ आपके फायदे की करता हूँ। वैसे तो आपको बातें मालूम है, लेकिन समय बदला है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी आई हैं जो शायद आप तक नहीं पहुँच पाई हैं, वो सारी बातें आप तक पहुँचाता हूँ जिससे कि आपकी फसल बेहतर से बेहतर हो सके और आपको फायदा ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप हैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं अन्नदाता।

दोस्तों छत टपकती है उसके कच्चे घर की, फिर भी वो किसान करता है दुआ बारिश की। किसान भाइयों, भंडारण के बारे में बहुत सारी बातें आपसे मैंने की हैं, लेकिन साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं, खास तौर से ये बताना चाहता हूं कि फसल को जितना हो सके नमी से दूर रखना, कीड़ों से दूर रखना, चूहों से दूर रखना। फसल में अगर ज्यादा नमी होती है ना, तो ये सूक्ष्म जीवों के विकास को बढ़ावा देती है। इसी वजह से भंडारण करना बहुत जरूरी बताया जाता है, ताकि फसल को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सके। फसलों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए भंडारण किया जाता है। छोटे किसानों की बात करें तो छोटे किसानों के द्वारा सिर्फ अपने उपभोग के लिए फसल का उत्पादन किया जाता है, लेकिन बड़े पैमाने पर फसल का उत्पादन भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए भंडारण किया जाता है। फसलों का भंडारण ज्यादातर प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए भी किया जाता है, जैसे बाढ़ आना, सूखा पड़ना। इस तरह की जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, उस समय में ये भंडारण हमारे बहुत काम आता है। फसलों के भंडारण के लिए सही स्थान की व्यवस्था होनी चाहिए। भंडारण करते समय ये ध्यान रहे, फसल में नमी बिल्कुल ना हो। नमी की वजह से पूरी फसल खराब हो सकती है। मैं बार बार आपको नमी के बारे में इसलिए बता रहा हूँ कि नमी आपकी फसल के लिए एक तरह से जहर है। आपसे कुछ और भी बातें करूंगा, सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर अन्नदाता।

0: एक दरिया मोड़ा उसने, एक समंदर बांध रखा है। किसान के एक टूटे हल ने पूरे देश को संभाल रखा है।
1: देखिए किसान भाइयों, बहुत सारी बातें आपसे कर ली हैं भंडारण के बारे में, और भंडारण का काम इतना आसान नहीं होता है, उसके लिए कुछ बातें होती हैं ज़रूरी। वो सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। अब भाई आपको सावधानी बरतनी है। जितनी सावधानी बरतेंगे, आपकी फसल जो आप स्टोर करना चाहते हैं, जिसका भंडारण करना चाहते हैं, वो लंबे समय तक सुरक्षित रहेगी। और जब भी आपको लगे कि इस फसल का हमें उपयोग करना है, तो आप उपयोग कर सकते हैं, और बिना किसी खराबी के, बिना किसी बीमारी के, बिना किसी रोग के, बिना किसी कीट के, यानी कि आपकी सावधानी से आपकी फसल बिल्कुल सुरक्षित रहेगी और आपको इसका दाम भी अच्छा मिलेगा।

वेल हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, जय माता दी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं आरजी सागर आया हूँ लेकर के शो आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। आप लोग सुन रहे रेडियो 107.8 FM, जो आपसे कहता है फील गुड फील लाइव। ये शो बहुत खास है, उसकी वजह भी है कि यहाँ पर आपको एजुकेट करते हैं हम, साथ साथ आपको बताते हैं कि इंडिया में जो हम लोग ये बात बोलते हैं कि हम लोग सेल्फ रिलायंट हो गए हैं या फिर हम आत्मनिर्भर हो गए हैं, उसके पीछे कौन सी कंपनीज या लोगों या प्रोडक्ट्स या प्रोजेक्ट्स, किन किन चीज़ों का योगदान होता है, किन किन चीज़ों का हाथ है। तो आज का शो अगेन बहुत खास होने वाला है। हम लोग बात करेंगे एक और कंपनी के बारे में जो डील करती है एक बहुत अच्छी इंडस्ट्री में, बहुत बड़ी इंडस्ट्री में। विल टॉक अबाउट इट एंड विल स्टार्ट द शो बाय टॉकिंग अबाउट द इंडस्ट्री इटसेल्फ, देन विल मूव ऑन टू द प्रोसेस एंड टू द कंपनी, टू द फाउंडर्स, देयर बैकग्राउंड, देयर यूएसपी, एवरीथिंग। बट आफ्टर वी टॉक अबाउट द इंडस्ट्री, सो स्टे ट्यून्ड विद अस, फील गुड फील लाइव।

वेलकम बैक। बिना किसी देरी के अपने शो को यहाँ से हम आगे लेकर चल रहे हैं दोस्तों। मैं हूँ सागर। शो चल रहा है आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। आप लोग जुड़े हुए रेडियो मालवा 107.8 FM के साथ। फील गुड फील लाइव। तो आज की जो हमारी इंडस्ट्री है भैया, उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं पहले। मतलब कंपनी की तरफ तो बहुत बाद में हम लोग चलने वाले हैं, पहले आपको इंडस्ट्री समझाते हैं। दिस इंडस्ट्री इज इन शॉर्ट टेक। सिंपल पॉइंट है, इंश्योरेंस प्लस टेक्नोलॉजी इक्वल्स टू इंश्योरटेक। अभी देखिए, टेक्नोलॉजी लगभग लगभग हर एक इंडस्ट्री के साथ जुड़ चुका है। अब चाहे आप फाइनेंस की बात करें, आप चाहे हेल्थ केयर की बात करें, आप चाहे फैशन की बात करें, आप चाहे मेडिकल की बात करें, हर जगह पर आपको टेक वर्ड सुनाई देता है। उसकी वजह हम सब लोग समझते हैं कि टेक्नोलॉजी की वजह से ये सारी चीज़ें जो है डिजिटलाइज हो पाई हैं। तो वैसे ही हमारी आज की जो कंपनी है वो डील करती है इंश्योरटेक में। बेसिकली इंश्योरेंस कंपनी है, लेकिन डील करती है इंश्योरेंस प्लस टेक्नोलॉजी वाले एरा में, तो इंश्योरटेक में आ जाती है। पहले इंडस्ट्री को यहाँ पर हम लोग आपको समझाएंगे बहुत अच्छे से। तो इंश्योरटेक में जो कंपनीज डील करती हैं, दीज कंपनीज आर हैविंग अ सेट ऑफ टूल्स जो यूज करते हैं सॉफ्टवेयर, डेटा ऑटोमेशन, API बोले तो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ठीक है। इनका इस्तेमाल करते हैं टू क्रिएट इंश्योरेंस, टू सेल इंश्योरेंस, टू गिव यू द सर्विसेज, टू सेटल इंश्योरेंस, ठीक है, जो ज़्यादा फास्ट हो सकता है, कॉस्ट इफेक्टिव थोड़ा होता है ये, प्लस ज़्यादा कस्टमर्स तक पहुँच सकते हो आप। इसको आप ऐसे समझिए कि एक दुकान है जो एक लोकल मार्केट में खुली हुई है। अब वो दुकान कितने लोगों तक पहुँच सकती है एक लोकल मार्केट में? हद से हद क्या होगा, वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू आप दुनिया जहां में वो खबर पहुंचा देंगे कि वहां पर एक दुकान है सबसे अच्छा सामान देती है, बट स्टिल देयर आर लिमिटेशंस। वही सेम चीज अगर वही दुकान ऑनलाइन हो जाए, वही दुकान अगर टेक्नोलॉजी के ऊपर आ जाए, किसी तरीके से ग्लोबल एक्सेस उस दुकान का मिल जाए, तो उसके कस्टमर बाय डिफॉल्ट ज्यादा बढ़ चुके होंगे। ऐसा नहीं है, चीजों के ड्रॉबैक नहीं होते, हर चीज के होते हैं, लेकिन यहाँ पर फिलहाल हम इंडस्ट्री को समझ रहे हैं। और क्योंकि हम लोग इंश्योरटेक की बात कर रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी के एरा में इंश्योरेंस कैसे ऑपरेट कर रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। सो दिस इज द इंडस्ट्री, ठीक है, यहाँ पर चाहे इंश्योरेंस को सेटल करना हो, चाहे इंश्योरेंस जो है बनाना हो, बेचना हो, खरीदना हो, सब कुछ जो है डिजिटली होता है। यहाँ पर ऑटोमेटेड अंडरराइटिंग होती है विद डेटा, एम्बेडेड इंश्योरेंस होता है वाया API, ठीक है, माइक्रो जो है प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं, मोटर प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं, हेल्थ प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं, सब कुछ बेचा जाता है थ्रू एप्लीकेशंस और आई वुड से मार्केट प्लेसेस। जी हाँ, मार्केट प्लेसेस भी हैं, जैसे पॉलिसी बाजार है वो एक मार्केट प्लेस है जहाँ पर आपको सारे इंश्योरेंस मिल जाते हैं एक ही जगह पर। So this is the overview of this industry. We are addressing it. The name of this industry is InsurTech. लेंगे एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद बताएंगे आपको इंडिया में कैसे ये काम कर रहा है। लेकिन फिलहाल मजा लीजिए इन गानों को और जुड़े रहिए हमारे साथ। फील गुड फील लाइव।

वेलकम बैक। आशा करता हूँ ये म्यूजिकल वाइब आपको पसंद आई है। फिलहाल इसी के साथ अपने शो को आगे लेकर चलेंगे। मैं हूँ सागर। शो चल रहा है यहाँ पर आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। पहले इंडस्ट्री को हम आपको समझा रहे हैं यहाँ पर, जो कि है इंश्योरटेक, यानी कि इंश्योरेंस एंड टेक्नोलॉजी। अब यहाँ पर बात करेंगे इंश्योरटेक इंडिया में कैसे काम कर रहा है, मतलब करंट रियलिटी क्या है इंश्योरटेक की इंडिया में। और यहाँ पर देखिए, हम बिल्कुल ऐसी बातें करते हैं जो आपके लिए वाकई में काम आ सकती हैं, जो वाकई में आपके जीवन में कुछ मूल्य जोड़ सकती हैं। तो पहला पॉइंट यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ग्रोथ बहुत तेजी से हो रही है, बट अभी भी हमें बात एक्सेप्ट करनी होगी कि हम अर्ली स्टेज में हैं। उसका रीजन ये है कि बहुत सारे नए नए स्टार्टअप्स जो हैं वो आए हैं और बहुत ज़्यादा पुराने नहीं हुए हैं, ठीक है। मल्टीपल रिसर्च हाउसेज हैं ऐसे जो प्रोजेक्ट करते हैं मल्टी बिलियन डॉलर ग्रोथ इन द कमिंग 5 to 10 years, ठीक है, जो मतलब लिटरली काफ़ी अच्छा खासा आपको जो है दिखाई देगा। और यहाँ पर आप ये भी कह सकते हैं कि जो प्रोजेक्ट्स हैं वो डबल डिजिट में कन्वर्ट होने वाले हैं। जैसे 2024 की बात करते हैं, 0.9 billion US dollars, ये एक आप कह सकते हैं कि मार्केट वैल्यू था। 2030 तक ये डबल डिजिट में हो सकता है। इससे पता लगता है कि भैया बहुत तेजी से मार्केट जो है वो ग्रो कर रही है। यहाँ पर तीन ऑपरेटिंग मॉडल जो हैं वो डोमिनेट करते हैं इंडियन मार्केट को। पहला है डिजिटल इंश्योरेंस, जिसको आप कह सकते हैं जो न्यू एज जनरल इंश्योरेंस है, जैसे एको है, डिजिट है, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स आपको ऐसे नजर आएंगे जो डिजिटली आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सेकंड जो यहां पर मॉडल है वो है मार्केट प्लेसेस, या फिर आप उनको एग्रीगेटर बुला सकते हैं, या फिर आप उनको ब्रोकर्स भी बुला सकते हैं। इसमें पॉलिसी बाजार बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल है जिसके नाम हम सब ने सुना है। उसके बाद दूसरा नाम है रिन्यू बाय, तीसरा नाम है टर्टलमेंट, ठीक है। ये वो कह सकते हैं कि आप मॉडल्स हैं जो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मल्टीपल ब्रांड्स के जो हैं इंश्योरेंस दिखा सकते हैं, जिनको आप कंपेयर कर सकते हैं, अकॉर्डिंगली आप उनको बाय कर सकते हैं। तीसरा यहाँ पर जो मॉडल डोमिनेट करता है वो है B2B टेक प्रोवाइडर। तो इंडिया में जो B2B टेक इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स हैं, वो आप एक तरीके से समझ सकते हैं कि एक ऐसा लैंडस्केप है जो प्राइमरीली काम करता है बाय इंश्योर टेक कंपनी, लेकिन इनका काम होता है कि टेक्नोलॉजिकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म्स हैं, वो बनाना तैयार करना इंश्योरर्स के लिए। यानी कि जो इंश्योरेंस में डील करती हैं कंपनी, जो डायरेक्ट आपको इंश्योरेंस सेल करती हैं, उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, डिस्ट्रीब्यूशन के प्लेटफॉर्म तैयार करना, वो सारी चीजें यहाँ पर जो है ध्यान में रखी जाती हैं। मतलब ये डायरेक्ट अंडरराइटिंग नहीं करते हैं पॉलिसीज की, बट जो फर्म्स हैं उनको एम्पावर करते हैं, ठीक है, बाय सिंपली यू नो सिंप्लीफाइंग देयर प्रोजेक्ट्स। जहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि रिस्क कवरी भी आपको नजर आता है, जिसमें एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म है विद API जो बैंक्स, NBFCs एंड बाकी अदर कंपनीज को इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स जो है ऑफर करता है डिजिटली। तो ये एक आप तरीके से समझ सकते हैं कि बिजनेसेस के लिए ज्यादा काम करता है, मतलब रेदर देन बीइंग डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट विद अ कस्टमर, जो एंड कस्टमर है उसके ऊपर ना जा करके इंश्योरेंस कंपनीज को ये जो कैटेगरी है वो टारगेट करती है। तो ये मेजरली तीन मॉडल्स हैं जो इंडियन मार्केट में डोमिनेट करते हैं, जो मैंने अभी यहाँ पर आपको बताया। एक है डिजिटल इंश्योरेंस, दूसरा है मार्केट प्लेसेस, और तीसरा है B2B टेक प्रोवाइडर्स। अब लेंगे एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद अगले पॉइंट्स की तरफ चलेंगे। फिलहाल जो हमारा पॉइंट है वो है इंडिया में जो करंट रियलिटी है इंश्योरटेक की, उसको हमने आपको समझाने की कोशिश करी थोड़ी थोड़ी। फिलहाल जुड़े रहिए हमारे साथ, खिंच जाइएगा मत। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक। उम्मीद कर रहा हूँ आपकी म्यूजिकल वाइब पसंद आई। बिना किसी देरी के शो को आगे लेकर चलेंगे। मैं सागर, शो आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं दोस्तों, इंडिया में जो करंट सिनेरियो है, जो करंट रियलिटी है इन शॉर्ट टेक कंपनीज की, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक हमने आपको एक ओवरव्यू दिया, मार्केट ग्रोथ बताई और जो मेन डोमिनेटिंग मॉडल्स हैं इंडिया में जो ऑपरेट करते हैं वो आपको बताए। एक और पॉइंट यहाँ पर आपको जानना होगा कि हमारे यहाँ पर रेगुलेटरी एनवायरनमेंट है जो फ्रेंडली तो है बट बहुत स्ट्रिक्ट है, जिसको हम जानते हैं IRDAI के नाम से, जो एक गवर्निंग बॉडी है, एक रेगुलेटरी बॉडी है जो सारी इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं उनको ये कह सकते हैं आपकी देखती है, उनको लुक आफ्टर करती है। इसका पूरा नाम है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एक ऐसा प्रोसेस है जो ये इंश्योर करता है किसी कस्टमर के साथ गलत ना हो और कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस यहाँ पर फॉलो ना की जाए। ठीक है, टाइम टू टाइम यहाँ से हमें गाइडलाइंस भी मिलती हैं, सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स को भी यहाँ पर डिफाइन किया जाता है। मतलब एक्सपेरिमेंटेशन अलाउड तो है बट कंप्लायंस बहुत हैवी है। डेटा सिक्योरिटी बहुत जो है अच्छे से यहाँ पर देखा जाता है, बहुत ज़्यादा मैटर करता है, बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो सेलिंग इंश्योरेंस वर्सेस बीइंग अ टेक पार्टनर, ये दो अलग चीजें हो जाती हैं, लेकिन रेगुलेटरी बॉडी हमारे पास है लकीली जो इन सारी चीजों को लुक आफ्टर करती है। सो दैट्स हाउ थिंग्स आर यू नो वर्किंग इन इंडिया। प्लस फंडिंग एंड कंसोलिडेशन जो है वो भी इंडिया में अच्छा खासा हमें नजर आया है बीते कुछ सालों में। बट अगेन दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ आर डिस्कशन बिकॉज ये बहुत अलग हो जाता है। बट इतना कह सकते हैं कि इन्वेस्टर्स अभी बहुत हैं जो इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं। इनफैक्ट बहुत सारी फॉरेन ऐसे ब्रांड्स हैं फॉरेन के जो यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं और यहाँ के जो स्टार्टअप्स हैं उनको एम्पावर करते हैं। आइए बात करते हैं की इनसाइट्स की एंड डिमांड ड्राइवर्स की, लाइक एग्जैक्टली कौन सा वो पैटर्न है, कौन सी वो चीज़ है जो इस इंडस्ट्री को आगे लेकर के जा रहा है। देखिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो है स्मार्टफोन प्लस डिजिटल पेमेंट एंड प्लस KYC। मतलब ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। इंश्योरेंस जब आप खरीदते हैं तो पहले हुआ करता था आपको फॉर्म भरना होता था, फिर आपको पैसे पे करने होते थे, आपको अपना जो आईडी प्रूफ है वो जमा कराना होता था। अब ऑनबोर्डिंग बहुत ईजी हो गई है, लो कॉस्ट पेमेंट जो है यहाँ पर आपको दिखाई देती है, स्मॉल टिकट्स जो है वो आप यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं, जिसकी वजह से इंश्योरेंस एक्सेसिबल हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दिस आप अपने फोन से खरीद सकते हैं, आपके पास फोन है, एक इंटरनेट का कनेक्शन आपके पास है, दैट्स ऑल यू नीड। आधार हमारे पास, ई आधार जैसी ऑप्शंस अभी अवेलेबल हैं, प्लस हम सबके पास इतना होता है कि हम ऑनलाइन जाकर के महज कुछ बॉक्सेस जो हैं वो हमें टिक करने होते हैं, इन्फॉर्मेशन डालनी होती है, एंड वी आर डन। तो ये एक आपको मेजर समझना होगा कि डिमांड ड्राइवर है। सेकंड है, एम्बेडेड इंश्योरेंस इज ह्यूज, ट्रैवल, ई कॉमर्स, मोबिलिटी एंड जो फिनटेक प्लेटफॉर्म्स हैं वो भी दोस्तों कंटेक्चुअल जो इंश्योरेंस है वो बेच सकते हैं एट पॉइंट ऑफ नीड। मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि मल्टीपल पार्टनरशिप्स आपको मिल जाती है। जैसे आपने देखा होगा, आपने बस की टिकट बुक करी है, अब बस की टिकट के साथ वो 10 रुपए या 20 रुपए एक्स्ट्रा लेते हैं और वहां पर आपको एक इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं आपकी ट्रैवल जो जर्नी है उसके लिए, होता है ना ऐसे। ये एक एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसी बहुत सारी और चीजें हैं। तो ये क्या हुआ, एक और पार्टनर हमने वहां पर जोड़ लिया। तो ऐसी करके ज्यादा तेजी से वो जो है एक तरीके से आप समझ सकते हैं मल्टीप्लाई हुई है ये मार्केट इंडिया में, क्योंकि मल्टीपल पार्टनर्स आ गए हैं अभी हमारे पास। सो दैट्स हाउ थिंग्स आर वर्किंग। वक्त एक और म्यूजिकल ब्रेक का, उसके बाद फर्दर और कुछ की इनसाइट्स और डिमांड ड्राइवर्स हैं जो हम आपको बताएंगे, लेकिन ये सब बातें होंगी इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद। जुड़े रहिए हमारे साथ, फील गुड, फील राइट।

मेरा नाम सागर, शो आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। आप लोग जुड़े हुए रेडियो मानवस्टम 107.8 एफएम के साथ। दोस्तों, हम यहां पर इंश्योर टेक जो इंडस्ट्री है उसको आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें अगला पॉइंट आता है डेटा एंड मशीन लर्निंग, जो एक और की ड्राइवर के तौर पर आप उसको समझ सकते हैं। स्टार्टअप्स जो हैं अभी डेटा यूज करते हैं, और टेक्नोलॉजी की जब हम बात करते हैं, जब भी कोई टेक प्लेटफॉर्म बनाया जाता है, वहां पर डेटा, मशीन लर्निंग, इन चीजों का ही मेन रोल होता है, जिसकी बदौलत ये प्लेटफॉर्म्स जो हैं खड़े हो पाते हैं और लोगों की प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर पाते हैं। सो या, दैट इज अनदर थिंग। बट हाँ, यहाँ पर यह है कि एडवांटेज है तो एट द सेम टाइम डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि डेटा प्राइवेसी को लेकर बहुत सारे कंसर्न्स भी बने होते हैं। आपने देखा होगा, एक इंश्योरेंस कंपनी को अगर आप कॉल करेंगे तो आपके पास 4-5 इंश्योरेंस कंपनीज की तरफ से कॉल आने शुरू हो जाते हैं। सो इट शोज कि हमारा डेटा कैसे ट्रेवल होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कस्टमर ट्रस्ट एंड क्लेम एक्सपीरियंस। ठीक है, जो एक और इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब मार्केट में वो प्लेयर रुकेगा जो कस्टमर के ट्रस्ट को गेन करेगा, और जब क्लेम की बारी आएगी तो वहां पर क्लेम जो है टाइमली प्रोसेस कर दिया जाएगा, बेवजह उसको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, सारे ग्राउंड चेक किए जाएंगे। इट ऑल डिपेंड्स कि आपकी टीम कितनी स्ट्रांग है, कितना आप जो है वहां पर बैकएंड पर काम करके चल रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर बैड हैंडलिंग जो है वो अफोर्ड नहीं की जा सकती है किसी भी कंपनी के द्वारा, क्योंकि अगेन मैं पहले भी बात बताई थी कि हमारे पास IRDA है जो पूरे इंश्योरेंस को रेगुलेट करती है, गवर्निंग बॉडी है हमारे पास। सो देर आर मल्टीपल थिंग्स, मतलब इंश्योरेंस में ओम्बड्समैन होता है जिनको आप रीच आउट कर सकते हैं अगर कोई चीज़ ऐसी प्रॉब्लमेटिक है जो आपको तंग कर रही है, या आपको लग रहा है कि आपके राइट्स को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। यू कैन गो टू ओम्बड्समैन, वहां से आप सेटिस्फाई नहीं है, यू कैन गो टू IRDA। सो देर आर प्रोसेसेस जो यहाँ पर बनाए गए हैं इसलिए कि चीजें स्मूथली यहाँ पर रन कर पाए। इसलिए कस्टमर का ट्रस्ट गेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और सही तरीके से हैंडल करना ये बहुत जरूरी है। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को टॉलरेट नहीं किया जाता है। रेगुलेशन शेप्स प्रोडक्ट चॉइसेस, जो भी इंश्योरर्स को लाइसेंस मिलता है, ठीक है, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस है या वो हेल्थ इंश्योरेंस है, वहाँ पर कैपिटल की जरूरत होती है, टाइम की जरूरत होती है। बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो सक्सीड हुए हैं एज डिस्ट्रीब्यूशन, एज ब्रोकिंग, एज टैक्स सर्विस, जो बहुत अलग अलग तरीके से आपको नजर आती हैं चीज़ें, कि मल्टीपल कैटेगरीज में इंश्योरेंस कंपनीज डील करती हैं। मतलब ये बहुत टेक्निकल हो जाता है, बट अल्टीमेटली डिपेंड्स कि आपके पास कैपिटल कितनी है, कितना टाइम है, क्या क्या प्रोडक्ट आप बना रहे हैं। वो अच्छी बात ये है कि अभी इतनी सारी हमने वर्टिकल्स बना दिए हैं, इतनी सारी चीज़ें आ गई हैं बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, तो छोटे लेवल पर भी प्लेयर जो है ऑपरेट कर सकते हैं। मतलब जरूरी नहीं है कि आपको बहुत बड़ा एक ऐसा ही ब्रांड ओपन करना है जो इंश्योरेंस ही कवर कर रहा है, आप एक ऐसा ब्रांड भी ओपन कर सकते हैं जो मार्केट प्लेस के तौर पर सर्व कर रहा है, या जो एक ब्रोकरेज फर्म है जो यहाँ पर वाजिब एक बिजनेस है। ऑल डिपेंड्स कि आपके पास कितना कैपिटल है। सो या, वो है कि एक लाइसेंस मिलता है, उसके बाद एक जो कंपनी है वो यहां पर काम कर सकती है। वक्त एक और म्यूजिकल ब्रेक का, स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइव।

आशा करता हूँ आपको ये गाने पसंद आए। फिलहाल इसी के साथ शो को आगे लेकर चलेंगे। मैं हूँ सागर। शो चल रहा है यहाँ पर आत्मनिर्भर भारत, और जो हमारी आज की इंडस्ट्री है वो है इंश्योरटेक, जिसको यहाँ पर समझ रहे हैं। अभी तक हमने बात करी दोस्तों कि क्या है ये इंश्योरटेक, कैसे काम कर रहा है ये इंडिया में, की इनसाइट्स क्या है, डिमांड ड्राइवर्स क्या है। आइए बात करते हैं एक प्रैक्टिकल रोड मैप की, जो अगर आप अपना कुछ स्टार्ट करने का सोच रहे हैं सो इट माइट हेल्प यू आउट। तो यहाँ पर जो है भैया 12 से 18 महीने का एक जो है प्लान बनाना होगा फॉर अ स्टार्टअप, अगर आप इंडिया में इंश्योरेंस में कोई अपना ब्रांड ओपन करना चाहते हैं। और यहाँ पर एक बहुत स्मॉल फाउंडिंग टीम को जो है हम यहाँ पर अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। आपके पास लिमिटेड इनिशियल फंडिंग है, और उसके बाद क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे फेजेज आते हैं वो मैं समझा रहा हूँ। लेकिन पहले ही मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये कोई गारंटेड रोड मैप नहीं है, ये बस एक रेफरेंस के तौर पर है टू गिव यू मोर क्लैरिटी, मोर स्पेसिफिक क्लैरिटी ऑन दिस पार्ट, कि अगर आपको अपना

स्टार्ट करना है, सो हाउ कैन यू एंटर इन दिस इंडस्ट्री? पहला है, चूज योर बिजनेस मॉडल। आपको डिजिटल इंश्योरर बनना है, आपको B2C एग्रीगेटर बनना है, मार्केट प्लेस बनना है या ब्रोकर बनना है जो बहुत फास्टली आप लॉन्च कर सकते हैं, कमीशन के द्वारा जो है आपको यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट होता है। फिर है B2B2C टेक API प्रोवाइडर, जिसको आप IaaS के तौर पे जानते हैं, यानी कि इंश्योरेंस एज अ सर्विस, जो है प्लेटफॉर्म्स बनाता है, तैयार करता है नए जो स्टार्टअप्स होते हैं उनके लिए, जो हमने पहले बात भी करी थी, ठीक है। या फिर आप एक एम्बेडेड प्रोडक्ट पार्टनर के तौर पर भी यहाँ पर आ सकते हैं, अगर स्पीड चाहिए आपको, आपको मॉडरेट रेगुलेटरी बर्डन चाहिए। कुल मिलाकर के भैया बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे वर्टिकल्स हैं, लेकिन एक चीज यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ, एक जो एक ब्रूटल ऑनेस्ट चीज है यहाँ पर, वो ये है कि अगर आपके पास कैपिटल नहीं है और कोई भी रेगुलेटर एक्सपीरियंस नहीं है, तो एज अ इंश्योरेंस आपको स्टार्ट नहीं करना चाहिए, स्टार्ट एज B2B और एग्रीगेटर, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो पहला जो काम है आपका वो है प्रॉब्लम वैलिडेशन एंड कस्टमर डिस्कवरी। एक आपको टाइट वर्टिकल और चैनल को जो है समझना होगा, उसको आइडेंटिफाई करना होगा, जैसे माइक्रो हेल्थ इंश्योरेंस फॉर गिग वर्कर्स जो अभी नहीं है एग्जैक्टली, ठीक है, यूज्ड कार मार्केट प्लेसेस में बहुत ज्यादा वो नहीं हुई है अभी कि उनका इंश्योरेंस कैसे होगा, तो ऐसी बहुत सारी और चीजें हैं जो अभी कवर की जानी है, ठीक है। ट्रेवल इंश्योरेंस जिसको और अच्छे से जो है कवर किया जा सकता है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको आइडेंटिफाई करनी होगी कि किस प्रॉब्लम को आप टारगेट कर रहे हो। सेकंड आता है फिर टेक्निकल कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होंगी, प्लस जो लीगल डिजाइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एक मिनिमल प्रोडक्ट आपको बनाना होगा, चेकआउट फ्लो जिसमें बहुत आसान होगा, कोर्ट इंजन जो है बहुत ईजी होगा, यूजर इंटरफेस बहुत आसान होगी, कोई भी इंसान अगर आए तो वो ईजिली खुद से नेविगेट उसको कर पाए। पॉलिसी डॉक्यूमेंट जनरेटर जो है वो आपको यहाँ पर क्रिएट करना होगा, एक बैकएंड पर प्रोसेस आपको बनाना होगा जो डायरेक्ट कस्टमर का डाटा लेगा और जनरेट कर देगा उसके लिए पॉलिसी क्या ठीक रहेगी, ये एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। आपको टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो ड्राफ्ट करनी होंगी, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ताकि कंप्लायंस इश्यूज ना हो यहाँ पर, और IRDA जो है वो आपको तंग ना करे, इसके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि IRDA का काम ये है कि अच्छे से यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी जो है ऑपरेट करें, ये देखना। उसके बाद आता है रेगुलेटरी सैंडबॉक्स इफ एप्लीकेबल, जहाँ पर आपको जो है क्लेम की फ्रीक्वेंसी, टाइम टू सेटलमेंट, वो टेक्निकल चीजें हो जाती है, उसकी तरफ ना जाएं तो ही बेटर है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है स्केल डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑटोमेट ऑपरेशंस। आपको अंडरराइटिंग को ऑटोमेट करना होगा जहाँ पर पॉसिबल हो सकता है, जैसे मशीन लर्निंग है, पेमेंट्स को आपको इंटीग्रेट करना होगा, आपको KYC के ऊपर जो है मास्टरी हासिल करनी होगी, जिसकी वजह से आप इस चीज़ को जो है और अच्छा बना सकते हैं। उसके बाद फिर आपको फंड रेजिंग एंड ग्रोथ की तरफ जाना होगा, मतलब क्योंकि मैंने बताया कि इन्वेस्टर्स बहुत सारे हैं जिनकी तरफ आपको जाना होगा। सो इंश्योरेंस एक ऐसी कैटेगरी है दोस्तों जो बहुत टेक्निकल भी है, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी है, एट द सेम टाइम बहुत ज्यादा कैपिटल भी वहां पर चाहिए। सो इट इज रियली रिक्वायर्ड कि आप पहले उस इंडस्ट्री को समझें, पहले आप ढंग से उसको एक्सप्लोर करें, तभी जाकर के आप उस मार्केट में आप कह सकते हैं कि एक सक्सेसफुल तरीके से एक मॉडल को ऑपरेट कर सकते हैं। सो या दैट इज द थिंग दैट मैटर्स, तो इसलिए ये बहुत जरूरी हो जाता है। फिलहाल लेंगे एक और म्यूजिकल ब्रेक और उसके बाद फाइनली बात करेंगे आज के ब्रांड की। कहीं जाइएगा मत, जुड़े रहिए हमारे साथ। फील गुड।

पुरस्रार चंदन का दिन में आज भी कितना हसीन दिखाई दे रहा है। हर तरफ बहार ही बहार छाई हुई है।

वेलकम बैक, मैं आरजे सागर। शो चल रहा है आत्मनिर्भर भारत कहानियां कामयाबी की, इन शॉर्ट एक हमारी आज की इंडस्ट्री है। आइए बात करते हैं आज की कंपनी की। आज की हमारी कंपनी का नाम है बीमा प्लान। अभी देखिए, हिंदी और अंग्रेजी दो शब्दों का मिलाकर के एक शब्द बना है, बीमा यानी कि इंश्योरेंस, प्लान मतलब प्लान। हम सबके कुछ ना कुछ प्लान्स होते हैं, जस्ट किडिंग। सो बीमा प्लान इज द नेम ऑफ दिस कंपनी। ये इंश्योर टेक में डील करती है और ये एक स्टार्टअप है जिसका फोकस है इंडिया की एक प्रॉब्लम सॉल्व करने का, एंड द फोकस इज ऑन अ फाइनेंशियल प्रॉब्लम विच इज लैक ऑफ इंश्योरेंस एक्सेस फॉर लो एंड मिडिल क्लास हाउस होल्ड्स। अब देखिए, बहुत सारे आप में से ऐसे लोग होंगे जिनका इंश्योरेंस होगा, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, लेकिन ऐसे ही बहुत सारे लोग दुनिया में जिनके पास अपना इंश्योरेंस नहीं है। उसके बहुत सारे कॉन्स्टेंट्स होते हैं, कई बार अवेयरनेस नहीं होती, जागरूकता नहीं होती, और कई बार बजट नहीं होता। तो उसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को केटर करते हुए लो और मिडिल इनकम जो हाउस होल्ड्स हैं उनकी उस प्रॉब्लम को फिक्स करने का काम कर रही है कंपनी जिसका नाम है बीमा प्लान। जहाँ पर मोस्टली जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं इंडिया में फोकस करती थी ट्रेडिशनली, अगर हम स्पेशली बात करें तो अर्बन अपर मिडिल क्लास कंज्यूमर्स या अर्बन कंज्यूमर्स, ठीक है, ये जो कंपनी है टारगेट करती है एक ऐसे सेगमेंट को जो बहुत लार्जली इग्नोर हुआ है लंबे टाइम तक, जैसे डेली वेज अर्नर्स हो गए, गिग वर्कर्स हो गए, स्मॉल शॉप अर्नर्स हो गए, रूरल फैमिलीज हो गई, या टीयर टू टीयर थ्री सिटीज में कुछ ऐसे लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते इंश्योरेंस को, तो ये यहाँ पर उनको केटर करते हैं। इनका बहुत सिंपल सा कहना है कि भैया हमारा प्लान है, बहुत सिंपल सा लेकिन बहुत मासिव, वो है कि इंश्योरेंस को अफोर्डेबल बनाना, अंडरस्टैंडेबल बनाना एंड एक्सेसिबल बनाना फॉर द नेक्स्ट बिलियन इंडियंस, अगले 100 करोड़ जो इंडियंस हैं उनके लिए। तो यहाँ पर ये लो कॉस्ट इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स बनाते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं डिजिटली थ्रू पार्टनरशिप्स, जहाँ पर कुछ कुछ पर्टिकुलर ऐसी चीज़ें हैं जो इसको खास बनाती हैं, विच इज़ कि यहाँ पर ये लोग एजेंट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाई नहीं करते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक कमीशन वाला पार्ट जो है बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है, तो उसको एलिमिनेट करते हुए ये कंपनी डील करती है। दिस इज बीमा प्लान। फिलहाल एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद शो में आगे बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइव।

0: सुनो हरदीप, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है, दिन के वक्त जब ये फुहारे
1: कहां आ पाऊंगी मैं दिन में।
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

वेलकम बैक, मैं अर्जय सागर ऑन दिस नोट अपने शो को आगे बढ़ाएंगे। कंपनी का नाम है बीमा प्लान और हमने वही भी आपको बताया कि कंपनी क्या करती है। लेट्स टॉक अबाउट कि कंपनी स्टार्ट कैसे हुई। तो सिंपल से आइडिया के साथ ही कंपनी स्टार्ट हुई। एक रियलिटी जो है, जो बहुत ब्रूटल है, वो इंडिया में इन्होंने ऑब्जर्व करी। एंड दैट रियलिटी इज कि मिलियंस ऑफ फैमिलीज आर कोलैप्सिंग बिकॉज ऑफ अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट्स। ऐसी चीज़ें हो जाती हैं हमारे परिवारों में जिसकी वजह से कई बार लोगों के घर बिक जाते हैं, सब कुछ बिक जाता है। बीमारी हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, किसी अर्निंग मेंबर की डेथ हो सकती है, कोई हॉस्पिटलाइजेशन हो सकता है, जॉब लॉस हो सकता है। तो ट्रेडिशनल जो कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज, वो मार्केट को कैटर तो करते थे, बट एक तो उनकी कीमत बहुत ज़्यादा थी, ठीक है, देन उसके बाद कस्टमर को ऑनबोर्ड करने का जो प्राइस था, ठीक है, वो बहुत ऐसा था कि लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे, मतलब थोड़ा ज़्यादा हुआ करता था। देन अपार्ट फ्रॉम दिस, स्मॉल टिकट्स जो हैं वहाँ पर नहीं एंटरटेन होती थी, मतलब छोटे इंश्योरेंस पैकेजेस नहीं थे उनके पास, ठीक है।

इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हुआ करते थे. इंश्योरेंस इंडस्ट्री में ट्रस्ट जो है वो बहुत लो था, एंड रूरल एंड सेमी अर्बन जो कस्टमर्स हैं उनके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दिया ही नहीं गया था. तो बीमा प्लान की जो कंपनी है, इस कंपनी को ये बात समझ में आई और इन्होंने इंडिया का एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जो बहुत कुछ चेंज कर रहा है. ठीक है, साथ साथ मैं ये भी कहूंगा कि इसमें बहुत हद तक योगदान और बहुत सारे एलिमेंट्स का है. स्मार्टफोन्स का है, यूपीआई पेमेंट्स का है, इंटरनेट का है, डिजिटल अडॉप्शन का है. छोटे शहरों में ये तमाम चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं. सो बेसिकली एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर पैरेलली बना है जिसको बेनिफिट इस कंपनी ने किया है. बट आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट द कंपनी, आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट द विजन कि इन्होंने एटलीस्ट इस एक चीज़ को आवाज़ दी. So instead of selling an annual policy of ₹50,000, ठीक है, इन्होंने क्या किया, small ticket insurance बनाया, contextual insurance बनाया, easy onboarding करी, low annual premiums रखे. ठीक है, जहां पर कुछ कुछ चीजें तो ऐसी हैं कि $5 से लेकर $50 तक एनुअली लोग जो है पे करेंगे और वो इंश्योरेंस जो है बाय कर सकते हैं. तो एक बहुत बड़े आप कह सकते हैं ग्रुप को इन्होंने केटर किया और एक जेन्युइन प्रॉब्लम जो वहां पर एग्जिस्ट करती है उसको वहां पर आवाज देते हुए इस कंपनी ने जो है नींव रखी और लोगों की हेल्प करी. दैट इज द थिंग. फिलहाल एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद बात करते हैं फाउंडर की. कौन है फाउंडर, विल टॉक अबाउट इट बट इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद. सो स्टे ट्यून्ड विद अस, फील गुड, फील लाइव.

बिना वक्त गंवाए शो को आगे लेकर चलेंगे। आशा करता हूँ आपको गाने पसंद आए, आपको शो पसंद आ रहा है। अगर कोई फीडबैक है तो 8010781078 नंबर है हमारा, इस तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। फिलहाल आगे बात करते हैं फाउंडर की। कंपनी के फाउंडर हैं विकुल गोयल। विकुल गोयल कोई फर्स्ट टाइम फाउंडर नहीं है और ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है, आगे इसके बारे में बात करेंगे। मोस्टली पीपल स्टार्टअप्स को बहुत ज़्यादा रोमांटिसाइज करते हैं, बट कोई भी इंसान जो सेकंड टाइम थर्ड टाइम या फोर्थ टाइम को स्टार्टअप जो है स्टार्ट कर रहे हैं या फाउंडर हैं, तो उनको बहुत सारी चीज़ें समझ आ चुकी होती हैं, उनके बेसिक्स क्लियर हो चुके होते हैं। एग्जीक्यूशन, बर्न रेट, डिस्ट्रीब्यूशन, हायरिंग, इन्वेस्टर साइकोलॉजी, स्केलिंग पेन, ये सब कुछ इस कंपनी के जो फाउंडर हैं विकुल वो एक्सपीरियंस कर चुके हैं। बिकॉज बीमा प्लान के पहले इन्होंने एक कंपनी स्टार्ट करी जिसका नाम था कारक्यू, ठीक है, एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस हुआ करता था ऑटोमोबाइल सर्विसेज के लिए, स्पेयर पार्ट्स के लिए। बाद में इसको टीवीएस ग्रुप ने एक्वायर कर लिया था, ठीक है। ये एक्विजिशन इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर इन्हें बहुत सारी चीज़ों के लिए आप कह सकते हैं कि फीडबैक भी मिले, बहुत सारी इनकी लर्निंग रही, ठीक है। जहाँ पर ऑपरेशनल क्रेडिबिलिटी इन्हें मिली, इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट जो है वो इंक्रीज हुआ, इन्हें स्केलिंग समझ में आया, इन्हें फेलियर समझ में आए। इसके अलावा इन्होंने बेसेमर वेंचर पार्टनर्स के साथ काम किया है, जीएसएफ एक्सेलरेटर के साथ काम किया है। तो इन तमाम जगहों पर काम करने के बाद, अपना खुद का एक स्टार्टअप करने के बाद जिसका एक्विजिशन भी हो चुका है, उसके बाद इन्हें एक्सपोजर मिला स्टार्टअप इन्वेस्टिंग का, फिनटेक ट्रेंड्स का, प्रोडक्ट मार्केट फिट एनालिसिस का, ग्रोथ का, कि किसी कंपनी को ग्रोथ वाली स्टेज तक कैसे लेकर के जाना होता है। And he got just one point that distribution is everything. अब इनके थोड़े से हम एजुकेशनल बैकग्राउंड की बात करेंगे। IIT गुवाहाटी के स्टूडेंट हैं जहाँ से इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की है इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और इसके बाद हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से इन्होंने MBA किया है, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है क्योंकि IIT ने टेक्निकल और एनालिटिकल ग्राउंड्स पे इन्हें स्किल्स दिए, हार्वर्ड ने उन्हें जो है बिजनेस थिंकिंग दी, वेंचर इकोसिस्टम से इन्हें इंट्रोड्यूस किया, कुछ ऐसे कॉलीग्स दिए जो सेम डोमेन में इंटरेस्ट रखते हैं। देन इसके अलावा खुद ने कुछ कुछ एक्सपीरियंसेस लेकर के अपना स्टार्टअप करके या जॉब करके या समहाउ कंपनी के साथ काम करके एक तरीके से खुद को ट्रेन किया, उसके बाद जाकर के कॉन्फिडेंस आया, इतने बड़े गैप को फिल करने का काम किया और ये कंपनी स्टार्ट करी, विच इज बीमा प्लान, जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। अब लेंगे एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद बात करेंगे कंपनी की USP की। स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइव।

0: सुना दी।
1: ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है, दिन के वक्त जब ये फुहारे।
2: कहाँ आ पाऊंगी मैं दिन में?
1: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
2: ये तो रोज निकलता होगा।
1: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
2: नौ बरस लंबी थी ना?

वेलकम बैक, मेरा नाम है सागर। शो यहाँ पर चल रहा है आत्मनिर्भर भारत कहानियां कामयाबी की। कंपनी हमारी आज की बीमा प्लान, और अब यहाँ पर बात करेंगे यूएसपी यानी कि यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन। फर्स्ट यूएसपी आती है माइक्रो इंश्योरेंस फॉर अनडिजर्व्ड इंडिया। बीमा प्लान जो है यहाँ पर डायरेक्टली किसी प्रीमियम इंश्योरेंस ब्रांड के साथ कम्पीट करने का काम नहीं कर रही। इनका बहुत सिंपल सा फोकस है अफोर्डेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, सिंप्लिसिटी। कोई ग्लैमरस बिजनेस पोजीशनिंग नहीं करी इन्होंने। इन्होंने यहाँ पर एग्जीक्यूशन लेवल पर जो है गेम अपना एक्सेल किया, जहाँ पर लोगों को जरूरत है इंश्योरेंस की, पैसे नहीं है, तो उनकी उस प्रॉब्लम को फिक्स किया। एम्बेडेड इंश्योरेंस मॉडल इन्होंने दिया, ठीक है। इंस्टेड ऑफ आस्किंग कस्टमर्स कम बाय इंश्योरेंस, ठीक है, यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ों में इन्होंने जो ऑलरेडी लोग खरीद रहे थे वहाँ पर अपना इंश्योरेंस जो है एम्बेड किया, ठीक है। जैसे फ्रिक्शन कम हुआ, डिस्ट्रस्ट कम हुआ, अवेयरनेस बैरियर्स भी इन्होंने कम जो है यहाँ पर कम किए, एंड दैट्स हाउ ये कंपनी यहाँ पर निकल के आई। मतलब एक सीधे तौर पर अगर आप किसी को बोलोगे इंश्योरेंस खरीद लो तो इंसान कतराएगा, लेकिन अगर कोई इंसान कुछ खरीदने जा रहा है, फॉर एग्जांपल किसी को स्कूटी खरीदनी है, उसको बोला जाए यार इसमें 100-200 रुपये या 500 रुपये कुछ और दे दो और तुम्हें एक हेल्थ इंश्योरेंस मिल जाएगा, तो कस्टमर थोड़ा जल्दी उसको लेकर जो है रिस्पॉन्ड करता है, एंड दैट्स हाउ थिंग्स वर्क। और ये बात हमें अब समझ में आ रही है डिजिटल इंडिया, क्योंकि मार्केटिंग बहुत बड़ा गेम है, कस्टमर साइकोलॉजी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट आता है वर्नैकुलर प्लस डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इंडिया का जो नेक्स्ट इंटरनेट वेव है दैट इज नॉट इंग्लिश स्पीकिंग मेट्रो यूजर्स। यहाँ पर टीयर 2, टीयर 3 ग्रोथ मैटर करती है। यहाँ पर कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा मैटर करता है, मोबाइल फर्स्ट एक्सपीरियंस मैटर करता है, और ये बहुत सीरियस स्ट्रेटजी है। अभी आप देखते हैं ना कि सोशल मीडिया पर जिस कंपनी का कंटेंट अगर अच्छा चल रहा है तो वो कंपनी अच्छा कर रही है। अगर किसी ब्रांड का कंटेंट अच्छा नहीं चल रहा है, कंटेंट अगर वो नहीं बना पा रही है, तो उस कंपनी के सामने कुछ कुछ ऑब्स्टेकल्स हैं। उसकी वजह भी है कंटेंट इज स्टोरी, स्टोरी ब्रिंग्स ट्रस्ट, ट्रस्ट ब्रिंग्स अवेयरनेस, अवेयरनेस ब्रिंग्स मोर पीपल इन, दैट्स हाउ थिंग्स वर्क। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है फुल स्टैक इंश्योरेंस इंफ्रास्ट्रक्चर जो उन्होंने खुद से तैयार किया है। सो बीमा प्लान प्रोवाइड करता है एंड टू एंड इंटीग्रेशन, पॉलिसी इंश्योरेंस क्लेम, कस्टमर एंगेजमेंट, डिजिटल ऑनबोर्डिंग, इंश्योरेंस APIs। सो दे आर नॉट जस्ट सेलिंग पॉलिसीज, दे आर बिल्डिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। दीज आर द USPs ऑफ दिस कंपनी। आई होप यहां तक आप समझ पाए हैं हमारी आज की कंपनी को। अब एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद शो को आगे बढ़ाएंगे। सो स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइफ।

फील गुड फील लाइव। मेरा नाम सागर, शो चल रहा है यहाँ पर आत्मनिर्भर भारत कहानियां कामयाबी की। आप लोग जुड़े हुए रेडियो मानव 107.8 एफएम के साथ। आइए बात करते हैं की ड्राइवर्स की। इस कंपनी के बहुत सारे की ड्राइवर्स हैं, हालांकि कुछ चीजें यहाँ पर हम डिस्कस कर चुके हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि राइज ऑफ यूपीआई एंड स्मार्टफोन जब से आया है, लोगों की चॉइसेस काफी चेंज हुई हैं और बहुत सारे ब्रांड्स को जब ये बात समझ में आ गई तो उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स उसी तरीके से बनाए और लोगों की हेल्प हुई है। बेसिकली उनके पोटेंशियल कस्टमर्स उन्हें समझ में आ गए, ठीक है। यूपीआई, ई आधार, चीप इंटरनेट, इन चीजों को कैसे इनकैश किया जा सकता है ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकैश ऐसे नहीं कि किसी को कुछ गलत बेचा जाए, बट उसी में कुछ ऐसी चीजें जो उनकी नीड भी है और इसी इकोसिस्टम में कहीं पर इंटीग्रेट किया जाए तो कितना अमेजिंग, कितना स्मूथ हो जाता है ना। सो स्टार्टअप्स में टाइमिंग मैटर करती है। बहुत सारे स्टार्टअप फेल हो जाते हैं, नॉट बिकॉज द आइडिया इज बैड, बिकॉज मार्केट या तो बहुत अर्ली है या बहुत लेट आ रहे हैं। इसलिए सही टाइम पर सही चीज जो है ट्रिगर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है बिहेवियरल सिंप्लिसिटी। इंश्योरेंस को लेकर के एक साइकोलॉजी है कि भैया बहुत मुश्किल प्रोडक्ट है, कॉम्प्लिकेटेड है, मुश्किल है बेचना, फ्रॉड होते हैं, ठीक है, इसलिए लोगों को वो बहुत ज्यादा एक्साइट नहीं करता है। प्लस इमीडिएट रिवॉर्ड्स भी नहीं होते हैं, ट्रस्ट भी बहुत लो है, पेपर वर्क बहुत इरिटेटिंग है। तो यहां पर इस कंपनी ने क्या किया, प्राइसिंग अपनी अफोर्डेबल कर दी, सबको एक्सेस दे दिया, ऑनबोर्डिंग को स्मूथ बना दिया एंड बूम, कंपनी ग्रो करने लगी। सो दीज आर द थिंग्स। और बहुत सारी चीजें हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि इतना स्मूथ है, चैलेंजेस भी बहुत सारे हैं क्योंकि मार्जिन्स बहुत थिन है, कस्टमर ट्रस्ट बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। क्लेम का एक्सपीरियंस डिटरमिन करता है कि रिटेंशन कैसा होगा, रेगुलेशंस बहुत स्ट्रिक्ट है, इंश्योरेंस अवेयरनेस अभी भी बहुत वीक है इंडिया में, बट स्टिल दिस कंपनी इज कोपिंग अप एंड आई थिंक दैट्स इनफ फॉर दिस केस स्टडी। मतलब बहुत सारी चीजें हमने यहाँ पर डिस्कस करी हैं और बहुत कुछ बताया जा सकता है, बट बॉटम लाइन यही है कि ये कंपनी बीमा प्लान इज नॉट जस्ट सेलिंग इंश्योरेंस पॉलिसीज, दे आर ट्राइंग टू रीडिजाइन हाउ फाइनेंशियल प्रोटेक्शन रीचेस ऑर्डिनरी इंडियंस। दिस इज द वन लाइनर ऑफ दिस कंपनी। तो ये कंपनी जो ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग मार्केट जहां पर बहुत ज्यादा प्लेयर्स थे, बहुत भीड़ भाड़ थी, जहां पर ट्रस्ट लेवल लो थे, वहां पर भी एक गैप ढूंढा, उसको भी फिल किया और लोगों का ट्रस्ट गेन करके ये कंपनी मार्केट में कूद पड़ी एंड दे आर डूइंग रियली वेल। तो ये हमेशा होता है, आपको कुछ ना

0: मात्र इन्हें ना इमारत समझो, संस्कृति की ये धरोहर है। ये इतिहास की गौरव गाथा, कला शिल्प की छवि मनोहर है। अतीत के उम्दा तजुर्बों का भरा हुआ सरोवर है। ये हमारे देश की धरोहर, इन्हें सहेजना हमारी जरूरत है। तो आइए रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के संग लेक वादा, अपने देश की धरोहर को बचाएंगे और अपने देश को सम्मान दिलाएंगे।
1: Well, hello, good afternoon, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, जय माता दी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आरजे सागर, आज हम लेकर के शो वॉइस ऑफ यूथ। शो बहुत स्पेशल है, उसकी बहुत सारी वजह भी है कि यहाँ पर ये शो बहुत सारी चीजें आपको सिखाता है। हर बार हमारे साथ यहाँ पर कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं जो अपनी लाइफ के ओवरऑल एक्सपीरियंस से कुछ कुछ स्किल्स हम लोगों तक पहुंचाते हैं। आज हमारे साथ बहुत ही अच्छे, बहुत ही प्यारे से कलाकार मौजूद हैं। यदिन सेतिया नाम है इनका, मैं पर्सनली नहीं जानता हूँ, बहुत प्यारे इंसान, बहुत ही प्यार के कलाकार, एक अभिनेता है, फोटोग्राफर है, एंड इसके अलावा काफी सारी चीजें करते रहते हैं, वॉइस ओवर्स भी करते हैं, अपार्ट फ्रॉम दिस थिएटर किया है, सो मेनी थिंग्स आर देयर। आज प्राइमरली हम लोग जो फोकस करेंगे, दैट वी गोना टॉक अबाउट कंटेंट क्रिएशन, हाउ यू कैन लर्न इट, हाउ टू मेक योर वीडियोस, हाउ टू राइट अ स्क्रिप्ट, हाउ टू अपलोड इट, व्हाट आर द थिंग्स दैट ऑल यू नीड टू यू नो और यू कैन से जस्ट जॉट इट डाउन जस्ट फॉर द सेक ऑफ दैट कंटेंट क्रिएशन। सो टुडेज शो इज गोना बी रियली स्पेशल फॉर ऑल ऑफ अस। ऑन दिस नोट वी विल स्टार्ट द शो, और यहां पर सबसे पहले स्वागत करना चाहेंगे यतिन सेतिया का। यतिन, स्वागत है हमारे शो में।
2: और इंस्टाग्राम पे मैं वीडियोस बनाता हूँ, ऑलमोस्ट 100 के मेरे इंस्टा पे हो चुके हैं फैमिली, और उसमें मैं बेसिकली फनी, रिलेटेबल, कभी कभी इमोशनल वीडियोस डालता हूँ, और मुझे मिमिक्री करना बहुत अच्छा लगता है, मुझे मिमिक्री आती है, मैं कम से कम 10 वॉइस प्लस आवाजें मैं निकाल सकता हूँ। और इससे पहले मैं एज अ फोटोग्राफर वर्क करता था, क्रिएटर्स के लिए रील्स बनाता था, मैं उनके शूट करता था, और अब मैं खुद कैमरा के आगे आ चुका हूँ। तो मेरी जर्नी कैमरा से पीछे से लेके आगे तक की मेरी जर्नी रही है, और अभी आगे बहुत चलेगी। तो ये है यतिन यार।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही सुंदर सी यात्रा यहाँ पर रही है, एंड ये हम सब लोग देख पा रहे हैं, 100 के से ज्यादा इनकी फैमिली है यहाँ पर, एंड प्योरली हार्डवर्क है उनका और जो उन्होंने रन किया यहाँ पर। एक सवाल यहाँ पर उठता है कि व्हाट ट्रिगर्ड यू और व्हाट इंस्पायर्ड यू टू स्टार्ट योर कंटेंट जर्नी, क्या ऐसा था जिससे आपको ट्रिगर किया और आपको लगा कि नहीं यार मेरे को ये करना चाहिए?
2: ये कीड़ा मुझे स्कूल टाइम से था, तो मुझे काफी स्कूल टाइम से ऐसे एक्ट करने का शौक, अच्छा मतलब ऐसे एक्ट करना मुझे अच्छा लगता था। मैं स्कूल टाइम में मिमिक्री करता था अपने टीचर्स की और अपने आसपास लोगों की, तो वहां से मुझे था कीड़ा, बट मुझे ये नहीं पता था कि मैं कभी इसको प्रोफेशनली करूंगा, मैं तब मजे में कर रहा था। बट धीरे धीरे धीरे धीरे जब मैं ऐसे लोगों से मिलता गया जो ये इस कंटेंट में कर रहे हैं, मैं एज अ प्रोफेशनली उनसे मिला था कि मैं शूट करता हूँ और वो ये चीजें वीडियोस क्रिएट करते हैं, वो काफी फेमस क्रिएटर हैं, और उनके साथ मैं करता गया। फिर वहां से जब मैं शूट उनका करने लगा, धीरे धीरे धीरे उनको देख के मेरा वो कीड़ा जो दबा हुआ था, जो मेरे अंदर जो चाह थी, वो बाहर आने लगी। तो मैंने उनको देख देख के अपना शुरू करा कंटेंट बनाना। मैं मिमिक्री अपना करता था, मिमिक्री वॉइस निकालता था, वो उसको मैंने थोड़ा और सीरियसली लेना शुरू करा। फिर मैं यूट्यूब वगैरह पे देखता था वॉइस एक्सरसाइज, और ये हमारे बीच में जो अभी हमसे जो इंटरव्यू ले रहे हैं सागर जी, इनसे पूछता था मैं वॉइस के बारे में, इनको बहुत नॉलेज है, ये बहुत अच्छे एक्टर है, तो इन्होंने अपनी वॉइस पर बहुत अच्छा काम किया है, तो ये एक इंस्पिरेशन है हमारे लिए। तो मैं इनसे पूछता था सागर जी से कि कैसे करना है, क्या करना है, तो एक्सरसाइज पे अपना ध्यान देता, वॉइस एक्सरसाइज पे। फिर धीरे धीरे धीरे धीरे करके करते करते इंस्टा पे मैंने फाइनली मुझे जो जिनका मैं शूट करता था, ऋषभ भैया और पूरी टीम, ऋषभ भैया ने मुझे मोटिवेट किया कि तू कर सकता है, तेरे में पोटेंशियल है, टैलेंट भी है, तुझे ट्राई करना चाहिए। तो उनके कहने पे मैंने फिर वीडियोस बनाना शुरू करा। इनिशियली तो बहुत ऐसे ही वीडियोस बनाता था, बट धीरे धीरे धीरे इम्प्रूव करता गया, करता गया और सबके साथ से मैं सीखता गया, और अब अच्छा कर रहा हूँ ऐसा मुझे ऑडियंस बोलती है, प्यार देती है, व्यूज आते हैं, कमेंट्स आते हैं। तो ये जर्नी थी कि एक स्कूल का कीड़ा जग गया, फिर यहाँ पे अच्छे क्रिएटर्स को देख के मेरा भी मन करा कि यहाँ करना है, तो वहां से मैंने फिर शुरू किया।
1: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। नहीं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। उसका प्रमाण ये भी है कि आज आप रेडियो पर लाइव हैं, लोग आपको सुन पा रहे हैं, तो वो उस चीज का प्रमाण है कि आप अच्छा कर पा रहे हैं। डेफिनेटली अपने आप में ये चीजों को सीखना एक हुनर होता है, सीखने का भी, तो हर इंसान में ये चीज जो है होनी चाहिए कि आपको सीखना आना चाहिए चीजों को उठाना कैसे है। हमारे आसपास एलिमेंट मौजूद होते हैं। इसी नोट पर दोस्तों लेंगे म्यूजिकल ब्रेक। यहाँ पर अभी तक हमने यतिन से बात करी, इनके डोमेन के बारे में जाना है, आइए इसको थोड़ा सा टेक्निकल लेकर के जाएंगे, आगे कंटेंट के बारे में बात करेंगे, बट ये सब बातें होंगी इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद। सो स्टे ट्यून्ड विद अस, आई एम आरजे सागर, राइट नाउ यू आर लिसनिंग टू रेडियो मधुबन 107.8 एफएम।

0: मैं जल हूं, मेरा जन्म सृष्टि के निर्माण के साथ हुआ था। मैं केवल पृथ्वी ग्रह पर ही हूं, तभी यहां जीवन संभव है। और अगर मैं नहीं रहा तो यहां पर भी जीवन असंभव हो जाएगा।
1: तो क्या आप ऐसा चाहते हैं? नहीं ना, तो आज ही खुद से करें एक वादा, जल बचाएंगे और पृथ्वी पर जीवन को सुरक्षित बनाएंगे। रेडियो मानव रचना 107.8 का संदेश।
0: समय की तुम सुनो आहट, पानी का ना छाए संकट।

0: पर हम।
1: अरे कहाँ पर अटक गए यार?
0: पर हम।
1: अरे कहाँ पर अटक गए यार?
2: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर, फरीदाबाद का अपना रेडियो स्टेशन। अपना रेडियो।

0: वेलकम बैक। आई जस्ट होप यू आर लविंग द वाइब्स ऑफ दिस शो, यू आर लविंग द वाइब ऑफ दिस म्यूजिकल ब्रेक। एंड अगर आपके पास कोई फीडबैक है मेरे लिए, यतिन के लिए, कोई भी चीज है जो आपके जहन में है और हम तक पहुंचानी है, डू मेक श्योर 8010781078 इस नंबर तक आप पहुंचा चुके हो। फिलहाल अपने शो को आगे बढ़ाएंगे। यतिन, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे रहेगा कॉन्टेंट क्रिएशन के बारे में। व्हेन यू थिंक अबाउट अ कॉन्टेंट, अ पीस ऑफ कॉन्टेंट, तो उसको कैसे आप सोचते हो एंड व्हाट इज द प्रोसेस, क्या जाता है उसके पीछे?
1: प्रोसेस ये है कि जैसे कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि मैं रिलेटेबिलिटी पे कंटेंट बनाता हूँ और उसको फिर बाद में फनी करने का ट्राई करते हैं। तो वो जो रिलेटेबिलिटी आती है, जो हमारे आसपास चीजें हो रही हैं, जो मैं अपने दोस्तों के साथ घूम रहा हूँ या कुछ भी ऐसा कर रहा हूँ, तो मेरी एक बचपन से ही मतलब आदत थी, मैं ऑब्जर्व बहुत ज्यादा करता हूँ, तो छोटी छोटी चीजें मुझे ऑब्जर्व करने की आदत है। तो मैं वही, अगर मैं कहीं भी जा रहा हूँ, किसी के साथ जा रहा हूँ, कुछ भी हो रहा है, अगर कोई जो क्रैक हो गया, कुछ भी ऐसा हो गया, तो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में चल रहा होता है कि मुझे कंटेंट बनाना है, तो वो ऑटोमेटिकली मैं ग्रैब कर लेता हूँ कि हाँ यार, इस टॉपिक पे बनाया जा सकता है, ये टॉपिक शायद अभी कवर नहीं हुआ, इस टॉपिक को पे कुछ और अच्छे से इसको लिख के करा जा सकता है। तो पहले तो यहाँ से ऑब्जर्वेशन से मुझे रहता है कि मैं ऑब्जर्व करूँ, और फिर उसके बाद मैं राइटिंग के लिए बैठता हूँ। राइटिंग के लिए मैं, मेरा दिमाग से या तो रात को चलता है, या फिर मैं जब गाड़ी चला रहा होता हूँ, ड्राइव कर रहा होता हूँ, तब मेरा दिमाग चलता है। तो ये दो टाइम पे मेरा दिमाग चलता है। फिर मैं उसके वॉइस नोट्स बनाता हूँ सबसे पहले रफ, कि इसमें इस तरीके से कर सकते हैं, इसमें इस तरीके से कर सकते हैं। फिर मैं उसको आराम से रात में बैठ के प्रॉपर लिखता हूँ कि ये डायलॉग्स होने चाहिए, ये सब होना चाहिए। तो फिर उसके बाद जाके मैं उसको शूट करता हूँ, और फिर शूट करने के बाद एडिट मैं साथ साथ ही उसी टाइम मोमेंट पे कर लेता हूँ, सो दैट कि कुछ अगर दिक्कत होती है तो मैं फटाफट भी कुछ शॉट लेना हो तो वो कर लेता हूँ। और कभी कभी ऐसा होता है कि इम्प्रॉम्प्ट शूट्स भी हो जाते हैं कभी कभी, जैसे हम बैठे हुए हैं, जैमिंग कर रहे हैं, दोस्तों से बात कर रहे हैं, कुछ आइडिया आया और फटाफट उसको शूट कर लिया और वन टेक मतलब बना के कुछ भी, जैसे कि वो गैबल करके फटाफट उसको ऑन मोमेंट और उस टाइम पे शूट कर लिया। कभी कभी वो रेयर ऐसे केसेस होते हैं, बट हाँ इस तरीके से लेकिन मैं करता हूँ कि पहले मैं अपना स्क्रिप्टिंग कर लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं शूट करता हूँ।
0: और
1: मतलब अगर आपको सच में इंटरेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको नहीं आता, आप मतलब आप 1% जानते हो, 2% जानते हो, नॉलेज आपकी बहुत कम है, अगर कुछ भी नहीं आता, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट आपके अंदर एक जिद है कि मुझे करना है और सीखना है, तो आप शुरू करो। सबसे पहले, सबसे पहला काम ही है, सबसे मुश्किल काम है शुरू करना। अगर आपने शुरू कर लिया ना, उसके बाद धीरे धीरे चीजें आपके रास्ते आराम से खुलते जाएंगे, आप कर लोगे। सबसे पहले जीवा ये 0 to 1 जाना बहुत मुश्किल होता है, 1 to 10 जाना थोड़ा सा इजी हो जाता है, और 10 to 100 की जर्नी बहुत आराम से हो जाती है। तो सबसे पहला मुश्किल काम है स्टार्ट करना, शुरू करना। आप कैमरा लेके, आप कुछ नहीं, अगर आपको लग रहा है तो आप कुछ नहीं, आप नॉर्मली वीडियोस कैमरा ऑन करके आप अपना बोलना शुरू करो, आप अपने आप को देखो कि क्या बोल रहे हो, कैसे, क्या कॉन्फिडेंस लेके आओ। और ये है सबसे पहले, आप अपना ही मतलब कैमरे के आगे बोलना शुरू करो, और धीरे धीरे धीरे करके हो जाएगा। सबसे मेन चीज है शुरू करना, और शुरू कैसे करना, आपको खुद ही, अगर जिद है, दिल है, तो आप कर सकते हो।
0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और प्रोसेस क्या हो सकता है अपार्ट फ्रॉम जीर? अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा टेक्निकल बात करूँ कि एक बिगिनर के लिए क्या प्रोसेस होना चाहिए, कि क्या क्या चीजें हैं जिसमें फॉल करती हैं?
1: यही है कि टेक्निकल अगर आए तो आपके पास नॉर्मली एक अच्छा कैमरा होना चाहिए। जरूरी नहीं आपके पास सबसे महंगा कैमरा हो, फोन कैमरा, बेसिक फोन कैमरा आईफोन के अच्छे आते हैं, जो बेस स्टार्ट हो जाते हैं वहां से, नहीं तो एंड्रॉयड के भी कुछ आज के एंड्रॉयड बहुत अच्छे चल रहे हैं आजकल एंड्रॉयड। तो आप वीडियो, बेसिकली वीडियो क्वालिटी अच्छी हो, आप पॉसिबल हो सके माइक भी, बहुत बेसिक से शुरू हो जाते हैं, माइक भी रखो, क्योंकि ऑडियो वीडियो क्वालिटी मैटर करती है कॉन्टेंट क्रिएशन में। वो जितनी अच्छी होगी लोग उतना अच्छा देख पाएंगे, उतना अच्छा समझ पाएंगे। तो ये दो चीजों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, ऑडियो और वीडियो क्वालिटी सबसे पहले अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद आपकी राइटिंग के ऊपर आती है, धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे आपको उस पे काम करना चाहिए। मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें एक कपल था, उन्होंने मिस्टर बीस्ट से ये बात पूछी थी कि हमें ग्रो करना है, हमें चैनल को अच्छा बनाना है, अपनी वीडियोस को बेहतर बनाना है, तो क्या करें। तो मिस्टर बीस्ट ने ये एडवाइस दिया था कि आप 100 वीडियोस बनाओ और डेली आप एक वीडियो जब बनाओगे तो आपको जो भी कमी है अपनी पिछली वीडियो में वो आप नेक्स्ट वीडियो में करेक्ट करोगे। तो आपको भी ऐसा ही करना है, आप वीडियो शुरू करो और 100 वीडियोस का एक टारगेट बनाओ और आप नेक्स्ट वीडियो जब भी बनाओगे तो पिछली वीडियो से एक कमी आपको इम्प्रूव करनी है, आपको सुधारना है। ऐसे करते करते उस कपल ने 1 मिलियन कर लिए थे 100 वीडियोस में।
0: बहुत सुंदर।
1: कुछ भी नहीं था, सबसे मेन चीज थी कंसिस्टेंसी जो होनी चाहिए।
0: यही दोस्तों ये प्रोसेस होता है, मतलब लाइफ में हर चीज का प्रोसेस यही होता है कि व्हेन यू आर स्टार्टिंग समथिंग द फर्स्ट मोस्ट रिजर्व्ड एरिया इज द बिगिनिंग पॉइंट। वंस यू स्टार्ट डूइंग इट सो आप खुल जाते हो थोड़ा सा एंड उसके बाद फिर आपको ये सिर्फ देखते रहना है कि मैं क्या कर रहा हूँ या मैं क्या कर रही हूँ। जैसे अतन ने बताया कि आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस, अपने प्रीवियस वर्क को देख करके आपको इम्प्रूव करना है, जो गलतियां पहले हुई हैं वो अगले में ना हो। मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट अबाउट इट, राइट। हम जस्ट नोट लेकर चलेंगे अपने शो को आगे दोस्तों, और उसके बाद अपने शो में आगे बात करेंगे। कुछ और चीजें हैं, कुछ और सवाल है मेरे जहन में जो हम पूछेंगे। बढ़िया, हमारे शो का लास्ट फेज होगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस कॉन्टेक्स्ट तो आप मुझे 8010781078 इस नंबर पर जरूर बताइएगा।

0: Once again, I'm hoping ये बातचीत आपको पसंद आ रही है। यतिन बहुत ही खूबसूरत कलाकार हमारे शहर फरीदाबाद के हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं और बहुत प्यारी प्यारी बातें हमें बता रहे हैं और ईमानदारी से हमें जवाब दे रहे हैं कि आप जेन्युइनली कैसे ग्रो कर सकते हो। अभी तक हमने बात करी यतिन के डोमेन के बारे में, हमने बात करी कॉन्टेंट क्रिएशन के बारे में, हमने बात करी प्रोसेस कैसे होता है, हमने ये भी बात करी है कि एक बिगिनर को अगर स्टार्ट करना है तो कैसे स्टार्ट किया जा सकता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो बहुत लोगों के दिमाग में एक अवहम होता है कि कॉन्टेंट क्रिएशन में पैसा कैसे होता है नहीं होता है। थोड़ा सा फाइनेंशियल पार्ट के ऊपर बात करते हैं। ये दिन बहुत सारे लोगों को कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट तो करना है लेकिन दे आर नॉट श्योर अबाउट इट कि पैसा होता है नहीं होता है, दाल चावल का जुगाड़ कैसे होता है। आप हमें थोड़ा सा गाइड करिए कि पैसे की व्यवस्था कैसे की जाती है व्हाइल परस्यूइंग द कंटेंट क्रिएशन जर्नी।
1: इसमें पैसा होता है, अच्छा होता है, और लेकिन ये है कि वो एक समय बाद आता है। जैसे कि हम बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं तो हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि हम फर्स्ट डे से उसमें से रिटर्न मिलना शुरू हो जाएगा। अगर कंटेंट क्रिएशन में भी इस तरीके से अगर आप अपना टाइम इन्वेस्ट करेंगे, अपनी चीजें इन्वेस्ट करेंगे, अपना टैलेंट इन्वेस्ट करेंगे, अपनी स्किल्स इन्वेस्ट करेंगे, तो ये नहीं है कि आपको पहले दिन से ही रिजल्ट मिलना शुरू होगा। आपको इसको टाइम देना पड़ेगा। किसी को 3 महीने लग जाएंगे, किसी को 3 साल भी लग जाते हैं। तो इट ये ऐसा जरूरी नहीं है, ये एक बिजनेस की तरह है कि आप इसको कितना आप जितना पानी डालेंगे उतने पौधा उगेगा, उतना ज्यादा पौधा बड़ा होगा। तो ये भी वैसा ही है, इसके अंदर पैसा अच्छा है। लेकिन हाँ, एक बार जब पौधा उग गया, जब पेड़ उग जाएगा तो उसमें से फल निकलेंगे ही, और मीठे मीठे फल निकलेंगे जितना आप पानी डालेंगे। तो पैसा अच्छा है, बढ़िया है। शुरू शुरू में बहुत दिक्कतें भी होंगी लेकिन जब आना शुरू होगा तो अच्छा होगा। इसमें बहुत अलग अलग तरीके होते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, स्नैपचैट, अलग अलग जगह हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं। आप सेम वीडियो बना के 4 प्लेटफॉर्म पे डाल सकते हैं। 3 प्लेटफॉर्म इसमें से आपको मॉनेटरी फायदा देती है और जो चौथा इंस्टाग्राम है वो आपको ब्रांड्स के थ्रू फायदा देता है। आपकी फेस वैल्यू बढ़ती जाएगी, आपके पास ब्रांड्स आएंगे, ब्रांड्स आपसे काम कराएंगे। इंस्टाग्राम पे इस तरीके से काम होता है और बाकी प्लेटफॉर्म पे भी ब्रांड्स आ सकते हैं उस, लेकिन साथ साथ आपका बेस जो पैसिव इनकम रहेगी वो इस तरीके से रहेगी। आप डालेंगे शॉर्ट्स फॉर्म को, डालेंगे स्नैपचैट पे, डालेंगे यूट्यूब पे, डालेंगे फेसबुक पे डालेंगे, तो ये 3 प्लेटफॉर्म आपको पे करता है। मोनेटाइजेशन होता है पूरा, सारी चीजें प्रोसेस होती हैं, उसके बाद इसमें आपको पैसा मिलता है। लेकिन उसका भी प्रोसीजर है, एक आपको अचीव करना होता है, वो एक टारगेट होता है इनका, पॉलिसी होती है प्लेटफॉर्म की, वो आप क्रॉस करते हैं, उसके बाद आपका चैनल मोनेटाइज होता है और उसके बाद ही होता है। तो ये चीज है कि हाँ, आप करते रहोगे, वही पहली बात है कि जितना पानी, जितनी मेहनत डालोगे आप अपने काम में, जितना अच्छी तरह आप अपने आप को स्किल्स इंप्रूव करोगे और अपना टैलेंट को बढ़ाते जाओगे, आप अपने फॉलोअर्स बढ़ाते जाओगे, आपका अर्निंग उस हिसाब से बढ़ती जाएगी।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत उम्दा बात उम्दा। और ये दिन आपने, अगर मैं आपकी बात करूं तो अभी आपका चैनल जो है अच्छा हुआ है, अभी आप अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं, आपको ब्रांड्स भी आ रहे होंगे, पैसा वैसे आ रहा होगा। बट इफ आई टॉक अबाउट द बिगिनिंग पार्ट, जब आपने शुरू किया था तो जाहिर सी बात है डे 1 पे आपके पास पैसा नहीं होगा। उस फेज में जब आपके पास ब्रांड नहीं आ रहे हैं, जब तक आपने ग्रो नहीं किया, ग्रोइंग फेज में हो, कैसे अपने आपको सस्टेन किया जाता है, कैसे दाल चावल का जुगाड़ किया जाता है, या आपने कैसे किया?
1: मैं अपना बताता हूँ मैंने कैसे किया। मेरा फोटोग्राफी बिजनेस था, मैं उसमें बहुत अच्छा कमा रहा था, तो मैंने इतनी सेविंग्स कर ली थी कि मुझे था कि मैं 1 साल तक का बिना कमाए मैं अपने लिए खर्च कर सकता हूँ। तो मैंने उतना सेव कर लिया था और इसी वजह से मैं वो कर पाया। बट आप इसको इनिशियली, तो मैं आपको यही बोलूंगा कि अगर आप कुछ काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो साथ साथ आप कमाते कमाते आप ये करते रहें कि कुछ, मतलब अगर आप ऑलरेडी कहीं जॉब कर रहे हैं तो ये साथ में पैरेलली करते रहें। मेन स्ट्रीम इनिशियली बना रहे हैं तो आप, या तो आप घर से, आपका बहुत सपोर्ट होना चाहिए, बहुत पैसा होना चाहिए, तभी आप ये काम कर पाएंगे। वरना ये है कि इसमें ये काम आपको इतना निचोड़ देगा कि आपको लगेगा कि पैसा भी नहीं, और ये सब वो आपको डिमोटिवेट करेगा। तो आपको पहले ही बैकअप लेके चलना पड़ेगा। आइदर आपके पास जॉब होनी चाहिए या कुछ सोर्स ऑफ इनकम होनी चाहिए, अच्छा बेसिक हो, आप अपने खर्चे निकाल पाओ। इनिशियली आपको ये सब ध्यान देना पड़ेगा, या फिर आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा कि मुझे कम में सेटल करना है इनिशियली, या तो आप उस चीज के लिए माइंड सेट कर लो।
0: Alright, we are concluding the show here. यदि कोई ऐसी चीज़ है जो मैं ना पूछ पाया हूँ और आप कहना चाहते हो तो please feel free.
1: बस यही कहूंगा कि सबसे मुश्किल स्टेप होता है शुरू करना, सबसे हार्ड स्टेप होता है, किसी चीज का शुरुआत शुरू करोगे तभी आगे बढ़ पाओगे। आप ये सोचते रहोगे मैंने करना है करना है करना है, सोचते रह जाओगे तो रह ही जाओगे। तो अगर आपको जेन्युइनली आपको कुछ करना है, कोई भी काम करना है, नॉट कंटेंट क्रिएशन, तो शुरू करें, खड़े हुए अभी और वेट मत करें किसी चीज का।
0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो यहाँ पर हमने यतिन से बात करी है, यतिन एक कंटेंट क्रिएटर हैं, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं इनकी प्रोफाइल को, यतिन यार नाम से इनकी प्रोफाइल है इंस्टाग्राम के ऊपर, 100K से ज्यादा इनके फॉलोअर्स हैं एंड सच अ लवली गाय, सच अ ब्यूटीफुल सोल, ब्यूटीफुल पर्सनालिटी। आप जाके एक बार चेक जरूर करिएगा इनका काम। और यहाँ तक हमने बात करी है यतिन से, यतिन ने हमें बहुत अच्छे शब्दों में एक गाइड के तौर पर समझाया है कि कंटेंट क्रिएशन एग्जैक्टली दुनिया कैसी होती है, कैसे स्टार्ट करना होता है, काम कैसे करना होता है, पैसा कैसे आता है, कैसे अपना सस्टेन करना होता है। तो तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा यतिन मैं आपका। थैंक यू सो मच मैन।
1: थैंक यू सो मच।
0: लेट दोस्तों अभी इसी के साथ वक्त है अपने शो को यहाँ पर कंक्लूड करने का। आशा करता हूँ आज के शो से

0: हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूँ आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टूवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर हम चल रहे हैं ऐसे खास ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जो सही मायने में देखा जाए तो अनसंग हीरोज ऑफ सोसाइटी कहलाती हैं। आपको पता है मैं आपको अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस, इंडिविजुअल्स, ऐसे लोगों से मिलवाती हूँ जो मानवता की राह पर चल रहे होते हैं। ऐसे लोग जिन्हें मैं अनसंग हीरोज ऑफ सोसाइटी कहती हूँ, लेकिन दरअसल वो हीरोज ऑफ सोसाइटी होते हैं, रियल हीरोज ऑफ सोसाइटी होते हैं। ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो गुमनामी में काम कर रही हैं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो ढेर सारा मानवता का काम कर रही हैं, इन्हीं के बारे में ये खूबसूरत सा कार्यक्रम है। आज की इस कड़ी में हम जिनके बारे में बात करने वाले हैं, जिनके साथ मानवता की राह पर चलने वाले हैं, वो है माया केयर फाउंडेशन। माया केयर फाउंडेशन से आज हमारे साथ ज्योति मोरे जी जुड़ी हैं, जो कि वहाँ की HR हैं पुणे से। ज्योति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो मानव रचना 107.8 FM के स्टूडियो में।
1: नमस्कार भावना जी।
0: ज्योति जी, माया केयर फाउंडेशन की अगर बात की जाए तो मुझे बताइए कि माया केयर फाउंडेशन की शुरुआत कब और कैसे हुई?
1: जी, माया केयर फाउंडेशन जो कि मंजरी गोखले जोशी, उनकी लेट मदर डॉक्टर विद्या गोखले एंड अभय जोशी, इन्होंने इसकी नींव रखी है 2009 से।
0: जी,
1: तब से हम ये काम कर रहे हैं।
0: जी,
1: और ये हम स्पेशली करते हैं बुजुर्गों के लिए और विकलांगों के लिए।
0: जी,
1: तो बुजुर्गों के लिए करते वक्त हमारे फाउंडर के मन में ऐसे ख्याल आते थे
0: जी,
1: जिनके बच्चे जो बाहर के हैं, बाहर जाते हैं, अब्रॉड जाते हैं या फिर ऐसे अलग स्टेट में जाते हैं
0: जी,
1: तो फिर यहाँ पर बुजुर्ग व्यक्ति बहुत अकेले पड़ जाते हैं
0: जी,
1: और उनकी जो रोजमर्रा की जो चीजें होती है, जो उनकी जरूरतें होती हैं, जैसे कि अस्पताल लेकर जाना, बैंक में जाना, तो ये घर में रहकर, खुद के घर में रहकर अगर किसी ने कोई व्यक्ति उनको प्रोवाइड किया, उनको एक व्यक्ति अगर उनको दिया, तो वो आसानी से अपने घर में रहकर ही ये सारी चीजें कर सकते हैं और एक खुशहाल और एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं
0: जी।
1: ये हमारे फाउंडर के मन में आए
0: जी, और उसके बाद शुरुआत हुई माया केयर फाउंडेशन की। जैसे कि इसका नाम है, देखिए भाई, अगर हम बात करें तो माया केयर फाउंडेशन ही ये कहता है कि एक ऐसी फाउंडेशन है जहां आपको केयर मिल रही है। अब इसमें सबसे पहले आते हैं बुजुर्ग और साथ में आते हैं विकलांग लोग। आप खुद सोच कर देखिए कि वो लोग जो बहुत ज्यादा भाग दौड़ नहीं कर सकते हैं, जो लोग इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में थोड़ा सा ठहर गए हैं, उनका ख्याल कौन रख रहा है? अब आप सोच कर देखिए कि आज के जमाने में जहाँ कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है और लोग अपना करियर बनाने के लिए अपने घरों से दूर या तो दूसरे देशों में काम कर रहे हैं या फिर दूसरे राज्यों में काम कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में परेशानी होती है कि भाई आप खुद सोच कर देखिए कितना मुश्किल हो जाता है उन लोगों के लिए जब घर पर उनके घर के जो माता पिता हैं या बुजुर्ग हैं वो अकेले होते हैं और वो दूसरे देश में या फिर दूसरे राज्य में सिर्फ मोबाइल फोन के जरिए या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सिर्फ उनका चेहरा देख पाते हैं, परेशानी देख पाते हैं, पर मदद नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में अगर ऐसा कोई सदस्य है जो इनकी मदद कर सके तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। और यही खूबसूरत सा काम किया माया केयर फाउंडेशन ने। कैसे किया, इसकी शुरुआत कैसे हुई, किस प्रकार ये लोग सुविधाएं दे रहे हैं, इसके बारे में करेंगे बात। लेकिन उससे पहले लेने वाले एक छोटा सा प्यारा सा म्यूजिकल ब्रेक। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लव।

0: Din tanana dir tanum tanana dir na din tanana dir tanum tanana dir na din tanana dir tanum tanana dir na din tanana dir tanum tanana dir na din tanana dir tanum tanana dir na
1: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर प्रोग्राम है मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर हम चल रहे हैं ज्योति मोरे जी के साथ, जो कि एचआर प्रोफेशनल है माया केयर फाउंडेशन से। सो माया केयर फाउंडेशन एग्जैक्टली क्या करती है, चलिए जानते हैं ज्योति जी से। ज्योति जी, किस प्रकार के काम करते हैं आप माया केयर फाउंडेशन में?
2: जी, माया केयर फाउंडेशन में हम बुजुर्गों के लिए सेवाएं प्रदान करते हैं, जैसे कि उनके बैंक खाता का पंजीकरण करना या फिर उसके लिए जो भी काम होते हैं उस तरीके के काम, उनके घर जाकर उनके साथ छोटे छोटे खेल खेलना। क्योंकि क्या होता है ना, अक्सर ये बुजुर्ग ना घुटनों की वजह से या फिर आँखों की रोशनी की वजह से ठीक से दिखाई नहीं देता है, तो फिर वो जरा सा अस्पताल जाने के लिए आनाकानी होता है या फिर अखबार नहीं पढ़ सकते, कुछ किताबें नहीं पढ़ सकते, या फिर बुजुर्गों को अभी कुछ ऐसे टेक्निकल जो होते हैं लैपटॉप या फिर फोन कैसे चलाते हैं ये पता नहीं होता, ये ऑनलाइन पेमेंट कैसे करते हैं ये पता नहीं होता, और जब घर के सभी लोग बाहर जाते हैं तो फिर घर में वो बहुत अकेलापन महसूस करते हैं। तो इसके लिए हमने एक ऐसा प्रोग्राम बनाया कि हमारे जो वॉलेंटियर्स हैं, जो हमारे स्वयं सेवक हैं, वो उनके घर जाकर उनके साथ बैठते हैं, उनके साथ छोटे मोटे खेल खेलते हैं, उनके अपॉइंटमेंट पर उनको अस्पताल लेकर जाते हैं, फिर से घर आकर छोड़ते हैं, बैंक के काम करते हैं, सारे उनको जो भी कुछ पढ़ना है, उनकी रुचि है उस अनुसार उनको पढ़कर सुनाते हैं। तो इस तरीके का काम बुजुर्गों के लिए माया केयर से किया जाता है। और दूसरा काम हमारा चलता है बिंदु प्रोजेक्ट। बिंदु प्रोजेक्ट मीन्स विकलांग के लिए हमने 2020 में हमने ये प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसको हम बिंदु प्रोजेक्ट कहते हैं। बिंदु प्रोजेक्ट में हमने बहुत सारे ऐसे विकलांग बच्चे बच्चियाँ ये इनका चयन किया जो कि बोल नहीं सकते हैं, जिनको दिखाई नहीं देता है, जो कि चल नहीं सकते हैं। ऐसे हमने एक टीम बनाई जिससे कि जो बोल नहीं सकता है उसका डाटा टीम, जो चल नहीं सकता है उसकी पावर टीम, और जो आंखों से देख नहीं सकता है लेकिन उसकी आवाज़ बहुत सुरीली होती है या फिर उनके आवाज़ में बहुत ताकत होती है, तो इसका हमने उनके काम के लिए यूज किया। तो इस तरीके से माया केयर इन दोनों की कामों के लिए अभी काम करी, इन दोनों भी दुर्बल घटकों के लिए ये काम कर रही है।
1: सो दोस्तों, माया केयर फाउंडेशन बेसिकली अगर देखा जाए तो बुजुर्गों का ख्याल रख रही है, विकलांगों का ख्याल रख रही है, वो उनकी वो लाठी बन रही है जिस लाठी के लिए दरअसल उन्होंने सोचा था कि आने वाले समय में शायद बच्चे हमारी बुढ़ापे की लाठी बनेंगे, या फिर विकलांग का सहारा बन रही है माया केयर फाउंडेशन। वो फाउंडेशन बन रही है सहारा जो दरअसल बेसहारा है। अब बेसहारा इसलिए नहीं है क्योंकि वो चल फिर नहीं सकते हैं, मूक हैं, बधिर हैं या नेत्रहीन हैं, लेकिन इसलिए सहारा बन रही है क्योंकि

उनकी विकलांगता को कम करने की कोशिश कर रही है और वो उनको वो स्वाभिमान देने की कोशिश कर रही है जिस स्वाभिमान का वो इंतजार कर रहे हैं और वो अलग अलग अपॉर्चुनिटीज के रूप में है। किस प्रकार से है इसके बारे में करेंगे बात। जुड़े रहिएगा रेडियो मानवरचना 107.8 FM के साथ। सुना रही हूँ आप लोगों को एक प्यारा सा गाना, बड़ा कहीं मत जाना। फील गुड फील।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर प्रोग्राम है मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर हम चल रहे हैं माया केयर फाउंडेशन के साथ। माया केयर फाउंडेशन भारत के अलग अलग राज्यों में काम करती है और विदेशों में रह रहे बुजुर्गों के जो बच्चे हैं उनके लिए भी काम करती है। अब आप सोचिए ना कि आप तो चले गए हैं अब्रॉड और वहां पर जाने के बाद आप अपने लिए एक अच्छा करियर बना रहे हैं। भाई अच्छी अपॉर्चुनिटी आई, आपने एक अच्छा करियर चूज किया और उस अपॉर्चुनिटी को लेते हुए आप अपने परिवार के सदस्यों का भविष्य बनाना चाहते हैं, लेकिन परेशानी ये है कि आपका परिवार तो कहीं भारत में पीछे छूट गया है, सो उनका ख्याल कौन रखेगा। ऐसा ख्याल रखने के लिए माया केयर फाउंडेशन है जो इस प्रकार का काम कर रही है। बहुत सारे ऐसे विकलांग हैं जिन्हें नौकरी नहीं मिल पाती है, जिन्हें जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाती हैं, उन विकलांगों का सहारा बन रही है माया केयर फाउंडेशन। ज्योति जी हमारे साथ हैं जो कि उनकी एचआर हैं। ज्योति जी मुझे बताइए कि एक तरफ तो आप बुजुर्गों की सेवा कर रही हैं, विकलांगों के लिए आप बड़ी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने की कोशिश कर रही हैं, अलग अलग किस्म के काम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, इसके साथ साथ महिला सशक्तिकरण पर भी आप लोग काम कर रहे हैं। सो किस प्रकार से आप अलग अलग प्रोग्राम्स रन करते हैं इन विकलांगों के लिए, महिलाओं के लिए?
1: जी, हमारे यहाँ अगर आप देखेंगे तो 90% तो महिलाएं ही हैं
0: जी
1: जो कि विकलांग हैं, और उनके लिए हमने एक शक्ति करके एक पावर, शक्ति पावर करके एक प्रोजेक्ट चलाया था
0: जी,
1: जिसमें 8 मार्च को जब महिला दिन होता है
0: जी,
1: तो हम सभी जो हमारे माया केयर में जो जो महिलाएं हैं वो इकट्ठा होकर ऑनलाइन ही हम कार्यक्रम करते हैं जी, और उसमें हम अलग अलग तरीके से जिसे जो आता है या जिसे जो पसंद है उस अनुसार वो कार्यक्रम करता है, वहाँ पर प्रेजेंटेशन देता है। और दूसरा ये कि उनको जब भी नीड होती है, जैसे कि दिवाली है या फिर 8 मार्च को उनका सम्मान है 8 मार्च को, तो उस टाइम हमने उनको पेड लीव रखी है ताकि वो उसका उपयोग करें अपने परिवार के लिए, अपने खुद के लिए। ये महिलाओं के लिए हमने ज्यादा रखा है और ऑनलाइन वो काम करती हैं, कहीं पर उनको जाने की जरूरत नहीं होती और इससे वो बहुत स्फूर्ति से और अच्छा काम करती हैं।
0: दोस्तों अगर महिलाओं की बात की जाए तो माया केयर फाउंडेशन दरअसल महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की कोशिश कर रही है। अब अगर महिलाओं की सबसे बड़ी परेशानी है उनकी मोबिलिटी, एक परिवार है जिसका ख्याल रखना है और दूसरी तरफ एक करियर है जिसको देखना है, अब ऐसे में परेशानी ये होती है कि अक्सर महिला को परिवार को चुनना पड़ता है। भाई घर में अगर छोटा बच्चा है और वो एक बहुत अच्छी माँ है तो उन्हें उस बच्चे को छोड़कर नौकरी करने जाना बड़ा मुश्किल लगता है। सो ऐसे में महिलाओं को जॉब अपॉर्चुनिटीज दी जाती हैं जो वर्क फ्रॉम होम किस्म की होती हैं, जहाँ पर कि वो अपने घर पर रहकर ही अपने आप अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हैं, इंडिपेंडेंट बन सकती हैं, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव कर सकती हैं, लेकिन साथ के साथ अपने परिवार का ख्याल भी रख सकती हैं। सो इस प्रकार का काम करने की कोशिश कर रही है माया केयर फाउंडेशन। और वहीं पर मैं बुजुर्गों की बात करूं या विकलांगों की बात करूं, सो अक्सर आपने देखा है कि सरकार की ढेर सारी स्कीम्स होती हैं जहां पर ये कहा जाता है कि भाई आप विकलांगों को नौकरी जरूर देंगे, लेकिन परेशानी ये है कि कई बार विकलांगों को यही नहीं पता होता है कि उन्हें कहां और किस ऑर्गेनाइजेशन में जाकर अप्लाई करना है। दूसरी तरफ परेशानी होती है कि उनके पास कई बार इस प्रकार के स्किल्स नहीं होते हैं जिन स्किल्स पर वो काम कर सके। तो ज्योति जी मुझे बताइए, क्या आप लोग अपस्किलिंग का भी काम करते हैं विकलांगों के लिए, महिलाओं के लिए?
1: हाँ हाँ, जरूर जरूर। हम क्या करते हैं कि हम जब उनका चयन करते हैं, उनका रिक्रूटमेंट करते हैं हमारे यहाँ, तब हम उनको ट्रेनिंग भी देते हैं
0: जी,
1: उनके क्या क्या खामियां हैं या फिर उनके क्या स्किल्स हैं, उसके दौरान हम उनको ट्रेन करके
0: जी,
1: उनको ट्रेनिंग में ही ऑन जॉब ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी उनको देते हैं
0: जी,
1: कि जिससे वो थोड़ा सा प्रैक्टिकली वो सब सीख जाए और सही काम में लग जाए, तो इसलिए वो थोड़ा सा फिर वहाँ पर वो आत्मनिर्भर होने लगती हैं, क्योंकि OJT में हम क्या करते हैं उनका थोड़ा पेमेंट भी देते हैं
0: जी,
1: ऑन जॉब ट्रेनिंग ही उसे कहते हैं कि जॉब का ट्रेनिंग देते देते काम भी देना, तो इसमें ये पेड होता है। तो इसमें अगर वो आत्मनिर्भर होने लगी या उसको बहुत इसमें आनंद आने लगा कि नहीं मैं अभी कुछ करूंगी, अब मैं सही में अभी आत्मनिर्भर होने लगी हूँ,
0: जी
1: तो वो जरूर इसमें हिस्सा लेती हैं, फिर और ट्रेनिंग सीखती हैं, आगे जाती हैं। बहुत सी महिलाएं हमारे यहाँ, जो भी ऊपर जितनी भी मेरी सहपाठी हैं, सारी महिलाएं हैं,
0: जी
1: इसमें आपको ये लोग ज्यादा थोड़ा कम ही है।
0: तो दोस्तों, महिलाओं के लिए ये जरूरी है कि उन्हें अपस्किल समय समय पर किया जाए, खास तौर पर वो महिलाएं जो कि घरों पर रहती हैं, वो महिलाएं जो अभी फिलहाल कहीं पर भी नौकरी नहीं कर रही हैं। तो सबसे पहले उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है, उन्हें अपस्किल किया जाता है, फिर उनके स्किल्स के कैपेबिलिटी के हिसाब से ना सिर्फ ये डिसाइड किया जाता है कि वो कहाँ पर जाती हैं और कहाँ पर वो किस तरीके का काम कर सकती हैं, लेकिन जिस दौरान उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है उस दौरान उन्हें स्टाइपेंड भी दिया जाता है, जो अपने आप में बहुत मोटिवेटिंग होता है। तो इस प्रकार का काम हो रहा है माया केयर फाउंडेशन में। अब अगर आपको ऐसा लगता है कि आप किसी ऐसे विकलांग को जानते हैं, आप महिलाओं को जानते हैं, किसी बुजुर्ग को जानते हैं, तो आप ये जरूर जानना चाहेंगे कि लोग उसका फायदा कैसे उठा सकते हैं, इस माया केयर फाउंडेशन से लोगों को कैसे बेनिफिट मिल सकता है। इसके बारे में करेंगे बात, जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर प्रोग्राम है मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर आज हम चल रहे हैं माया केयर फाउंडेशन के साथ। माया केयर फाउंडेशन ढेर सारा नेकी का काम कर रही है, खास तौर पर बुजुर्गों के लिए, विकलांगों के लिए, महिलाओं के लिए। अब ज्योति जी, बात कर रहे हैं हम बुजुर्गों की, महिलाओं की, तो मुझे बताइए, मान लीजिए कि कोई विकलांग है, तो विकलांग लोगों को अक्सर ये पता ही नहीं होता है कि वो खुद अपने पैरों पर खड़े कैसे हो सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले उनकी विकलांगता और दूसरी सबसे बड़ी परेशानी कि वो जाकर नौकरी कहाँ पर ले। सो किस प्रकार से माया केयर उनकी मदद करती है, और अगर कोई माया केयर से जुड़ना चाहता है किसी नौकरी के लिए या फिर किसी अपॉर्चुनिटी के लिए, तो वो किस तरीके से जुड़ सकता है?
1: जी जी, हमारी वेबसाइट भी है
0: जी,
1: www.mayacare.org
0: जी,
1: और हमारा ईमेल एड्रेस भी है
0: जी,
1: service@mayacare.org
0: जी,
1: और हमारे हमारे हेल्पलाइन नंबर्स भी हैं
0: जी,
1: 9552510400, और दूसरा भी नंबर है 9552510411
0: जी।
1: इन दोनों नंबर पर और वेबसाइट पर और ईमेल्स पर आप हमें, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और ये भी है कि हम फेसबुक पर पोस्ट करते हैं, लिंक्डइन पर हमारी पोस्ट होती है,
0: इंस्टा
1: पर हमारी पोस्ट होती है, तो उसके तहत भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे साथ आपका जो भी मेल आता है या फिर आपका कॉल आता है, तो हम तुरंत वो कॉल उस डिपार्टमेंट में जाता है रिक्रूटमेंट के, वहाँ से कॉल जाता है, उसके बाद उनका इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू के बाद उनको ट्रेनिंग के डिपार्टमेंट में जाने के लिए हम ग्रुप में ऐड करते हैं
0: जी।
1: उसके बाद उनका ट्रेनिंग शुरू होता है, ट्रेनिंग के समय जो भी महिला या फिर जो भी विकलांग पर्सन हो
0: जी,
1: उनको हम ट्रेनिंग के साथ साथ जॉब देना शुरू करते हैं।
0: क्या बात है।
1: और इस प्रकार से वो हमसे जुड़ने लगते हैं। फिर हम उनको अपील भी करते हैं कि अगर आपके कुछ रिश्तेदार हो या फिर कुछ फ्रेंड सर्कल हो, आप जरूर हमें बता सकते हो
0: जी। सो भाई, अगर आपकी नजर में कोई ऐसे विकलांग हैं जिन्हें किसी भी प्रकार के अपॉर्चुनिटी की जरूरत है, कुछ ऐसे बुजुर्ग हैं जिन्हें थोड़े से साथ की जरूरत है, कंपेनियनशिप की जरूरत है, या कहना चाहिए थोड़े से अकेलेपन से वो गुजर रहे हैं, सो इन सारी चीजों का ख्याल रख रही है माया केयर फाउंडेशन। यानी माया केयर फाउंडेशन वो एक ऐसी फाउंडेशन है जो अलग अलग राज्यों में ना सिर्फ इस प्रकार से बुजुर्गों का ख्याल रख रही है, साथ के साथ विकलांगों का ख्याल रख रही है, लेकिन उन्हें अपस्किल कर रही है, उन्हें सेल्फ इंडिपेंडेंट बना रही है, और साथ के साथ उनके जीवन को एक नई राह देने की कोशिश कर रही है। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के साथ। वक्त एक छोटे से प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक का। फील गुड, फील लाइव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूँ आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर प्रोग्राम है मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर हम चल रहे हैं माया केयर फाउंडेशन के साथ। आज हम ढेर सारी जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं माया केयर फाउंडेशन की। अब बात करते हैं ज्योति जी आपके चैलेंजेस के बारे में। सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि आप बहुत सारे लोगों की मदद करते हैं, लेकिन इतनी बड़ी पॉपुलेशन और इतने सारे विकलांग, इतनी सारी महिलाएं, इतने सारे बुजुर्ग और इतनी कम अपॉर्चुनिटीज, किस प्रकार के चैलेंजेस फेस करते हैं आप लोग?
1: जी जरूर, हमने बहुत चैलेंजेस फेस किए हैं
0: जी।
1: बेसिकली हमारे फाउंडर ने अभी तक तो 2020 तक तो हमारे फाउंडर अपने जेब से ही सारा कुछ खर्चा उठाते थे माया केयर का। उसके बाद फिर हमारा प्रोजेक्ट बिंदु जब आया तो हमारे थोड़ा बहुत फंड हमें मिलने लगा, लेकिन वो भी इतना नहीं है कि हम हमारे लोगों के लिए पेमेंट्स हो सके उनके, या फिर उनकी उनके लिए हमें जो करना है कि उनको आत्मनिर्भर बनाना है, उनको उनके जो भी हमें ऊपर लाना है उनको, उसके लिए जिसकी भी जितनी भी ज़रूरत है, तो अभी के लिए तो वो कम ही है। क्योंकि क्या है, माया केयर अभी पूरे इंडिया में है, 72 सिटीज में हम चल रहे हैं और वहाँ के सारे बिंदुज हमारे साथ हैं, बुजुर्ग हमारे साथ हैं। इतना ही नहीं, माया केयर के बाहर भी नेपाल हमने ओपन किया है और यूके में भी हमारी बहुत सारी सर्विसेज शुरू हैं, वहाँ पर भी हमारे 5 सिटीज शुरू हैं और अभी तक हमने 45,000 सर्विसेज बुजुर्गों की कंप्लीट की है और लगभग 5,000 लोगों को हमने ट्रेन करके प्लेसमेंट किया है उनका। तो इस प्रकार से ये सब करने के लिए हमने इतने चैलेंजेस भी झेले हैं इसके साथ जी। और पर्सनल डोनेशन बहुत कम आता है, ये तो एक है हमारा। और दूसरा ये कि हम जो बुजुर्गों के लिए काम करते हैं उसके लिए हमें कोई डोनेशन नहीं देता
0: जी।
1: सारे लोग डोनेशन अगर देना है तो प्रोजेक्ट बिंदु के लिए दे सकते हैं, लेकिन बुजुर्गों के लिए कोई मदद नहीं करते
0: जी।
1: वो हमारे ही इसमें करना पड़ता है, तो ये हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है।
0: तो दोस्तों, अक्सर अगर मैं एनजीओस की बात करती हूँ, और ये कार्यक्रम आप लंबे समय से रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर सुन रहे हैं, एक परेशानी हर एनजीओ या फिर हर फाउंडेशन के साथ आती है और वो है फंड्स की। देखिए, जब कभी भी हम अच्छे और नेकी के काम के लिए जाते हैं तो हमारे पास बहुत सारी ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है, हमारे अंदर दिलों में जज्बा होता है, लेकिन परेशानी ये है कि मात्र एनर्जी और जज्बे से काम नहीं चलता है, जरूरत होती है पैसों की भी। अब जब आप अच्छा काम कर रहे हैं तो आप किसी को भी पीछे नहीं छोड़ सकते हैं। मान लीजिए कि किसी बुजुर्ग को आपकी जरूरत है, तो आप ये तो नहीं कहेंगे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के पास इतने एडिक्वेट फंड्स नहीं है कि हम आपकी सेवा नहीं करेंगे। सो वहां पर हम सामने आ सकते हैं, यानी हम इनके लिए मदद का हाथ बढ़ा सकते हैं। जिस प्रकार से माया केयर फाउंडेशन अलग अलग चैलेंजेस से गुजर कर आज 72 सिटीज में न सिर्फ भारत के अलग अलग बुजुर्गों की मदद कर रही है, बहुत सारे विकलांगों को अपॉर्चुनिटीज दे रही है, बहुत सारी महिलाओं को स्वावलंबी बना रही है, मुझे लगता है कि माया केयर फाउंडेशन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पिलर की तरह आ रही है। लेकिन जरूरत है कि कुछ लोग उनके साथ जुड़े। सो अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि आप इनके लिए मदद का हाथ बढ़ा सकते हैं, तो डेफिनेटली मौका मिल रहा है आपको। बताने वाली हूँ आपको कि आप इनके साथ कैसे जुड़ सकते हैं। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड फील लाइव।
2: ना इज्जत की चिंता, ना फिक्र कोई अपमान की, जय बोलो बेईमान की, यही पहचान है भक्तजन।
3: गुरुदेव, यही बात यदि संगीत धारा में बहकर कहें तो आनंद आ जाए।
2: हाँ गुरुदेव।

का जूठ संग है महाराज पधारे, चिमटा चरक चिलम और चेले साथ साथ है सारे, लेकर भी गाड़ी में खड़े शरीफ बेचारे।

वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर प्रोग्राम है मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर हम चल रहे थे आज माया केयर फाउंडेशन के साथ ज्योति जी, जो कि उनकी एचआर हैं पुणे से। ज्योति जी, मुझे बताइए कि अगर कोई आपके साथ वॉलंटियर करना चाहता है, किसी को आपकी जो ये सोच है माया केयर फाउंडेशन की वो बहुत पसंद आई है और उन्हें ऐसा लगता है कि मैं कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ, या कोई आपके साथ एसोसिएट होकर इन ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी लोग हैं, विकलांग हैं या फिर बुजुर्ग हैं या महिलाएं हैं, उनकी मदद करना चाहता है, तो ये किस प्रकार

0: कर रही है। उन शहरों में अगर आपके पास थोड़ा सा समय है, आपके पास थोड़ा सा इन्फ्लुएंस है, आप शायद एक ऐसे कॉर्पोरेट में काम करते हैं जहां पर कि आप विकलांगों को नौकरी दे सकते हैं, शायद आप ऐसे इंसान हैं जिसके पास थोड़ा सा समय होता है वीकेंड पर और आप बुजुर्गों की सेवा करके आ सकते हैं, शायद आप ऐसे हों जो महिलाओं को किसी तरीके की ट्रेनिंग दे सकते हैं। इन सब तरीकों से आप जुड़ सकते हैं, आप इनके साथ वॉलंटियर कर सकते हैं, आप इनके साथ एसोसिएट हो सकते हैं। और अगर खुदा न खास्ता आप उस कैटेगरी में हैं जहां आपके पास समय की बहुत कमी है, लेकिन अगर आपके पास थोड़ा सा धन है, सो आप इन रिसोर्सेज के लिए, इन चीजों के लिए, इस नेकी के काम के लिए अपना धन भी इन्हें कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, इसके लिए आप जुड़ जाएंगे माया केयर फाउंडेशन के साथ, यानी आप इनके साथ कनेक्ट हो सकते हैं इन हेल्पलाइन नंबर्स पर, या फिर आप डायरेक्टली इनकी वेबसाइट पर जाकर इनसे कनेक्ट हो सकते हैं। सोशल मीडिया पर आप जाकर इनके साथ कनेक्ट हो सकते हैं, लेकिन मैं ये कहूंगी कि इस नेकी के काम में आप इनके साथ जरूर जुड़िए। ज्योति जी, बहुत सारे लोग आपको फिलहाल सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना के जरिए, ना सिर्फ उन्होंने माया केयर फाउंडेशन के बारे में करीब से जाना, लेकिन उन्हें समझ में आया कि माया केयर फाउंडेशन कितना खूबसूरत सा काम कर रही है। जाते जाते हमारे सभी लिसनर्स को क्या मैसेज आप देकर जाना चाहेंगी?
1: जी जरूर, अभी तक तो हमने माया केयर 72 सिटीज में ओपन किया है। एक्चुअली हमारी ये इच्छा है कि हम 100 सिटीज में जाएं। हर एक सिटी में हमारा एक सिटी कोऑर्डिनेटर होता है, आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करते हैं तो सिटी कोऑर्डिनेटर आपका कॉल जरूर उठाएगा और सिटी कोऑर्डिनेटर आपके लिए वॉलंटियर भी चयन करेगा। लेकिन ये सब होता रहेगा, ये सब हमने स्टेप वाइज या फिर हमारी सोच से हमने ये बनाया है तरीका जिससे हम आपके साथ काम कर रहे हैं। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ आज कि भावना जी यहाँ पर हमारा इंटरव्यू ले रही हैं, इसके लिए तो हम उनके शुक्रगुजार हैं। और दूसरा ये कि आप सब श्रोता जो अभी हमें सुन रहे हैं उनके भी मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि माया केयर फाउंडेशन आज 16-17 सालों से काम कर रहा है। हमारा ये निवेदन है, हमारे फाउंडर ने दो दुर्बल घटक चयन किए कि जिनके समाज में बहुत ज़्यादा संख्या में ये दुर्बल घटक हैं, लेकिन लोगों के लिए ये थोड़ा सा ज़्यादा दुर्लक्षित होता जा रहा है। ये तो हमें चाहिए कि आपका जो भी पार्ट इसमें आता है कि आपको अगर वॉलंटियर होना है, आपको आपकी फैमिली में अगर खुदा ना खास्ता कोई विकलांग है तो उनके लिए कुछ नौकरी लगानी है, तो प्लीज़ आप इसके लिए हमारे हमारे यहाँ मेल कर सकते हैं, हमें हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं, और इन दुर्बल घटकों के लिए आप ज़रूर मदद करते हैं। हमें किसी भी प्रकार की मदद हमें चलेगी, क्योंकि क्या है कि हमने देखा है कि हम ये जो प्रोवाइड कर, ये जो सर्विस हम दे रहे हैं ये पूरी तरीके से फ्री सर्विस है। जो बुजुर्गों के लिए हम सर्विस देते हैं ये फ्री है, इसलिए जो भी ज़रूरतमंद है वो ज़रूर यहाँ पर कॉल करें या हमें मैसेज करें, नेक्स्ट डे आपको सर्विस मिल जाएगी। और जो भी ये हमें सुन रहे हैं श्रोतावर, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़िए और हमारी विकलांग टीम जो ये बहुत बड़ा बैक ऑफिस का काम कर रहे हैं, जिसमें बहुत सारे हमारे सहपाठी हैं जो भी बहुत विकलांग होने के बावजूद इतना अच्छा काम कर रहे हैं, आपको पता भी नहीं है। अगर आप वेबसाइट पर जाकर हमारे विकलांग लोगों की कहानियां पढ़ोगे तो आपको यकीन नहीं होगा कि ये लोग भी काम कर सकते हैं। तो प्लीज़ ये हमें एक मौका दीजिए कि हम भी ऊपर आए, और ये माया केयर इस वर्ल्ड की एक यूनिक संस्था है कि जो घर से ही काम देती है। कोई ओनली ट्रेनिंग देता है लेकिन काम नहीं देता, लेकिन यहाँ पर ट्रेनिंग भी होता है, काम भी होता है, और ये फ्री सर्विस देती है। ये बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए।
0: तो दोस्तों, इस चैलेंज को हम सब मिलकर खत्म कर सकते हैं और इसे एक खूबसूरत

0: अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। माया केयर फाउंडेशन फ्री ऑफ कॉस्ट बुजुर्गों का ख्याल रख रही है, महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन साथ के साथ उन्हें जॉब अपॉर्चुनिटीज भी दे रही है। जितनी भी माया केयर फाउंडेशन का टेक्निकल बैकअप है या फिर कहना चाहिए सर्विस सेंटर्स हैं, वो सब विकलांग लोग संभाल रहे हैं। सो आप सोच सकते हैं कि कितने सारे लोग इनके साथ जुड़े हैं और इस माया केयर फाउंडेशन को आज 72 सिटीज तक पहुंचा दिया है। आप भी इनका हिस्सा बन सकते हैं। सो मेरी बस यही गुजारिश है, इस कार्यक्रम में मैंने आपकी मुलाकात करवाई माया केयर फाउंडेशन से, बस अब आप अपनी सुविधा और कहना चाहिए कन्वीनियंस के हिसाब से इनके साथ कब और कैसे जुड़ते हैं ये आप पर डिपेंड करता है, लेकिन एक कदम मानवता की ओर उठाना तो बिल्कुल बनता है। इसी बात पर तहे दिल से धन्यवाद ज्योति जी, आज आपने अपना कीमती समय निकाला, हमारे सभी लिसनर्स को इतनी बेहतरीन जानकारी दी।
1: धन्यवाद, थैंक यू।
0: दोस्तों वक्त है आपसे इजाजत लेने का, लेकिन आप कहीं नहीं जाने वाले, आप जुड़े रहने वाले अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन के साथ। आरजे भावना को दीजिए इजाजत, होगी मुलाकात अगले हफ्ते। टिल देन फील गुड फील लाइफ।
2: हाय, मैं हूं गगन नारंग एंड यू आर लिसनिंग टू रेडियो मानव रचना 107.8। फील गुड फील लाइफ।
0: फ्रेंड्स एंड वेलकम टू रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूँ आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी विमेन एम्पावरमेंट। आपको पता है कि ये एक ऐसा कार्यक्रम है जो शायद हमारे रेडियो स्टेशन का सबसे लंबा कार्यक्रम है। महिला सशक्तिकरण पर पिछले इतने लंबे समय से मैं आपके लिए कार्यक्रम लेकर आई हूँ, जिसमें मैं आपको सशक्त महिलाओं से मिलवाती हूँ। ऐसी सशक्त महिलाएं जो सशक्तिकरण का काम कर रही हैं, ऐसी सशक्त महिलाएं जो आने वाली पीढ़ी को सशक्त कर रही हैं, और ऐसी सशक्त महिलाएं जो अपने आप में एक मिसाल हैं। आज इस कड़ी में हम जिनसे मिलने वाले हैं उनका नाम है डॉक्टर उषा यादव। ये चेयरपर्सन है विद्या भारती पब्लिक स्कूल की, और न सिर्फ ये चेयरपर्सन है लेकिन ये एक सशक्त और डायनेमिक महिला है। इनकी जीवन की कहानी इन्हीं की जुबानी आज हम इनसे बहुत सारी बातें करने वाले हैं, उसके लिए करेंगे इनका स्वागत रेडियो मानव रचना 107.8 FM के स्टूडियो में। डॉक्टर उषा, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: थैंक यू।
0: उषा जी, कार्यक्रम का नाम है महिला सशक्तिकरण, और अगर मैं महिला सशक्तिकरण की बात करूं तो हर महिला के लिए सशक्तिकरण की परिभाषा जो है वो बिल्कुल अलग होती है। तो आपसे अगर मैं ये जानना चाहूं कि आपके नजरिए में महिला सशक्तिकरण क्या है, तो क्या कहेंगे आप?
3: मैं भी यही कहना चाहूंगी कि महिला सशक्तिकरण का अर्थ है महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और राजनीतिक रूप में इतना मजबूत और स्वतंत्र बनाना है कि वो अपने जीवन के फैसले खुद ले सके।
0: जी देखिए भैया, महिलाएं अगर देखा जाए तो बिल्कुल आजाद है, बिल्कुल स्वतंत्र है, लेकिन पर्यावरण या फिर अगर हम कहें कि आसपास का जो माहौल है वो उन्हें आज भी बहुत सारी बेड़ियों में बांध कर रखता है। सबसे बड़ी बेड़ी जिसमें महिलाएं आज भी बंधी हुई हैं वो है जिम्मेदारी की बेड़ी। हालांकि ये जिम्मेदारी परिवार है, ये जिम्मेदारी समाज है, ये जिम्मेदारी उनका अपना घर है, लेकिन कई बार उनके जीवन के कुछ अहम पड़ाव में ये बेड़ियां वाकई बेड़ियां लगने लगती हैं। तो सशक्तिकरण वहां है जहां महिलाओं को बराबरी का हिस्सा मिल रहा है, जहां महिलाओं को बराबरी का मौका मिल रहा है। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। एक छोटा सा प्यारा सा म्यूजिकल ब्रेक यानी आपको सुना रही हूँ एक बेहतरीन सा गाना, फील गुड फील लाइफ।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण के खूबसूरत से कार्यक्रम में। आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर उषा यादव से, जो चेयरपर्सन है विद्या भारती पब्लिक स्कूल की। और एजुकेशनिस्ट होने के नाते मैं इन्हें एम्पावर्ड तो बिल्कुल समझती हूँ, लेकिन अच्छी बात यह है कि जो एजुकेशनिस्ट होती है ना, वो आने वाली पीढ़ी को भी एक नई राह दिखा पाती है। उषा जी, हर सदी में महिलाओं के पास अलग अलग किस्म के चैलेंजेस थे। मतलब कभी तो आप याद करें, महिलाएं पैदा ही नहीं हो पाती थी, बच्चियां पैदा ही नहीं हो पाती थी, कन्या भ्रूण हत्या एक बहुत कॉमन सी चीज थी हमारे देश में। फिर धीरे धीरे शायद ये समस्या कम हुई, फिर हम आगे बढ़े, फिर एजुकेशन का अधिकार नहीं था, फिर एजुकेशन का अधिकार मिला। आज महिलाएं स्वावलंबी हैं, अपनी आर्थिक रूप से स्वतंत्र हैं, बहुत सारी चीजों को उन्होंने पाया है, लेकिन आज भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मिसिंग हैं। क्या लगता है, क्या चैलेंज है आज के जमाने का?
1: चैलेंज में शिक्षा का तो बहुत अभाव है, अभी गांव में तो बहुत कम होता है, भ्रूण हत्या लिमिट से ज्यादा होती है, जिसमें कि हम लोगों का कंट्रोल नहीं होता। शिक्षित डॉक्टर भी इस तरह के करते हैं तो वो गलत है। और मैं यही बताना चाहूंगी कि जैसे महारानी लक्ष्मीबाई की, मुझे सुभद्रा कुमारी चौहान ने की कवित्री थी, उन्होंने बताया था, बहुत अच्छी कविता लिखी है, बूंदेले हर बोलो में मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी।
0: जी, तो देखिए भाई, ये जो सशक्तिकरण है ना, इस सशक्तिकरण को आगे फैलाना तो बहुत जरूरी है, लेकिन परेशानी ये है कि क्या हम अपनी अभी की जो चैलेंजेस हैं उनसे निकल पाए हैं या नहीं। और उनसे निकलने के लिए सबसे पहली जरूरत है शिक्षा की। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइफ।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूँ आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर प्रोग्राम है वी यानी वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण की। इस कड़ी में आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर उषा यादव से, जो चेयरपर्सन है विद्या भारती पब्लिक स्कूल की। डॉक्टर उषा, अब बात करते हैं आपके सशक्तिकरण की। आप चेयरपर्सन है विद्या भारती पब्लिक स्कूल के, साथ के साथ आप सामाजिक कार्य में काफी ज्यादा अग्रणी हैं। मुझे बताइए कि क्या कभी जिंदगी में आपने कोई ऐसा सशक्तिकरण भरा कोई डिसीजन लिया हो, या कोई ऐसा आपका कदम जहां आपको लगा हो कि मुझे कोई इस बात का आज भी मलाल नहीं है, लेकिन मैंने जो कदम लिया उससे मैं आज एक सशक्त महिला हूँ। आपकी जर्नी को आप कैसे डिफाइन करेंगे?
1: मैंने सीमित धारणाओं को तोड़कर जिम्मेदारी को स्वीकार किया और आत्मकरुणा के साथ निर्णय लेने की क्षमता विकसित की। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें मैंने विश्वास और दृढ़ता से मैंने अपने जीवन का नियंत्रण पाया। क्योंकि मैंने भी एजुकेशन भी प्राप्त की तो बड़े मध्यम वर्ग से मैं हूँ और बहुत अच्छे से मैंने मेहनत करके विद्या प्राप्त की और मध्यम वर्ग परिवार में ही मेरा विवाह हुआ। वहाँ भी मैंने बहुत अच्छे से अपने निर्णय लिए, लेकिन मुझे निर्णय लेने में कोई आपत्ति नहीं आई क्योंकि मेरे परिवार ने मेरा साथ दिया।
0: वाकई देखिए, हम हमेशा ये कहते हैं कि महिलाएं अगर आगे बढ़ना चाहती है ना, तो उसकी सबसे छोटी इकाई लेकिन सबसे अहम इकाई होती है उसका परिवार। और अगर परिवार आपके साथ है ना, तो आप जीवन की बड़ी से बड़ी युद्ध को, बड़ी से बड़ी जंग को जीत सकते हैं। तो आई थिंक सशक्तिकरण के लिए सबसे पहली जरूरत है घर में सोच का बदलाव। अगर आपकी सोच बदल रही है तो सशक्तिकरण आप फैला भी पा रहे हैं और सशक्तिकरण को आप महसूस भी कर पा रहे हैं। वक्त एक छोटे से प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक का सुना रही हूँ आप सभी को एक बेहतरीन सा गाना। जुड़े रहिएगा अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन के साथ यानी रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड फील लाइफ।
2: ये हुई ना बात।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम, एफआरजी भावना, और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी वुमेन एम्पावरमेंट। भाई सैटरडे की शाम है, यानी महिला सशक्तिकरण पर बात करनी है। महिला सशक्तिकरण पर जब बात करती हूँ तो आपको एक सशक्त महिला से मिलवाती हूँ। आप उनके जीवन के पन्नों को पलट कर सुनते हैं और साथ के साथ आप उनके सशक्तिकरण से बहुत कुछ सीख सकते हैं। अगर मैं डॉक्टर उषा यादव की बात करूं, तो इन्होंने कोई भी दुनिया का अलग काम करने के बारे में नहीं सोचा, इन्होंने वो सोचा जो शायद नॉर्मल लोग कहते हैं कौन सा नया काम है। जी हाँ, लेकिन यही वो सबसे पहला बीज है जो सशक्तिकरण फैला सकता है। जब शिक्षा आप किसी को दे देते हैं ना, तो आप उनके जीवन को बदल देते हैं, आप उनके जीवन को एक सोच देते हैं, आप उनके जीवन को एक समझ देते हैं, और यही खूबसूरत सा काम आज की हमारी बहुत ही खास गेस्ट डॉक्टर उषा यादव कर रही हैं। डॉक्टर उषा, अगर मैं जेंडर इक्वालिटी की बात करूं, तो अक्सर आपने देखा है कि हम ये कहते हैं कि बहुत सारी इक्वालिटी आ रही है, आज हमारी लड़कियां लड़कों के बिल्कुल बराबर है, महिलाएं पुरुष से कंधा मिलाकर चल रही हैं, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं बहुत चीजें हैं जो सही नहीं है। क्या लगता है, क्या है ये चीजें कि जेंडर इक्वालिटी की तरफ आने के लिए हमें और किन चीजों की जरूरत है?
1: हमने शिक्षा कानून में काफी प्रगति की, लेकिन लैंगिक समानता के लिए समाज में अभी भी पितृसत्तात्मक मानसिकता की कमी है।
0: वाकई देखिए ना, मतलब हमेशा हम देखते हैं ना, माइंडसेट की प्रॉब्लम है, जहाँ पर लोगों के विचार ही नहीं बदल रहे हैं। घर परिवार में आज भी ये फीलिंग है कि ये लड़की है और ये तो शादी करके दूसरे घर चली जाएगी, तो इसके ऊपर पैसा नहीं लगाना चाहिए, बेटे पर लगाइए, वो इन्वेस्टमेंट है। तो जब तक ये वाली फीलिंग रहेगी ना, तब तक हमारी ये जेंडर इक्वालिटी आएगी ही नहीं। और ये कहाँ से आ सकती है? ये हमारे घरों से आ सकती है, ये हमारी सोच से आ सकती है। और अगर हमारे देश का एक एक इंसान बिल्कुल ऐसे सोचने लग जाए ना, तो हम अपने देश के पूरे विचारों को बदल सकते हैं। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के साथ। एक प्यारा सा गाना सुना रही हूँ, फील गुड फील लाइव।

तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा तू जाग जरा तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा तू जाग।

वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी विमेन एम्पावरमेंट। आज हम बहुत सारी बातें कर रहे हैं डॉक्टर उषा से। डॉक्टर उषा, अभी हमने ना बात की है जेंडर इक्वालिटी की और हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या मतलब जेंडर इक्वालिटी वाकई कहीं है। अब ऐसे में एक सवाल उठता है, अक्सर आपने देखा होगा, खास तौर पर मैं अगर रूरल सेटअप की बात करूं तो अर्बन से ज्यादा रूरल में

0: और शायद अर्बन में भी एक बड़ी परेशानी है। जब कभी भी एक लड़की अपना करियर आगे बढ़ा रही होती है तो करियर और परिवार, इन दोनों के बीच में आता है सबसे पहले चॉइस परिवार की। और लड़कियों को अक्सर ये कहा जाता है कि आप परिवार को चूज करो। आपने भी सुना होगा, देखा होगा, बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जिन्होंने अच्छा खासा करियर, चाहे वो डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं या फिर वो किसी भी अच्छी पोस्ट पर हैं, उन्होंने अपना करियर क्यों छोड़ दिया? क्यों? क्योंकि परिवार के देखरेख की जरूरत थी। छोटा सा बच्चा पैदा होता है तो उसके बाद एक महिला को कहा जाता है भाई अब आप नौकरी करना करें। सो मुझे बताइए कि क्या ऐसा किया जा सकता है कि लड़कियां अपना करियर भी आगे बढ़ा सके, अपनी पहचान बरकरार रह सके और साथ के साथ अपने परिवार का भी ख्याल रख सके।
1: करियर और परिवार के बीच संतुलन बनाने के लिए जिम्मेदारियों का बंटवारा और टाइम मैनेजमेंट और आपकी समझ बहुत जरूरी है। महिलाएं घर के कामों में पति को भागीदारी बढ़ाकर फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स का उपयोग करके और काम व घर के बीच बाउंड्रीज बनाकर दोनों में संतुलन बना सकती
0: है। डॉक्टर उषा, आपने कहा कि फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स और पुरुषों से घर के कामों में थोड़ी से सहयोग मांगने की, क्या आपको लगता है कि ये बदलाव वाकई आ सकता है? मतलब पुरुष जो हैं वो एक ऐसे माइंडसेट के साथ जीते हैं जहां उन्हें ऐसा लगता है कि ये काम हमारे काम नहीं है, और चलिए मान लीजिए कि हम ये कहें कि वो ये करना चाहते भी हैं तो उन्हें इसका कहीं ज्ञान ही नहीं होता है क्योंकि उन्हें बचपन से सिखाया ही नहीं जाता है, तो ऐसे में क्या किया जाए?
1: उसमें महिलाएं अपना पूरा सहयोग करें, तन मन से उनको समझाए कि भाई ये काम आप लोग भी हमारे साथ करोगे तभी तो हम उन्नति कर सकेंगे और तभी हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे।
0: हाल ही में मैंने एक छोटा सा सर्वे करने की कोशिश की थी डॉक्टर उषा, और उसमें ना मैंने बहुत सारी यंग लड़कियों से पूछने की कोशिश की थी कि क्या वो आगे बढ़कर शादी करना चाहती हैं और एक परिवार का हिस्सा बनना चाहती हैं। बहुत सारी लड़कियों का ये कहना था कि हम इसलिए शादी नहीं करना चाहते हैं क्योंकि उसके बाद हमारी आइडेंटिटी और हमारा करियर दोनों ही खत्म हो जाता है, क्योंकि शादी के बाद हम एक परिवार का हिस्सा बनते हैं और जिस नए परिवार में हम जाते हैं हमें पहले उसके हिसाब से ढलना होता है। चलिए वो भी कर लें, लेकिन उसके साथ साथ उसके लिए हमें अपने करियर को सैक्रिफाइस करना होता है। और अक्सर ही ऐसा होता है कि आप दूर दराज के एरिया में चले जाते हैं, शादी तो आपकी कहीं भी हो सकती है, और कई बार ऐसा भी होता है कि उस परिवार में लोग उन्हें अपने करियर को आगे ले जाने के लिए हाँ ना करें। और ये एक बहुत बड़ा कारण है कि जो हमारी अर्बन पॉपुलेशन है या फिर मैं अपने शहरों की पॉपुलेशन की बात करूं तो वहां पर आज की लड़कियां शादी नहीं करना चाहती हैं। और आप देख भी रही हैं कि आजकल शादियों की उम्र 25, 22, 23 ना होकर 31, 32, 33 हो गई है। क्या लगता है इन चीजों पे कहीं हम रोक लगा सकते हैं या कोई बदलाव लाया जा सकता है?
1: बदलाव तो शिक्षा के द्वारा ही ला सकते हैं हम।
0: जी। शिक्षा के जरिए आप क्या कहती हैं, कैसे बदलाव ला सकते हैं हम?
1: शिक्षा यदि एजुकेटेड होगा तो वो समझेगा अपने मन की बात को, वो जैसे हस्बैंड है वो वाइफ को समझा सकता है, वाइफ हस्बैंड को समझा सकती है, तभी तो काम आगे बढ़ सकता है, तभी संतुलन बन सकता है परिवार का।
0: देखिए डॉक्टर उषा ने ना बड़ा सही कहा है कि सबसे पहले जरूरत ये है कि पुरुष और महिला ये दोनों आपस में सामंजस्य बैठाएं, क्योंकि ये बड़ा जरूरी है कि अगर आप अपने घर की इकाई में हैं, आपकी जो सबसे छोटी इकाई मानी जाती है, समाज की सबसे छोटी इकाई आपका परिवार है, आपका घर है। अब सब कुछ घर से शुरू होता है, परवरिश घर से शुरू होती है, सोच माइंडसेट घर से शुरू होता है, यहाँ तक कि आपके विचार आपके घर से होते हैं। आप अपने घर में जो देख रहे होते हैं ना बिल्कुल वैसा ही आप दूसरों के साथ करते हैं। डॉक्टर उषा, अगर मैं आपके घर की बात करूं तो आपके बच्चे ये देखते हैं कि मम्मी सुबह तैयार होती हैं और उनकी एक जिम्मेदारी है, उन्हें स्कूल भी देखना होता है, उन्हें सामाजिक कार्य भी देखने होते हैं, तो उन्होंने शायद ये एक्सेप्ट कर लिया है कि आने वाले समय में हमारे जो स्पाउस या हमारे काउंटर पार्ट या हमारे जो परिवार के सदस्य हैं वो सब कहीं ना कहीं जॉब कर रहे होंगे या कहीं ना कहीं किसी तरीके के बिजनेस में होंगे, तो ये एक्सेप्टेंस जैसे आपके परिवार में आई है, आपको लगता है कि बहुत सारे घरों में अभी एक्सेप्टेंस आ गई है?
1: ज्यादातर परिवारों में अब आ गई है, जो कि दोनों कर रहे हैं, जहाँ सर्विस तो हस्बैंड भी उसका सहयोग कर रहा है और लेडीज भी कर रही है आपस में।
0: देखिए भाई बहुत सारा बदलाव आ गया है और कुछ बदलाव आना बाकी है, लेकिन इस बदलाव को कौन ला सकता है? हम सब मिलकर ला सकते हैं, और मिलकर हम इस बदलाव को जानते हैं कैसे ला सकते हैं, सबसे पहले अपने घर में इस बदलाव को इम्प्लीमेंट करके। तो करिए एक छोटा सा प्रयोग, जैसे कि हम जब स्कूल में होते थे तो हम छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स करते थे ना, ऐसे छोटे से एक्सपेरिमेंट्स अपने घर से शुरू करिए। अपने घर के बच्चों को इक्वल जिम्मेदारी दीजिए, चाहे वो बेटा है या बेटी है, और अपने घर के पुरुषों को भी जिम्मेदारी देने की कोशिश करिए। जब वो इसमें इन्वॉल्व होंगे, जब ये जिम्मेदारी के रूप में वो करेंगे, और अगर वो मना कर देना कि मुझे नहीं आता, तो आप भी अडिग होकर करवाइए। सो छोटे छोटे कामों से शुरुआत करेंगे ना, तभी जाकर बड़ी जिम्मेदारियां निभाने लायक वो बन जाएंगे। करिए ये छोटा सा एक्सपीरियंस और जुड़े रहिए रेडियो 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइफ।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी वेमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण का खूबसूरत सा कार्यक्रम। ढेर सारी सशक्त महिलाओं से हम बात करते हैं, वो महिलाएं जो सशक्त हैं, वो महिलाएं जो बदलाव लाना चाह रही हैं, वो महिलाएं जो बदलाव की ओर हैं, और वो महिलाएं जो बदलाव को सपोर्ट करती हैं। आज हमने ढेर सारी बातें की डॉक्टर उषा यादव से, जो चेयरपर्सन है विद्या भारती पब्लिक स्कूल की और साथ के साथ एक बहुत ही सोशली एक्टिव महिला है। उषा जी, तहे दिल से धन्यवाद कि आज आपने अपना कीमती समय निकाला और हमारे सभी लिसनर्स को इतनी बेहतरीन जानकारी दी। जाने से पहले क्या खास मैसेज या संदेश आप उन्हें देकर जाना चाहेंगी?
1: मैं सभी को ये संदेश देना चाहूंगी कि पुत्र और पुत्री में कोई अंतर नहीं करे, दोनों को पढ़ाया जाए, काम भी बरोबर बांट दिया जाए। और जैसे सुबह मैंने तो अपने बच्चों को भी ये, जब छोटे बच्चे थे तो मेरे पास भी एक लड़का एक लड़की थे, दोनों बच्चों को मैं सुबह एक ही काम के लिए चाय बनाने के लिए खड़ा करती थी तो दोनों को खड़ा करती थी और सुबह दोनों को जल्दी उठाती थी। और ये शिक्षा नहीं थी कि लड़का रात को लेट आए या लड़की जल्दी आए, ये नहीं, सबको बरोबर मैंने उसमें रखा।
0: वाकई देखिए भाई, ये कहते हैं ना प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। डॉक्टर उषा ने अपने दोनों बच्चों को हमेशा समानता से पाला और आज एज एडल्ट वो दोनों अपने आप को समान महसूस कर रहे हैं। ना बेटे को ये लगता है कि भाई बहू सारा काम करेगी, ना बेटी को ऐसा लगता है कि ये सारी मेरी जिम्मेदारी है। तो अगर इसी प्रकार की भागीदारी, इसी प्रकार की जिम्मेदारी हर घर में निभाई जाए तो हमारा देश ही बदल जाए। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर उषा जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।
1: मैडम आपसे मिलके मुझे भी बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद।
0: और दोस्तों, वक्त है आपसे इजाजत लेने का। आपसे ले रही इजाजत, लेकिन आप कहीं नहीं जाने वाले हैं, आप जुड़े रहने वाले हैं अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड फील लाइफ।
2: तुम्हें अपनी माशूका की कसम, खींच के रख दो उसकी तस्वीर यहाँ, इससे बड़ा तोहफा और क्या हो सकता है।

0: नमस्कार, मैं हूँ राकेश ओम प्रकाश मेहरा और आप सुन रहे हैं 107.8 मानव रचना।
1: रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर मैं आ चुकी हूँ आप लोगों के पास में। मैं हूँ प्रियंका और प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ, और ये मेरी लाइफ में आप सभी का स्वागत है, जहाँ मैं होती हूँ आपके पास 1 बजे से 3 बजे तक, जहाँ गाने आपको सुनाती हूँ और होती है ढेर सारी बातें। और आज बातों के साथ साथ मैं सिर्फ अकेले ही आपसे बात नहीं करने वाली हूँ, बल्कि एक ऐसी शख्सियत मेरे शो में आज इस प्रोग्राम में हमारे साथ होने वाली है, स्टूडियो में होने वाली है, जिनसे आपको भी बहुत कुछ सीखने जानने सुनने को मिलेगा। ये कौन है इनके बारे में मैं जरूर बताऊंगी। चलिए पहले नाम बता देती हूँ आपको, इनका नाम है डॉक्टर शेफाली गुप्ता, लेकिन इनकी बाकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाली हूँ थोड़ी सी देर में, क्योंकि अभी प्रोग्राम शुरू हुआ है। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पहले ही जैसे हम शुरुआत करते हैं तो एक गाना सुनाते हैं, और वो गाना होता है मेरी पसंद का। तो आज भी मेरी पसंद के गाने से इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं, और साथ के साथ आप अपनी पसंद सुनना चाहते हैं या कोई आप मैसेज शेयर करना चाहते हैं हमारे साथ में, या कोई गाना किसी को आप डेडिकेट करना चाहते हैं, कोई दूर बैठा है उसको आप गाना सुनाना चाहते हैं, अपने दिल की बातें उन तक पहुंचाना चाहते हैं, तो नंबर है हमारा 8010781078। तो चलिए एंजॉय करते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल सा गाना। मैं हूं प्रियंका आपके साथ, रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर।

0: ये गाना आपने सुना रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर. मैं हूँ प्रांका और प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ. और आज स्टूडियो में हमारे साथ में है डॉक्टर शेफाली गुप्ता और ये एक एजुकेशनिस्ट हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, स्टूडेंट काउंसलर हैं. साथ के साथ इन्होंने पॉलिटिकल साइंस में PhD की है और कई नेशनल इंटरनेशनल प्रोग्राम्स में ये यूथ को मोटिवेट कर चुकी हैं और समाज और युवाओं के लिए लगातार काम कर रही हैं. और इनका बहुत बहुत स्वागत है. और ये तो सिर्फ चंद चीजें मैंने आपको बताई है, अभी तो बहुत कुछ इनसे जानना बाकी है. इनसे हम जानेंगे ढेर सारी बातें, हम इनकी लाइफ से जुड़े जो ऐसे कुछ ऐसे मुश्किल भरे पल रहे हम सब की जिंदगी में होते हैं, लेकिन ये कैसे उनको पार करके आज इस मुकाम पर पहुंची है हम इनसे जानेंगे. सबसे पहले मैम स्वागत करते हैं आपका इस प्रोग्राम में.
1: बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका. सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार. मैं
0: जी
1: बहुत खुश नसीब हूँ कि आपने मुझे यहाँ मौका दिया आने का और श्रोताओं से बात करने का मौका दिया. उन सबसे मैंने बहुत सीखा है और आगे भी सीखती रहूंगी. यही मेरा एक एम है समाज के लिए कुछ
0: जी. समाज में जब कुछ कर दिखाने की बात आती है बहुत सारे लोग बात करते हैं, बहुत सारे लोग इस पे डिस्कशन करते हैं, डिबेट करते हैं, लेकिन जब ग्राउंड पर जाकर के कुछ काम करने की चीज वो बात आती है ना, तब बहुत सारे लोग तो सिर्फ ये सोचकर बैठ जाते हैं कि कौन ही हमारा साथ देगा या इससे क्या ही बदलाव होने वाला है या इतने सारे लोग हैं हम क्या ही कर पाएंगे. ये सोच ही कई बार ना हमें जो हम अच्छा कर सकते हैं उसको हमें पीछे कर देती है. लेकिन ये चीज़ शेफाली जी ने नहीं सोची, आज इसीलिए इस प्रोग्राम में हमारे साथ में हैं. शेफाली जी अब तक का सफ़र आपका कैसा रहा यह तो मैं ज़रूर जानूंगी, लेकिन यहाँ तक आप पहुँची इसके लिए एक सोच जरूरी होती है. वो सोच डेवलप जो होती है ना वो बचपन से होती है. आई गेस आपके केस में भी ऐसे ही हुआ होगा. तो अपने बारे में बताइए, अपनी जो आपकी जो जर्नी रही है अभी तक की, कैसे आपने कैसे अपना मुकाम शुरू किया, बताइए इसके बारे में.
1: सो मैं एक ही चीज में बिलीव करती हूँ कि जिंदगी खूबसूरत है, बस जीने की जरूरत है.
0: करेक्ट.
1: इसी के सहारे मैं आगे बताना चाहूंगी कि मैं एक सैन्य अधिकारी की पत्नी हूँ, शिक्षा विशेषज्ञ, स्टूडेंट काउंसलर, रिलेशनशिप काउंसलर, और इसके साथ साथ मैं एक ईयर टू ईयर NGO जिसके साथ मैं 6-7 साल से जुड़ी हुई हूँ, जो मेंटल हेल्थ पर काम करते हैं. और मैं ब्यूटी पेजिंग ग्रूमर, मीडिया पर्सनैलिटी, एक क्षितिज इंडियन आइकोनिक पोएट की संस्था है उसमें मैं जुड़ी रही हूँ फॉर लास्ट 7 ईयर्स
0: जी.
1: एंड आर्यन टॉक्स के जुड़ी रही हूँ. ईयर टू ईयर में आपको बताया रिलेशनशिप काउंसलर हूँ. ईवीएम में टीचर्स ट्रेनर क्योंकि मैं एजुकेशनिस्ट हूँ पहले. TRO में कंटेंट राइटर हूँ. मैं अपने आज के समाज को प्रेरित करने के लिए वहाँ कुछ ना कुछ लिखती रहती हूँ. ULB में स्टूडेंट काउंसलर हूँ जहाँ बहुत सारे स्टूडेंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जुड़े हुए हैं. इसके साथ साथ मैं ग्लोबल पब्लिक स्पीकर हूँ. मैंने अपने बहुत सारे लेक्चर्स ऑनलाइन ऑफलाइन लिए हैं, दुबई, कैलगरी, कैनेडा और बहुत सारे अलग अलग तरह की जगह से यूनिवर्सिटीज मेरे साथ जुड़ी हुई हैं. सो आजकल के दौर में नए जमाने के स्टूडेंट या आप कह सकते हैं जैन जी के साथ जुड़े मुझे बहुत पसंद है. वो मुझे एक सोल सेटिस्फेक्शन मिलता है उनसे बात करके, नई चीजें सीखने मिलती हैं और एक तरह से उनको मार्गदर्शन देने का काम मैं हमेशा करती आई हूँ. इसके साथ साथ क्योंकि मैंने PhD किया है पॉलिटिकल साइंस में, मेरा टॉपिक मीडिया से रिलेटेड था, इसीलिए मीडिया मेरे लिए बहुत दिल के करीब है, मेरा पैशन है. सो मैंने रेडियो द्वारिका में काम किया है, NewsX में थोड़े दिन काम किया है, वेयर आई वॉज करेक्टिंग द कंटेंट्स एंड ऑल. सो इस तरह मेरी जर्नी की शुरुआत में इंस्पिरेशन मुझे पेरेंट्स मेरे 21-22 ईयर्स तक तो साथ थे ही, उसके बाद भी उन्होंने कभी भी, हम दो सिस्टर्स हैं, उनको ये नहीं फील होने दिया कि हम गर्ल्स हैं. आजकल बोला जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उन्होंने उस टाइम में हम सबको इतना एजुकेट किया कि आज हम दोनों अपने पैरों पर खड़े हैं और हम इस समाज में कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं. फिर मेरे हस्बैंड क्योंकि आर्मी में हैं, जगह जगह पोस्टिंग रही हमारी, तो हमारे साथ जितनी सीनियर लेडीज थे, जितने हमारे साथ फ्रेंड सर्कल बना, हमारी फ्रेटर्निटी बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत है, जहां हम हाई और लोज ऑफ लाइफ साथ में शेयर करते हैं. सो उनसे हमने बहुत सीखा, सीखते सीखते बच्चे हुए, बच्चे बड़े हो गए, अपनी अपनी जगह चले गए, फिर बच्चों ने हमें सिखाया, बच्चों ने मुझे सिखाया आज के टाइम में सोशल मीडिया का इम्पैक्ट क्या होता है.
0: Correct.
1: कैसे हम लर्निंग को अपडेट कर सकते हैं. हमारी लर्निंग उस टाइम की है जहां हम लिखा करते थे, आजकल लैपटॉप आ गया है, आपका इतनी सारी चीजें आ गई हैं, फिर आपको सोशल मीडिया में एवरीडे अपलोड करने के लिए कुछ चाहिए होता है, तो इतना ज्यादा प्लेथोरा ऑफ कंटेंट है कि आपको क्या देखना है क्या नहीं देखना है, कितना सेफ रहना है एआई के जमाने में, इतने फ्रॉड्स होते हैं, ये सब चीजें मैंने अपने दोनों बच्चों से सीखी। आज भी दोनों मेरे को यही बोलते हैं, मम्मी यू हैव गिवन योर लाइफ टू अस, नाउ इट इज योर टाइम टू फ्लरिश एंड गिव बैक टू द सोसाइटी। सो मेरी पूरी फैमिली मेरे पीछे साथ में खड़ी है, जो हूँ आज मैं वो उनकी वजह से, माई सिस्टर, माई पेरेंट्स, हस्बैंड, माई चिल्ड्रन, ऑल आर एट द बैक ऑफ मी।
0: तो बिल्कुल इतना सब कुछ आपने बताया, आप मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, आप रिलेशनशिप कोच भी हैं और बहुत सारी चीजें, आप एनजीओ भी चला रही हैं, फिर आप एक आर्मी ऑफिसर की वाइफ हैं, मतलब इतना सब कुछ कि मैं किसी एक चीज से तो आपको नहीं आपको कुछ कह पाऊंगी। हाँ ये जरूर कहूंगी कि मल्टीटास्किंग लेडी से हम बात कर रहे हैं जिन्होंने हर क्षेत्र में अपने जो है हाथ आजमाए हुए हैं और अभी भी काम कर रही हैं। कभी जब आप पीछे मुड़कर खुद को देखती हैं और जब आप ये देखती हैं कि मैंने कितना सब कुछ कर लिया है, एक ख्याल तो मन में आता ही होगा, तो क्या थॉट आता है पहले आपके दिमाग में?
1: सबसे पहले तो मैं बताऊंगी इसका श्रेय पूरा मेरी आर्मी फ्रेटर्निटी को जाता है। जब आप आर्मी में होते हैं, आपके हस्बैंड आगे पोस्ट होती है, तो आप अपने आप खुद बच्चे मैनेज करते हैं, घर मैनेजमेंट होता है, तो हाफ ऑफ द मैनेजमेंट हमें इवेंट मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, होम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, देन वी ट्रैवल अलोन, वी डू एवरीथिंग अलोन। ये एक जो पावर आर्मी ने मुझे दी है उसमें मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि जितने भी काम हम मल्टीटास्किंग के आज कर पाए हैं, इट वॉज द ग्रूमिंग डन बाय दैट। सो आई ओ माई मल्टीटास्किंग एबिलिटी and many more things to my army fraternity. My thanks to my juniors and seniors. I learned a lot from them. बहुत कुछ सीखने मिला मुझे उनसे। और दूसरा उन्होंने मुझे ये बताया, क्योंकि हम बहुत सारे स्टेज शोज करते हैं, हम कंपेयर करते हैं। I have already done almost more than 2000 स्टेज शोज। I have compared a lot, more than 4000, 5000 shows there. So एक अंदर जो आत्मविश्वास होता है, मैंने एनसीसी सर्टिफिकेट किया था, उसमें था मेरे में आत्मविश्वास, पर मैरिज के बाद कभी बच्चे हो जाते हैं, आप अपने में इतना बिजी हो जाते हैं कि आर्मी ने वो कॉन्फिडेंस दिया मेरे को आगे बढ़ने के लिए कि मैं अपने ऊपर खुद सबसे पहले भरोसा करूं। सो आई बिलीव इन माई सेल्फ एंड आज तक मैं अब खुद को पहली प्रायोरिटी देती हूँ। माई सेल्फ केयर इज माई फर्स्ट प्रायोरिटी इन माई लाइफ, देन एनीथिंग एल्स कम्स इन माई लाइफ, इवन फॉर द फैमिली ऑल्सो। जब मैं अपनी केयर कर पाऊंगी तभी मैं फैमिली की केयर कर सकती हूँ।
0: करेक्ट, बहुत सही बात आपने बोली कि जब मैं अपना ध्यान रख पाऊंगी, जब मैं स्ट्रांग रह पाऊंगी तभी मैं दूसरों का ध्यान रख सकती हूँ। और ये एक बहुत ऐसी गहरी सच्चाई है जो हम सब जानते भी हैं, वाकिफ है, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं हम अपने आप को ताक पर रखते हैं दूसरों की वजह से। इस पर हम बात करेंगे क्योंकि महिलाओं के लिए सबसे मैं कहूँगी कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो सुननी चाहिए, मैम से जरूर बात करेंगे। डॉक्टर शेफाली गुप्ता हमारे साथ में इस प्रोग्राम में, प्रोग्राम का नाम है ये मेरी लाइफ और मैं हूँ प्रांगाम के साथ।

0: आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ये मेरी लाइफ रेडियो मानव योजना 107.8 FM पर. मैं हूं प्रांक आपके साथ और प्रोग्राम में इस वक्त हमारे साथ मेरे बिल्कुल सामने स्टूडियो में बैठे हैं डॉक्टर शेफाली गुप्ता, जिनसे आज हम बहुत सारी बात कर रहे हैं. ये काफ़ी प्रेरणादायक शख्सियत हैं जिन्होंने अपने शिक्षा से, अपने अनुभव से काफ़ी कुछ अचीव किया है. तो इनसे हम बात कर रहे हैं. अभी जैसे आपने कहा कि जब तक आप स्ट्रांग नहीं रहेंगे तब तक आप कहीं ना कहीं, ये सच्चाई भी है कि खुद को स्ट्रांग रखना ज़रूरी है. फैमिली को तभी हम टेक केयर कर पाएंगे, तभी हम अपने करियर में आगे बढ़ पाएंगे, हम खुद के लिए अच्छा कर पाएंगे, राइट. आज की जो महिलाएं हैं वो इतना ज़्यादा बिजी हैं कि अपने ऊपर ध्यान ही नहीं दे पाती हैं. परिवार को देखने में, अपने करियर को बनाने में इतना डूब जाती हैं कि अपने ऊपर वो ध्यान ही नहीं रहता. और कहीं ना कहीं फिर जब एक एज आती है, जब हम उस चीज़ को अनुभव करने का, जब वो एक्सपीरियंस करने का जब वो पल आता है ना, तब हम अपने हेल्थ को लेकर परेशान होते हैं, अपने आप को लेकर परेशान होते हैं. आप क्या कहना चाहेंगी, क्या मैसेज देना चाहेंगी महिलाओं को?
1: आपने बिल्कुल सही कहा. आज के दौर में हम आर्टिफिशियल दुनिया में इतना आगे भाग जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि एक इतने खूबसूरत इंसान हम थे. आप सोचो जब हमारा बचपन था कितना सुंदर होता था, किसी चीज की फिक्र नहीं थी, बेफिक्र रहते थे हम. आज के टाइम में बच्चों का बचपन भी धीरे धीरे छिनता जा रहा है, बाहर गेम्स कोई नहीं खेलने जा रहा है. अब थोड़ा सा कॉन्शियसनेस आई है लोगों में, समाज में, पर अभी थोड़ा टाइम लगेगा. और जहां तक आज की नारी की बात करते हैं, आज की नारी मल्टीटास्किंग जैसे आपने बोला वो करते हैं, लेकिन मैं जो सोचती हूँ, आपको अपनी बॉडी को ऐसे ट्रीट करना है जैसे आप अपनी बॉडी के ऊपर होमवर्क कर रहे हैं. जब हम क्लास में जाते हैं, हम कुछ सुनते हैं, फिर हम होमवर्क करते हैं घर आकर, ऐसे ही हमारी बॉडी एक हमारा पार्ट है जिसको हमें लुक आफ्टर करना है. वो बेबी की तरह है, उसके लिए हमें बहुत सारा होमवर्क करना होता है. आप मॉर्निंग में मेडिटेशन करिए, ग्रेटिट्यूड रखिए, योगा करना चाहते हैं योगा करिए, निकालिए अपने लिए टाइम. ब्यूटीफुल सुंदर वर्ल्ड है, कितनी सुंदर दुनिया है वहां. सुबह की ऑक्सीजन मिलती है सीधा. अपनी बॉडी के लिए जो सुबह काम कर सकते हैं आप, एक घंटा नहीं, एक घंटा शुरुआत होती है, 5 मिनट से तो करिए. स्टार्ट विद 5 मिनट्स, 10 मिनट्स बढ़ाइए, नेक्स्ट वीक 20 मिनट्स बढ़ाइए. कुछ चंद लम्हे उस इंसान को दीजिए जिसको सुबह उठ के आप शीशे में देखते हैं और वो आप हैं. लुक एट द मिरर एंड से यस दिस इज मी, टुडे इज गोइंग टू बी माय डे. आज मैं जो चाहती हूँ वो मैं लेकर आऊंगी. शाहरुख खान ने भी बोला है ना, किसी चीज को इतनी शिद्दत से चाहो कि सारी कायनात उसे मिलाने में आपका साथ देती है. तो यही अगर आप अपनी बॉडी के लिए केयर करना सीखेंगे, सेल्फ लव सीखेंगे. और शायद मैंने प्रियंका बताया था आपको, आजकल बटरफ्लाई हग बहुत चल रहा है. दैट इज यू पुट योर राइट हैंड ऑन योर लेफ्ट शोल्डर, पुट योर लेफ्ट हैंड ऑन योर राइट शोल्डर एंड से दिस इज मी, आई लव यू, आई लव माई सेल्फ. सो ये जो बटरफ्लाई हग है ये एक मैजिकल हग होता है. आप शीशे में उस इंसान को जिसको आप 24 आवर्स चलाते हैं किसी दुनिया में बाहर की, उसमें थोड़ा सा टाइम देके देखिए, देखिए ये मैजिक दिखेगा आपको. दिखना शुरू विद इन सेकंड शुरू हो जाते हैं, बिकॉज ये अफर्मेशंस हैं. इनको
0: सच्चे दिल से करना
1: है, सच्चे दिल से करना है. अफर्मेशंस होते हैं ना, दिस इज मी, आई द डे इज बाउंड टू बी माई डे टूडे एंड इट विल हैपन. यू आर गिविंग द यूनिवर्स ऑल दीज यू नो ऑरा, योर ऑरा इज क्रिएटिंग अ वाइब्रेशन इन द यूनिवर्स. तो आपकी चीजें अच्छी होंगी.
0: बिल्कुल,
1: सोच पे निर्भर करता है. मैं कहती हूँ आजकल की जितनी नारी हैं उनको यही बोलती हूँ कि आपके पास वो पावर है, आपके पास व्हाट्सएप है, आप उसमें डीपी लगाते हैं. मैं उसको बोलती हूँ डिस्प्ले पॉजिटिविटी. आप क्यों पॉजिटिव सोच नहीं रख सकते? बिल्कुल रख सकते हैं. आपका आधा 50% काम उस पॉजिटिव सोच रखने से खत्म हो जाएगा. अगर आप सोचते हैं आज मुझे ये करना है, तो आपका आधा काम तो हो गया. उसके बाद तो आपको थोड़ा सा काम ज्यादा आगे करना है. तो सभी नारियों से मेरी यही एक मेरा कहना है कि आप सबसे पहले अपनी इस खूबसूरत इंसान को जिसको आप शीशे में देखते हैं उसे टाइम दीजिए, उसको ठीक रखिए, स्वस्थ रखिए और खुश रखिए.
0: बिल्कुल,
1: तो आप अंदर से मन खुश होगा तो आप बाहर से भी स्वस्थ रहेंगे.
0: जी, तो जादू की झप्पी बहुत जरूरी है, ये मैम भी कह रही हैं. तो अपने आप को पहले जादू की झप्पी देना शुरू कीजिए और अपने लिए अच्छा कहना, अच्छा सोचना शुरू कीजिए. और ये ना मैं बहुत मानती हूँ कि अगर मान लीजिए किसी के साथ में कोई झगड़ा हो गया या कोई ऐसी बात हो गई है ना, और उसके बाद दिमाग में वही चीजें चलती रहती है और आप जैसा फिर सोचते हो ना वैसा ही आप रिएक्ट करने लगते हो, आप के जो एक्शंस है ना वो भी बिल्कुल वैसे हो जाते हैं जो आप सोच रहे होते हैं। अगर आप अग्रेसिव कुछ सोच रहे हैं तो वो अग्रेसिव जो एक्शंस हैं वो दिखाई देते हैं। तो इसीलिए इसके उलट आप सोचिए, आपको हमेशा अपने मन में प्यार रखना है, अच्छापन रखना है, अच्छा हर इंसान होता है, लेकिन उस चीज को बस अब आपको उस शैडो से निकल करके सामने लाना है, फिर आप देखिएगा आपकी पर्सनालिटी, आपने खुद भी कभी यकीन नहीं किया होगा और ये खुद मैम कह रही है और इतना एक्सपीरियंस, अभी हम और बहुत सारी बातें हम मैम से जानेंगे, साथ के साथ मैं सुना रही हूँ गाना, तो इस वाली बात पे मुझे एक गाना याद आ रहा है, मैं आपको सुनाती हूँ, बहुत मोटिवेट करेगा आपको ये गाना। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ये मेरी लाइफ और मैं हूँ प्रांका आपके साथ।

0: गाने जो मैं आपको सुना रही हूँ आपको कैसे लग रहे हैं जरूर बताइएगा। नंबर है हमारा 8010781078 रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर। मैं हूँ प्रांका आपके साथ और प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ। और हमारे साथ में है डॉक्टर शेफाली गुप्ता जो कि एक एजुकेशनिस्ट है, मोटिवेशनल स्पीकर, स्टूडेंट काउंसलर है। इन्होंने पॉलिटिकल साइंस में PhD किया हुआ है और कई नेशनल इंटरनेशनल प्रोग्राम्स में यूथ को मोटिवेट करती हैं। इसी के साथ ही के रिलेशनशिप कोच हैं और बहुत सारी चीज़ें जो लगता है जो ये कर रही हैं उनसे अभी जानना बहुत कुछ बाकी है। लेकिन पहली चीज़ जो सबसे पहले मेरे दिमाग में, जैसे कि आपने कहा कि आप आर्मी ऑफिसर की वाइफ हैं और कहीं ना एक ये सवाल सबके जहन में रहता है कि मुश्किल होता होगा ना, ऐसे कि एक डर रहता है हमेशा, राइट? एक मन में हमेशा डर बना रहता है, साथ में बच्चों को भी टेक केयर करना है, घर भी देखना है, तो कैसे मैनेज, मतलब सबसे पहले तो सल्यूट है आपको, कैसे आप मैनेज कर पाती हैं इतना सब कुछ और कैसे उस डर से आप बाहर निकल पाती
1: हैं? कहते हैं खुदा ने शायद हम लोगों को चुना है इतने सारे लोगों में जो स्ट्रांग लेडीज हैं कि हम इस डर से ऊपर निकल सकते हैं, इसीलिए उन्होंने हमें आर्मी ऑफिसर्स की पत्नी के लिए चुना है शायद, क्योंकि हमारा जो डर है वही हमारी ताकत है।
0: करेक्ट।
1: हम लोग साथ में रहते हैं, हमारे यूनिट है, ब्रिगेड है या कोई भी हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है आर्मी में, वो सब इतना साथ में एक दूसरे के साथ रहते हैं कि हमें लगता ही नहीं हम अकेले हैं या डर हमें कभी साथ लेगा। जैसे हम सिस्टर्स आपस में एक घर की तरह रहते हैं, फैमिली की तरह रहते हैं, वैसे ही हमारे साथ हमारे सुख दुख में हम सब एक दूसरे के साथ एक फैमिली की तरह काम करते हैं, तो कभी अकेलापन नहीं लगता है। इट्स अ बिगर लार्जर ब्यूटिफुल फैमिली विच वी कैरी विद अस, सो डर का तो सवाल ही नहीं उठता है। और दूसरा डर हमें इसलिए भी नहीं लगता है क्योंकि हमारे हस्बैंड एक देश के लिए कुछ कर रहे हैं और वो एक बहुत गर्व की बात है। आपने देखा होगा पिछले कुछ टाइम में जो जो इंसिडेंट्स हुई हैं वो हमारे लिए बहुत गर्व से सर ऊंचा करने वाली बात है, देश के गौरव के लिए, राष्ट्र के गौरव के लिए, गरिमा के लिए। और मैं बहुत ज्यादा अपने आप को गौरवान्वित फील करती हूँ ये कहते हुए कि बाकी सब चीजों से ऊपर जो मेरी आज पहचान है वो यही है कि मैं आर्मी ऑफिसर की पत्नी पहले हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत सम्मान का विषय है।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, कहीं ना कहीं सपोर्ट, कहीं ना कहीं वो केयर, वो प्यार, वो भी कहीं की आगे बढ़ने में सपोर्ट देती है। वहीं एक सपोर्ट और होता है जो हमारे लाइफ सिस्टम होते हैं, हमारे जो अपने परिवार वाले होते हैं, आप इसे जो भी नाम दे सकते हैं मुझे बताना अगर आपने कोई नाम दिया हुआ है अपने किसी लव्ड वन का, लेकिन इनका सपोर्ट ना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप कुछ कर रहे हैं लाइफ में और जितना आपने अचीव किया है इसमें अपनों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, तो क्या क्या कहना चाहेंगे
1: कि बिल्कुल सही कहा। हाँ,
0: जी,
1: इस सपोर्ट के बिना तो कोई आगे नहीं बढ़ता है।
0: बिल्कुल,
1: मेरे फादर हमेशा कहते हैं हमारे पास कुछ सर्कल्स होते हैं, हमारा जो इनर सर्कल है उसमें सिर्फ हम हैं, इट्स मी आई, जिसके ऊपर सारे लोग टिके हुए हैं। सेकंड सर्कल में आपके हस्बैंड और बच्चे आते हैं जो आपकी फैमिली बनते हैं, उनका भी आपके ऊपर बहुत सारी निर्भरता रहती है, उनको मेंटली सपोर्ट करना है, फिजिकली सपोर्ट करना है, फाइनेंशियली सपोर्ट करना है बच्चों को आपको, तो हस्बैंड वाइफ मिलकर ये चीजें आगे प्लान करते हैं। अब बच्चों का साथ हमेशा रहता है, वो हमेशा बच्चे रहेंगे चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, सो ये सपोर्ट हमारे सेकंड सर्कल का है। थर्ड सर्कल में हमारे आते हैं हस्बैंड के पेरेंट्स और गर्ल के पेरेंट्स, सो इन चारों भी हमारे ऊपर डिपेंड है क्योंकि हम ये इनको सपोर्ट करते हैं, मेंटली भी लुक आफ्टर करना होता है उनका, उनकी आज की जरूरतें पूरी करनी होती हैं। ऑल्दो आजकल मैंने देखा है बहुत सारे पेरेंट्स और सब हैं जो अपने आप में खुद ही इतने इंडिपेंडेंट हैं कि वो कर लेते हैं, और कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जो केयर के लिए भी हमें मिल जाती हैं। उसके बाद फिर हमारा आउटर सर्किल आता है जहां हमारे फ्रेंड्स हैं जो हमारी जिंदगी हैं। आजकल के दुनिया में फ्रेंड्स होना और फ्रेंडशिप खत्म होना मैंने बहुत यंग बच्चों में देखा है। आप लोग फ्रेंडशिप को सिर्फ वहां तक देखते हैं जहां आप एंजॉयमेंट देखते हैं, आप वहां तक फ्रेंडशिप को देखते हैं जहां आप ये चाहते हैं कि अच्छा आज हम यहाँ चलेंगे, आज हम यहाँ खाना खाएंगे, आज हम मूवी साथ में देखेंगे, पर फ्रेंडशिप इससे ऊपर है। ये फ्रेंडशिप आपकी जो बनती है आपके इस सर्कल में, ये आपके फैमिली बन जाती है। कुछ टाइम के बाद आपका फैमिली फ्रेंड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और फ्रेंड्स फैमिली में कन्वर्ट हो जाते हैं. आप देखिएगा 50 साल के ऊपर जितने भी लोग हैं उनकी लाइफ लाइन ही फ्रेंडशिप फ्रेंड्स होते हैं. वो लुक फॉरवर्ड करते हैं आज सुबह आज कहाँ जाएंगे, आज हमारी किटी पार्टी, स्पेशली लेडीज का, इवन जेंट्स का भी स्टैग पार्टीज होती है. सो उनके लिए फ्रेंड्स उनकी जान है हम लोगों के लिए, जिनसे हम सीखते हैं, साथ में ग्रो करते हैं, साथ में सुख दुख को आपस में करते हैं. तो कहा भी ये गया है, एवरी मोमेंट हैज लव इन इट, एवरी आवर हैज हैप्पीनेस इन इट, इफ यू लूज इट इट बिकम्स मेमोरी एंड इफ यू लिव इट इट बिकम्स लाइफ एंड आवर लाइफ इज आवर फ्रेंड्स. सो ये सारी सर्कल्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट है. इसके बाद हमारा मिला के जो बनता है दैट इज हमारा राष्ट्र निर्माण, जहां हम अपनी फैमिली के साथ अपनी सोसाइटी को क्या दे सकते हैं.
0: बिल्कुल.
1: हमने जितना सीखा बचपन से आज तक, क्या हम उसका 1% भी अपनी सोसाइटी में गिव बैक कर पाए हैं? आप अपने अंदर झांक कर देखिएगा. कई बार होता है हम डोनेशन के लिए जाते हैं, कहीं ओल्ड एज होम में जाते हैं, किसी एनजीओ में काम करते हैं, बच्चों के साथ काम करते हैं. बहुत सारे ऐसे विकलांग लोग हैं, स्पेशल नीड्स के हैं, जिनसे हम बातें करते हैं, कैंसर पेशेंट्स के साथ बातें करते हैं. इतनी सारी चीजें अगर हम करते हैं ये आपके दिल को सुकून देती हैं. ये सारी चीजें आपके लिए खुद के इम्प्रूवमेंट के लिए हैं, जिसके लिए आप ग्रेटिट्यूड शो करते हैं कि हमें इतना कैपेबल आज समाज ने बनाया है कि हम उसका बहुत आभारी है कि हम उसको वापस भी ये करेंगे. दुनिया बहुत छोटी है, छोटी सी जिंदगी है, इसी में हमारी जिंदगी एक अच्छे ग्रेटिट्यूड के साथ निकल जाती है. सो मैं हमेशा एक मेरा बहुत मंत्र है मेरा प्रियंका, वो शेयर करती हूँ श्रोताओं के साथ, आपके साथ. मैं अपना GPS खुद लेकर चलती हूँ. आप मोबाइल उठाते हैं, आप GPS लगाते हैं, मेरा GPS मेरे साथ रहता है. जी इज फॉर ग्रेटिट्यूड, पी इज फॉर पॉजिटिविटी एंड एस इज फॉर स्ट्रेंथ, नो योर स्ट्रेंथ. बहुत सारे बच्चे हैं जो भूल जाते हैं उनकी स्ट्रेंथ क्या है, क्योंकि वो कंपटीशन में आ जाते हैं.
0: जी, जी, जी.
1: पर उनको अगर अपनी स्ट्रेंथ आज पता चल जाए, आज लाइनें खुली हुई है बच्चों के लिए करियर में. आप म्यूजिक में अच्छे हैं, ड्रम बजाने में अच्छे हैं. आप पहले टाइम में होता था डॉक्टर, इंजीनियर और IAS और यही सब चलता था, आज तो लाइन्स ही लाइन्स हैं, जहां आप जाएंगे वहां जा सकते हैं. सो आई कैरी माई GPS विद माई सेल्फ एंड आई रिक्वेस्ट आपके सारे श्रोताओं से, अपने GPS को अपनी एक कीवर्ड बना लीजिए और दुनिया देखिए कितनी सुंदर खूबसूरत हो जाएगी.
0: वाओ, अगर थॉट चेंज हो जाए तो सब कुछ हम ही हैं. ये थॉट ना बहुत कम लोगों के अंदर होता है, लेकिन जिनके अंदर होता है ना, उनके बात करने का तरीका, उनका उनकी प्रेजेंस ही बहुत स्ट्रांग होती है. ये आप भी कर सकते हैं अगर आप अपने लिए, जिस तरीके से मैम कह रही हैं कि अच्छे वर्ड्स जो हैं वो हमेशा, और ये हर कोई डिजर्व करता है. हम जो हैं या जिस भी पोजीशन पे हैं, हम सब अच्छा डिजर्व करते हैं. राइट, आप जो भी कर रहे हैं आप उसको प्रेज करें. राइट, और कभी भी ग्रैटिट्यूड मत भूलिए, उसको हमेशा रखिए. तो ये छोटी सी चीज़ जो समझ लेता है वो अपने आप को स्ट्रांग बना लेता है. रेडियो वाला वैष्णव 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ये मेरे लाइफ, और मैं हूँ प्रियंका आपके साथ.

0: इस गाने को आपने सुना रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर. मैं हूँ ब्रागा और प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ, और हमारे साथ में है डॉक्टर शेफाली गुप्ता. शेफाली, बहुत सारी बातें हम आपसे कर रहे हैं. अच्छा, कभी एक ऐसा पल आया जो कि मुझे लगता है कि हर किसी के लाइफ में ना कभी ये आता है कि वो चार लोग क्या कहेंगे. तो ये वाली चीजें ना सभी की लाइफ में होती है, है ना. कोई ना कोई ऐसा एक्सपीरियंस होता ही है, और आई एम श्योर मुझे पता है आपके पास भी एक ऐसा एक्सपीरियंस होगा ही. तो बताइए कि आपके लाइफ में भी कुछ ऐसा हुआ है इंटरेस्टिंग.
1: बिल्कुल, इंटरेस्टिंग तो कई बार हुआ है
0: जी.
1: पर अब मुझे उन लोगों पे बहुत दया आती है, तरस आता है कि कैसी सोच है.
0: और यहाँ पता है मैं क्या कहती हूँ, यहाँ मैं कहती हूँ मुझे फर्क नहीं पड़ता.
1: बिल्कुल, मैं अपनी फेवरेट हूँ. कुछ लोगों की सोच वहाँ वहीं तक सीमित होती है.
0: Correct.
1: और मैंने अपनी आउटर लेयर इतनी स्ट्रांग की हुई है कि मुझे उनकी सोच से फर्क नहीं पड़ा. कुछ सोच थी, पहले मैं स्पोर्ट्स में थी, एनसीसी में थी, उसके बाद आर्मी ऑफिसर से मैरिज हुई, फिर मैंने पढ़ाई की, फिर जैसे जैसे मुझे सक्सेस धीरे धीरे मिलती गई, बहुत काम किया है. आई हैव डन ऑन फील्ड्स, ऑनलाइन ऑफलाइन बहुत काम किया है मैंने, और अभी भी मैं करती रही हूँ. पर कुछ लोग हैं जिनको ये लगता है कि ये कैसे आगे बढ़ गए, इनमें तो शायद ये खूबी थी नहीं, क्योंकि उनकी सोच ही वहीं तक है. सो आने वाले टाइम में, पिछला टाइम, अभी का टाइम, अब ये नहीं मैटर करता मेरे लिए, बिल्कुल नहीं मैटर करता है, क्योंकि वो उनका ब्रॉटअप है, उनकी सोच है, और वो वहीं तक है. मैं कहां से कहां पहुंच गई, बट वो वहीं के वहीं है. सो दैट वे आई डोंट इवन कंपेयर विद एनीबडी इन दिस वर्ल्ड. मैं कर रही हूँ, मेरा सोल सेटिस्फेक्शन है, मेरा अपना जिंदगी है, और मैं अपनी तरह से अपनी जिंदगी को डील करती हूँ.
0: अगर कोई फेस कर रहा है अभी करंट और हमारा प्रोग्राम सुन रहा है, बड़ा परेशान के चार लोगों ने दिखते नहीं है लेकिन परेशान कर रखा है, और वो उभर ही नहीं पा रहे इस चीज से, और इस वक्त वो हमें सुन रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे?
1: Always remember, I am the best.
0: Yes.
1: Nobody is best than you. You know, हमें जब मैं डिबेट में पार्टिसिपेट करती थी स्कूल टाइम में, मुझे याद है मेरे फादर बोलते थे आप शीशे में देखकर अपनी प्रैक्टिस करो. तो मैं हमेशा शीशे में देख के वर्बैटम पूरा प्रैक्टिस करती थी. आई ऑलवेज यूज्ड टू स्टूड फर्स्ट देयर. सो मैं एक ही चीज उनकी याद रखती हूँ, बोलते हैं जब आप अपना काम कर रहे होते हो तो ये सोचो दूसरे को किसी को कुछ नहीं आता, बस. सो आई एम द बेस्ट, रिमेंबर दिस थिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ योर हार्ट. जिस तरह से आपको एक यूनिक इंसान भगवान ने बनाया है, कि हमारे तो फिंगरप्रिंट्स भी नहीं मैच होते आपस में. सो हाउ कैन वी से कि चार लोग क्या कहेंगे, सोचना ही नहीं है. हमारे फिंगरप्रिंट यूनिक है, मीन्स हम यूनिक है, हमसे आगे कोई नहीं है दुनिया में. सो ऑलवेज रिमेंबर, हम एक ब्यूटीफुल सोल है, बहुत सुंदर है, और बहुत अच्छा काम दुनिया के लिए करके जाएंगे, कुछ नाम कमा के जाएंगे, कुछ यादें छोड़ कर जाएंगे.
0: आप रिलेशनशिप काउंसलर भी हैं, रिलेशनशिप की जब बात आती है आप क्या कहना चाहेंगे, आपकी क्या राय है इसको लेकर?
1: कुछ बच्चों से मेरी बात हुई है जो यूनिवर्सिटी लेवल पर है, हमने एक सर्वे भी किया था इस बारे में. सो रिलेशनशिप को लोग आजकल सीरियसली नहीं ले रहे हैं. उनके मन में कि एक्सपेक्टेशन एक दूसरे से ज्यादा है. बोथ हस्बैंड वाइफ आर वर्किंग, सो दे आर एक्सपेक्टिंग टू मच फ्रॉम ईच अदर. अगर आप जिंदगी को हल्का फुल्का ले लेते हैं तो क्या चला जाएगा? इट्स अ ब्यूटीफुल लाइफ टुगेदर. एंड हमने देखा होगा हमारे पुराने टाइम में लोग ये सब सोचते ही नहीं थे. किसी ने कुछ कह दिया, दूसरे बार में सॉरी बोल दिया, बात आगे चली गई. अभी वो थोड़ा सा भी अगर कोई बोलते हैं सॉरी तो ब्रेकअप हो जाता है, फिर उनको स्ट्रेस हो जाता है, उनको डिप्रेशन हो जाता है. सो हमारे मेरे हिसाब से तो डिप्रेशन कुछ नहीं है, स्ट्रेस कुछ नहीं है, होता है, साइंटिफिकली इट इज प्रेजेंट, बट ये आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे ले रहे हैं, कितना डीपली आप अपने अंदर उसको ले रहे हैं, और उसकी भी टेक्निक्स हैं. सो मैं ये बोलूंगी रिलेशनशिप के लिए आपको बहुत स्ट्रांग देना पड़ेगा. एक दूसरे को रेस्पेक्ट दीजिए. आपने शायद, मेरे ख्याल से शाहरुख खान का एक इंटरव्यू मैंने देखा था, उसमें था कि कभी भी वो अपनी फ्रेंड से भी तू करके बात नहीं करते हैं. इवन काजोल इज वेरी गुड फ्रेंड ऑफ हिम, बट वो कभी भी तू करके बात नहीं करते, हमेशा आप करके बात करते हैं, या शाम को या राजा शाम को चाय पीते हैं, उन्होंने कभी या नहीं बोला. ये ऑलवेज इज आज शाम को टाइम है तो आ जाना, साथ में बैठते हैं. यूज अ रेस्पेक्टेबल लैंग्वेज विद ईच अदर, एक दूसरे को आप सम्मान देंगे तो ये गिव एंड टेक रिलेशनशिप होती है, जहां आप एक दूसरे को कभी भी लाइटली नहीं लेते हैं. एक लड़की है जिसने अपनी जिंदगी पूरा टाइम पेरेंट्स के पास दी है, उसके बाद वो आपके पास आई है. एक बॉय है जिसने पूरा टाइम अपने पेरेंट्स का साथ दिया है, वो आपके साथ रहने के लिए आया है. सो ये दोनों का एक बहुत ब्यूटीफुल रिलेशनशिप साथ में है. इस बीच में ये नहीं आना चाहिए कि आपके पेरेंट्स ने ये किया, मेरे पेरेंट्स ने ये किया, या मेरे घर में ऐसा हुआ, आपके घर में ये हुआ. दोनों का ब्रॉटअप अलग है, दोनों का स्टडी मटेरियल अलग है, जहाँ आप पढ़े हैं हो सकता है साथ में पढ़े हो. सो एक दूसरे को रेस्पेक्ट देना आजकल के टाइम में बहुत इम्पोर्टेंट है. आपकी टंग से क्या बाहर जा रहा है, या इन अ वे हेल्दी के लिए अंदर क्या जा रहा है, दोनों चीजों का डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप कभी भी ये नहीं बोल सकते कि आज मेरे पार्टनर को ये नहीं आता. आपने उसको जज किया, जजमेंट खत्म कर दीजिए. जहाँ जजमेंट खत्म हो गया वहीं आपको ले गए, तो बहुत सुंदर इंसान है. और जिससे आपने मैरिज किया वो कैसे गलत हो सकता है. हमारे यहाँ डिवोर्स वर्ड नहीं होता काउंसलिंग में, रिलेशनशिप में. हम चीजों को मैनेज करते हुए आगे बढ़ते हैं. थोड़ा उन्होंने कम्प्रोमाइज किया, थोड़ा इधर से कम्प्रोमाइज हुआ, थोड़ा वो हैप्पी हो गए, थोड़ा हम हैप्पी हो गए. ऐसे करते करते लाइफ कब में निकल जाएगी पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि ये एक ऐसा रिश्ता है जो शायद सारे रिश्तों से ऊपर है.
0: करेक्ट करेक्ट.
1: सही. तो मेरे हिसाब से आपको पहले रिलेशनशिप में एक दूसरे को रेस्पेक्ट देना बहुत जरूरी है.

0: आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ये मेरी लाइफ रेडियो माने वरिष्ठ 107.8 एफएम पर. मैं हूं प्रियंका और हमारे साथ में है डॉक्टर शेफाली गुप्ता. डॉक्टर शेफाली, हेल्दी रिलेशनशिप को अगर रन करना है तो उसकी की क्या है?
1: हेल्दी रिलेशनशिप की एक बहुत अच्छी की है कि खुश रहिए. क्योंकि आजकल की जिंदगी में सबसे एक्सपेंसिव चीज खुशी है.
0: करेक्ट.
1: जिसका कोई मूल नहीं है. और आपके पास तो भगवान ने फ्री में स्माइल दी है. कुछ भी कोई बोलता है, छोटी सी स्माइल देके प्यार से बात कर लो.
0: करेक्ट.
1: चीजें अपने आप सुधर जाएंगी. छोटी छोटी चीजों को बड़ा बनाना खत्म कर दीजिए. चीजें आपको लगेगा बहुत सिंपल हो गई है. किसी ने आपको हर्ट कर दिया तो जस्ट ब्लेस देम, एक दूसरे को. छोटी छोटी चीजों में, आज मैंने देखा था आई थिंक दो दिन पहले किसी एक कपल के बीच में लड़ाई हुई. इतना गुस्सा आ गया, इतना एंगर हो गया उसमें कि उन्होंने उसको थप्पड़ी मार दिया तो वायलेंस हो गया, डोमेस्टिक वायलेंस का केस हो गया. सो इतनी सारी चीजें बहुत एक्सट्रीम स्टेप पर क्यों जाने दें हम इन चीजों को? जब हम दोनों की लाइफ है तो हम दोनों अपनी लाइफ को कैसे जिएंगे ये हमारे हाथ में है. है ना. सो आप छोटी छोटी खुशियों को बांटिए. आज नहीं मन हो रहा उसका खाना बनाने का, कोई नहीं, बाहर से खा लीजिए, बाहर चली जाइए. आज नहीं आपको हो रहा कि कुछ तबीयत ठीक नहीं है, हो सकता है हस्बैंड का मूड हो अकेले थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने का, तो गिव हिम सम स्पेस. ऐसी आपका मन है तो गिव हर सम स्पेस. यू नो इट्स अ वाइस वर्सा. आपको स्पेस देनी है, आपको रिलेशनशिप मेंटेन करनी है, ईगो साइड में रखनी है. आजकल हम सभी, आपने देखा है, सभी वर्किंग वुमेन है, वर्किंग मैन है. सो ये जो ईगो आ जाती है ना 30 इयर्स के बाद, ईगो से बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है. इन सबको साइड में रख के अच्छी जिंदगी बिताइए. एंड दिस इज द की.
0: करेक्ट. एक चीज मैं भी इसमें ऐड करना चाहूंगी कि बहुत जरूरी है एक दूसरे को स्पेस देना. राइट. क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मन करता है कि आप अकेले बैठो. बहुत सारे सवाल जो हम अकेले में ही उसका सोल्यूशन ले सकते हैं, लेकिन ये चीज ना समझ में नहीं आती है आज के टाइम पर. और एक चीज जो मुझे लगता है अगर रिलेशनशिप में ये हो जाए तो एक बेहतर रिलेशन चलेगा, वो ये है कि जो अच्छी चीज़ है ना हमेशा उस पर ध्यान दें. हम क्या करते हैं, बुरी चीज़ें हम याद रखते हैं, जहन में अपने रखते हैं. इसके बाद जब थोड़ा सा भी झगड़ा होता है तो वो सारी बुरी चीज़ें फिर वो सामने आती
1: हैं. ये साइंटिफिकली ह्यूमन नेचर है.
0: यस,
1: इट्स अ ह्यूमन नेचर, नॉट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ ओनली. ये हम कहीं भी देखेंगे तो हमारा नजर सबसे पहले उस पर ही जाती है कि नेगेटिव क्या है. सपोज समबडी इज वेरी वेल ड्रेस्ड, सो आप कॉम्प्लीमेंट करते करते ही आपको पता चल जाएगा इसमें क्या कमी है.
0: राइट.
1: तो ये एक ह्यूमन नेचर है जिसको अगर आप अवॉइड करेंगे तो इट कैन बी वेरी ब्यूटीफुल.
0: बिल्कुल. और इसे बिल्कुल चेंज किया जा सकता है. लाइफ बहुत अलग कहे कि 360 के एंगल पे चेंज हो जाएगी अच्छे वे में. रेडियो माना वैष्णव 107.8 एफएम पर मैं हूं प्रियंका, आपके साथ हर प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ.

तेरी कचरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा तू जाग जरा तेरी कचरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा तू जाग।

0: सुन रहे हैं प्रोग्राम ये मेरी लाइफ रेडियो माने वैष्णव 107.8 एफएम पर. मैं हूं प्रियंका और हमारे साथ में है डॉक्टर शेफाली गुप्ता. डॉक्टर शेफाली, आपने नेशनल इंटरनेशनल कई सारे सेमिनार्स अटेंड किए हैं, आप स्पीकर रही हैं, है ना. तो आप आज का जो यूथ है, आप उनको क्या कहना चाहेंगी और क्या आप अपने सेमिनार्स में यूथ को बताती हैं, क्या उनको आगे के लिए करना चाहिए, आप क्या कहना चाहेंगी जो इस वक्त लोग आपको सुन रहे हैं उनके लिए.
1: हमने सब जगह ये सुना भी है, पढ़ा भी है और ये सच है कि आज का यूथ देश का निर्माण करता है, देश का भविष्य बनाता है. हमारे हर सेक्टर में जहाँ जहाँ आज यूथ है, कुछ कॉलेजेस में है, कुछ वर्क कर रहे हैं, कुछ परेशान हैं, कुछ बटरफ्लाई एग्जीक्यूटिव्स हैं, अलग अलग ओहदे पर हैं, बहुत सारा कुछ अच्छा भी काम कर रहे हैं. सो मैं यूथ से यही कहना चाहती हूँ, सबसे पहले बिलीव इन योरसेल्फ, अपने ऊपर खुद के ऊपर विश्वास रखिए. और मुश्किलों का आना पार्ट ऑफ लाइफ है, उसमें से हंस के जाना आर्ट ऑफ लाइफ है, ये हम सभी जानते हैं. इस पर अमल करिए. ईच मॉर्निंग वी आर बोर्न अगेन. पिछला कल क्या था उससे सीख कर हमें आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है. कंसिस्टेंसी होनी चाहिए डेवलपमेंट में, हमेशा लर्निंग कभी खत्म नहीं होती. आप कहीं भी किसी से भी कुछ भी सीख सकते हैं. इवन आप अगर रोड पर भी जा रहे हैं, कुछ ऐसे इंसान होंगे जो आपको एकदम अट्रैक्ट करते हैं, कुछ ऐसे इंसान होंगे जो आपको लगता है ये तो ठीक ही नहीं है. सो हर जगह से आपकी लर्निंग होती है, हर जगह से. आप अपने पर विश्वास रखें, कीप लर्निंग, बी कंसिस्टेंट एंड प्लीज अपनी मेंटल हेल्थ पर ध्यान दीजिए. इसकी बहुत सारी टेक्निक्स हैं मेंटल हेल्थ पर, माइंडफुलनेस है, ग्रेटिट्यूड है, योगा है, मेडिटेशन है और बहुत सारी अलग तरह की कलाएं हैं, पेंटिंग है, गो इन द गार्डन. आजकल तो हमारे पास बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हो गई हैं हैदराबाद जैसी जगह में, जहां आपको एक प्लेस अलॉट कर दी जाती है, वहां पर आप जाकर मेडिटेट करके वापस आ सकते हैं. ये ऑफिसेज में भी उन्होंने शुरू कर दिया है, छोटा सा जंगल टाइप बना दिया है, वहां पर आप एक राउंड लेकर भी वापस आ सकते हैं. तो इस तरह की स्पेसेस हमारे यहाँ अवेलेबल हो गई है बिग सिटीज में. इसी तरह आप अपने आप को रिजुविनेट कर सकते हैं, पर रुकना नहीं है, चलते जाना है, अपने आप को मोटिवेट रखना है. जहां आप रुक गए वहां आपको लगेगा अब बस हो गया.
0: करेक्ट.
1: तो यहां से निकलना हमारे हाथ में है, ये पावर सिर्फ हमारे हाथ में है, अपने आप को खुद को मोटिवेट रखने की.
0: और सिर्फ यूथ के लिए ही नहीं बल्कि सबके लिए, मतलब जब तक आप जिंदा हैं, आप सांस ले रहे हैं, तब तक आप लर्निंग जारी रखिए, क्योंकि एक बहुत जरूरी है ह्यूमन के लिए, राइट. तो बातें बहुत सारी हैं और आपका कोई सवाल है, कोई मैसेज आप करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं मैम से, तो नंबर है हमारा 8010781078.

0: सुन रहे हैं प्रोग्राम ये मेरी लाइफ रेडियो माने वरिष्णा 107.8 एफएम पर. मैं हूं प्रियंका और हमारे साथ में है डॉक्टर शेफाली गुप्ता. आपने एनजीओ के बारे में भी बात की कि आप एनजीओ से जुड़ी हैं, तो ये एनजीओ क्या करता है और इसके बारे में कुछ बताइए.
1: मैं काफी सारी एनजीओ से जुड़ी हुई हूँ. एक एनजीओ है एयर टू एयर जिसमें वो सिर्फ मेंटल हेल्थ पर काम करते हैं.
0: ओके.
1: लोगों से सुनते हैं, लोगों को आजकल लिसनर्स चाहिए. तो लोग उनसे अपनी प्रॉब्लम को जस्ट डिस्कस करते हैं. कोई जजमेंट नहीं है, कोई सॉल्यूशन नहीं, कुछ नहीं. दे जस्ट गिव देयर टाइम.
0: और ये कोई भी जाकर
1: कर सकता है. देन दे गिव अ प्लेटफॉर्म टू अ पर्सन कि आप आइए, अपनी शर्म को साइड में रखकर आप ओपन अप होइए, बी कॉन्फिडेंट एंड बी अ पार्ट ऑफ इट. सो इट्स ईयर टू हियर. एंड देयर इज अनदर ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इज कार्या केयर. वहां पर मैंने एक बहुत अच्छे इंसिडेंट में आप सबसे श्रोताओं से आपसे सबसे शेयर करना चाहूंगी. आगरा में इनका एक अवार्ड फंक्शन था. सो ये मेरे कजिन का है, मेरे हस्बैंड के कजिन है, उन्होंने किया है. बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जहाँ हम एक पुअर बच्चों को एजुकेट भी करते हैं, उन्हें दुनिया दिखाते हैं. सो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है. सो वहाँ उन्होंने मेरे को बोला कि आप जाइए उधर और जाकर आप अवार्ड फंक्शन में एज अ चीफ गेस्ट रहिएगा. सो मैंने उसको अटेंड किया. इतना मुझे सुकून मिला वहाँ जाकर क्योंकि वो सारे बच्चे ऑलमोस्ट उस टाइम में वो 150 से ज्यादा बच्चे थे उनको ताज में बैठाया. ताज होटल में आगरा. उनको वही प्रोग्राम, उन्हीं से प्रोग्राम भी कराया. उनको एज अ सेलिब्रिटी फील कराया. खाना खिलाना, उनको रूम्स दिखाना, उनको ताज के अंदर की सारी चीजें विजिट कराना. मुझे इतना अच्छा लगा. उसमें से एक बच्चा था जो मे बी शायद 18 इयर्स का था. वो उसने मुझे बोला कि मैं यहाँ इस ताज के सामने दूसरी साइड बैठकर मैं भीख मांगा करता था. लेकिन मुझे किसी ने इस एनजीओ के बारे में बताया, यहाँ से मैंने पढ़ना शुरू किया. आज मुझे ताज के अंदर आके लग रहा है कि मैंने सपना जो देखा वो पूरा होता हुआ लग रहा है. अब मैं कुछ बनूंगा आगे और मैं यहाँ आऊंगा बनने के बाद अपने बलबूते पर. तो मतलब उन्होंने उन 150 बच्चों को सपने दिखाए.
0: Nice.
1: कि आप अच्छा पढ़िए, अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दीजिए, अच्छी जिंदगी को जीजिए. उसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो मजदूरों के बच्चे थे, बहुत सारे थे जो स्लम एरिया से आए हुए थे कुछ. सो आगरा में सीमित थे वो सारे. मुझे बहुत अच्छा लगा उन बच्चों से बात करके. एक ऐसा इनिशिएटिव जो शायद हमें करते रहना चाहिए. एक और यहाँ पर एक है जो ब्लाइंड लोगों के लिए काम करते हैं, वो भी एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है. सो अलग अलग तरह के लोगों के साथ काम करने में आपको सोल सेटिस्फेक्शन मिलता है.
0: अच्छा, एक के सोचने वाली स्थिति भी है कि किसी टाइम पर लोग बातें किया करते थे, सुना करते थे, लेकिन आज के टाइम पर कितनी कमी हो गई है कि हमें अपनी बात शेयर करने के लिए कोई हमें सुने उसके लिए हमें जाना पड़ रहा है. जबकि एक टाइम पर लोग आसपास होते थे, अपने अपने परिवार वाले, दोस्त, पड़ोसी, सभी जो मिलकर एक
1: इसमें प्रियंका न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई ना.
0: बिल्कुल,
1: उसकी वजह से भी बहुत फर्क पड़ता है.
0: यस यस यस. तो ये एक चीज. लेकिन हाँ, कभी कोई आपके आसपास ऐसा हो जो हमेशा चुप रहता है और ज्यादा बात नहीं करता है, कभी भी उससे कुछ ऐसी बात ना कहिएगा क्योंकि बहुत कुछ मन के अंदर होता है. और कभी बैठ करके सिर्फ उसकी बात सुनिएगा. ऐसे भी हम कहते हैं ना कि हम कैसे हेल्प करें, आप ऐसे भी मदद कर सकते हैं. बहुत अच्छी चीज जो बहुत बढ़िया होगी उसके लिए भी और आपके लिए भी. रेडियो माने वैष्णव 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम की मेरी लाइफ और मैं हूं प्रांक आपके साथ.

இருக்க

0: क्या
1: फिर कोई बावर मुहब्बत की अपनी

0: आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ये मेरी लाइफ रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर। मैं हूं प्रांका आपके साथ और इस वक्त काफ़ी सारी बातें हम डॉक्टर शेफाली गुप्ता से कर चुके हैं और जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि हमारे साथ में है ये और ये जो हैं ये एजुकेशनिस्ट हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, स्टूडेंट काउंसलर हैं और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि नेशनल इंटरनेशनल प्रोग्राम्स में यूथ को मोटिवेट करते हैं। आप सोचिए कि कितना सारा एक्सपीरियंस इनके पास में है और उसी एक्सपीरियंस से हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, इनसे जान रहे हैं कि अपने आप को कैसे बढ़ाना है। और जब भी हम ये चीज़ सोचते हैं ना कि हमें अपने आप को किस तरह से आगे लेकर जाना है, समाज में कैसे अपने आप को वो दर्जा देना है, इसमें काफ़ी सारे चैलेंजेस भी आते हैं ना। तो आप क्या कहेंगी जितने भी लोग आपको सुन रहे हैं, यूथ हैं या जो भी हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे उनके लिए?
1: बहुत सारे श्रोताओं को मैं यही एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि जो चैलेंजेस आते हैं, चैलेंजेस तो लाइफ में आएंगे पर उनसे भागना नहीं है, एक तो उनका सामना करना है, दूसरा उन चैलेंजेस को ब्रेक करिए। अगर आप एक ही बार में वो चैलेंज फेस करते हैं तो आपको लगता है ओ माय गॉड ये तो बहुत बड़ा चैलेंज आ गया, इसे कैसे पार हो पाएंगे, लेकिन उस चैलेंज को अगर आप छोटे छोटे पीसेस में लेते जाएंगे तो आपका चैलेंज नीचे नीचे ही सुधरता जाएगा। अगर आप उसको ओवरलोड करने के लिए छोड़ देंगे तो बहुत बड़ा हीप बन जाता है उसका।
0: करेक्ट।
1: तो आप हमेशा ब्रेक करिए, अपने दिन को प्लान करिए। अगर चैलेंज आते हैं आपके पास कि चलो आज हमें ये चैलेंज आया इसको किस समय पूरा करना है, तो आपके माइंड उसमें उलझ गया, उसका सॉल्यूशन तो नहीं निकलेगा इतनी जल्दी क्योंकि आप चैलेंज का सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, वो तो नहीं निकलना है, उसमें टाइम लगेगा थोड़ा सा। पर अगर आप उसके बारे में ओवरथिंकिंग करेंगे तो वो चैलेंज और बड़ा हो जाएगा। इसको सबसे पहले छोटे छोटे उसमें ब्रेक करिए, पार्ट्स में एक एक करके उन पार्ट्स को सॉल्व करने की कोशिश करिए। एक प्लान बनाइए, एक डिसिप्लिनरी प्लान बनाइए कि हाँ इस टाइम से इस टाइम तक ये करेंगे, इस टाइम से इस टाइम तक ये करेंगे। उस बीच में थोड़ा सा अपने लिए एंटरटेनमेंट का भी टाइम रखिए जिससे आपका माइंड थोड़ा सा फ्रेश हो जाए एंड देन अगेन कम ऑन टू दैट चैलेंज। ये हर फील्ड में होता है, कोई ऐसी फील्ड दुनिया में बनी ही नहीं है जो चैलेंज के बिना प्रोग्रेस नहीं हो।
0: करेक्ट।
1: आप आज प्रेजेंटेशन दे रहे हैं उसमें भी एक चैलेंज है, सीईओ बैठकर कहीं मीटिंग ले रहा है वो भी एक चैलेंज है, पता नहीं कौन सी प्रॉब्लम कब आ जाए। आप एज अ मीडिया पर्सनैलिटी है, आपका कौन सा टेक्निकल ग्लिच आ जाए, यू नेवर नो।
0: बिल्कुल।
1: सो इस तरह से हर फील्ड के चैलेंजेस हैं, उनका सामना बहुत हिम्मत के साथ करना है और उसका सॉल्यूशन निकालना है, चैलेंजेस को प्रॉब्लम नहीं समझना है, उसके सॉल्यूशन के साथ उसको देखना है। प्रॉब्लम देखेंगे तो वो बड़ा लगेगा। इस तरह से आप उसको ब्रेक कर करके प्लान बना के सॉल्व कर सकते हैं। और अगर जहां आप नहीं कर पाते हैं वहां अपने सीनियर्स की मदद लीजिए। बिल्कुल। अगर आपके लाइफ में हर तरह से हमारे पास काउंसलर्स हैं, रिलेशनशिप काउंसलर, स्टूडेंट काउंसलर हैं, और भी आगे आप जाना चाहते हैं, आपके हो सकता है बॉस बहुत अच्छे हो, आपके फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा हो, कुछ ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छी है, पूरा समाज आपकी हेल्प के लिए खड़ा है, आप अकेले नहीं है। चैलेंजेस में अकेला मत समझिए अपने आप को, आपके सराउंडिंग, आपका समाज, सब आपके साथ है।
0: जी, तो ढेर सारी बातें आज हमने डॉक्टर शेफाली गुप्ता से की। थैंक यू सो मच मैम, आप हमारे साथ जुड़ी।
1: थैंक यू।
0: चलते चलते सभी लोगों का
1: Thank you.
0: तो जितने भी लोग आपको सुन रहे हैं, आप चलते चलते आपका क्या मैसेज होगा उन सबके लिए?
1: I always say carry your GPS always with you, gratitude, positivity and know your strength, work on it. So carry your GPS and display positivity in this world. Take good care of yourself.
0: जी.
1: Your self care is very important.
0: जी.
1: And we lead a happy life. This life is beautiful. बहुत खूबसूरत जिंदगी है। जितना happiness के साथ आप जिएंगे उतना ही इस जिंदगी को आप बहुत कुछ देकर जाएंगे।
0: जी, इस प्यारे से मैसेज के साथ में चलिए मेरे चलने का भी वक्त हो गया है, तो मुझे दीजिए इजाजत, आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाकी आगे आने वाले प्रोग्राम्स को एंजॉय कीजिए और सुनते रहिए रेडियो मानव वैष्णव 107.8 FM। दीजिए इजाजत, बाय।

0: चलिया।
1: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर हाजिर है आपका दोस्त फहीम लेकर यादों का सफर। दोस्तों, आज जिस कवि के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ, उनका नाम है डॉक्टर कुंवर बेचैन। उन्होंने बहुत सारे गीत लिखे, बहुत सारी कविताएं लिखी और बहुत सारी गजलों को भी उन्होंने जन्म दिया। उनके बहुत सारे शागिर्द हैं। उन्हीं में से एक उनके शागिर्द हैं जो कहते हैं कि हम कुंवर बेचैन के चेले हैं, जिन्होंने कविता का का और जीवन का जा भी सिखाया था, ऐसा कहना था उनके शागिर्द का। लेकिन दोस्तों, शागिर्द का और भी बहुत कुछ कहना था डॉक्टर कुंवर बेचैन के बारे में। वो सारी बातें आपके साथ साझा करूंगा, लेकिन फिलहाल आवाज की दुनिया के सभी दोस्तों को फहीम का नमस्ते, आदाब।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप हैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, आज बात हो रही है डॉक्टर कुंवर बेचैन के बारे में। और जैसा कि मैंने आपसे जिक्र किया था कि उनके वैसे तो बहुत सारे शागिर्द हैं, उन्हीं में से एक शागिर्द हैं जिनका कहना है कि हम कुंवर बेचैन के चेले हैं जिन्होंने कविता का और जीवन का जा भी सिखाया। तो इस तरह का प्रभाव पड़ता था कुंवर बेचैन के शागिर्दों पर। दोस्तों, डॉक्टर कुंवर बेचैन की अगर हम बात करें तो उनका जन्म 1 जुलाई 1942 को उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद के उमरी गांव में हुआ था। वो गोपाल दास नीरज के बाद मंच पर सराहे जाने वाले कवियों में सबसे आगे माने जाते हैं। कुंवर बेचैन ने आधुनिक गजल को समकालीन जामा पहनाते हुए आम आदमी के दैनिक जीवन से जोड़ा है। उन्होंने गजल की संरचना समझाने वाली एक अति महत्वपूर्ण पुस्तक जिसका नाम है गजल का व्याकरण, उस पुस्तक को लिखा है। अगर कभी आपका इत्तेफाक हो तो आप इस पुस्तक को जरूर खरीदिएगा और पढ़िएगा, जिसका नाम है गजल का व्याकरण। बहुत सारी गजलें इन्होंने लिखी हैं और गजल लिखने का जो तरीका है उस तरीके को इन्होंने बड़ी खूबसूरती से लोगों को समझाने का प्रयास भी किया है। इसके अलावा गीत भी बहुत सारे लिखे और कविताएं भी लिखी हैं। तो आज डॉक्टर कुंवर बेचैन की कविताओं का जिक्र होगा, उनकी गजलों की बात होगी और बात होगी उनके गीतों की भी, लेकिन सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप मैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, बात उस समय की है जब मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता था। तब कविता लिखने का एक जुनून हुआ करता था मेरे अंदर। मेरा परिचय तब किसी के मार्फत मुरादनगर के हिसाली गांव निवासी सुकवि श्री दया शंकर अश्क से हुआ था। बातों बातों में उन्होंने मुझे बताया कि गाजियाबाद में तो सुप्रसिद्ध कवि डॉक्टर कुंवर बेचैन रहते हैं। पता पूछकर मैं बेचैन जी के घर नेहरू नगर पहुंचा। वो घर पर ही मिल गए, उनसे मुलाकात हुई। उनसे मिलकर ये महसूस ही नहीं हुआ कि उनसे मेरी पहली मुलाकात है। मुझमें कविता लिखने के साथ उसे सुनाने का भी शौक था। मेरे निवेदन पर बेचैन जी ने मेरी कविता सुनी। कविता में तो कोई बात कविता जैसी नहीं थी, लेकिन उन्होंने मेरा हौसला बहुत बढ़ाया। उन्होंने मेरी कविता की बहुत तारीफ की और मुझे बहुत सारी दुआओं से भी नवाजा था। लेकिन दोस्तों, इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें हैं जो उनके साथ बैठकर के उनके शागिर्द ने की थी। वो सारी बातें फहीम आपको बताएगा। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर यादों का सफर।

0: खत्म घर से पाला पड़ा, पास आने ना दे हो दूर जाने।
1: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप हैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, डॉक्टर कुंवर बेचैन ने मुझे पहली बात जो बताई थी वो ये थी कि प्रकृति में या घर में बाहर अंदर जो भी वस्तुएं हैं उनको जिंदगी से जोड़ो, फिर कविता में उसे ढाल दो। मैं उनकी बात से इतना प्रभावित हुआ कि उनसे मिलने गाहे बगाहे उनके घर जाने लगा। इस बीच मैं लाल क्वार्टर मोहल्ले में रहता था।

वहां मैंने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर स्वर स्वामिनी तरुण समिति बना डाली। सभी ने तय किया कि लाल क्वार्टर मोहल्ले में एक कवि सम्मेलन करवाएंगे और इस सिलसिले में अश्क जी से बात भी हो गई। उनके मार्फत ओश के सुप्रसिद्ध कवि वेद प्रकाश सुमन जी से मिलना हुआ। कवि सम्मेलन की बात बनी। तय हुआ कि कुंवर बेचैन जी का इस कवि सम्मेलन में अभिनंदन करेंगे। अब दोस्तों, कुंवर बेचैन के शागिर्दों ने उनको कवि सम्मेलन में आमंत्रित किया, और अगर किया तो क्या वो आए? आए, फिर क्या हुआ? ये सारी बातें आपके साथ साझा करूंगा। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर, यादों का सफर।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप में फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, डॉक्टर कुंवर बेचैन के बारे में बात हो रही है और बात हो रही है उनके एक ऐसे शागिर्द के बारे में कि जिनसे उन्होंने बहुत कुछ सीखा था। उसी शागिर्द का कहना है कि मेरा बचपन का दोस्त और सहपाठी कवि चरण शंकर प्रसून और मैं बेचैन जी के घर पहुंचे, उनसे आग्रह किया, वो मान गए। हमने कहा कि इस मोहल्ले में हम एक कवि सम्मेलन करा रहे हैं, उसमें आएंगे तो हम सबको अच्छा लगेगा, और वो हमारी बात को मान भी गए। मोहल्ले में घर घर जाकर हमने चंदा इकट्ठा किया और कवि सम्मेलन करवा डाला। बेचैन जी का अभिनंदन किया, जैसा भी किया अपनी सामर्थ्य के अनुसार किया। वेद प्रकाश सुमन जी ने संचालन करके कवि सम्मेलन में 4 चांद लगा दिए। 2 दिन के बाद मैं फिर बेचैन जी से मिला। बात बात में मैंने कहा कि समिति की ओर से एक स्मारिका निकालनी है, अपनी कोई कविता दे दीजिए, इसे हम कवर पेज पर प्रकाशित करेंगे। बेचैन जी ने हमें जो कविता दी वो माँ शारदे पर लिखा छंद था। वो कुछ यूं था, नित ज्ञान गुमान के आंगन में कुछ भोर रहे कुछ सांझ रहे, मुस्कान की गोद भरी ही रहे पर पीर भी मेरी ना बांझ रहे, मन में कुछ और रहे ना रहे मन मानव का मन मांझ रहे, वरदान दे माँ मन मंदिर में बजती नवगीत की सांझ रहे, मन मंदिर में बजती नवगीत की सांझ रहे। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं फहीम के साथ यादों का सफर।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप मैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, बात चल रही थी डॉक्टर कुंवर बेचैन के बारे में, उनके शागिर्दों के बारे में, कवि सम्मेलन के बारे में जहां उनको आमंत्रित किया था, और उसके बाद उनसे उनकी एक कविता ली गई थी जिसको छपवाने की बात हुई थी, और वो कविता उन्होंने सुनाई भी थी। उस कविता को सुनकर उनका शागिर्द कहता है कि मेरे मुंह से निकल गया कि हम इसे 3 महीने में प्रकाशित कर देंगे। उस समय पद्म भूषण गीत ऋषि गोपाल दास नीरज, राजेंद्र राजन और उर्मिलेश जी ने डाक से अपनी रचनाएं हमें भेजी। हमने भी साहस करके पैसे जुटाए और एक स्मारिका प्रकाशित कर ही थी। 3 महीने के बाद मैं बेचैन जी के पास स्मारिका लेकर गया। उनके घर के गेट पर बाहर ही खड़ा था। बाहर बेचैन जी आए, दरवाजा खोला, मैंने स्मारिका उनके हाथ पर रख दी। ये देखकर वो इतना खुश हुए कि मेरा हाथ पकड़कर घर के अंदर ले गए। अपनी पत्नी यानी हमारी मम्मी जी, उन्हें मैं मम्मी जी बुलाता था, उनके पास ले जाकर मेरी ओर इशारा करते हुए बोले, ये होती है सच्ची लगन, जो कहा वो किया। उन्होंने मुझे खूब खूब आशीर्वाद दिए। इसके बाद तो उनसे मिलने का सिलसिला ही चल निकला। इसके बाद क्या हुआ दोस्तों, वो सारी बातें आपके साथ मैं साझा करता रहूंगा। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर फहीम के साथ यादों का सफर।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप मैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, बात हो रही है कुंवर बेचैन के बारे में और उनके शागिर्द के बारे में। उनके शागिर्द आगे बताते हैं कि कुंवर बेचैन जी अब मेरे काव्य गुरु ही नहीं, मेरे मार्गदर्शक पिता भी बन चुके थे। मैं उन्हें गुरुजी कहकर बुलाने लगा। जो भी कविता मैं उनके पास लिखकर के ले जाता, वो उसमें थोड़ा बहुत संशोधन जरूर कर दिया करते थे। मेरे जैसे दो तीन और भी कविता लिखने वाले उनके पास आया करते थे, जैसे अनिल असीम, नित्यानंद तुषार, गोविंद गुलशन, पवन खत्री, अमिताभ मासूम, इस तरह के बहुत सारे लोग आते थे उनसे सीखने के लिए। गुरुजी ने हम सबको कहा कि भाई देखिए, ऐसा है, तुम सब अलग अलग दिनों में आते हो, मेरे भी कवि सम्मेलन होते रहते हैं, मैं बाहर भी रहता हूँ, इसलिए एक दिन कोई ऐसा हो जिसमें सब अपनी अपनी कविताएं लेकर आए। तय हुआ कि गुरुवार की शाम सब आया करेंगे। अब दोस्तों, गुरुवार का दिन तय हो गया। अब इस दिन कौन कौन गुरुजी से शिक्षा लेने आता था, कौन कौन अपनी कविताएं लेकर के आता था, वो सारी बातें आपके साथ होंगी, लेकिन सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप मैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, बात चल रही थी कुंवर बेचैन जी के शागिर्दों के बारे में कि बहुत सारे शागिर्द उनसे सीखना चाहते थे। अब कुंवर बेचैन जी के पास इतना समय था नहीं कि अलग अलग दिनों में लोगों को सिखा सकें। तो उनका कहना था कि भाई कोई एक दिन ऐसा मुकर्रर कर लो कि जो मैं आप सबको एक साथ सिखा सकूं। तो दिन तय हुआ गुरुवार का। बस फिर क्या था, गुरुजी के ड्राइंग रूम में हम गुरुवार को तय समय पर पहुंचने लगे। शर्त थी कि सब अपनी अपनी नई कविताएं लेकर आएंगे, उसी पर चर्चा हुआ करेगी। पहले गुरुवार आने वाले कवियों की संख्या 3-4 ही थी, लेकिन धीरे धीरे संख्या 4 से 6, 6 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और फिर 35 से 36 तक पहुंच गई। वो दौर हमारा गोल्डन पीरियड था। उस दौरान हमने कविता की बहुत सारी जो बारीकियां होती हैं वो अपने गुरुजी से सीखी और किसी के द्वारा कविता में कमी बता देने का हम लोग बुरा भी नहीं माना करते थे। बड़ी स्वस्थ आलोचना हुआ करती थी, क्या गीत, क्या गजल, क्या मुक्तक, क्या छंद, सभी विधाओं की व्याकरणिक जानकारियां हमें होने लगी थी। तो दोस्तों, ये तो थी कुंवर बेचैन के शागिर्दों की बातें, लेकिन उनकी बातों का सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ है। आज ये पहला एपिसोड है। दूसरे एपिसोड में आपसे बहुत सारी बातें करूंगा डॉक्टर कुंवर बेचैन के बारे में और उनके शागिर्दों के बारे में। फिलहाल आपसे इजाजत चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिए, आसपास सफाई का ख्याल रखिए, आसपास पेड़ पौधे लगाएं और सुनते रहें रेडियो मानव रचना 107.8 FM। चलता हूँ, फिर मुलाकात करूंगा। अपना ख्याल रखना। शुभ रात्रि। शब्बा खैर।

0: मिट्टी से गहरा रिश्ता रखता हूँ। अरे भाई, किसान का बेटा हूँ, ये गर्व से कहता हूँ। दोस्तों, आप सुन रहे हैं फहीम के साथ अन्नदाता, और अन्नदाता में आज के मेहमान हैं डॉक्टर के एल गुर्जर। बात हो रही है रबी के मौसम की सब्जियों के बारे में। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपसे यही सवाल है कि रबी के मौसम की कौन कौन सी सब्जियां होती हैं?
1: जी, रबी की, जैसा आपने पूछा कि रबी के मौसम की सब्जियों के बारे में, तो रबी में की मौसम में जो रबी की फसल में जो सब्जियां लगाते हैं उनमें प्रमुख है जैसे फूल गोभी, पत्ता गोभी और गाजर, मटर, मूली, पालक, मेथी, ये इस तरह की जो सब्जियां सीजनल वेजिटेबल्स जो रबी के मौसम में आती हैं, ये सब सब्जियां, इसके अलावा भी और भी सब्जियां हैं, आलू है और टमाटर है जो कि रबी में भी लगता है, बाकी और मौसम में भी लगाते हैं साल भर। कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जो साल भर लगती हैं, कुछ होती हैं जो सीजन के अनुसार लगती हैं। तो ये प्रमुख सब्जियां हैं। इसके अलावा भी कई तरह की और सब्जियां हैं जिसे जिन्हें हम जो है रबी के मौसम में भी उगा सकते हैं और साल भर भी उगा सकते हैं, जो पॉली हाउस के अंदर या आर्टिफिशियल जो कंट्रोल कंडीशन के अंदर जो है साल भर सब्जियों को उत्पादन कर सकते हैं। लेकिन अगर मौसम के अनुसार देखा जाए तो यही प्रमुख सब्जियां हैं जैसे आपने बताया।
0: जी, तो दोस्तों रबी के मौसम की कौन कौन सी सब्जियां हैं उनका जिक्र तो हो गया है, लेकिन डॉक्टर साहब सवाल तो और भी हैं जो मैं आपसे करूंगा, साथ साथ अपने सुनने वालों को गाने भी सुनाते रहेंगे। तो चलिए फिलहाल एक गाना सुनते हैं, उसके बाद आते हैं आज के मेहमान डॉक्टर के एल गुर्जर के साथ। सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर सुनते रहिए अन्नदाता फहीम के साथ।

0: दोस्तों, हम कितने भी मॉडर्न क्यों ना हो जाएं, लेकिन बिना किसान की मेहनत के जिंदा नहीं रह सकते। डॉक्टर साहब, जैसा कि हम बात कर रहे हैं आज रबी के मौसम की सब्जियों के बारे में, आपने बताया भी था कि इस मौसम की कौन कौन सी सब्जियां होती हैं। अगला सवाल मेरा ये है कि ज्यादा उत्पादन हमें मिल पाए या ज्यादा उत्पादन हमारे किसान भाइयों को मिल पाए इस मौसम की सब्जियों से, तो उसके लिए क्या करना चाहिए?
1: जी, ज्यादा उत्पादन के लिए हमें सब्जियों के उत्पादन के लिए जो इसकी पूरी प्रक्रिया है उत्पादन की, उसमें जो उन्हें कैसे ज़्यादा उत्पादन लें और सुरक्षित उत्पादन लें, उनका ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि सब्जियों को हम खेत में लगाते हैं तो कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जिन्हें के लिए नर्सरी बनानी पड़ती है, उनको तो पहले नर्सरी का जो बनाते हैं, नर्सरी में पौध तैयार करते हैं। जैसे फूल गोभी है, पत्ता गोभी, इनकी पौध तैयार करते हैं। टमाटर है, बैंगन है, मिर्ची है, तो इन सब की क्या पौध तैयार करनी होती है, नर्सरी जिसको बोलते हैं
0: जी।
1: तो नर्सरी तैयार करने के लिए नर्सरी की जो सॉइल होती है, मिट्टी होती है, उसको क्योंकि हम बीज लगाते हैं नर्सरी में और उससे फिर पौध बनती है, तो उसको शुरू से ही उसमें रोग नहीं आए, तो इसलिए उसमें उसकी जो सॉइल है, मिट्टी है, उसमें हमको जो बायोपेस्टिसाइड है, ऑर्गेनिक जिसको बोलते हैं बायोपेस्टिसाइड, जैसे कि ट्राइकोडर्मा हर्जेनम है, ट्राइकोडर्मा विरिडी है, तो इस तरह की जो बायोपेस्टिसाइड है वो उसमें गोबर की खाद के साथ मिलाना चाहिए, और गोबर की खाद जो ट्राइकोडर्मा से उपचारित है वो उस नर्सरी की सॉइल में मिक्स करनी चाहिए। उसके बाद उसमें बीज लगाना चाहिए ताकि उसमें जो बीज जनित जो रोग होते हैं शुरुआत की अवस्था में, वो रोग उसमें नहीं आए नर्सरी में, और अच्छी पौध तैयार हो, स्वस्थ पौध तैयार हो। उसके बाद फिर उसको लगा करके जब पौध तैयार हो जाती है ट्रांसप्लांटिंग के लिए, तो उस समय खेत में लगाना चाहिए। अब खेत में जब लगाते हैं तो उसे हमें यह ध्यान रखना चाहिए, प्लांट टू प्लांट, रोड टू रोड जो दूरी होती है उसका विशेष ध्यान रखना चाहिए, और उसके लिए जो आवश्यक खाद की जरूरत होती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, वो खाद की संतुलित मात्रा जैसे DAP के रूप में या दूसरे खाद के रूप में, सिंगल सुपर फास्फेट के रूप में, उसे हमें पहले एप्लीकेशन करना चाहिए, बेसल डोज जिसको बोलते हैं, वो खेत में डालनी चाहिए, और साथ में गोबर की खाद भी डालनी चाहिए। और गोबर की खाद, जैसे हमने कहा कि गोबर की खाद को ट्राइकोडर्मा उपचारित रहेगी तो वो सबसे अच्छी रहेगी, और वो उसको कार्बनिक जो कार्बन की मात्रा है सॉइल के अंदर उसको भी बनाए रखेगी, और उससे सॉइल की जो स्ट्रक्चर है, जो सॉइल की जो संरचना है वो भी अच्छी रहेगी, और उसमें जब हम पौध लगाते हैं तो पौध लगाने के बाद वो उसकी बढ़वार अच्छी होगी। तो ये सब चीज़ें हैं, इनके लिए हमें ध्यान रखना चाहिए। और रही बात उनमें रोग और कीट की, तो जैसे फसल बढ़ती है तो बहुत सारे कीट और रोग का प्रकोप होता है। हाँ, तो ज़्यादा उत्पादन लेने के लिए हमें जो उसके लिए आवश्यक जो खाद होती है, उर्वरक की मात्रा, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, वो संतुलित मात्रा में जो आवश्यक हैं वो हमें उसमें देनी चाहिए, ताकि उसके लिए जो आवश्यक ग्रोथ है, उसकी जो बढ़वार है और उसमें जो उत्पादन है वो हमें मिल सके। साथ ही ये भी ध्यान रखना चाहिए कि उसमें जो रोग और कीट और रोग बीमारियां आती हैं उसके लिए आवश्यक जो भी दवाई है, जो रासायनिक दवाई है या जैविक दवाई है, उनका छिड़काव करके समय पर और उसकी निगरानी रख करके, ताकि उसमें उसका रोग का और कीट का प्रकोप ज़्यादा नहीं हो और हमें उसका अच्छा उत्पादन प्राप्त हो। ये हम चीज़ें सब चीज़ें हमको ध्यान रखनी चाहिए
0: जी। रोग और कीट प्रबंधन का आपने अभी जिक्र किया है, लेकिन इसके जवाब को मैं चाहूँगा आप थोड़ा सा विस्तार से हमारे श्रोताओं को बताइएगा। अभी तो आपने बहुत अच्छे तरीके से बता दिया है कि इस मौसम की जो सब्जियां हैं, रबी के मौसम की जो सब्जियां हैं, उनका उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा कैसे हासिल किया जा सकता है। रोग और कीट प्रबंधन की बात करेंगे, फिलहाल सुनेंगे एक गीत, तो उसके बाद आएंगे आज के मेहमान डॉक्टर KL गुर्जर के साथ। सुनते रहिए अन्नदाता फहीम के साथ।
2: मिलो न

0: दोस्तों, किसान वो भगवान है जो खुद का पेट खाली रखकर दूसरों का पेट भरता है। दोस्तों, आज है मेरे साथ आज के मेहमान डॉक्टर KL गुर्जर। बात हो रही है रबी के मौसम की सब्जियों के बारे में। डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी तरीके से समझाया था रबी के मौसम की कौन कौन सी सब्जियां होती हैं और ज्यादा उत्पादन कैसे प्राप्त किया जा सकता है, आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया था। लेकिन आप जानते ही हैं कि सब्जी कोई भी हो, फसल कोई भी हो, उसमें रोग जरूर लग जाता है, और अगर रोग का सही से उपचार ना किया जाए, हमारी फसल, हमारा पैसा, हमारी मेहनत सब बर्बाद हो जाती है। बहुत सारे कीट भी लग जाते हैं फसलों में, तो ये जो रोग हैं इनका उपचार कैसे करें और जो कीट हैं उनकी रोकथाम कैसे करें, इसका प्रबंधन क्या है?
1: जी, सब्जियों के अंदर जो कीट एवं रोग लगते हैं उनके बेहतर प्रबंधन के लिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि कौन कौन सी रोग हैं और कौन कौन से कीट हैं। तो जैसे बात करते हैं कि रोग के बारे में, तो शुरुआती अवस्था से जो डैम्पिंग ऑफ जो एक रोग है, जो कि उसकी शुरुआती अवस्था में जब पौध लगाते हैं उसी अवस्था से आने लग जाता है, आद्र गलन जिसको बोलते हैं, आद्र गलन रोग है। उसके बाद जब फसल थोड़ी और बड़ी होती है तो उसमें जो है जड़ गलन की का रोग एक होता है, आद्र गलन होता है, जड़ गलन होता है। उसके बाद में विल्ट एक रोग होता है, तो आद्र गलन हो गया, जड़ गलन हो गया और विल्ट हो गया। तो ये जो रोग हैं ये आपके सॉइल है, जो मिट्टी है
0: जी,
1: उससे पैदा होते हैं। मतलब इनके जो रोगाणु हैं वो मिट्टी में रहते हैं।
0: ओके,
1: तो मिट्टी में रहते हैं इसलिए ये बीज जनित और मृदा जनित जो बीमारियां होती हैं उन इन बीमारियों को हम मृदा जनित और बीज जनित बीमारियां कहते हैं, क्योंकि इन बीमारियों का जो सोर्स होता है मिट्टी मिट्टी ही होती है, क्योंकि मिट्टी में रोगाणु होते हैं और वो साल दर साल इसमें बने रहते हैं। जैसे किसी खेत में आप सब्जी लगाते हैं हर साल और उसमें आप देखते हैं कि एकदम से सब्जी की फसल गल जाती है, नष्ट हो जाती है, और कहते हैं कि हमने दवाई भी डाली लेकिन वो सब्जी उसमें पनपी नहीं और वो हमारे पैदावार नहीं दी। उसका कारण यही है कि जैसे एक रोगाणु है, जैसे कि मलानी जो विल्ट है उसका रोगाणु होता है फ्यूजेरियम ऑक्सिस्पोरम फंगस। तो फ्यूजेरियम ऑक्सिस्पोरम जो फंगस है उस सॉइल के अंदर है और आप हर साल सब्जी लगाते हैं तो उसमें जड़ गलन की, और दूसरा होता है राइजोक्टोनिया। राइजोक्टोनिया ये दोनों फंगस हैं,
0: अच्छा,
1: फफूंद जनित बीमारियां हैं जो कि, और ये जो डैम्पिंग ऑफ है ये पीथियम से होती है, तो ये भी फंगस से होती है। तो ये जो फंगस वाली जो बीमारियां हैं, फफूंद जनित बीमारियां हैं, अगर इनको हम साल दर साल सब्जी लगाते रहेंगे और इसको बीज उपचार या मिट्टी उपचार नहीं किया तो वो फिर बीमारी आएगी उसमें।
0: अच्छा,
1: हाँ, तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि जब हम इसको लगाते हैं तो इनके प्रबंधन के लिए सबसे अच्छा जो सुरक्षित उपाय है वो है ट्राइकोडर्मा हर्जियनम, ट्राइकोडर्मा विरिडी और सुडोमोनास फ्लोरेसेंस। ये जो हैं ये भी फंगस हैं, बैक्टीरिया हैं, बट ये लाभदायक हैं और ये जो रोगाणु जनित जो फंगस हैं उसको नियंत्रित करते हैं। तो अगर इनका प्रयोग सोइल में हम मिट्टी में डाल देंगे बुआई के समय तो फिर ये बीमारियां उनको कंट्रोल कर लेंगे नेचुरली और उनको हमें किसी दवाई की, रासायनिक दवा की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सब्जी, क्योंकि हमें सब्जी उत्पादन के लिए स्वच्छ उत्पादन करना है कि उसमें कम रासायनिक कीटनाशक और फफूंदनाशक और जहरीले जो रासायनिक है उनका कम प्रयोग करें, तो सबसे बेस्ट इन बीमारियों के प्रबंधन के लिए हमें इनका प्रयोग करना चाहिए, जो कि हमें आप बीज उपचारित कर सकते हैं सोइल के अंदर प्रति हेक्टर आप 2 से 2.5 किलोग्राम प्रति एकड़ या प्रति हेक्टर 5 किलो प्रति हेक्टर के हिसाब से आप ये जो बायोपेस्टिसाइड है जैसे हमने बताया ट्राइकोडर वगैरह वो मिक्स करके और FIM के साथ, गोबर खाद के साथ, और उसमें डाल करके मिट्टी में और फिर उसकी पौध लगाएंगे तो आपको इन बीमारियों से मतलब आप निश्चिंत रहेंगे कि बीमारियाँ नहीं लगेंगी इन सब्जियों में। अब आती है बात कीटों की, तो जैसे सब्जी बड़ी होती है तो इनके पत्ते होते हैं, उनके रस चूसने वाले कीट होते हैं, सूक्ष्म कीट जिसको बोलते हैं, उसको जैसिड बोलते हैं, एफिड बोलते हैं, सफ़ेद मक्खी बोलते हैं, तो ये इनका प्रकोप होता है। तो इनके प्रकोप के लिए हमें क्या करना है कि उनको मारना नहीं है, उनको प्रबंधन करना है। तो प्रबंधन करने के लिए हमें क्या करना है कि ऐसा रासायनिक या ऐसी दवा छिड़कनी चाहिए ताकि वो उनसे जो कीट है रस चूसने वाले उन वो कम लगें या उससे दूर भागें। तो उसके लिए हमें नीम जो इंसेक्टिसाइड है और नीम का जो तेल से बना हुआ इंसेक्टिसाइड है या नीम जिसको एजेडिरेक्टिन भी बोलते हैं फॉर्मुलेशन आता है उसका स्प्रे करना चाहिए, छिड़काव करना चाहिए ताकि जो रस चूसने वाले कीट हैं वो उस पे एंटीफिडेंट का काम करते हैं। मतलब उसको जब पंक्चर करते हैं पत्ती के ऊपर तो वो इसके अंदर जो एजेडिरेक्टिन होता है नीम के अंदर तो वो उनको एंटी खाने नहीं देता है और उसको दूर भगाता है।
0: ये जो नीम आपने बताया है ये आसानी से मिल जाता है?
1: हाँ, इसका जो जो इसकी जो एजेडिरेक्टिन जो मैं बोल रहा हूँ एजेडिरेक्टिन का एक बोतल मिलती है और वो उसका रेडीमेड नीम का जो है दवा है बनी हुई मिलती है, उसको हम स्प्रे कर सकते हैं। जो डोज है उसकी जो मात्रा है वो एक लीटर के में हिसाब से 5 ml से लेकर 10 ml तक आप लेकर के घोल बना करके उसका छिड़काव कर सकते हैं। तो ये रस चूसने वाले जो हैं उनका प्रबंधन होता है। अगर ज़्यादा मात्रा में बढ़ते हैं तो फिर हमें दूसरी दवाएं जैसे कि और दवाएं हैं जो कि अप्रूव्ड दवाइयां हैं।

0: रासायनिक जिसको कीटनाशक बोलते हैं, जो कि हमारे CIBRC से अप्रूव्ड होती हैं और जो दवा विक्रेता के यहाँ मिलती हैं, उसको भी हम जैसे ज़्यादा प्रकोप हो जाता है तब वो दवा हमें डालनी चाहिए। लेकिन उस दवा में को डालने के लिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि उसमें जो निर्धारित मात्रा है उसका विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं डालना चाहिए। और दूसरा ध्यान ये रखना है कि हम जब सब्जियाँ तोड़ते हैं तो उसका प्री हार्वेस्ट इंटरवल जिसको बोलते हैं, दवा छिड़कने के 6 दिन बाद 3 दिन बाद ही उसको तोड़ के बाजार में ले जाएं या प्रयोग करें, तो उसका हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए क्योंकि वो जहर है, जहरीला मात्रा होती है। तो उसको हम तुरंत छिड़क करके तुरंत अगर खाएंगे तो उसमें थोड़ा उसकी मात्रा रह सकती है। तो इसलिए हमें सब्जियों के अंदर जो दवा छिड़कते हैं तो उसमें विशेष रूप से ये ध्यान रखना चाहिए कि मंडी में तभी ले जाएं तब वो 2 या 3 दिन या 5 दिन जो भी उसका इंटरवल है लास्ट स्प्रे के बाद में, उस समय उसको तोड़ें, हार्वेस्ट करें और फिर उसको लेकर जाएं।
1: जी जी। तो दोस्तों आपने सुना, हमारी जो सब्जियां होती हैं या हमारी जो भी खेती होती है उसमें जो रोग लग जाते हैं, जो कीट लग जाते हैं, उनका प्रबंधन आपको कैसे करना है आपको हर तरीके से समझाया है। जो तकनीकी तरीका है समझाने का डॉक्टर साहब का, वो बहुत अच्छा है और मेरे ख्याल से आपने समझा भी होगा। तो इसलिए कोई भी बीमारी हो आपकी खेती में, आपकी चाहे फसल छोटी ही क्यों ना हो, उसका आप ध्यान रखेंगे रोगों का या कीटों का, तो आपकी फसल बेहतर से बेहतर हो सकती है। बात चल रही है रवि के मौसम की सब्जियों के बारे में, तो और भी कुछ बातें हैं, कुछ और भी सवाल हैं आज के मेहमान डॉक्टर KL गुर्जर से करते रहेंगे। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर अन्नदाता।

0: दोस्तों एक दिन जीकर देखो जिंदगी किसान की, कैसे वो मिट्टी से सजा देता है थालियां हिंदुस्तान की। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं फहीम के साथ अन्नदाता, और आज के हमारे मेहमान हैं डॉक्टर KL गुर्जर। बात हो रही है रबी के मौसम की सब्जियों के बारे में। डॉक्टर साहब देखिए, हमने बहुत सारी बातें कर ली हैं, यहाँ तक कि जो रोग हमारी सब्जियों में लग जाते हैं, कीट लग जाते हैं, उसका प्रबंधन क्या होना चाहिए आपने ये तो बता दिया है। अब हर किसान ये चाहता है कि जो खेती वो करे, जो सब्जियां वो उगाए, उसके अच्छे उसको दाम मिल जाए, तो उचित दाम कैसे हासिल किए जा सकते हैं?
1: आपने उचित दाम के बारे में पूछा, तो उचित दाम के लिए हमें क्या करना चाहिए ताकि हमें उचित दाम मिले? तो उसके लिए हम जो सब्जियां लगाते हैं उसका जो मंडी में जो सब्जियां आती हैं उसका जो सीजन होता है, मौसम होता है, उसको हम ये ध्यान रखें कि जैसे रबी सीजन की सब्जियां सब्जी में इसमें मंडी में जब आती हैं तो उस समय अगर उसको लगाने का जो समय है वो उस समय से पहले अगर थोड़ा लगा दें तो उसका दाम हमें अच्छा मिलता है, क्योंकि हाँ क्योंकि एक निश्चित समय में बहुत ज़्यादा उत्पादन हो जाता है पर्टिकुलर महीने में, पर्टिकुलर पीरियड में, तो उसकी सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाती है। हाँ, और ये रेट होते हैं डिमांड और सप्लाई के आधार पर, तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारी जो भी फसल हम लगाएं तो वो मंडी में पहले अगर इस मौसम में के शुरुआत में ही अगर वो पहुंच जाती हैं तो उसका दाम हमें ज़्यादा मिलता है। तो उसके लिए हमें ऐसा टाइम डिसाइड करना चाहिए कि हम जो पौध तैयार करते हैं जब खेत में लगाते हैं और जब मंडी में जाती है तो उस समय तक उसकी उपलब्धता है वो हमें प्राप्त हो जाए, और हम उसको पहले मंडी में फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के हिसाब से जो पहले लेके जाते हैं तो उनके दाम ज़्यादा मिलते हैं, और फिर वो बहुत ज़्यादा मात्रा में उसकी सप्लाई हो जाती है, उपलब्ध हो जाती है, तो उसके दाम घट जाते हैं। जैसे कि टमाटर के केस में हम देखते हैं, उसमें हमें ये देखते हैं कि जब टमाटर की सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाती है तो किसान जो है मंडी में भी नहीं ले जाता और खेत में ही छोड़ देता है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी नहीं निकल रही है, इतना रेट घट जाता है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि जैसे कि कोल्ड स्टोरेज जो हैं जगह जगह पर सरकार की योजनाएं भी हैं कि वो जो ज़्यादा सब्जी उत्पादन हो जाती है तो उसको हम कोल्ड स्टोरेज में रख सकते हैं, और कोल्ड स्टोरेज के अलावा जो है प्रोसेसिंग भी कर सकते हैं। जैसे टमाटर की जो सब्जी है उसका प्रोसेसिंग का स्कोप बहुत ज़्यादा है, जैसे टमाटर की चटनी है, टमाटर जैम है, टमाटर के वो अन्य उत्पादन हैं जो उत्पाद हैं उसे हम प्रोसेस करके और फिर उसको मतलब उसमें सेल कर सकते हैं। तो उसके लिए हमको जो इसका प्रोसेसिंग फूड जो इंडस्ट्री और मिनिस्ट्री है उससे भी हमको अनुदान भी मिलता है, और इसको स्मॉल स्केल पर भी अगर आप अपने गांव में या अपने एरिया में लगाना चाहते हैं प्रोसेसिंग इंडस्ट्री तो वो भी आप उसको लगा सकते हैं, ताकि जिस एरिया में आपका जैसे पर्टिकुलर सब्जी जैसे कि टमाटर बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है तो उस टमाटर बेस्ड जो एग्रो बेस्ड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है तो उसको आप लगा सकते हैं, तो वो सारा आपका एक्सेस जो प्रोडक्शन होता है, अधिक उत्पादन होता है जो कि मंडी में सप्लाई में उस समय आपको रेट नहीं मिलता है, तो उस समय उसे आप जो है प्रोसेसिंग करके और प्रोसेस प्रोडक्ट बना करके बेच सकते हैं और उससे आप ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं। तो इस तरह से आप कोल्ड स्टोरेज, आलू बहुत ज़्यादा हो जाता है तो आलू का रेट भी उस समय कम रहता है मंडी में, तो उसे आप जो है कोल्ड स्टोरेज में रख सकते हैं और फिर बाद में उसको सेल करके बाद में और उसका रेट ले सकते हैं। तो इस तरह से जो भी ज़्यादा उत्पादन होता है पर्टिकुलर सीजन में तो उसे हम तुरंत मंडी में अगर उसका रेट नहीं मिल रहा है तो हमें इनका उपयोग करना चाहिए, कोल्ड स्टोरेज का और प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज का, तो इस तरह से आप दाम ले सकते हैं।
0: जी, तो देखिए किसान भाइयों, जो मैंने प्रश्न पूछा था आज के मेहमान से वो बहुत ज़रूरी था और अहम था। आप भी ये सोचते होंगे कि भाई हम जो मेहनत कर रहे हैं उसका उचित दाम हमको मिल जाए, और वो दाम आपको कैसे मिल सकता है वो सारी बातें आपको बताई हैं। दोस्तों, आज मेरे साथ आज के मेहमान हैं डॉक्टर के एल गुर्जर जी, जो बात कर रहे हैं रबी के मौसम की सब्जियों के बारे में। रबी के मौसम की सब्जियां कौन सी होती हैं, उसका उत्पादन ज़्यादा कैसे लिया जा सकता है, बीमारियों को कैसे भगाया जा सकता है, कीटों की रोकथाम कैसे की जाती है, उचित दाम कैसे हासिल किए जा सकते हैं, ये सारी बातें आपने बताई हैं। लेकिन अब वक्त जाने का है, तो जाते जाते डॉक्टर साहब, मैं चाहता हूँ आपकी तरफ से हमारे सभी किसान भाइयों को क्या पैगाम है, क्या संदेश है?
1: जी, मेरा किसान भाइयों को यही संदेश है कि आप जो सब्जी उत्पादन करते हैं वो आप उसका ज़्यादा अधिक उत्पादन लें और उसमें आपको मुनाफा अधिक हो। और जो आप सब्जी उत्पादन करते हैं ये आपकी जिम्मेदारी भी बनती है कि उसे संतुलित इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का जो प्रैक्टिस है वो अपना करके उसको पैदावार करें। और अंधाधुंध जो पेस्टिसाइड का स्प्रे होता है सब्जियों के अंदर, उसे केवल उन पर निर्भर नहीं रहें और अंधाधुंध जो जुडिशियस यूज़ करें उसका, पेस्टिसाइड का अगर ज़रूरत होती है तो उस समय लास्ट रिसोर्स के रूप में पेस्टिसाइड का स्प्रे करना चाहिए। उससे पहले हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जैसे मैंने जो पहले तरीके बताए आपको, ट्राइकोडर्मा और बायो पेस्टिसाइड, बायो फर्टिलाइज़र, इनका उपयोग करें और कार्बनिक खाद, गोबरी खाद, कंपोस्ट वगैरह, इनका भी प्रयोग खेती में करें। और इंटीग्रेटेड एक बैलेंस जिसको बोलते हैं, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट या एक जो पद्धति है उसका प्रयोग करके सब्जी का उत्पादन करें। और अगर पेस्टिसाइड का स्प्रे करते हैं सब्जी में और इंसेक्टिसाइड का या फंजीसाइड का, तो उस समय ये ध्यान रखें कि हर एक दवा के ऊपर एक लेबल और लीफलेट आता है, उसमें लिखा रहता है कि इसकी कितनी मात्रा प्रति लीटर में घोल बना करके स्प्रे करें। तो वो स्प्रे करने के बाद में उसमें PHI भी लिखा है, प्री हार्वेस्ट इंटरवेल जिसको बोलते हैं, कि कितने अवधि के बाद उसका उसको हार्वेस्ट करना चाहिए, तोड़ना चाहिए। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें कि आप जो है, क्योंकि पेस्टिसाइड जहर होते हैं और सब्जियों में हम उसका सीधा मतलब कंज्यूम करते हैं, तो कंज्यूमर्स को उससे ये ध्यान रखना चाहिए कि उसका प्रभाव नहीं हो जहर का। और आपकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि उसका प्रयोग जो है करें, तो उस समय इस लास्ट छिड़काव के बाद ही उसको तोड़ें, थोड़ा इंटरवल के बाद में, और फिर मंडी में लाएं, तुरंत उसका छिड़काव करके तुरंत उसको उपभोग के लिए मंडी में नहीं लाएँ। और उनकी मात्रा का बैलेंस जो यूज, जो डोज दिया गया, अप्रूव्ड पेस्टिसाइड स्प्रे करें। कोई अगर डीलर या कोई आपको कहता है कि ये दवा छिड़कें, ये दवा अच्छा काम करेगी, वो नहीं, आप खुद जाने कि इसमें क्या समस्या है, कौन सा रोग है, कौन सा कीट है, उसको हम पहचाने कैसे। उसके लिए हमारा एक मोबाइल का ऐप भी है जिसको NPSS के नाम से, उसको किसान भाई खुद भी डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल पर, स्मार्टफोन पे, और उसमें आपकी जो फसल के अंदर जो समस्या है उसकी फ़ोटो लेकर के आप उस पर सेंड करेंगे ऐप पे, तो आपको कौन सी दवा कितनी मात्रा में डालनी चाहिए वो भी जानकारी मिल जाएगी। और कितनी मात्रा, वो सब चीज़ों का आजकल जो पद्धति है खेती है वो बहुत ही डिजिटल और आधुनिक खेती हो गई है, तो इनका प्रयोग करके और आप उत्पादन लें सब्जियों का, और फिर ही उसमें जो निर्धारित मात्रा है दवा की वही डालें, और ये इसको आप जो सुरक्षित खेती करें सब्जियों की, यही मेरा संदेश है।
0: तो किसान भाइयों, ये संदेश था हमारे आज के मेहमान डॉक्टर KL गुर्जर की तरफ से आप सबके लिए। उन बातों को आप अमल में लाएंगे तो आपकी कोई भी सब्जी हो, कोई भी फसल हो, वो फसल आपकी अच्छी होगी और आपको उसका दाम अच्छा ही मिलेगा। डॉक्टर साहब, आप आए, इतनी अच्छी जानकारियाँ दी, आपका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ।
1: धन्यवाद।
0: और दोस्तों, साथ ही साथ मैं आप सबसे इजाजत चाहता हूँ, अगली बार किसी नए मेहमान के साथ, किसी नई बात के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई का ध्यान रखिए, आसपास पेड़ पौधे लगाएं और सुनते रहें रेडियो मानव रचना 107.8 FM। चलता हूँ, फिर मुलाकात करूंगा, और जाते जाते सभी किसान भाइयों को फहीम का राम राम सलाम।

0: Well, hello, good afternoon, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, जय माता दी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आरजे सागर, आज हम लेकर के शो वॉइस ऑफ यूथ जो बहुत स्पेशल है। उसकी बहुत सारी वजह भी है कि यहाँ पर ये शो बहुत सारी चीजें आपको सिखाता है। हर बार हमारे साथ यहाँ पर कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं जो अपनी लाइफ के ओवरऑल एक्सपीरियंस से कुछ कुछ स्किल्स हम लोगों तक पहुंचाते हैं। आज हमारे साथ बहुत ही अच्छे, बहुत ही प्यारे से कलाकार मौजूद हैं। यदिन सेतिया नाम है इनका, मैं पर्सनली नहीं जानता हूँ, बहुत प्यारे इंसान, बहुत ही प्यार के कलाकार, एक अभिनेता है, फोटोग्राफर है, एंड इसके अलावा काफी सारी चीजें करते रहते हैं, वॉइस ओवर्स भी करते हैं, अपार्ट फ्रॉम दिस थिएटर किया है, सो मेनी थिंग्स आर देयर। आज प्राइमरली हम लोग जो फोकस करेंगे, दैट वी गोना टॉक अबाउट कंटेंट क्रिएशन, हाउ यू कैन लर्न इट, हाउ टू मेक योर वीडियोस, हाउ टू राइट अ स्क्रिप्ट, हाउ टू अपलोड इट, व्हाट आर द थिंग्स दैट ऑल यू नीड टू नो, और यू कैन से जस्ट जॉट इट डाउन जस्ट फॉर द सेक ऑफ दैट कंटेंट क्रिएशन। सो टुडेज शो इज गोना बी रियली स्पेशल फॉर ऑल ऑफ अस। ऑन दिस नोट वी विल स्टार्ट द शो, और यहां पर सबसे पहले स्वागत करना चाहेंगे यतिन सेतिया का। यतिन, स्वागत है हमारे शो में।
1: इंस्टाग्राम पे मैं वीडियोस बनाता हूँ, ऑलमोस्ट 100 के मेरे इंस्टा पे हो चुके हैं फैन भी, और उसमें मैं बेसिकली फनी, रिलेटेबल, कभी कभी इमोशनल वीडियोस डालता हूँ, और मुझे मिमिक्री करना बहुत अच्छा लगता है, मुझे मिमिक्री आती है, मैं कम से कम 10 वॉइस प्लस आवाजें मैं निकाल सकता हूँ। और इससे पहले मैं एज अ फोटोग्राफर वर्क करता था, क्रिएटर सिनेरियोज बनाता था, मैं उनके शूट करता था, और अब मैं खुद कैमरा के आगे आ चुका हूँ। तो मेरी जर्नी कैमरा से पीछे से लेके आगे तक की मेरी जर्नी रही है, और अभी आगे बहुत चलेगी। तो ये है यतिन यार।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही सुंदर सी यात्रा यहाँ पर रही है, एंड ये हम सब लोग देख पा रहे हैं, 100 के से ज्यादा इनकी फैमिली है यहाँ पर, एंड प्योरली हार्डवर्क है उनका और जो इन्होंने अर्न किया यहाँ पर। एक सवाल यहाँ पर उठता है कि व्हाट ट्रिगर्ड यू और व्हाट इंस्पायर्ड यू टू स्टार्ट योर कंटेंट जर्नी? क्या ऐसा था जिससे आपको ट्रिगर किया और आपको लगा कि नहीं यार, मेरे को ये करना चाहिए?
1: ये कीड़ा मुझे स्कूल टाइम से था, तो मुझे काफी स्कूल टाइम से ऐसे एक्ट करने का शौक, अच्छा मतलब ऐसे एक्ट करना मुझे अच्छा लगता था। मैं स्कूल टाइम में मिमिक्री करता था अपने टीचर्स की और अपने आसपास लोगों की, तो वहां से मुझे था कीड़ा, बट मुझे ये नहीं पता था कि मैं कभी इसको प्रोफेशनली करूंगा, मैं तब मजे में कर रहा था। बट धीरे धीरे धीरे धीरे जब मैं ऐसे लोगों से मिलता गया जो ये इस कंटेंट में कर रहे हैं, मैं एज अ प्रोफेशनली उनसे मिला था कि मैं शूट करता हूँ और वो ये चीजें वीडियोस क्रिएट करते हैं, वो काफी फेमस क्रिएटर हैं, और उनके साथ मैं करता गया। फिर वहां से जब मैं शूट उनका करने लगा, धीरे धीरे धीरे उनको देख के मेरा वो कीड़ा जो दबा हुआ था, जो मेरे अंदर जो चाह थी, वो बाहर आने लगी। तो मैंने उनको देख देख के अपना शुरू करा कंटेंट बनाना। मैं मिमिक्री अपना करता था, मिमिक्री वॉइस निकालता था, वो उसको मैंने थोड़ा और सीरियसली लेना शुरू करा। फिर मैं यूट्यूब वगैरह पे देखता था वॉइस एक्सरसाइज, और ये हमारे बीच में जो अभी हमसे जो इंटरव्यू ले रहे हैं सागर जी, इनसे पूछता था मैं वॉइस के बारे में, इनको बहुत नॉलेज है, ये बहुत अच्छे एक्टर हैं, तो इन्होंने अपनी वॉइस पर बहुत अच्छा काम किया है, तो ये एक इंस्पिरेशन है हमारे लिए। तो मैं इनसे पूछता था सागर जी से कि कैसे करना है, क्या करना है, तो एक्सरसाइज पे अपना ध्यान देता, वॉइस एक्सरसाइज पे। फिर धीरे धीरे धीरे धीरे करके करते करते इंस्टा पे मैंने फाइनली मुझे जो जिनका मैं शूट करता था, ऋषभ भैया और पूरी टीम, ऋषभ भैया ने मुझे मोटिवेट किया कि तू कर सकता है, तेरे में पोटेंशियल है, टैलेंट भी है, तुझे ट्राई करना चाहिए। तो उनके कहने पे मैंने फिर वीडियोस बनाना शुरू करा। इनिशियली तो बहुत ऐसे ही वीडियोस बनाता था, बट धीरे धीरे धीरे इम्प्रूव करता गया, करता गया और सबके साथ से मैं सीखता गया, और अब अच्छा कर रहा हूँ ऐसा मुझे ऑडियंस बोलती है, प्यार देती है, व्यूज आते हैं, कमेंट्स आते हैं। तो ये जर्नी थी कि एक स्कूल का कीड़ा जग गया, फिर यहाँ पे अच्छे क्रिएटर्स को देख के मेरा भी मन करा कि हाँ करना है, तो वहां से मैंने
0: फिर
1: शुरू किया।
0: बहुत सुंदर, नहीं बहुत अच्छा कर रहे हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। उसका प्रमाण ये भी है कि आज आप रेडियो पर लाइव हैं, लोग आपको सुन पा रहे हैं, तो वो उस चीज का प्रमाण है कि आप अच्छा कर पा रहे हैं। डेफिनेटली अपने आप में ये चीजों को सीखना एक हुनर होता है, सीखने का भी, तो हर इंसान में ये चीज जो है होनी चाहिए कि आपको सीखना आना चाहिए चीजों को उठाना कैसे है। हमारे आसपास एलिमेंट मौजूद होते हैं, इसी नोट पर दोस्तों लेंगे म्यूजिकल ब्रेक। यहाँ पर अभी तक हमने यतिन से बात करी, इनके डोमेन के बारे में जाना है। आइए इसको थोड़ा सा टेक्निकल लेकर के जाएंगे, आगे कंटेंट के बारे में बात करेंगे, बट ये सब बातें होंगी इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद। सो स्टे ट्यून्ड विद अस, आई एम आरजे सागर, राइट नाउ यू आर लिसनिंग टू रेडियो मधुबन 107.8 एफएम।

0: मैं जल हूं, मेरा जन्म सृष्टि के निर्माण के साथ हुआ था। मैं केवल पृथ्वी ग्रह पर ही हूं, तभी यहां जीवन संभव है। और अगर मैं नहीं रहा तो यहां पर भी जीवन असंभव हो जाएगा।
1: तो क्या आप ऐसा चाहते हैं? नहीं ना, तो आज ही खुद से करें एक वादा, जल बचाएंगे और पृथ्वी पर जीवन को सुरक्षित बनाएंगे। रेडियो मानव रचना 107.8 का संदेश।
0: समय की तुम सुनो आहट, पानी का ना छाए संकट।

0: पर हम।
1: अरे कहाँ पर अटक गए यार।
2: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर, फरीदाबाद का अपना रेडियो स्टेशन।

0: Welcome back. I just hope you are loving the vibes of this show. You are loving the vibe of this musical break. And अगर आपके पास कोई feedback है मेरे लिए अतिन के लिए कोई भी चीज़ है जो आपके ज़हन में है और हम तक पहुँचानी है do make sure 8010781078 इस नंबर तक आप पहुँचा चुके हों. फिलहाल अपने show को आगे बढ़ाएंगे. अतिन मेरा next question आपसे रहेगा content creation के बारे में. When you think about a content, a piece of content, तो उसको कैसे आप सोचते हो and what is the process? क्या जाता है उसके पीछे?
1: प्रोसेस यही है कि जैसे कि मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है कि मैं रिलेटेबिलिटी पे कंटेंट बनाता हूँ और उसको फिर बाद में फनी करने का ट्राई करते हैं. तो वो जो रिलेटेबिलिटी आती है जो हमारे आसपास चीजें हो रही हैं, जो मैं अपने दोस्तों के साथ घूम रहा हूँ या कुछ भी ऐसा कर रहा हूँ, तो मेरी एक बचपन से ही मतलब आदत थी, मैं ऑब्जर्व बहुत ज्यादा करता हूँ. तो छोटी छोटी चीजें मुझे ऑब्जर्व करने की आदत है. तो मैं वही अगर मैं कहीं भी जा रहा हूँ, किसी के साथ जा रहा हूँ, कुछ भी हो रहा है, अगर कोई जो क्रैक हो गया, कुछ भी ऐसा हो गया, तो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में चल रहा होता है कि मुझे कंटेंट बनाना है. तो वो ऑटोमेटिकली मैं ग्रैब कर लेता हूँ कि हाँ यार, इस टॉपिक पे बनाया जा सकता है, ये टॉपिक शायद अभी कवर नहीं हुआ, इस टॉपिक को पे कुछ और अच्छे से इसको लिख के करा जा सकता है. तो पहले तो यहाँ से ऑब्जर्वेशन से मुझे रहता है कि मैं ऑब्जर्व करूँ, और फिर उसके बाद मैं राइटिंग के लिए बैठता हूँ. राइटिंग के लिए मैं मेरा दिमाग से या तो रात को चलता है या फिर मैं जब गाड़ी चला रहा होता हूँ, ड्राइव कर रहा होता हूँ, तब मेरा दिमाग चलता है. तो ये दो टाइम पे मेरा दिमाग चलता है. फिर मैं उसके वॉइस नोट्स बनाता हूँ सबसे पहले रफ, कि इसमें इस तरीके से कर सकते हैं, इसमें इस तरीके से कर सकते हैं. फिर मैं उसको आराम से रात में बैठ के प्रॉपर लिखता हूँ कि ये डायलॉग्स होने चाहिए, ये सब होना चाहिए. तो फिर उसके बाद जाके मैं उसको शूट करता हूँ, और फिर शूट करने के बाद एडिट मैं साथ साथ ही उसी टाइम मोमेंट पे कर लेता हूँ, सो दैट कि कुछ अगर दिक्कत होती है तो मैं फटाफट भी कुछ शॉट लेना होता है वो कर लेता हूँ. और कभी कभी ऐसा होता है कि इम्प्रॉम्प्ट शूट्स भी हो जाते हैं. कभी कभी जैसे हम बैठे हुए हैं, जैमिंग कर रहे हैं, दोस्तों से बात कर रहे हैं, कुछ आइडिया आया और फटाफट उसको शूट कर लिया और वन टेक मतलब बना के कुछ भी, जैसे कि वो गैबल करके फटाफट उसको ऑन मोमेंट और उस टाइम पे शूट कर लिया. कभी कभी वो रेयर ऐसे केसेस होते हैं, बट हाँ इस तरीके से लेकिन मैं करता हूँ कि पहले मैं अपना स्क्रिप्टिंग कर लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं शूट करता हूँ. और मतलब अगर आपको सच में इंटरेस्ट है, अगर कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको नहीं आता, आप मतलब आप 1% जानते हो, 2% जानते हो, नॉलेज आपकी बहुत कम है, अगर कुछ भी नहीं आता, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. बट आपके अंदर एक जिद है कि मुझे करना है और सीखना है, तो आप शुरू करो. सबसे पहले सबसे पहला काम ही है, सबसे मुश्किल काम है शुरू करना. अगर आपने शुरू कर लिया ना, उसके बाद धीरे धीरे चीजें आपके रास्ते आराम से खुलते जाएंगे, आप कर लोगे. सबसे पहले जीवाइए, 0 to 1 जाना बहुत मुश्किल होता है, 1 to 10 जाना थोड़ा सा इजी हो जाता है, और 10 to 100 की जर्नी बहुत आराम से हो जाती है. तो सबसे पहला मुश्किल काम है स्टार्ट करना, शुरू करना. आप कैमरा लेके, आप कुछ नहीं, अगर आपको लग रहा है तो आप कुछ नहीं, आप नॉर्मली वीडियो कैमरा ऑन करके आप अपना बोलना शुरू करो. आप अपने आपको देखो कि क्या बोल रहे हो, कैसे, क्या कॉन्फिडेंस लेके आओ. और ये है सबसे पहले, आप अपना ही मतलब कैमरे के आगे बोलना शुरू करो, और धीरे धीरे धीरे करके हो जाएगा. सबसे मेन चीज है शुरू करना. और शुरू कैसे करना, आपको खुद ही, अगर जिद है, दिल है, तो आप कर सकते हो.
0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर. और प्रोसेस क्या हो सकता है अपार्ट फ्रॉम जीड? अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा टेक्निकल बात करूँ कि एक विगनर के लिए क्या प्रोसेस होना चाहिए, कि क्या क्या चीजें हैं जिसमें फॉल करती हैं?
1: यही है कि टेक्निकल अगर आए तो आपके पास नॉर्मली एक अच्छा कैमरा होना चाहिए. जरूरी नहीं आपके पास सबसे महंगा कैमरा हो, फोन कैमरा, बेसिक फोन कैमरा आईफोन के अच्छे आते हैं जो बेस स्टार्ट हो जाते हैं वहां से, नहीं तो एंड्रॉयड के भी कुछ आज के एंड्रॉयड बहुत अच्छे चल रहे हैं आजकल एंड्रॉयड. तो आप वीडियो, बेसिकली वीडियो क्वालिटी अच्छी हो, आप पॉसिबल हो सके माइक भी, बहुत बेसिक से शुरू हो जाते हैं, माइक भी रखो, क्योंकि ऑडियो वीडियो क्वालिटी मैटर करती है कंटेंट क्रिएशन में. वो जितनी अच्छी होगी लोग उतना अच्छा देख पाएंगे, उतना अच्छा समझ पाएंगे. तो ये दो चीजों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, ऑडियो और वीडियो क्वालिटी सबसे पहले अच्छी होनी चाहिए. उसके बाद आपकी राइटिंग के ऊपर आती है, धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे आपको उस पे काम करना चाहिए. मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें एक कपल था, उन्होंने मिस्टर बीस्ट से ये बात पूछी थी कि हमें ग्रो करना है, हमें चैनल को अच्छा बनाना है, अपनी वीडियोज को बेहतर बनाना है, तो क्या करें. तो मिस्टर बीस्ट ने ये एडवाइस दिया था कि आप 100 वीडियोस बनाओ और डेली आप एक वीडियो जब बनाओगे तो आपको जो भी कमी है अपनी पिछली वीडियो में वो आप नेक्स्ट वीडियो में करेक्ट करोगे। तो आपको भी ऐसा ही करना है, आप वीडियो शुरू करो और 100 वीडियोस का एक टारगेट बनाओ और आप नेक्स्ट वीडियो जब भी बनाओगे तो पिछली वीडियो से एक कमी आपको इम्प्रूव करनी है, आपको सुधारना है। ऐसे करते करते उस कपल ने 1 मिलियन कर लिए थे 100 वीडियोस में।
0: बहुत सुंदर,
1: कुछ भी नहीं था, सबसे मेन चीज थी कंसिस्टेंसी जो होनी चाहिए।
0: यही दोस्तों ये प्रोसेस होता है, मतलब लाइफ में हर चीज का प्रोसेस यही होता है कि व्हेन यू आर स्टार्टिंग समथिंग द फर्स्ट मोस्ट रिजर्व्ड एरिया इज द बिगिनिंग पॉइंट। वंस यू स्टार्ट डूइंग इट सो आप खुल जाते हो थोड़ा सा एंड उसके बाद फिर आपको ये सिर्फ देखते रहना कि मैं क्या कर रहा हूँ या मैं क्या कर रही हूँ। जैसे यतन ने बताया कि आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस, अपने प्रीवियस वर्क को देख करके आपको इम्प्रूव करना है, जो गलतियां पहले हुई हैं वो अगले में ना हो। मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट अबाउट इट, राइट। ऑन दिस नोट लेकर चलेंगे अपने शो को आगे दोस्तों, और उसके बाद अपने शो में आगे बात करेंगे। कुछ और चीजें हैं, कुछ और सवाल है मेरे जहन में जो हम पूछेंगे, बड़े हमारे शो का लास्ट फेज होगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस कॉन्टेक्स्ट तो आप मुझे 8010781078 इस नंबर पर जरूर बताइएगा।

0: Once again, I'm hoping ये बातचीत आपको पसंद आ रही है। यतिन बहुत ही खूबसूरत कलाकार हमारे शहर फरीदाबाद के हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं और बहुत प्यारी प्यारी बातें हमें बता रहे हैं और ईमानदारी से हमें जवाब दे रहे हैं कि आप जेन्युइनली कैसे ग्रो कर सकते हो। अभी तक हमने बात करी यतिन के डोमेन के बारे में, हमने बात करी कॉन्टेंट क्रिएशन के बारे में, हमने बात करी प्रोसेस कैसे होता है, हमने ये भी बात करी है कि एक बिगिनर को अगर स्टार्ट करना है तो कैसे स्टार्ट किया जा सकता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो बहुत लोगों के दिमाग में एक अवहम होता है कि कॉन्टेंट क्रिएशन में पैसा कैसे होता है नहीं होता है। थोड़ा सा फाइनेंशियल पार्ट के ऊपर बात करते हैं। ये दिन बहुत सारे लोगों को कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट तो करना है लेकिन दे आर नॉट श्योर अबाउट इट कि पैसा होता है नहीं होता है, दाल चावल का जुगाड़ कैसे होता है। आप हमें थोड़ा सा गाइड करिए कि पैसे की व्यवस्था कैसे की जाती है व्हाइल परस्यूइंग द कंटेंट क्रिएशन जर्नी।
1: इसमें पैसा होता है, अच्छा होता है, और लेकिन ये है कि वो एक समय बाद आता है। जैसे कि हम बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं तो हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि हम फर्स्ट डे से उसमें से रिटर्न मिलना शुरू हो जाएगा। अगर कंटेंट क्रिएशन में भी इस तरीके से अगर आप अपना टाइम इन्वेस्ट करेंगे, अपनी चीजें इन्वेस्ट करेंगे, अपना टैलेंट इन्वेस्ट करेंगे, अपनी स्किल्स इन्वेस्ट करेंगे, तो ये नहीं है कि आपको पहले दिन से ही रिजल्ट मिलना शुरू होगा। आपको इसको टाइम देना पड़ेगा। किसी को 3 महीने लग जाएंगे, किसी को 3 साल भी लग जाते हैं। तो इट ये ऐसा जरूरी नहीं है, ये एक बिजनेस की तरह है कि आप इसको कितना आप जितना पानी डालेंगे उतने पौधा उगेगा, उतना ज्यादा पौधा बड़ा होगा। तो ये भी वैसा ही है, इसके अंदर पैसा अच्छा है। लेकिन हाँ, एक बार जब पौधा उग गया, जब पेड़ उग जाएगा तो उसमें से फल निकलेंगे ही, और मीठे मीठे फल निकलेंगे जितना आप पानी डालेंगे। तो पैसा अच्छा है, बढ़िया है। शुरू शुरू में बहुत दिक्कतें भी होंगी लेकिन जब आना शुरू होगा तो अच्छा होगा। इसमें बहुत अलग अलग तरीके होते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, स्नैपचैट, अलग अलग जगह हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं। आप सेम वीडियो एक बना के 4 प्लेटफॉर्म पे डाल सकते हैं। 3 प्लेटफॉर्म इसमें से आपको मॉनेटरी फायदा देती है और जो चौथा इंस्टाग्राम है वो आपको ब्रांड्स के थ्रू फायदा देता है। आपकी फेस वैल्यू बढ़ती जाएगी, आपके पास ब्रांड्स आएंगे, ब्रांड्स आपसे काम कराएंगे। इंस्टाग्राम पे इस तरीके से काम होता है और बाकी प्लेटफॉर्म पे भी ब्रांड्स आ सकते हैं उस, लेकिन साथ साथ आपका बेस जो पैसिव इनकम रहेगी वो इस तरीके से रहेगी। आप डालेंगे शॉर्ट्स फॉर्म को, डालेंगे स्नैपचैट पे, डालेंगे यूट्यूब पे, डालेंगे फेसबुक पे डालेंगे, तो ये 3 प्लेटफॉर्म आपको पे करता है। मोनेटाइजेशन होता है पूरा, सारी चीजें प्रोसेस होती हैं, उसके बाद इसमें आपको पैसा मिलता है। लेकिन उसका भी प्रोसीजर है, एक आपको अचीव करना होता है, वो एक टारगेट होता है इनका, पॉलिसी होती है इन प्लेटफॉर्म की, वो आप क्रॉस करते हैं उसके बाद आपका चैनल मोनेटाइज होता है और उसके बाद ही होता है। तो ये चीज है कि हाँ, आप करते रहोगे, वही वही बात है कि जितना पानी जितनी मेहनत डालोगे आप अपने काम में, जितना अच्छी तरह आप अपने आपको स्किल्स इंप्रूव करोगे और अपना टैलेंट को बढ़ाते जाओगे, आप अपने फॉलोअर्स बढ़ाते जाओगे, आपका अर्निंग उस हिसाब से बढ़ती जाएगी।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत उम्दा बहुत उम्दा। और यदि आपने, अगर मैं आपकी बात करूं तो अभी आपका चैनल जो है अच्छा हुआ है, अभी आप अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं, आपको ब्रांड्स भी आ रहे होंगे, पैसा वैसे आ रहा होगा। बट इफ आई टॉक अबाउट द बिगिनिंग पार्ट, जब आपने शुरू किया था तो जाहिर सी बात है डे 1 पे आपके पास पैसा नहीं होगा। उस फेज में जब आपके पास ब्रांड नहीं आ रहे हैं, जब तक आपने ग्रो नहीं किया, आप ग्रोइंग फेज में हो, कैसे अपने आपको सस्टेन किया जाता है, कैसे दाल चावल का जुगाड़ किया जाता है, या आपने कैसे किया?
1: मैं अपना बताता हूँ मैंने कैसे किया। मेरा फोटोग्राफी बिजनेस था, मैं उसमें बहुत अच्छा कमा रहा था, तो मैंने इतनी सेविंग्स कर ली थी कि मुझे था कि मैं 1 साल तक का बिना कमाए मैं अपने लिए खर्च कर सकता हूँ। तो मैंने उतना सेव कर लिया था और इसी वजह से मैं वो कर पाया। बट आप इसको इनिशियली तो मैं आपको यही बोलूंगा कि अगर आप कुछ काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो साथ साथ आप कमाते कमाते आप ये करते रहें कि कुछ, मतलब अगर आप ऑलरेडी कहीं जॉब कर रहे हैं तो इस साथ में पैरेलली करते रहें। मेन स्ट्रीम इनिशियली बना रहे हैं तो आप, या तो आप घर से, आपका बहुत सपोर्ट होना चाहिए, बहुत पैसा होना चाहिए, तभी आप ये काम कर पाएंगे। वरना ये है कि इसमें ये काम आपको इतना निचोड़ देगा कि आपको लगेगा कि पैसा भी नहीं, और ये सब वो आपको डिमोटिवेट करेगा। तो आपको पहले ही बैकअप लेके चलना पड़ेगा। आइदर आपके पास जॉब होनी चाहिए या कुछ सोर्स ऑफ इनकम होनी चाहिए, अच्छा बेसिक हो, आप अपने खर्चे निकाल पाओ। इनिशियली आपको ये सब तक ध्यान देना पड़ेगा, या फिर आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा कि मुझे कम में सेटल करना है इनिशियली, या तो आप उस चीज के लिए माइंड सेट कर लो।
0: All right, we are concluding the show here. यदि कोई ऐसी चीज़ है जो मैं आप पूछ पाए हो और आप कहना चाहते हो तो प्लीज फील फ्री।
1: बस यही कहूंगा कि सबसे मुश्किल स्टेप होता है शुरू करना, सबसे हार्ड स्टेप होता है, किसी चीज का शुरू करोगे तभी आगे बढ़ पाओगे। आप ये सोचते रहोगे मैंने करना है करना है करना है, सोचते रह जाओगे तो रह ही जाओगे। तो अगर आपको जेन्युइनली आपको कुछ करना है, कोई भी काम करना है, नॉट कंटेंट क्रिएशन, तो शुरू करें, खड़े हुए अभी और वेट मत करें किसी चीज का।
0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो यहाँ पर हमने यतिन से बात करी है, यतिन एक कंटेंट क्रिएटर हैं, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं इनकी प्रोफाइल को, यतिन यार नाम से इनकी प्रोफाइल है इंस्टाग्राम के ऊपर, 100K से ज्यादा इनके फॉलोअर्स हैं, एंड सच अ लवली गाय, सच अ ब्यूटीफुल सोल, ब्यूटीफुल पर्सनालिटी। आप जाके एक बार चेक जरूर करिएगा इनका काम। और यहाँ तक हमने बात करी है यतिन से, यतिन ने हमें बहुत अच्छे शब्दों में एक गाइड के तौर पर समझाया है कि कंटेंट क्रिएशन एग्जैक्टली दुनिया कैसी होती है, कैसे स्टार्ट करना होता है, काम कैसे करना होता है, पैसा कैसे आता है, कैसे अपना सस्टेन करना होता है। तो तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा यतिन मैं आपका। थैंक यू सो मच मैन।
1: थैंक यू सो मच।
0: दोस्तों अब इसी के साथ वक्त है अपने शो को यहाँ पर कंक्लूड करने का। आशा करता हूँ आज के शो से कुछ भूल लिया हम आप लोगों तक पहुंचा पाए। तो इसी नोट पर चलते हैं अपने शो को यहाँ पर साइन ऑफ करते हैं, फिर मुलाकात होगी, फिर लौटेंगे लेकर एक और शो, लेकिन कहीं जाइएगा मत, जुड़ रही हमारे साथ। मैं हूँ आरजे सागर, शो है ये वॉइस ऑफ यूथ, यहाँ पर खत्म होता है, इसके बाद और शोज हैं, जरूर सुनिएगा रेडियो 107.8 FM पर। दिस इज आरजे सागर साइनिंग ऑफ।

0: રેડિયો મને પ્રશ્ન મને 7.8 FM પર ઢેર સારી મસ્તી ખૂબ સારા ફન ક્યોંકિ યે હૈ ફરીદાબાદ કા રેડિયો નંબર 1.
1: वेल हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, जय माता दी, अस्सलाम वालेकुम. दोस्तों, मैं आरजे सागर आया हूँ लेकर के शो आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की. आप लोग सुन रहे रेडियो 107.8 FM, जो आपसे कहता है फील गुड फील लाइव. ये शो बहुत खास है, उसकी वजह भी है कि यहाँ पर आपको एजुकेट करते हैं हम, साथ साथ आपको बताते हैं कि इंडिया में जो हम लोग ये बात बोलते हैं कि हम लोग सेल्फ रिलायंट हो गए हैं या फिर हम आत्मनिर्भर हो गए हैं, उसके पीछे कौन सी कंपनीज या लोगों या प्रोडक्ट्स या प्रोजेक्ट्स, किन किन चीज़ों का योगदान होता है, किन किन चीज़ों का हाथ है. तो आज का शो अगेन बहुत खास होने वाला है. हम लोग बात करेंगे एक और कंपनी के बारे में जो डील करती है एक बहुत अच्छी इंडस्ट्री में, बहुत बड़ी इंडस्ट्री में. विल टॉक अबाउट इट एंड विल स्टार्ट द शो बाय टॉकिंग अबाउट द इंडस्ट्री इटसेल्फ, देन विल मूव ऑन टू द प्रोसेस एंड टू द कंपनी, टू द फाउंडर्स, देयर बैकग्राउंड, द यूएसपी, एवरीथिंग. बट आफ्टर वी टॉक अबाउट द इंडस्ट्री. सो स्टे ट्यून्ड विद अस, फील गुड फील लाइव.

वेलकम बैक। बिना किसी देरी के अपने शो को यहाँ से हम आगे लेकर चल रहे हैं दोस्तों। मैं हूँ सागर। शो चल रहा है आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। आप लोग जुड़े हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइव। तो आज की जो हमारी इंडस्ट्री है भैया, उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं पहले। मतलब कंपनी की तरफ तो बहुत बाद में हम लोग चलने वाले हैं, पहले आपको इंडस्ट्री समझाते हैं। दिस इंडस्ट्री इज इंश्योर टेक। सिंपल पॉइंट है, इंश्योरेंस प्लस टेक्नोलॉजी इक्वल्स टू इंश्योर टेक। अभी देखिए, टेक्नोलॉजी लगभग हर एक इंडस्ट्री के साथ जुड़ चुका है। अब चाहे आप फाइनेंस की बात करें, आप चाहे हेल्थ केयर की बात करें, आप चाहे फैशन की बात करें, आप चाहे मेडिकल की बात करें, हर जगह पर आपको टेक वर्ड सुनाई देता है। उसकी वजह हम सब लोग समझते हैं कि टेक्नोलॉजी की वजह से ये सारी चीज़ें जो है डिजिटलाइज हो पाई है। तो वैसे ही हमारी आज की जो कंपनी है वो डील करती है इंश्योर टेक में। बेसिकली इंश्योरेंस कंपनी है लेकिन डील करती है इंश्योरेंस प्लस टेक्नोलॉजी वाले एरा में, तो इंश्योर टेक में आ जाती है। पहले इंडस्ट्री को यहाँ पर हम लोग आपको समझाएंगे बहुत अच्छे से। तो इंश्योर टेक में जो कंपनीज डील करती हैं, दीज कंपनीज आर हैविंग अ सेट ऑफ टूल्स जो यूज करते हैं सॉफ्टवेयर, डेटा ऑटोमेशन, API बोले तो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ठीक है। इनका इस्तेमाल करते हैं टू क्रिएट इंश्योरेंस, टू सेल इंश्योरेंस, टू गिव यू द सर्विसेज, टू सेटल इंश्योरेंस, ठीक है, जो ज़्यादा फास्ट हो सकता है, कॉस्ट इफेक्टिव थोड़ा होता है ये, प्लस ज़्यादा कस्टमर्स तक पहुँच सकते हो आप। इसको आप ऐसे समझिए कि एक दुकान है जो एक लोकल मार्केट में खुली हुई है। अब वो दुकान कितने लोगों तक पहुँच सकती है एक लोकल मार्केट में? हद से हद क्या होगा, वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू अब दुनिया जहां में वो खबर पहुंचा देंगे कि वहां पर एक दुकान है सबसे अच्छा सामान देती है, बट स्टिल देयर आर लिमिटेशंस। वही सेम चीज अगर वही दुकान ऑनलाइन हो जाए, वही दुकान अगर टेक्नोलॉजी के ऊपर आ जाए, किसी तरीके से ग्लोबल एक्सेस उस दुकान का मिल जाए, तो उसके कस्टमर बाई डिफॉल्ट ज्यादा बढ़ चुके होंगे। ऐसा नहीं है, चीजों के ड्रॉबैक नहीं होते, हर चीज के होते हैं, लेकिन यहाँ पर फिलहाल हम इंडस्ट्री को समझ रहे हैं। और क्योंकि हम लोग इंश्योर टेक की बात कर रहे हैं तो टेक्नोलॉजी के एरा में इंश्योरेंस कैसे ऑपरेट कर रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। सो दिस इज द इंडस्ट्री, ठीक है। यहाँ पर चाहे इंश्योरेंस को सेटल करना हो, चाहे इंश्योरेंस जो है बनाना हो, बेचना हो, खरीदना हो, सब कुछ जो है डिजिटली होता है। यहाँ पर ऑटोमेटेड अंडरराइटिंग होती है विद डेटा, एम्बेडेड इंश्योरेंस होता है वाया API, ठीक है। माइक्रो जो है प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं, मोटर प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं, हेल्थ प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं, सब कुछ बेचा जाता है थ्रू एप्लीकेशंस और आई वुड से मार्केट प्लेसेस। जी हाँ, मार्केट प्लेसेस भी हैं, जैसे पॉलिसी बाजार है वो एक मार्केट प्लेस है जहाँ पर आपको सारे इंश्योरेंस मिल जाते हैं एक ही जगह पर। So this is the overview of this industry. We are addressing it. The name of this industry is InsurTech. लेंगे एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद बताएंगे आपको इंडिया में कैसे ये काम कर रहा है। लेकिन फिलहाल मजा लीजिए इन गानों को और जुड़े रहिए हमारे साथ। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक। आशा करता हूँ म्यूजिकल वाइब आपको पसंद आई है। फिलहाल इसी के साथ अपने शो को आगे लेकर चलेंगे। मैं हूँ सागर। शो चल रहा है यहाँ पर आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। पहले इंडस्ट्री को हम आपको समझा रहे हैं यहाँ पर, जो कि है इंश्योरटेक, यानी कि इंश्योरेंस एंड टेक्नोलॉजी। अभी यहाँ पर बात करेंगे इंश्योरटेक इंडिया में कैसे काम कर रहा है, मतलब करंट रियलिटी क्या है इंश्योरटेक की इंडिया में। और यहाँ पर देखिए, हम बिल्कुल ऐसी बातें करते हैं जो आपके लिए वाकई में काम आ सकती हैं, जो वाकई में आपके जीवन में कुछ मूल्य जोड़ सकती हैं। तो पहला पॉइंट यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ग्रोथ बहुत तेजी से हो रही है, बट अभी भी हमें बात एक्सेप्ट करनी होगी कि हम अर्ली स्टेज में हैं। उसका रीजन ये है कि बहुत सारे नए नए स्टार्टअप्स जो हैं वो आए हैं और बहुत ज़्यादा पुराने नहीं हुए हैं, ठीक है। मल्टीपल रिसर्च हाउसेज हैं ऐसे जो प्रोजेक्ट करते हैं मल्टी बिलियन डॉलर ग्रोथ इन द कमिंग 5 to 10 years, ठीक है, जो मतलब लिटरली काफ़ी अच्छा खासा आपको जो है दिखाई देगा। और यहाँ पर आप ये भी कह सकते हैं कि जो प्रोजेक्ट्स हैं वो डबल डिजिट में कन्वर्ट होने वाले हैं। जैसे 2024 की बात करते हैं, 0.9 बिलियन US डॉलर्स, ये एक

कह सकते हैं कि मार्केट वैल्यू था, 2030 तक ये डबल डिजिट में हो सकता है। इससे पता लगता है कि भैया बहुत तेजी से मार्केट जो है वो ग्रो कर रही है। यहाँ पर तीन ऑपरेटिंग मॉडल जो हैं वो डोमिनेट करते हैं इंडियन मार्केट को। पहला है डिजिटल इंश्योरेंस, जिसको आप कह सकते हैं जो न्यू एज जनरल इंश्योरेंस है, जैसे एको है, डिजिट है, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स आपको ऐसे नजर आएंगे जो डिजिटली आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सेकंड जो यहाँ पर मॉडल है वो है मार्केट प्लेसेस, या फिर आप उनको एग्रीगेटर बुला सकते हैं, या फिर आप उनको ब्रोकर्स भी बुला सकते हैं। इसमें पॉलिसी बाजार बहुत अच्छा एक एग्जांपल है जिसके नाम हम सब ने सुना है। उसके बाद दूसरा नाम है रिन्यू बाय, तीसरा नाम है टर्टल मिंट। ठीक है, ये वो कह सकते हैं कि आप मॉडल्स हैं जो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मल्टीपल ब्रांड्स के जो हैं इंश्योरेंस दिखा सकते हैं, जिनको आप कंपेयर कर सकते हैं, अकॉर्डिंगली आप उनको बाय कर सकते हैं। तीसरा यहाँ पर जो मॉडल डोमिनेट करता है वो है B2B टेक प्रोवाइडर। तो इंडिया में जो B2B टेक इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स हैं, वो आप एक तरीके से समझ सकते हैं कि एक ऐसा लैंडस्केप है जो प्राइमरीली काम करता है बाय इंश्योर टेक कंपनी, लेकिन इनका काम होता है कि टेक्नोलॉजिकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म्स हैं, वो बनाना तैयार करना इंश्योरर्स के लिए। यानी कि जो इंश्योरेंस में डील करती हैं कंपनीज, जो डायरेक्ट आपको इंश्योरेंस सेल करती हैं, उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, डिस्ट्रीब्यूशन के प्लेटफॉर्म तैयार करना, वो सारी चीजें यहाँ पर जो है ध्यान में रखी जाती हैं। मतलब ये डायरेक्ट अंडरराइटिंग नहीं करते हैं पॉलिसीज की, बट जो फर्म्स हैं उनको एम्पावर करते हैं, ठीक है, बाय सिंपली यू नो सिंप्लीफाइंग देयर प्रोजेक्ट्स। यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि रिस्क कवरी भी आपको नजर आता है, जिसमें एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म है विद API जो बैंक्स, NBFCs एंड बाकी अदर कंपनीज को इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स जो है ऑफर करता है डिजिटली। तो ये एक आप तरीके से समझ सकते हैं कि बिजनेसेस के लिए ज्यादा काम करता है, मतलब रेदर देन बीइंग डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट विद अ कस्टमर, जो एंड कस्टमर है उसके ऊपर ना जा करके इंश्योरेंस कंपनीज को ये जो कैटेगरी है वो टारगेट करती है। तो ये मेजरली तीन मॉडल्स हैं जो इंडियन मार्केट में डोमिनेट करते हैं, जो मैंने अभी यहाँ पर आपको बताया। एक है डिजिटल इंश्योरेंस, दूसरा है मार्केट प्लेसेस, और तीसरा है B2B टेक प्रोवाइडर्स। अब लेंगे एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद अगले पॉइंट्स की तरफ चलेंगे। फिलहाल जो हमारा पॉइंट है वो है इंडिया में जो करंट रियलिटी है इंश्योरटेक की, उसको हमने आपको समझाने की कोशिश करी थोड़ी थोड़ी। फिलहाल जुड़े रहिए हमारे साथ, खिंच जाइएगा मत। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक। उम्मीद कर रहा हूँ आपकी म्यूजिकल वाइब पसंद आई। बिना किसी देरी के शो को आगे लेकर चलेंगे। मैं सागर, शो आत्मनिर्भर भारत कहानियां कामयाबी की। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं दोस्तों, इंडिया में जो करंट सिनेरियो है, जो करंट रियलिटी है इन शॉर्ट टेक कंपनीज की, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक हमने आपको एक ओवरव्यू दिया, मार्केट ग्रोथ बताई और जो मेन डोमिनेटिंग मॉडल्स हैं इंडिया में जो ऑपरेट करते हैं वो आपको बताए। एक और पॉइंट यहाँ पर आपको जानना होगा कि हमारे यहाँ पर रेगुलेटरी एनवायरनमेंट है जो फ्रेंडली तो है बट बहुत स्ट्रिक्ट है, जिसको हम जानते हैं IRDAI के नाम से, जो एक गवर्निंग बॉडी है, एक रेगुलेटरी बॉडी है जो सारी इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं उनको ये कह सकते हैं आपकी देखती है, उनको लुक आफ्टर करती है। इसका पूरा नाम है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एक ऐसा प्रोसेस है जो ये इंश्योर करता है किसी कस्टमर के साथ गलत ना हो और कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस यहाँ पर फॉलो ना की जाए। ठीक है, टाइम टू टाइम यहाँ से हमें गाइडलाइंस भी मिलती हैं, सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स को भी यहाँ पर डिफाइन किया जाता है। मतलब एक्सपेरिमेंटेशन अलाउड तो है बट कंप्लायंस बहुत हैवी है। डेटा सिक्योरिटी बहुत जो है अच्छे से यहाँ पर देखा जाता है, बहुत ज्यादा मैटर करता है, बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो सेलिंग इंश्योरेंस वर्सेस बीइंग अ टेक पार्टनर, ये दो अलग चीजें हो जाती हैं, लेकिन रेगुलेटरी बॉडी हमारे पास है लकीली जो इन सारी चीजों को लुक आफ्टर करती है। सो दैट्स हाउ थिंग्स आर यू नो वर्किंग इन इंडिया। प्लस फंडिंग एंड कंसोलिडेशन जो है वो भी इंडिया में अच्छा खासा हमें नजर आया है बीते कुछ सालों में। बट अगेन दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ आर डिस्कशन बिकॉज ये बहुत अलग हो जाता है। बट इतना कह सकते हैं कि इन्वेस्टर्स अभी बहुत हैं जो इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं। इनफैक्ट बहुत सारी फॉरेन ऐसे ब्रांड्स हैं फॉरेन के जो यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं और यहाँ के जो स्टार्टअप्स हैं उनको एम्पावर करते हैं। आइए बात करते हैं की इनसाइट्स की एंड डिमांड ड्राइवर्स की, लाइक एग्जैक्टली कौन सा वो पैटर्न है, कौन सी वो चीज़ है जो इस इंडस्ट्री को आगे लेकर के जा रहा है। देखिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो है स्मार्टफोन प्लस डिजिटल पेमेंट एंड प्लस KYC। मतलब ये सारी चीजें मैटर करती हैं। इंश्योरेंस जब आप खरीदते हैं तो पहले हुआ करता था आपको फॉर्म भरना होता था, फिर आपको पैसे पे करने होते थे, आपको अपना जो आईडी प्रूफ है वो जमा कराना होता था। अब ऑनबोर्डिंग बहुत इजी हो गई है, लो कॉस्ट पेमेंट जो है यहाँ पर आपको दिखाई देती है, स्मॉल टिकट्स जो है वो आप यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं, जिसकी वजह से इंश्योरेंस एक्सेसिबल हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दिस आप अपने फोन से खरीद सकते हैं, आपके पास फोन है, इंटरनेट का कनेक्शन आपके पास है, दैट्स ऑल यू नीड। आधार हमारे पास, ई आधार जैसी ऑप्शन अभी अवेलेबल हैं, प्लस हम सबके पास इतना होता है कि हम ऑनलाइन जाकर के महज कुछ बॉक्सेस जो हैं वो हमें टिक करने होते हैं, इन्फॉर्मेशन डालनी होती है, एंड वी आर डन। तो ये एक आपको मेजर समझना होगा कि डिमांड ड्राइवर है। सेकंड है, एम्बेडेड इंश्योरेंस इज ह्यूज। ट्रैवल, ई कॉमर्स, मोबिलिटी एंड जो फिनटेक प्लेटफॉर्म्स हैं वो भी दोस्तों कंटेक्चुअल जो इंश्योरेंस है वो बेच सकते हैं एट पॉइंट ऑफ नीड। मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि मल्टीपल पार्टनरशिप्स आपको मिल जाती है। जैसे आपने देखा होगा, आपने बस की टिकट बुक करी है, अब बस की टिकट के साथ वो 10 रुपए या 20 रुपए एक्स्ट्रा लेते हैं और वहां पर आपको एक इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं आपकी ट्रैवल जो जर्नी है उसके लिए, होता है ना ऐसे। ये एक एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसी बहुत सारी और चीजें हैं। तो ये क्या हुआ, एक और पार्टनर हमने वहां पर जोड़ लिया। तो ऐसे करके ज्यादा तेजी से वो जो है एक तरीके से आप समझ सकते हैं मल्टीप्लाई हुई है ये मार्केट इंडिया में, क्योंकि मल्टीपल पार्टनर्स आ गए हैं अभी हमारे पास। सो दैट्स हाउ थिंग्स आर वर्किंग। एक और म्यूजिकल ब्रेक का, उसके बाद फर्दर और कुछ की इनसाइट्स और डिमांड ड्राइवर्स हैं जो हम आपको बताएंगे, लेकिन ये सब बातें होंगी इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद। जुड़े रहिए हमारे साथ, फील गुड, फील लाइव।

मेरा नाम सागर, शो आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। आप लोग जुड़े हुए रेडियो मानवश्रम 107.8 एफएम के साथ। दोस्तों, हम यहां पर इंश्योर टेक जो इंडस्ट्री है उसको आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें अगला पॉइंट आता है डेटा एंड मशीन लर्निंग, जो एक और की ड्राइवर के तौर पर आप उसको समझ सकते हैं। स्टार्टअप्स जो हैं अभी डेटा यूज करते हैं, और टेक्नोलॉजी की जब हम बात करते हैं, जब भी कोई टेक प्लेटफॉर्म बनाया जाता है, वहां पर डेटा, मशीन लर्निंग, इन चीजों का ही मेन रोल होता है, जिसकी बदौलत ये प्लेटफॉर्म्स जो हैं खड़े हो पाते हैं और लोगों की प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर पाते हैं। सो या दैट इज अनदर थिंग। बट हाँ, यहाँ पर यह है कि एडवांटेज है तो एट द सेम टाइम डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि डेटा प्राइवेसी को लेकर बहुत सारे कंसर्न्स भी बने होते हैं। आपने देखा होगा, एक इंश्योरेंस कंपनी को अगर आप कॉल करेंगे तो आपके पास 4-5 इंश्योरेंस कंपनीज की तरफ से कॉल आने शुरू हो जाते हैं। सो इट शोज कि हमारा डाटा कैसे ट्रेवल होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कस्टमर ट्रस्ट एंड क्लेम एक्सपीरियंस। ठीक है, जो एक और इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब मार्केट में वो प्लेयर रुकेगा जो कस्टमर के ट्रस्ट को गेन करेगा, और जब क्लेम की बारी आएगी तो वहां पर क्लेम जो है टाइमली प्रोसेस कर दिया जाएगा, बेवजह उसको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, सारे ग्राउंड चेक किए जाएंगे। इट ऑल डिपेंड्स कि आपकी टीम कितनी स्ट्रांग है, कितना आप जो है वहां पर बैकएंड पर काम करके चल रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर बैड हैंडलिंग जो है वो अफोर्ड नहीं की जा सकती है किसी भी कंपनी के द्वारा, क्योंकि अगेन मैं पहले भी बात बताई थी कि हमारे पास IRDA है जो पूरे इंश्योरेंस को रेगुलेट करती है, गवर्निंग बॉडी है हमारे पास। सो देर आर मल्टीपल थिंग्स, मतलब इंश्योरेंस में ओम्बड्समैन होता है जिनको आप रीच आउट कर सकते हैं अगर कोई चीज ऐसी प्रॉब्लमेटिक है जो आपको तंग कर रही है, या आपको लग रहा है कि आपके राइट्स को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, यू कैन गो टू ओम्बड्समैन। वहां से आप सेटिस्फाई नहीं है, यू कैन गो टू IRDA। सो देर आर प्रोसेसेस जो यहाँ पर बनाए गए हैं इसलिए कि चीजें स्मूथली यहाँ पर रन कर पाए। इसलिए कस्टमर का ट्रस्ट गेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और सही तरीके से हैंडल करना ये बहुत जरूरी है। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को टॉलरेट नहीं किया जाता है। रेगुलेशन शेप्स प्रोडक्ट चॉइसेस। जो भी इंश्योरर्स को लाइसेंस मिलता है, ठीक है, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस है या वो हेल्थ इंश्योरेंस है, वहाँ पर कैपिटल की जरूरत होती है, टाइम की जरूरत होती है। बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो सक्सीड हुए हैं एज डिस्ट्रीब्यूशन, एज ब्रोकिंग, एज टैक्स सर्विस, जो बहुत अलग अलग तरीके से आपको नजर आती हैं चीज़ें, कि मल्टीपल कैटेगरीज में इंश्योरेंस कंपनीज डील करती हैं। मतलब ये बहुत टेक्निकल हो जाता है, बट अल्टीमेटली डिपेंड्स कि आपके पास कैपिटल कितनी है, कितना टाइम है, क्या क्या प्रोडक्ट आप बना रहे हैं। वो अच्छी बात ये है कि अभी इतनी सारी हमने वर्टिकल्स बना दिए हैं, इतनी सारी चीजें आ गई हैं बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, तो छोटे लेवल पर भी प्लेयर जो है ऑपरेट कर सकते हैं। मतलब जरूरी नहीं है कि आपको बहुत बड़ा एक ऐसा ही ब्रांड ओपन करना है जो इंश्योरेंस ही कवर कर रहा है। आप एक ऐसा ब्रांड भी ओपन कर सकते हैं जो मार्केट प्लेस के तौर पर सर्व कर रहा है, या जो एक ब्रोकरेज फर्म है जो यहाँ पर वाजिब एक बिजनेस है। ऑल डिपेंड्स कि आपके पास कितना कैपिटल है। सो या वो है कि एक लाइसेंस मिलता है, उसके बाद एक जो कंपनी है वो यहां पर काम कर सकती है। वक्त एक और म्यूजिकल ब्रेक का। स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइव।

आशा करता हूँ आपको ये गाने पसंद आए। फिलहाल इसी के साथ शो को आगे लेकर चलेंगे। मैं हूँ सागर। शो चल रहा है यहाँ पर आत्मनिर्भर भारत, और जो हमारी आज की इंडस्ट्री है वो है इंश्योरटेक, जिसको यहाँ पर समझ रहे हैं। अभी तक हमने बात करी दोस्तों कि क्या है ये इंश्योरटेक, कैसे काम कर रहा है, इंडिया में की इनसाइट्स क्या है, डिमांड ड्राइवर्स क्या है। आइए बात करते हैं एक प्रैक्टिकल रोड मैप की, जो अगर आप अपना कुछ स्टार्ट करने का सोच रहे हैं सो इट माइट हेल्प यू आउट। तो यहाँ पर जो है भैया 12 से 18 महीने का एक जो है प्लान बनाना होगा फॉर अ स्टार्टअप, अगर आप इंडिया में इंश्योरेंस में कोई अपना ब्रांड ओपन करना चाहते हैं। और यहाँ पर एक बहुत स्मॉल फाउंडिंग टीम को जो है हम यहाँ पर अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। आपके पास लिमिटेड इनिशियल फंडिंग है, और उसके बाद क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे फेजेज आते हैं वो मैं समझा रहा हूँ। लेकिन पहले ही मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये कोई गारंटेड रोड मैप नहीं है, ये बस एक रेफरेंस के तौर पर है टू गिव यू मोर क्लैरिटी, मोर स्पेसिफिक क्लैरिटी ऑन दिस पार्ट, कि अगर आपको अपना कुछ स्टार्ट करना है सो हाउ कैन यू एंटर इन दिस इंडस्ट्री। पहला है चूज योर बिजनेस मॉडल। आपको डिजिटल इंश्योरर बनना है, आपको B2C एग्रीगेटर बनना है, मार्केट प्लेस बनना है, या ब्रोकर बनना है जो बहुत फास्टली आप लॉन्च कर सकते हैं, कमीशंस के द्वारा जो है आपको यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट होता है। फिर है B2B2C टेक API प्रोवाइडर, जिसको आप IaaS के तौर पे जानते हैं, यानी कि इंश्योरेंस एज अ सर्विस, जो है प्लेटफॉर्म्स बनाता है, तैयार करता है नए जो स्टार्टअप्स होते हैं उनके लिए, जो हमने पहले बात भी करी थी, ठीक है। या फिर आप एक एम्बेडेड प्रोडक्ट पार्टनर के तौर पर भी यहाँ पर आ सकते हैं, अगर स्पीड चाहिए आपको, आपको मॉडरेट रेगुलेटरी बर्डन चाहिए। कुल मिलाकर के भैया बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे वर्टिकल्स हैं। लेकिन एक चीज यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ, एक जो एक ब्रूटल ऑनेस्ट चीज है यहाँ पर, वो ये है कि अगर आपके पास कैपिटल नहीं है और कोई भी रेगुलेटर एक्सपीरियंस नहीं है, तो एज अ इंश्योरेंस आपको स्टार्ट नहीं करना चाहिए, स्टार्ट एज B2B और एग्रीगेटर, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो पहला जो काम है आपका वो है प्रॉब्लम वैलिडेशन एंड कस्टमर डिस्कवरी। एक आपको टाइट वर्टिकल और चैनल को जो है समझना होगा, उसको आइडेंटिफाई करना होगा, जैसे माइक्रो हेल्थ इंश्योरेंस फॉर गिग वर्कर्स जो अभी नहीं है एग्जैक्टली, ठीक है। यूज्ड कार मार्केट प्लेसेस में बहुत ज्यादा वो नहीं हुई है अभी कि उनका इंश्योरेंस कैसे होगा, तो ऐसी बहुत सारी और चीजें हैं जो अभी कवर की जानी है, ठीक है। ट्रेवल इंश्योरेंस जिसको और अच्छे से जो है कवर किया जा सकता है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको आइडेंटिफाई करनी होगी कि किस प्रॉब्लम को आप टारगेट कर रहे हो। सेकंड आता है फिर टेक्निकल कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होंगी, प्लस जो लीगल डिजाइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एक मिनिमल प्रोडक्ट आपको बनाना होगा, चेकआउट फ्लो जिसमें बहुत आसान होगा, कोट इंजन जो है बहुत ईजी होगा, यूजर इंटरफेस बहुत आसान होगी, कोई भी इंसान अगर आए तो वो ईजिली खुद से नेविगेट उसको कर पाए। पॉलिसी डॉक्यूमेंट जनरेटर जो है वो आपको यहाँ पर क्रिएट करना होगा, एक बैकएंड पर प्रोसेस आपको बनाना होगा जो डायरेक्ट कस्टमर का डाटा लेगा और जनरेट कर देगा उसके लिए पॉलिसी क्या ठीक रहेगी, ये एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। आपको टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो ड्राफ्ट करनी होंगी, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ताकि कंप्लायंस इश्यूज ना हो यहाँ पर, और IRDA जो है वो आपको तंग ना करे, इसके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि IRDA का काम ये है कि अच्छे से यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी जो है ऑपरेट करें, ये देखना। उसके बाद आता है रेगुलेटरी सैंडबॉक्स इफ एप्लीकेबल, जहाँ पर आपको जो है क्लेम की फ्रीक्वेंसी, टाइम टू सेटलमेंट, वो टेक्निकल चीज़ें हो जाती है, उसकी तरफ ना जाएं तो ही बेटर है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है स्केल डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑटोमेट ऑपरेशंस। आपको अंडरराइटिंग को ऑटोमेट करना होगा जहाँ पर पॉसिबल हो सकता है, जैसे मशीन लर्निंग है, पेमेंट्स को आपको इंटीग्रेट करना होगा, आपको KYC के ऊपर जो है मास्टरी हासिल करनी होगी, जिसकी वजह से आप इस चीज़ को जो है और अच्छा बना सकते हैं। उसके बाद फिर आपको फंड रेजिंग एंड ग्रोथ की तरफ जाना होगा, मतलब क्योंकि मैंने बताया कि इन्वेस्टर्स बहुत सारे हैं जिनकी तरफ आपको जाना होगा। सो इंश्योरेंस एक ऐसी कैटेगरी है दोस्तों जो बहुत टेक्निकल भी है, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी है, एट द सेम टाइम बहुत ज्यादा कैपिटल भी वहां पर चाहिए। सो इट इज रियली रिक्वायर्ड कि आप पहले उस इंडस्ट्री को समझें, पहले आप ढंग से उसको एक्सप्लोर करें, तभी जाकर के आप उस मार्केट में आप कह सकते हैं कि एक सक्सेसफुल तरीके से एक मॉडल को ऑपरेट कर सकते हैं। सो या दैट इज द थिंग दैट मैटर्स, तो इसलिए ये बहुत जरूरी हो जाता है। फिलहाल लेंगे एक और म्यूजिकल ब्रेक, और उसके बाद फाइनली बात करेंगे आज के ब्रांड की। कहीं जाइएगा मत, जुड़े रहिए हमारे साथ। फील गुड।

पुरस्रार चंदन का दिन में आज भी कितना हसीन दिखाई दे रहा है। हर तरफ बहार ही बहार छाई हुई है।

वेलकम बैक, मैं आरजे सागर। शो चल रहा है आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। इन शॉर्ट एक हमारी आज की इंडस्ट्री है। आइए बात करते हैं आज की कंपनी की। आज की हमारी कंपनी का नाम है बीमा प्लान। अभी देखिए, हिंदी और अंग्रेजी दो शब्दों का मिला करके एक शब्द बना है, बीमा यानी कि इंश्योरेंस, प्लान मतलब प्लान। हम सबके कुछ ना कुछ प्लान्स होते हैं। जस्ट किडिंग। सो बीमा प्लान इज द नेम ऑफ दिस कंपनी। ये इंश्योरटेक में डील करती है और ये एक स्टार्टअप है जिसका फोकस है इंडिया की एक प्रॉब्लम सॉल्व करने का। एंड द फोकस इज ऑन अ फाइनेंशियल प्रॉब्लम विच इज लैक ऑफ इंश्योरेंस एक्सेस फॉर लो एंड मिडिल क्लास हाउस होल्ड्स। अब देखिए, बहुत सारे आप में से ऐसे लोग होंगे जिनका इंश्योरेंस होगा, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, लेकिन ऐसे ही बहुत सारे लोग दुनिया में जिनके पास अपना इंश्योरेंस नहीं है। उसके बहुत सारे कॉन्स्टेंट्स होते हैं, कई बार अवेयरनेस नहीं होती, जागरूकता नहीं होती, और कई बार बजट नहीं होता। तो उसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को केटर करते हुए लो और मिडिल इनकम जो हाउस होल्ड्स हैं उनकी उस प्रॉब्लम को फिक्स करने का काम कर रही है कंपनी जिसका नाम है बीमा प्लान। जहाँ पर मोस्टली जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं इंडिया में फोकस करती थी ट्रेडिशनली, अगर हम स्पेशली बात करें तो अर्बन अपर मिडिल क्लास कंज्यूमर्स या अर्बन कंज्यूमर्स, ठीक है, ये जो कंपनी है टारगेट करती है एक ऐसे सेगमेंट को जो बहुत लार्जली इग्नोर हुआ है लंबे टाइम तक, जैसे डेली वेज अर्नर्स हो गए, गिग वर्कर्स हो गए, स्मॉल शॉप ऑनर्स हो गए, रूरल फैमिलीज हो गई, या टीयर टू टीयर थ्री सिटीज में कुछ ऐसे लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते इंश्योरेंस को, तो ये यहाँ पर उनको केटर करते हैं। इनका बहुत सिंपल सा कहना है कि भैया हमारा प्लान है, बहुत सिंपल सा लेकिन बहुत मासिव, वो है कि इंश्योरेंस को अफोर्डेबल बनाना, अंडरस्टैंडेबल बनाना एंड एक्सेसिबल बनाना फॉर द नेक्स्ट बिलियन इंडियंस, अगले 100 करोड़ जो इंडियंस हैं उनके लिए। तो यहाँ पर ये लो कॉस्ट इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स बनाते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं डिजिटली थ्रू पार्टनरशिप्स, जहाँ पर कुछ कुछ पर्टिकुलर ऐसी चीज़ें हैं जो इसको खास बनाती हैं, विच इज़ कि यहाँ पर ये लोग एजेंट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाई नहीं करते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक कमीशन वाला पार्ट जो है बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है, तो उसको एलिमिनेट करते हुए ये कंपनी डील करती है। दिस इज़ बीमा प्लान। फिलहाल एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद शो में आगे बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइव।

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है, दिन के वक्त जब ये फुहारे।
1: कहाँ आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी।

बैक, मैं आरजे सागर। ऑन दिस नोट अपने शो को आगे बढ़ाएंगे। कंपनी का नाम है बीमा प्लान और हमने वही भी आपको बताया कि कंपनी क्या करती है। लेट्स टॉक अबाउट कि कंपनी स्टार्ट कैसे हुई। तो सिंपल से आइडिया के साथ ही कंपनी स्टार्ट हुई। एक रियलिटी जो है जो बहुत ब्रूटल है वो इंडिया में इन्होंने ऑब्जर्व करी, एंड दैट रियलिटी इज कि मिलियंस ऑफ फैमिलीज आर कोलैप्सिंग बिकॉज ऑफ अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट्स। ऐसी चीज़ें हो जाती है हमारे परिवारों में जिसकी वजह से कई बार लोगों के घर बिक जाते हैं, सब कुछ बिक जाता है। बीमारी हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, किसी अर्निंग मेंबर की डेथ हो सकती है, कोई हॉस्पिटलाइजेशन हो सकता है, जॉब लॉस हो सकता है। तो ट्रेडिशनल जो कंपनीज हैं, इंश्योरेंस कंपनीज, वो मार्केट को कैटर तो करते थे, बट एक तो उनकी कीमत बहुत ज़्यादा थी, ठीक है, देन उसके बाद कस्टमर को ऑनबोर्ड करने का जो प्राइस था, ठीक है, वो बहुत ऐसा था कि लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे, मतलब थोड़ा ज़्यादा हुआ करता था। देन अपार्ट फ्रॉम दिस, स्मॉल टिकट्स जो हैं वहाँ पर नहीं एंटरटेन होती थी, मतलब छोटे इंश्योरेंस पैकेजेस नहीं थे उनके पास, ठीक है। इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हुआ करते थे। इंश्योरेंस इंडस्ट्री में ट्रस्ट जो है वो बहुत लो था, एंड रूरल एंड सेमी अर्बन जो कस्टमर्स हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया ही नहीं गया था। तो बीमा प्लान की जो कंपनी है, इस कंपनी को ये बात समझ में आई और इन्होंने इंडिया का एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जो बहुत कुछ चेंज कर रहा है, ठीक है। साथ साथ मैं ये भी कहूंगा कि इसमें बहुत हद तक योगदान और बहुत सारे एलिमेंट्स का है, स्मार्टफोन्स का है, यूपीआई पेमेंट्स का है, इंटरनेट का है, डिजिटल अडॉप्शन का है, छोटे शहरों में ये तमाम चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। सो बेसिकली एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर पैरेलली बना है जिसको बेनिफिट इस कंपनी ने किया है। बट आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट द कंपनी, आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट द विजन कि इन्होंने एटलीस्ट इस एक चीज़ को आवाज़ दी। So instead of selling an annual policy of ₹50,000, ठीक है, इन्होंने क्या किया, small ticket insurance बनाया, contextual insurance बनाया, easy onboarding करी, low annual premiums रखे, ठीक है, जहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं कि $5 से लेकर $50 तक एनुअली लोग जो है पे करेंगे और वो इंश्योरेंस जो है बाय कर सकते हैं। तो एक बहुत बड़े आप कह सकते हैं ग्रुप को इन्होंने कैटर किया और एक जेन्युइन प्रॉब्लम जो वहाँ पर एग्जिस्ट करती है उसको वहां पर

आवाज देते हुए इस कंपनी ने जो है नींव रखी और लोगों की हेल्प करी. दैट इज द थिंग. फिलहाल एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद बात करते हैं फाउंडर की. कौन है फाउंडर? We'll talk about it, but it's musical break. Ke baad. So stay tuned with us. Feel good. Feel live.

जिन फकीरों में, जिन परंपरा में इस तरह के विचार चलते, हर शिष्य अपने ढंग से धन्यवाद देता है जब ज्ञान को उपलब्ध होता है। कभी कभी तो बड़ी अजीब घटनाएं घट जाती। एक युवक बोकोजू अपने गुरु के पास वर्षों रहा ज्ञान की समाधि की तलाश, और जब भी वो कुछ खबर लेके जाता कि बड़ा अनुभव हुआ कि गुरु उसको चांटा रसीद कर देता। ये पहले तो बहुत चौंकता था, फिर समझने लगा, औरों से पूछा, बुजुर्गों से पूछा जो पहले से ऐसे गुरु के चांटे खाते रहे थे, उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि उसकी बड़ी कृपा है, वो मारते ही तब है जब उसकी कृपा होती, किसी पे तो वो मारते ही नहीं, फिजूल पे तो वो खर्च ही क्यों करे, एक चांटा भी क्यों खर्च करे, तुम पे उसकी बड़ी कृपा है, और वो मारता है इसलिए कि तुम जो भी ले जाते हो वो अभी सच नहीं है, काल्पनिक है। कभी वो पहुंच जाता कि बड़े प्रकाश का अनुभव हुआ गुरुदेव और एक चांटा, कि कुंडलनी जग गई गुरुदेव और एक चांटा, कि चक्र खुलने लगे और वो चांटा, वो जो भी अनुभव ले जाता और चांटा खाता, तब तो उसे भी समझ में आने लगा कि बात तो सब, ये सब तो काल्पनिक जाल ही है। जहां तक किसी चीज का अनुभव हो रहा है वहां तक अनुभव हो ही नहीं रहा, क्योंकि जो भी अनुभव हो रहा है वो तुमसे अलग है। कुंडलनी जगी तो तुम तो देखने वाले हो, तुम तो कुंडलनी नहीं हो, वो जो देख रहा है भीतर की कुंडलनी जग रही वो तो कुंडली नहीं हो सकता ना, कुंडली तो विषय हो गई। जिसने देखा कि भीतर तीसरी आंख खुलने लगी, वो तो तीसरी आंख से भी उतना ही दूर हो गया जितनी इन दो आंखों से दूर है, वो तीसरी आंख भी अलग हो गई। जिसने देखा कि भीतर कमल खिलने लगा, वो देखने वाला तो कमल नहीं हो सकता ना, वो देखने वाला तो पार और पार और पार। उसका तो पता तब चलता है जब न कमल खुलते, न प्रकाश होता, न कुंडलनी जगती, न चक्र घूमते, कुछ भी नहीं होता, सन्नाटा छा जाता, अनुभव में कुछ आता ही नहीं, सिर्फ वही बच जाता है साक्षी, उस शून्य का साक्षी रह जाता। ऐसा कहते हैं 20 साल तक बोकुजू ने चांटे खाए, और आखिरी बार जब वो आया तो पता है कैसे उसने धन्यवाद दिया, आके एक चांटा अपने गुरु को जड़ दिया, गुरु खूब हंसा, कहते हैं गुरु लौटा प्रसन्नता में लौटा, उसने कहा तो हो गया आज तो धन्यवाद, कैसा होगा कहना मुश्किल। ये ठीक धन्यवाद था, 20 साल चांटे खाने के बाद आज कुछ कहने को था भी नहीं। जैन परंपरा अनूठी है, फकीरों की सारी परंपराएं अनूठी। मैं एक जैन फकीर के संस्मरण पढ़ रहा था। वो फकीर अमेरिका गया हुआ था और वहां एक हिंदू सन्यासी से निमंत्रण मिला कि मुझे मिलने आओ। पढ़ के मुझे ऐसा लगा कि हिंदू सन्यासी और कोई नहीं, बाबा मुक्तानंद होने चाहिए। नाम उसने नहीं लिखा है लेकिन हुलिया और ढंग जो वर्णन किया है वो मुक्तानंद का, और ये भी लिखा कि वो अंग्रेजी नहीं बोलते। मुक्तानंद ने बुलाया होगा, निमंत्रण दिया फकीर को आने को। फकीर आया तो मुक्तानंद बैठे ऊंचे सिंहासन पर और उसके नीचे एक आसनी बिछा दी फकीर के लिए। मुझे लगा कि मुक्तानंद ही होने चाहिए क्योंकि मेरे साथ भी उन्होंने यही किया, मुझे भी बहुत निमंत्रण दे दे के बुलाया, और जब मैं गया तो वो एक आसन पर बैठे और एक आसनी नीचे रख दी उन्होंने बैठने के लिए। फकीर बैठ गया, मुक्तानंद ने कुछ मिठाई फकीर को भेंट की, तो फकीर के साथ एक शिष्य आया था, उसने कहा कि नहीं वो मिठाई नहीं लेंगे, उन्हें डायबिटीज है। तो मुक्तानंद ने कहा कि डायबिटीज तो 3 मील सुबह पैदल चलो, आसन व्यायाम करो तो ठीक हो जाएगी। अब ये बिल्कुल अंधेपन का सबूत है क्योंकि आदमी जो सामने बैठा है वो परम दशा में, उसको ये बताना कि 3 मील पैदल चलो, आसन व्यायाम करो, योगासन सीख लो, मूढ़ता का लक्षण। वो फकीर हंसा, उसने कहा डायबिटीज बड़ी प्यारी है, भगवान की देन। ये सब अनुवाद किया जा रहा है, एक मुक्तानंद की शिष्या अनुवाद कर रही है, मुक्तानंद हिंदी में बोल रहे हैं, अंग्रेजी में अनुवाद किया जा रहा है, और वो जो फकीर अंग्रेजी में बोल रहा है वो हिंदी में अनुवाद किया जा रहा है। तब मुक्तानंद ने कहा कोई जिज्ञासा, अभी तो उसको बुलाया खुद, अब उससे पूछते हैं जिज्ञासा, कुछ पूछो, कोई प्रश्न वगैरह हो तो वो हल कर दे। तो उस फकीर ने जैन ढंग से कहा कि ईश्वर है या नहीं, अगर कहा है तो एक तमाचा मारूंगा, और अगर कहा नहीं है
तो भी एक तमाचा मारूंगा। बोलो, वो जो अनुवाद कर रही थी महिला वो तो बहुत घबरा गई कि ये कोई बातचीत, अगर कहा है तो एक तमाचा मारूंगा, अगर कहा नहीं है तो भी एक तमाचा मारूंगा। बोलो, तो महिला तो थोड़ी घबराई कि इसका अनुवाद करना कि नहीं, और उसने भी चौंक के देखा कि ये बात क्या है। उस फकीर ने कहा अनुवाद कर, नहीं तो तू नाहक पिटेगी। तो घबरा के उसने अनुवाद कर दिया। जब ये अनुवाद मुक्तानंद ने सुना तो वो तो बहुत घबरा गया कि ये कौन सी तत्व चर्चा है। तो उन्होंने कहा आप कोई दार्शनिक नहीं मालूम होते, ये कौन सी तत्व चर्चा है। मगर ये तत्व चर्चा है, जैन फकीर ये कह रहा है कि हाँ कहो तो गलत, ना कहो तो गलत, क्योंकि हाँ कहो तो द्वैत आ गया, ना कहो तो द्वैत आ गया। दोनों हालत में चांटा मारूंगा, अगर हाँ कहा तो चांटा मारूंगा, ना कहा तो चांटा मारूंगा। वो ये कह रहा है कि दोनों हालत में तुमने गलती की, क्योंकि परमात्मा के संबंध ना तो हाँ कहा जा सकता है ना कहा जा सकता है, चुप्पी ही मौन ही एकमात्र सही उत्तर है। लेकिन इससे तो बात बिगड़ गई, ये चांटा मारने की बात तो कुछ जची नहीं। तो जैन फकीर ने लिखा अपनी डायरी में कि बाबा ने जल्दी से घड़ी देखी और कहा कि मुझे दूसरी जगह जाना है, बस सत्संग समाप्त हो गया। हर परंपरा के अपने ढंग होते, लेकिन परंपरागत ढंग सीख लेने से कुछ सार नहीं है। तिब्बत में जब ज्ञान हो जाए तो एक ढंग होता है गुरु को धन्यवाद देने का, लेकिन अगर ढंग सीख रखा परंपरा से तो ढंग ही झूठा है, ये काम थोड़ी आएगा। तो तुम ये तो पूछो ही मत कि कैसे धन्यवाद दोगे, तुम तो इसकी ही फिक्र करो। धन्यवाद की क्या फिक्र, ना भी दिया तो चलेगा। पूछा है स्वामी स्वरूप सरस्वती ने, और मैं तुमसे कह देता हूँ धन्यवाद दिया तो एक चांटा मारूंगा और नहीं दिया तो भी मारूंगा। धन्यवाद की तो फिक्र छोड़ो, परमात्मा को पा लेने का सवाल है। उसको पा लिया तो धन्यवाद हो गया, तुम आओगे और धन्यवाद हो जाएगा, तुम बैठोगे और धन्यवाद हो जाएगा, तुम ना आए तो भी धन्यवाद आ जाएगा। तुमने कहा कि नहीं कहा फिर अर्थहीन है, तुम्हारा होना कह देगा। जब गुरु देखता है कि किसी शिष्य को हो गया तो क्या तुम सोचते हो तुम बताओगे तब उसे पता चलेगा, तो गुरु ही नहीं है। तुम्हारे बताने से पता चला तो फिर क्या खाक गुरु। सच तो यह है कि जब तुम्हें होगा, तुम्हारे होने के पहले, तुम्हें पता चलने के पहले गुरु को पता चल जाएगा कि हो रहा। रिंझाई के संबंध में ऐसी कहानी है कि जब उसे ज्ञान हुआ तो रात के 2 बजे थे, बैठा था ध्यान में।

0: अचानक सब द्वार दरवाजे खुल गए। कर रहा था मेहनत कोई 12 वर्षों से, जब द्वार दरवाजे खुल गए 2 बजे रात, तो उसके मन में ख्याल आया कि जाऊं और अपने गुरु के चरणों में सिर रखूं, लेकिन 2 बजे रात उनको जगाना नींद तो ठीक नहीं। जब उसने ऐसा सोचा तो हैरान हुआ, कोई दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। दरवाजा खोला तो गुरु सामने खड़े। गुरु ने कहा, तो अरे ना समझ, तू क्या सोचता था कि तुझे ज्ञान होगा और हम सोए होंगे? इतनी बड़ी घटना घट रही हो, जब तेरे साथ सांस जोड़ दिया तो सब तरह जुड़ गए। तुझे इतनी बड़ी घटना घट रही हो और हम सो सकते? और क्या तू सोचता है तुझे पहले पता चलेगा फिर हमें पता चलेगा? तुम चकित होगे जान के कि पश्चिम में बहुत से प्रयोग चल रहे हैं, माँ और बेटों के बीच में कोई एक अज्ञात सूत्र रहता है। जैसे जब बच्चा पैदा होता है माँ के पेट से तो जुड़ा रहता है, बच्चे की नाभि माँ के पेट से भौतिक रूप से जुड़ी रहती है, डॉक्टर उसे काटता है। लेकिन एक और कोई स्वर्ण सूत्र है जो जुड़ा ही रहता है, जिसको काटा नहीं जा सकता। इस पर बहुत प्रयोग चले, विशेषकर सोवियत रूस में बहुत प्रयोग हुए हैं और बड़ी हैरानी के परिणाम आए। वो प्रयोग ये है कि अगर बेटे और माँ में बहुत लगाव हो तो तुम हजारों मील दूर ले जाके बेटे को सताओ, माँ को अनुभव होने लगता है कि बेटा सताया जा रहा, उसे कुछ तकलीफ शुरू हो जाए, वो बेचैन होने लगती। फिर आदमी तो बहुत विकृत हो गया है, इसलिए पशुओं पर प्रयोग किए गए। एक बिल्ली को ऊपर छोड़ दिया गया घाट पर और उसके छोटे बच्चे को एक पनडुब्बी में समुद्र की गहरी सतह में ले जाया गया मील भर नीचे। और ये जो ऊपर बिल्ली छोड़ी गई है, इस पर सब यंत्र लगा के रखा गया है कि इसके मन की दशा का पता चलता रहे, कभी ये परेशान होती बेचैन होती छोटी सी भी बेचैनी। और जैसे ही उस बच्चे को नीचे सताया गया, उसकी गर्दन मरोड़ी गई कि वो एकदम परेशान होने लगी। 1 मील का फासला, पानी की अतल गहराई में बच्चा, जैसे ही उसकी गर्दन छोड़ी गई वो फिर ठीक हो गई, फिर गर्दन दबाई गई वो फिर परेशान हो गई। फिर तो इसको बहुत प्रयोग किए गए और ये अनुभव में आया कि जहां प्रेम है वहां एक स्वर्ण सूत्र जोड़े रखता है। तो ये तो माँ और बेटे की बात है, तुम गुरु और शिष्य की बात तो पूछो ही मत, क्योंकि ये प्रेम तो कुछ भी नहीं है उस प्रेम के मुकाबले। ये तो शरीर का ही प्रेम है। गुरु और शिष्य के बीच तो एक आत्मिक नाता है, आत्मा का एक संबंध है। जिस दिन तुम्हें ज्ञान होगा, तुम सोचते हो तुम्हें पहले पता चलेगा, तो तुमने गलत ही सोचा। तुम्हारे गुरु को तुमसे पहले पता चल जाएगा, और ये भी हो सकता है कि तुम्हें धन्यवाद देने का गुरु मौका न दे, तुम्हें तुम्हारे धन्यवाद देने के पहले धन्यवाद दे दे। इस चिंता में पड़ो मत, असली चिंता दूसरी ही है कि कैसे उसे पालो। धन्यवाद गैर धन्यवाद तो शिष्टाचार उपचार की बातें। 5वां प्रश्न, कभी आप कहते हैं अकेलापन स्वभाव है, कभी आप कहते हैं स्वतंत्रता स्वभाव है, कभी आप कहते हैं प्रेम स्वभाव है, कभी आप कहते हैं आनंद स्वभाव है, कृपा करके समझाएं। मैं जो भी कहता हूं वह एक ही है, बहुत ढंग से कहता हूं। समझो, जब मैं कहता हूं अकेलापन स्वभाव है, तो मैं कह रहा हूं ये मार्ग ध्यान का, अकेलापन यानी ध्यान, अकेले रह गए, असंबंधित, असंग, कोई दूसरे की धारणा ना रखी, पर को भूल गए, परमात्मा को भी भूल गए, क्योंकि वो भी पर, वो भी दूसरा, अकेले रह गए, बिल्कुल एकांत में रह गए। जैन बौद्ध इस तरह चलते, अकेले रह गए, इसलिए उनके मोक्ष का नाम कैवल्य, बिल्कुल अकेले रह गए, केवल चेतना मात्र बची। अकेलापन स्वभाव है, जो अकेला हो गया तो दूसरी बात उसमें से निकलेगी, स्वतंत्रता स्वभाव है। जब तुम अकेले रह गए तो तुम स्वतंत्र हो गए, अब तुम्हें कोई परतंत्रता ना रही, क्योंकि कोई पर ही ना रहा, दूसरे पर निर्भरता ना रही, तुम मुक्त हो गए, तुम स्वतंत्र हो गए, तुम्हारा अपना स्वच्छंद तुम्हें उपलब्ध हो गया, तुम अपना गीत गुनगुनाने लगे, अब तुम उधार गीत नहीं गाते, अब तुम दूसरे की छाया की तरह नहीं डोलते, अब तुम किसी के पीछे नहीं चलते, अब तुम अपने भीतर से, अपने केंद्र से अपने जीवन का रस बहाने लगे, तो स्वतंत्र हुए। फिर तीसरी बात मैं कहता हूं प्रेम स्वभाव है, जो स्वतंत्र हो गया और अकेला हो गया वही प्रेम देने में सफल हो पाता है, क्योंकि उसी के पास प्रेम देने को होता है। तुम तो प्रेम दोगे कैसे, तुम तो मांग रहे हो, दोगे कैसे? तुम तो चाहते हो कोई तुम्हें दे दे। तुम्हारे पास ही होता तो तुम मांगते क्यों? तुम्हारे पास नहीं है इसलिए तो मांगते हो। हम वही तो मांगते हैं जो हमारे पास नहीं है। और जो स्वतंत्र हो गया, एकांत में डूब गया, अपनी मस्ती में खो गया, उसके पास प्रेम होगा, वो प्रेम बांटेगा। लेकिन उसका प्रेम तुम्हारे जैसा प्रेम नहीं होगा। वो देगा बेशर्त, वो किसी को भी देगा। वो ये भी नहीं कहेगा किसको दूं किसको ना दूं, उसकी कोई सीमा ना होगी। वो बांटेगा, वो उलीचेगा, जैसे एकांत में खिला हुआ फूल अपनी सुगंध को हवाओं में बिखेर देता है। किसी को मिल जाए ठीक, ना मिले ठीक, किसी के प्रयोजन से नहीं बिखेरता। सुगंध में किसी का पता नहीं लिखा होता कि फलाने के घर जाना, कि मेरी प्रेसी वहां रहती है सुगंध वहां जाना, कि मेरा प्रिय वहां रहता है वहां जाना। बिखेर देता जिसको मिल जाए। फूल खिल गया, अब उसको क्या प्रयोजन? जो व्यक्ति स्वतंत्र हो गया उसका प्रेम खिल जाता है, उसका फूल खिल जाता है। और जिसका फूल खिल जाता है, चौथी बात आनंद स्वभाव है। जिसका फूल खिल गया वो आनंदित है। बिना भीतर के फूल के खिले कब कोई आनंदित हुआ है? तो जब मैं कहता हूं अकेलापन स्वभाव है, स्वतंत्रता स्वभाव है, प्रेम स्वभाव है, आनंद स्वभाव है, तो मैं एक मार्ग की बात कर रहा हूं। वो मार्ग है ध्यान का मार्ग। उसमें अकेलापन पहले आता, फिर स्वतंत्रता आती, फिर प्रेम आता, फिर आनंद आता। दूसरा मार्ग है भक्ति का मार्ग। भक्ति के मार्ग में प्रेम पहले आता, प्रेम स्वभाव है परमात्मा के प्रति। इतने अनन्य प्रेम से भर जाना है कि तुम्हारा मैं भाव समाप्त हो जाए, तुम्हारा मैं समर्पित हो जाए। और जिसके जीवन में प्रेम आ गया, परमात्मा के प्रति ऐसा समर्पण आ गया, ऐसी प्रार्थना आ गई कि अपने अहंकार को उसने सब भांति समर्पित कर दिया, उसके जीवन में अनिवार्य रूपेण आनंद आ जाएगा। जो रहा ही नहीं, मैं ही ना बचा, वहां दुख कहां? अहंकार दुख है, अहंकार दुख की तरह सालता है, सूल है, जहर है। जहां अहंकार गिर गया भक्त का, वहीं आनंद आ गया। और जहां आनंद आ जाता है वहां दूसरे की कोई जरूरत नहीं रही। दूसरे की जरूरत तो दुख में रहती। तुम जब दुखी होते तब तुम दूसरे को तलाशते हो, कोई मिल जाए तो दुख बता ले। दूसरे की जरूरत ही दुख में पड़ती है। जब तुम आनंदित हो तब क्या दूसरे की जरूरत है? तो जो व्यक्ति प्रेम को उपलब्ध हुआ, आनंद को उपलब्ध हुआ, वो अकेलेपन को उपलब्ध हो जाता है। उसको कोई जरूरत नहीं दूसरे की। और जो अकेला है वही स्वतंत्र है, वही स्वच्छंद है। तो ये दूसरा सूत्र भक्ति का, प्रेम स्वभाव है, प्रेम से पैदा होता आनंद, आनंद स्वभाव है, आनंद से पैदा होता एकाकीपन, अकेलापन, एकांत, तो अकेलापन स्वभाव है। और अकेलापन यानी स्वतंत्रता, स्वच्छंदता। किसी भी मार्ग से चलो, दो ही मार्ग है। या तो शुद्ध रूप से अकेले बचो तो तुम पहुंच जाओगे, या अपने को बिल्कुल गमा दो, खो दो, तो तुम पहुंच जाओगे। या तो मिट जाओ तो पहुंच जाओगे, शून्य हो जाओ तो पहुंच जाओगे, या पूर्ण हो जाओ तो पहुंच जाओगे। जैन और बौद्ध चलते हैं ध्यान से, अकेले हो गए, मैं को शुद्ध करते हैं, परिपूर्णता पर लाते। हिंदू मुसलमान ईसाई चलते हैं प्रेम से, अपने को समर्पित करते हैं। समर्पण में अहंकार धीरे धीरे खो जाता है, रेखा भी नहीं बचती। जिस दिन अहंकार खो जाता है उसी दिन परमात्मा प्रकट हो जाता है। छठवां प्रश्न, लाओसु जब अपना देश छोड़कर जा रहे थे तब देश के राजा ने उन्हें कहलाया कि आपने जो कुछ प्राप्त किया है उसकी चुंगी चुकाए बिना आप नहीं जा सकते। उसी प्रकार परमात्मा ने आपको भी मोक्ष के द्वार पर रोक कर रखा है कि जब तक आप संबोधि का दान औरों को नहीं देते तब तक आप भी मोक्ष महल में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। यह संदेह रहित बात है प्रभु, पूछा है बोधिधर्म ने। संदेह तो थोड़ा रहा होगा, नहीं तो पूछते नहीं। संदेह रहित बात में पूछना क्या, थोड़ा संदेह होगा। उसी संदेह के कारण ये भी कहा है कि संदेह रहित बात है, नहीं तो ये भी ना कहते। बात प्यारी है, बात महत्वपूर्ण है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। लाओसु को रोका था देश के राजा ने क्योंकि वो बिना एक पंक्ति लिखे अपने अनुभव की भागा जा रहा था, हिमालय में जा रहा था। उसने चुन रखा था कि जाके हिमालय में ही कब्र बने, इससे सुंदर जगह मरने को और हो भी क्या सकती। तो चीन छोड़ के जा रहा था, दक्षिण की तरफ भाग रहा था। उसको राजा ने रुकवा लिया, राजा भी बड़ा समझदार रहा होगा, इतने समझदार राजा मुश्किल से होते। राजा और समझदार जरा ये बात साथ साथ घटती नहीं। समझदार राजा होगा, उसने खबर भेजी, पुलिस के आदमी दौड़ाए, घोड़े दौड़ाए और उसको ठीक सीमा पर रुकवा लिया, चुंगी चौकी पर, जहां से बाहर जाने के लिए आखिरी दरवाजा था। और रुकवा के उसने कहा कि जब तक तुम लिख न जाओगे जो तुमने जाना, उसने जिंदगी भर लिखा नहीं, और जब भी लोगों ने पूछा टाल दिया, और जब भी बहुत लोगों ने कहा तो इतने ही कहा कि सत्य कहा नहीं जा सकता। लेकिन राजा ने कहा तुम छोड़ के ही जा रहे हो देश, तो अब बिना कहे ना जा सकोगे, लिख दो जो भी जाना है फिर जा सकते हो, अगर नहीं लिखा तो बाहर ना निकलने दूंगा। उसे जाना तो जरूर था, मजबूरी में वो चुंगी चौकी पर ही 3 दिन रुका और उसने अपनी अद्भुत किताब ताओ ते किंग लिखी। 3 दिन में लिखी थी, छोटे से सूत्र जल्दी से उसने लिख लिखा के दे दिया। पहला ही सूत्र उसने लिखा कि सत्य कहा नहीं जा सकता और जो कहा जा सकता है वह सत्य नहीं होगा, इस बात को ध्यान में रखकर आगे कहता हूं। तो उसने पहले ही साफ कर दिया मामला, उसने चुंगी चुका दी, मजबूरी थी इसलिए चुकानी पड़ी, वो भाग गया, फिर निकल गया। तुम कहते हो कि जैसा लाओसु को उस देश के राजा ने चुंगी चुकाए बिना नहीं जाने दिया, उसी प्रकार परमात्मा ने आपको भी मोक्ष के द्वार पर रोक कर रखा। यहाँ जरा बात उल्टी, परमात्मा ने मुझे रोक के नहीं रखा है, परमात्मा को मैं रोक के रखा हूँ कि जरा दरवाजा भी मत खोलना। जहां तक चुकाने का सवाल है, मैंने मूलधन भी चुका दिया है, ब्याज भी, चक्रवृत्ति ब्याज भी चुका दिया है, जितना लिया था उससे बहुत ज्यादा चुका दिया है, इसलिए परमात्मा मुझे रोके ये तो सवाल ही नहीं। मैं ही रोक के बैठा हूँ कि जरा और थोड़ा बांट दू। मेरे जाने की नाव तो आके किनारे लगी खड़ी, मैं ही समझा बुझा के रोक रहा हूँ माझी को, गिजरा और ये थोड़े लोग और आ गए हैं, इनको थोड़ा और समझा। आखिरी प्रश्न, भगवान आपने चमचे और चमचागिरी जैसे साधारण शब्दों का उपयोग किया, इससे मेरा मन बहुत दुखी हुआ, ऐसा आपने क्यों किया? पहली तो बात, तुम शब्दों में भी शूद्र और ब्राह्मण बनाए बैठे, आदमियों में भी वर्ण बनाए, शब्दों में भी बना लिए, तो चमचागिरी या चमचा तुम्हें लगता होगा शूद्र शब्द है, इनका उपयोग नहीं होना चाहिए। मेरे लिए कोई शूद्र नहीं है, कोई ब्राह्मण नहीं। रही बात शब्दों की, तो शब्द का अर्थ ही होता है जो अभिव्यंजक हो, जितना अभिव्यंजक हो। अब चमचे से ज्यादा अभिव्यंजक शब्द खोज सकते हो, इस बात को किसी और शब्द से कह सकते हो, इससे ज्यादा ठीक मौजूद शब्द इस बात को कहने के लिए दूसरा नहीं है, इसलिए शब्द सार्थक है। और तुम सोचते हो नया है, तो तुम गलती करते हो। आदमी जितना पुराना है उतना ही पुराना है, कभी कुछ और कहा होगा, कभी कुछ और कहा होगा, लेकिन चमचागिरी पुराना शास्त्र है, वेद से भी ज्यादा पुराना। अगर तुम वेद में भी खोजोगे तो तुम्हें चमचागिरी मिलेगी। इंद्र की प्रशंसा चल रही, स्तुति चल रही, वो भी भय के कारण, घबराहट के कारण, लोभ के कारण, कि करोगे प्रशंसा तो तुम्हें कुछ मिल जाएगा। स्तुति चल रही है, स्तुति पुराना शब्द है, अब उसने अर्थ खो दिया। जब शब्द कोई प्रचलित होता है, लोक व्यवहार में होता, तब उसमें प्राण होते। अब चमचागिरी शब्द के लिए बस दूसरे एक शब्द है जो उसके करीब आता, हालांकि उतने करीब नहीं आता है, वह है मक्खन बाजी, लगा रहे हैं मक्खन। तो पहली तो बात यह कि मेरे लिए साधारण असाधारण कुछ भी नहीं है। शब्दों में क्या साधारण असाधारण, या तो सभी शब्द साधारण है, क्योंकि उसको तो किसी शब्द में कहा नहीं जा सकता, सत्य तो किसी शब्द में नहीं आता, इसलिए सभी शब्द साधारण है, या फिर सभी शब्द असाधारण है, क्योंकि जो भी कहा जा सकता है वो सभी शब्दों में कहा जा सकता है, जो शब्द भी बोलते हैं, जिन शब्दों में भी वाणी है, वो सभी असाधारण है। मगर वर्गीकरण नहीं करूंगा, अच्छे और बुरे ऐसे शब्द नहीं है, अच्छे और बुरे तुम्हारी धारणा में तुम्हें तकलीफ हुई होगी ये मैं मानता हूं। तुम्हें लगा होगा कि जिस व्यक्ति को तुम भगवान कहो उसने चमचे जैसे शब्द का उपयोग कर लिया, तो तुम अपने भगवान की धारणा को थोड़ा बदलो। तुम्हारे भगवान की धारणा रक्तहीन है, मुर्दा है, तुम अपने भगवान की धारणा में थोड़ा रक्त डालो, थोड़ा जीवन डालो। तुम्हारे भगवान की धारणा शाब्दिक है, कोरी है, प्रज्वलित नहीं है, उसे प्रज्वलित कर, बुझी बुझी आग नहीं है उसमें, तो तुम घबरा जाते हो, जरा सी एक छोटा सा शब्द और तुम घबरा गए, और फिर तुम्हारे भीतर एक गहरी आकांक्षा छिपी रहती है कि अगर मौका मिल जाए तो तुम मुझसे बदला ले लो, बदला इस बात का कि मैं तुम्हें रोज सलाह देता हूं, तुम्हें मौका मिल जाए तो तुम मुझे सलाह देने का मौका नहीं चूकते, कोई मौका मिल जाए जिसमें तुम्हें मेरी भूल चूक मिल जाए तो तुम जल्दी से बताना चाहो। इस बात को बहुत ज्यादा ध्यान में रखने की जरूरत है कि शिष्य को भी शिष्य होने में बड़ी अड़चन रहती है, बनता है शिष्य मजबूरी में, बनना तो गुरु चाहता है। सुना है एक सूफी फकीर के पास एक आदमी आया और उस आदमी ने कहा कि परमात्मा को पाना है तो सूफी फकीर ने कहा शिष्य बनना पड़ेगा। तो उसने कहा शिष्य बनने में क्या क्या कर्तव्य है, क्या क्या करना होगा? तो फकीर ने कहा कि 3 साल तक तो पूछने ही मत, झाड़ू लगाना, बुहारी लगाना, गाय चराना, घोड़ों की देखभाल करना, भोजन बनाना, कपड़े धोना, इस तरह के काम, फिर 3 साल के बाद जो ठीक होगा हम बताएंगे। उसने कहा तो मामला जरा लंबा दिखाई पड़ता, 3 साल यही करना है तो, और गुरु का क्या कर्तव्य? शिष्य का तो ये कर्तव्य, गुरु का क्या कर्तव्य? तो गुरु ने कहा गुरु का कर्तव्य बैठे रहना मस्ती से, लोगों से कहना ये करो वो करो ऐसा करो, इसको वहां भेजो इसको वहां भेजो। तो उसने कहा फिर ऐसा करे मुझे गुरु ही बना दे, ये काम ज्यादा रुचता है। तो मैं तुम्हारी तकलीफ समझता हूं कि तुम्हारे मन में भी गुरु बनने का भाव तो छिपा बैठा है, और कभी कभी मैं ऐसी बातें कहता हूं, मैं जानना चाहता हूं किस किस के भीतर गुरु भाव छिपा बैठा। मन को दुख हुआ, मन को दुख होने का कारण यह है कि तुम्हारी अपेक्षाएं पूरी ना हो तो मन को दुख हो जाता, तुम जैसी अपेक्षा रखते हो। और एक बात तुम खूब समझ लो कि मैं तुम्हारी कोई अपेक्षा कभी पूरी नहीं करूंगा, क्योंकि यहां मैं तुम्हारी अपेक्षा पूरी करने में उत्सुक ही नहीं हूं। तुम्हें पूरा कर सकता हूं लेकिन तुम्हारी अपेक्षा पूरी नहीं कर सकता, और तुम्हें पूरा कर सकता हूं इसीलिए कि तुम्हारी अपेक्षा पूरी नहीं करूंगा। अगर तुम्हारी अपेक्षाएं पूरी करने लगूं तो तुम अधूरे रह जाओगे, अब तुम चुन लो। तुम्हारी अपेक्षाएं तो मुझे तोड़नी होंगी, जगह जगह से तोड़नी होंगी, तुम्हारी धारणाएं तो सब तरफ से उखाड़ देनी होंगी, तुम्हें तो मुझे धीरे धीरे उस जगह ले आना है जब तुम्हारे भीतर कोई धारणा नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, निर्धारणा। उस घड़ी में क्रांति घटेगी, दिया जलेगा। लेकिन तुम छोटी मोटी बातों पर हिसाब लगा के बैठे हो। मैंने सुना एक साधु आटा मांगने घर के सामने रुका, सास मंदिर गई थी, घर में बहू थी, उसने कहा महाराज आगे जाओ। बड़ी तेज तर्रार औरत मालूम होती थी साधु, फिर कुछ और बोला नहीं, और ज्यादा फजीहत कराना ठीक भी ना थी, वो वापस लौट गया। जब वो वापस लौट रहा था तो मंदिर से लौटती हुई सास रास्ते में मिली। सास ने पूछा क्यों बाबा, मेरे घर गए थे क्या? साधु के हाँ कहने पर उसने पूछा तो फिर बहू ने क्या कहा? सास ने कहा कि बहू ने कहा कि बाबा महाराज आगे जाओ, कहीं और जाओ। बड़ी तेज तर्रार औरत है, सास एकदम गुस्से में आ गई। उसने कहा वह कौन होती है मना करने वाली, मेरे रहते वो है कौन मना करने वाली, घर का मालिक कौन है? तुम चलो मेरे साथ, मैं अभी उसे ठीक करती हूं। साधु बड़ा प्रसन्न हुआ, सोचा कि जब बुला के ले जा रही तो कुछ देगी भी। दोनों जब घर पहुंच गए तो सास ने गुस्से में बहू से पूछा, बहू तुमने महाराज को आटा देने से मना किया था, मेरे रहते तू कौन है मना करने वाली, माफी मांग साधु महाराज से। बहू ने माफी मांगी, साधु तो बड़ा खुश हुआ। और जब बहू माफी मांग चुकी तो सास ने कहा महाराज जाओ, अब मैं कहती हूं कहीं आगे जाओ, औपचारिकता पूरी कर दी, अब मैं कहती हूं कहीं और आगे जाओ। बहू कौन है कहने वाली, औपचारिकता तो उलझे हो तुम अगर मेरे पास तो तुम्हारी दशा दयनीय है, औपचारिकताएं छोड़ो। यहां कोई शिष्टाचारों के नियम पूरे नहीं किए जा रहे, यहां किसी क्रांति की तैयारी हो रही है, बड़ा झंझावात है, उसमें बहुत कुछ उखड़ जाना है, तुम्हारे सब नियम धर्म उखड़ जाने। फिर अगर देखने की क्षमता हो तो हर चीज में कुछ अर्थ दिखाई पड़ेगा, और देखने की क्षमता ना हो तो बड़े बड़े शब्दों में भी कुछ नहीं। तुम्हारे विचार के लिए ये बटरिंग व्रत कथा तुमसे कहता हूं। मंगलम इमीडिएट वासे मंगलम बटरिंग गिरता है, मंगलम चमचाए चंपी मंगलम फल प्राप्ता है, अथ चमचाए उवाचा जीव के सृव नहीं मात्र से कटई कलेश विकार। तिही बटरिंग व्रत की कथा सुनू क्लर्क नर नारी, हंसा भूखे मर रहे कौओं के हैं ठाट, हरिश्चंद्र की हो गई आज खड़ी फिर खाट। एक पंक्ति में दे रहा बटरिंग व्रत का सार, मक्खन मालिश के बिना है ये व्रत बेकार। जो भी तेरा है ऑफिसर उसके पांव पकड़ ले प्यारे, उसकी पत्नी के चरणों को उनके सांस जकड़ ले प्यारे। आते हुए सलाम मार दे जाते हुए सलाम मार दे, बिछा पलंग पर चद्दर दरिया पहुंचा सब्जी की टोकरिया, त्योहारों पर भेज मिठाई उपहारों की कर सप्लाई। कुछ ही दिन ऐसा करने से तुझे तरक्की मिल जाएगी, तेरी किस्मत की ये खिड़की खुलते खुलते खुल जाएगी। बटरिंग की महिमा अनंत मौसो लिखी न जाए, सुख भोगई इही लोक नर अंत बास पद पाए। बटरिंग व्रत की कथा को विरचित कभी बेचैन, पढ़े सुने जे क्लर्क जन चैन करें दिन रैन। इति श्री क्लर्को खंडे बटरिंग व्रत कथायाम अंतिमो अध्याय श्री हरे नमः।
1: एक बार भगवान कपिल वस्तु गए, उनके शिष्यों में एक स्थिर अनुरुद्ध की बहन रोहिणी वहां रहती थी। उसके परिवार के सभी लोग स्थिर अनुरुद्ध को मिलने आए लेकिन रोहिणी नहीं आई। अनुरुद्ध चिंतित हुए, उन्होंने अपनी बहन को बुलवाया। वह आई भी तो मुंह ढककर आई। स्थिर अनुरुद्ध तो बड़े चिंतित हुए, उन्होंने उससे पूछा कि पहले तो तू आई नहीं, अब आई भी है तो मुंह ढककर आई है, इसका कारण क्या है? रोहिणी ने कहा, मेरा चेहरा अनायास विकृत हो गया है, सारे चेहरे पर फफोले हो गए, मैं छवि रोग से पीड़ित हूं, इसलिए पहले आई नहीं, लज्जावश। आपने बुलाया तो आई हूं लेकिन मुंह ढककर आई हूं, ये मुंह दिखाने योग्य नहीं रहा। स्थिर अनिरुद्ध ने उससे कहा, छोड़ इसकी फिक्र, भगवान का आगमन हुआ है, उनके 10,000 भिक्षु गांव में हैं, उनके ठहरने के लिए एक विशाल भवन बनवाना है, तू उस भवन को बनाने में लग जा। रोहिणी के पास इतने रुपए थे भी नहीं, लेकिन उसने अपने सारे जवाहरात अपने सब गहने बेच दिए और भिक्षुओं के निवास के लिए भवन बनवाने में लग गई। भवन बनाने का काम ऐसा था कि भूल ही गई अपने रोग को, और आश्चर्य की घटना घटी कि निवास बनवाते बनवाते ही 99% रोग अनायास ठीक हो गया। लेकिन वह अभी भी भगवान के दर्शन को नहीं आई थी। तब भगवान ने उसे बुलवाया और पूछा, क्यों नहीं आई? उसने कहा, बनते मेरे शरीर में छवि रोग उत्पन्न हो गया था, उसी से लज्जित होकर नहीं आई। अब स्थिर अनुरुद्ध की दवा से 99% तो ठीक हो गया है, लेकिन 1% अभी भी बाकी है। ये कुरूप चेहरा आपको कैसे दिखाऊं, इसलिए बचती थी। आपने बुलाया तो आई हूं, क्षमा करे। भगवान ने पुनः पूछा, जानती हो ये किस कारण हुआ? नहीं बनते, वह बोली। भगवान ने कहा, रोहिणी तेरे क्रोध के कारण, यह अत्यंत क्रोध का फल है, और इसीलिए देख कि करुणा से अपने आप दूर हो चला है, और क्रोध तो अहंकार का परिणाम है। तुझे अपने रूप का बड़ा अभिमान था, उस अहंकार पर पड़ी चोट के कारण ही क्रोध होता था। भिक्षुओं के लिए भवन बनाने में तू भूल गई अपने को, तेरा अहम भाव विस्मृत हो गया, तू ऐसी संलग्न हो गई इस करुणा के कृत्य में कि अहंकार को खड़े होने की बचने की जगह ना रही, इसलिए देख रोग अपने आप दूर हो चला है। लेकिन पूरा दूर नहीं हुआ, क्योंकि अहंकार तेरा छूटा तो लेकिन बोधपूर्वक नहीं छूटा है, इसलिए 1% रोग बचा है। करुणा तो तूने की, लेकिन करुणा जानबूझकर नहीं की है, मूर्छा ने की है, भाई ने कहा है इसलिए की है। तेरे भीतर से सहज स्फूर्त नहीं है, इसलिए 1% बच रहा है। जाग, जो अभी तू करुणा कर रही है होश से कर, और जो अहंकार अभी तूने ऐसा काम में भूल के भुला दिया है उसे जान के ही त्याग दे। और कहते हैं इस बात को सुनते सुनते ही रोहिणी का सारा रोग चला गया। तब भगवान ने ये गाथाएं कही। आज की पहली 4 गाथाएं रोहिणी को कही गई थी। पहले तो इस कहानी को ठीक से समझ लें, ये अपूर्व है, इसमें पड़ा हुआ मनोविज्ञान गहरा है। मनस्विद जो अब खोज पा रहे हैं वे सारे सूत्र इसमें मौजूद हैं। पहली बात, आधुनिक मनोविज्ञान कहता है कि मनुष्य का मन उसकी बीमारियों का 90% कारण है। 90% बीमारियों के आधार में मन है, इसलिए इलाज से बीमारियां बदल जाती हैं, ठीक नहीं होती। एक बीमारी हुई, इलाज कर लिया, दवाओं ने उस बीमारी को रोक दिया, दूसरी तरफ से बीमारी बहने लगी, क्योंकि मन तो वही है, मन तो बदला नहीं, मन की तो कोई चिकित्सा हुई नहीं। समझो ये रोहिणी किसी डॉक्टर के हाथ में पड़ गई होगी, ये तो भला हुआ कि बुद्ध जैसे डॉक्टर के हाथ में पड़ गई। ये किसी डॉक्टर के हाथ में पड़ती तो डॉक्टर क्या करता, इसकी चमड़ी का इलाज करता। चमड़ी में रोग था नहीं, चमड़ी में केवल परिणाम था, रोग मन में था। मन का रोग चमड़ी पे फफोले होकर निकल रहा था, तो कोई चिकित्सक इसके चेहरे के फफोले ठीक कर देता। ये भी हो सकता था प्लास्टिक सर्जरी कर देता, इसके सारे चेहरे की चमड़ी बदल देता, तो ये रोग कहीं और से प्रकट होता। हाथों में छाजन हो जाती कि पैरों में लकवा लग जाता, कि आंखें अंधी हो जाती, कि कान बहरे हो जाते, ये रोग किसी और दरवाजे को खोज लेता। रोग तो मिटता नहीं तो दरवाजा तो खोजता। असल में जिसको हम रोग कहते हैं वो रोग नहीं है, रोग का लक्षण। साधारण चिकित्सक लक्षण से लड़ता है, महाचिकित्सक रोग के मूल से लड़ता है। आधुनिक मनोविज्ञान कहता है कि जब तक आदमी का मन न बदला जाए तब तक किसी बीमारी से वस्तुतः छुटकारा नहीं होता। इसलिए तुमने भी देखा होगा, एक दफे बीमारी के चक्कर में पड़ जाओ तो निकलने का रास्ता नहीं दिखता। किसी तरह एक बीमारी से निकल नहीं पाते कि दूसरी घर कर लेती है, कि दूसरे से निकल नहीं पाते कि तीसरा घर कर लेती है। ऐसा लगता है एक कतार है बीमारियों की, तुम एक से निपटे कि दूसरी बीमारी पकड़ती है। जब तक ठीक थे ठीक थे, इसलिए लोग कहते हैं बीमारी अकेली नहीं आती। कहावतें कहती हैं बीमारी अकेली नहीं आती, संग साथ में और बीमारियां लाती है। दुख अकेला नहीं आता, साथ में भीड़ लाता है। इसका कारण न तो दुख है न बीमारी है, इसका कारण यह है कि मूल को हम छूते नहीं। समझो कि वृक्ष की जड़ों में रोग लग गया है और पत्ते विकृत होकर आने लगे, पूरे खिलते नहीं, पूरे खुलते नहीं, हरियाली खो गई है। तुम पत्ते काटते रहो या पत्तों पर मलहम लगाते रहो या पत्तों पर जल का छिड़काव करते रहो, गुलाब जल का छिड़काव करो, तो भी कुछ बहुत होगा नहीं। जड़ जब तक आमूल स्वस्थ ना हो तब तक कुछ भी ना होगा। मनुष्य की जड़ उसके मन में है। मनुष्य शब्द ही मन से बना है। मनुष्य यानी जो मन में रुपा है, मन में गड़ा है। उर्दू का शब्द है आदमी, वो उतना महत्वपूर्ण नहीं, उसमें बहुत गहरा अर्थ नहीं है। उसमें जो अर्थ भी है वो छिछला है। आदम का अर्थ होता है मिट्टी, जो मिट्टी से बना है उसको कहते आदमी। क्योंकि भगवान ने पहले आदमी को मिट्टी से बनाया और फिर उसमें श्वास फूंक दी, इसलिए उसका नाम आदम। फिर आदम के जो बच्चे हुए उनका नाम आदमी। आदमी मिट्टी से बना है, मतलब आदमी देह। हमारी पकड़ इससे गहरी, हम कहते मनुष्य। अंग्रेजी का मैन भी संस्कृत के मन का ही रूपांतर है, वो भी महत्वपूर्ण है। हम कहते मनुष्य, हम कहते मिट्टी नहीं है आदमी। आदमी है मन, आदमी है विचार, आदमी है उसका मनोविज्ञान। जैसे ईसाइयत, इस्लाम और यहूदी आदम को पहला आदमी मानते हैं, हम नहीं मानते, क्योंकि आदम होना तो आदमी का ऊपरी वेश है, वो असली बात नहीं। असली बात तो भीतर छिपा हुआ सूक्ष्म रूप है। मनुष्य का अर्थ ही होता जिसकी जड़ें मन में गड़ी, लेकिन आधुनिक खोजें इस सत्य के करीब आ रही है। आधुनिक खोजें ये बात स्वीकार करने लगी कि आदमी शरीर पर समाप्त नहीं है, ना तो शरीर पर शुरू होता है ना शरीर पर समाप्त होता है। शरीर तो घर है जिसमें कोई बसा है। फिर हम ये भी नहीं कहते कि आदमी मन पर समाप्त हो जाता, हम कहते मन में गड़ा है तो मन से भी पार। इसलिए आदमी है तो आत्मा। अब इन तीन शब्दों को ठीक से लेना, आत्मा मन देह। मन दोनों के बीच में, मन को तुम शरीर से जोड़ दो तो संसारी हो जाते हो, और मन को तुम आत्मा से जोड़ दो तो सन्यासी हो जाते हो। मन के जोड़ का सारा खेल है। आत्मा भी तुम्हारे भीतर है, शरीर भी तुम्हारे पास है, बीच में डोलता हुआ मन है। इसलिए मन सदा डोलता है, डमाडोल रहता है, मध्य में लहरें लेता रहता है। अगर तुम्हारा मन शरीर की छाया होकर चलने लगे तो तुम संसारी, अगर तुम्हारा मन आत्मा की छाया होकर चलने लगे तुम सन्यासी। कुछ और फर्क नहीं है। मन अगर अपने से नीचे की बात मानने लगे तो संसारी, मन अगर अपने ऊपर देखने लगे तो सन्यासी। सन्यास की धारणा इस देश में पैदा हुई क्योंकि हमें ये बात समझ में आ गई कि मन दो ढंग से काम कर सकता है। मन तटस्थ है, मन की अपनी कोई धारणा नहीं है। मन ये नहीं कहता ऐसा करो, तुम पर निर्भर है। तुम चाहो तो मन को शरीर के पीछे लगा दो तो शरीर की गुलामी करता रहेगा। मन तो बड़ा अद्भुत गुलाम है, उस जैसा आज्ञाकारी कोई भी नहीं। तुम उसे आत्मा की सेवा में लगा दो, वो आत्मा की सेवा में लग जाएगा। तुम उसे लोभ में लगा दो, वो लोभ बन जाएगा। तुम उसे करुणा में लगा दो, वो करुणा बन जाएगा। सारे धर्म की कला इतनी ही है कि हम मन को नीचे जाने से हटाकर ऊपर जाने में कैसे लगाते हैं। और ख्याल रखना, जो सीढ़ियां नीचे ले जाती हैं वही सीढ़ियां ऊपर ले जाती, सीढ़ियां तो वही है। ऐसा भी हो सकता है कि दो आदमी बिल्कुल एक जैसे हों, एक जगह हों, और फिर भी एक सन्यासी हो और एक संसारी हो। ऐसा समझो कि किसी मकान की सीढ़ियां तुम चढ़ रहे हो, एक आदमी ऊपर से नीचे उतर रहा है, तुम ऊपर चढ़ रहे हो। 30 सीढ़ियां हैं, 15वीं सीढ़ी पर तुम दोनों का मिलना हो गया। तुम ऊपर की तरफ जा रहे हो, कोई नीचे की तरफ आ रहा है। 15वीं सीढ़ी पर तुम खड़े हो, दोनों एक ही जगह खड़े हो, लेकिन फिर भी एक जैसे नहीं हो, क्योंकि एक नीचे जा रहा है, एक ऊपर जा रहा है। दोनों बिल्कुल एक जैसे लगोगे, कोई तो फर्क नहीं होगा, क्योंकि सीढ़ी तो 15वीं होगी, स्थान तो वही होगा, लेकिन फिर भी गहरे में फर्क, एक ऊपर जा रहा है, एक नीचे आ रहा है, दिशा में फर्क, उन्मुखता भिन्न भिन्न है। जब मन देहोन्मुख होता है तो संसार, और जब मन आत्मानुमुख हो जाता है, रामोन्मुख हो जाता है, तो सन्यास। तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि संसारी और सन्यासी बिल्कुल एक जैसा लगे, एक ही सीढ़ी पर खड़ा हुआ मालूम पड़े, फिर भी अगर उनकी दिशाएं अलग हैं, उनकी आंखें अगर अलग दिशाओं में देख रही तो वे भिन्न है, मौलिक रूप से भिन्न है। आधुनिक मनोविज्ञान कहता है कि जब तक हम मन को स्वस्थ न कर लें तब तक शरीर की बहुत सी बीमारियां ठीक हो ही नहीं सकती। इसलिए पश्चिम में एक नए तरह की चिकित्सा पैदा हो रही, साइकोसोमेटिक। शरीर और मन दोनों का इलाज साथ साथ होना चाहिए, और शरीर से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है मन का इलाज। बीमारी अगर मन में हो और शरीर पर केवल उसकी छाया पड़ती हो तो तुम छाया को पहुंचते रहो।

अगर वो पुरुष है तो बहुत लगाव होता नाम से, प्रतिष्ठा, पद, पदवी, यश, धन, ज्ञान, त्याग, कहीं नाम। स्त्री का आग्रह होता है रूप पर, सौंदर्य। मुल्ला नसुद्दीन मुझसे बोला कि मुझे नौकरी मिल गई एक ब्यूटी पार्लर, एक सौंदर्य प्रसाधन की दुकान में नौकरी मिल गई। मैंने उसे उस दुकान के सामने खड़ा कई बार देखा तो पूछा कि तू वहां खड़े तो रहता, नौकरी क्या मिली, बाहर खड़ा रहता। उसने कहा यही मेरी नौकरी। मैंने कहा तेरा काम क्या? उसने कहा काम भी बड़ा सरल है, ऐसे बड़ा सूक्ष्म। फिर भी मैंने कहा मुझे कहो काम तेरा क्या है, मैं जब देखता हूँ वहीं तू खड़ा है बाहर। तो उसने कहा काम मेरा ये है कि जो स्त्रियां सौंदर्य प्रसाधन के लिए आती हैं, जब वो भीतर जाती हैं तो मेरा काम है उपेक्षा दिखलाना, नजर भी नहीं डालना, देखना ही नहीं कि कौन जा रहा कौन आ रहा। और जब वो सज धज के बाल ठीक करवा के बाहर निकलती हैं तो सीटी बजाना, ये मेरा काम है, ये मेरी नौकरी। इससे दुकान खूब चल रही है क्योंकि स्त्रियों को समझ में एक बात आ जाती कि अभी गई थी और ये आदमी देखा तक नहीं और अब बाल वाल संवार के बाहर आ रही तो सीटी बजा रहा वही आदमी, तो जरूर सुंदर होकर लौटी। स्त्री का सारा आकर्षण रूप में, इसलिए स्त्री को बहुत फिक्र नहीं होती नाम की। इसलिए स्त्रियां कोई ऐसे बहुत काम नहीं कर जिनसे नाम मिले, कि कोई बड़ी किताब लिखनी, कि मूर्ति बनानी, कि पेंटिंग बनानी, कि महाकाव्य लिखना, कि दुनिया की कोई ख्याति मिल जाए, कुछ लेना देना नहीं। स्त्री को सारा प्रयोजन है सौंदर्य से। रोहिणी सुंदर स्त्री रही होगी, स्त्री थी, सौंदर्य पर उसकी पकड़ रही होगी। और ये जो अहंकार हो, जैसा भी हो अहंकार, चाहे रूप का चाहे नाम का, जहां अहंकार है वहां क्रोध है, क्योंकि क्रोध का अर्थ ही होता है अहंकार को लगी चोट। तुम सोचते हो कि तुम बड़े ज्ञानी हो, किसी ने कह दिया कि क्या तुमने रखा ज्ञान, ज्ञान चोट लग गई। तुम सोचते हो कि तुम बड़े सज्जन हो और किसी ने कह दिया कि काहे के सज्जन, चोर बेईमान। तुम सोचते हो साधु हो, किसी ने कह दिया असाधु। तुमने सोचा कि सुंदर हो और किसी ने कह दिया असुंदर, तो चोट लग गई। तुम्हारी मान्यता को चोट लग जाए तो क्रोध पैदा होता है। तुम्हारी मान्यता को जो साथ दे दे उस पर बड़ा लगाव आता है। यही तो प्रशंसा से तुम इतने प्रशंसित होते हो। कोई कह दे कि हाँ तुम जैसा सुंदर और कौन, तुम बाग बाग हो जाते, तुम्हारी सब पखड़ियां खिल जाती, तुम खुश हो जाते हो। किसी ने तुम्हारे अहंकार को फुसलाया, राजी कर लिया। कुरूप से कुरूप स्त्री को भी कह दो कि तुम सुंदर हो तो वो भी इंकार नहीं करेगी। वस्तुतः वो कहेगी कि तुम ही पहली दफा पारखी मिले, अब तक कोई पहचान ही ना पाया। मैं तो जानती ही थी, लेकिन पारखी चाहिए ना, हीरे तो पारखी होते तो पहचानते। तुम बुद्धू से बुद्धू आदमी से कह दो कि तुम बुद्धिमान हो, बड़े बुद्धिमान हो, तो वो भी नहीं कहता कि देखो नाहक चापलूसी मत करो, मैं तो बुद्धू हूं, वो भी नहीं कहेगा। पागल से पागल को कह दो कि तुम जैसा जागरूक शांतचित्त आदमी और कहां, वो भी अंगीकार करता है। अहंकार के अनुकूल जो पड़ता है वो हम स्वीकार करते हैं, और अहंकार को जो भरता है उसको हम मित्र कहते हैं, यद्यपि वो है तो शत्रु, क्योंकि वो तुम्हें उस जगह ले जा रहा है जहां से तुम बुरी तरह गिरोगे, जहां से ऐसे गिरोगे कि फिर संभलना मुश्किल हो जाएगा। वो तुम्हें ऐसी जगह उठा रहा है जहां से गिरना सुनिश्चित है। अहंकार पर कोई भी ठहर होकर रह नहीं सकता, वो जगह बारीक है, तुम्हें संभाल ना पाएगी, वहां से तुम गिरोगे ही। और आज जितने अहंकार से तुम्हारी तृप्ति हुई, कल और तुम मांगोगे और ज्यादा और ज्यादा। आखिर कब तक ये होगा? एक घड़ी आएगी कि तुम अपने ही अतिशय से गिरोगे, बुरी चोट खाओगे। जो जितने ऊपर अहंकार की चोटी पे चढ़ेगा उतनी ही बड़ी खाई में गिरने का खतरा मोल ले रहा है। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, गिरती आने वाली है। और तुम चकित होगे कि जिन्होंने प्रशंसा की थी वही निंदा में मुखर हो जाते, वो बदला लेंगे। जब प्रशंसा की थी तब भी बेमन से की थी, तब भी करनी पड़ी थी, कोई प्रयोजन थी, कोई प्रयोजन था इसलिए की थी, तुमसे कुछ लाभ था, तुमसे कुछ निकालना था इसलिए की थी। बदला तो लेंगे,

कोई भी प्रशंसा प्रशंसा की तरह थोड़ी करता है, उसका कोई प्रयोजन, उसे तुम्हारा शोषण करना है। उसका काम निपट जाएगा तो वही बदला लेगा जिसने तुम्हें आकर खूब आह्लादित किया था, वही तुम्हें गालियां देगा। तब दिल को और भी चोट लगेगी, अपने ही पराये हो गए ऐसा लगेगा, मित्र शत्रु हो गए ऐसा लगेगा। और कहावतें कहती दुनिया की कि जिसके साथ नेकी करो वही बदी करता है। नेकी इत्यादि तुमने की भी नहीं है, उसने तुम्हारी प्रशंसा की थी, तुमने कुछ उस प्रशंसा के कारण कर दिया था, वो नेकी नहीं थी, वो सिर्फ सौदा था। और उस आदमी को तुम्हारी प्रशंसा करनी पड़ी थी, तुम्हारे सामने झुकना पड़ा था, इसलिए वो तुम्हें कभी क्षमा तो कर नहीं सकेगा, वो इसका बदला तो लेगा। जब भी अवसर आ जाएगा, ठीक समय होगा, वो बदला लेगा। तो रोहिणी को रूप का दंभ था, रूप के दंभ के कारण बहुत चोटें लगी होंगी, क्रोधित होती थी। अगर तुम्हें चोटें लगती हो तो एक बात ख्याल में ले लेना, चोट लगने का लक्षण अर्थ यही कि तुम्हारे भीतर अहंकार का घाव बहुत गहरा है, जरा सी बात भी अखर जाती है। अगर तुम्हारे मन में सम्मान की इच्छा है और अपमान से बचने का भाव है तो तुम अहंकार का पोषण कर रहे हो। फिर इन क्रोध और अहंकार के बीच में उसे छवि रोग हो गया, चेहरा विकृत हो गया। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि चमड़ी की रोग तो 99% मानसिक होते, सभी रोग 90% मानसिक होते हैं, लेकिन चमड़ी के रोग तो 99% मानसिक होते हैं, क्योंकि चमड़ी बड़ी संवेदनशील है और चमड़ी हमारी सबसे बड़ी इंद्री है। कान छोटा सा है, कान पर चोट करनी हो तो निशाना ठीक ठीक लगाना पड़े तो ही चोट होगी। आंख छोटी सी है, आंख पर चोट करनी हो तो निशाना ठीक लगना चाहिए। जीभ भी छोटी सी है, लेकिन चमड़ी तुम्हारे पूरे शरीर को घेरे हुए, ये तुम्हारी सबसे बड़ी इंद्री है। स्पर्श की इंद्री सबसे बड़ी इंद्री है, इस पर चोट बड़ी आसानी से लग सकती, निशाना लगाने की जरूरत ही नहीं। इसलिए मन की चोटें आंख पर भी लगती हैं, कान पर भी लगती हैं, जीभ पर भी लगती हैं, लेकिन वो तो उनकी मात्रा बहुत छोटी छोटी है। लेकिन शरीर की चमड़ी का फैलाव बहुत है, उस फैलाव के कारण चमड़ी पर सर्वाधिक मन की चोटें पड़ती हैं। और चमड़ी का कोई भी रोग किसी इलाज से ठीक नहीं होता, लेकिन मानसिक इलाज से ठीक होता है। चमड़ी इस अर्थ में भी विचारणीय है कि तुम्हारी और जो इंद्रियां हैं वो चमड़ी के ही विशिष्ट रूप है। कान है क्या? चमड़ी का ही एक विशिष्ट रूप है। और आंख है क्या? आंख भी चमड़ी का ही एक विशिष्ट रूप है। चमड़ी ने ही अपने एक हिस्से को देखने में कुशल बना लिया है, वो आंख हो गई। और चमड़ी ने ही एक दूसरे हिस्से को स्वाद लेने में कुशल बना लिया है, वो तुम्हारी जीभ हो गई। और चमड़ी ने ही एक दूसरे हिस्से को विशेषज्ञ बना लिया है, नाक हो गई तुम्हारी, सुगंध के लिए विशेषज्ञ। ये एक्सपर्ट है, ये चमड़ी की विशेषताएं, लेकिन है सब चमड़ी के ही खेल। बच्चा जब पहली दफा पैदा होता है, माँ के पेट में बढ़ता है, तो पहले तो चमड़ी आती, फिर चमड़ी में ही धीरे धीरे आंख उभरती, फिर चमड़ी में ही धीरे धीरे कान उभरता, फिर चमड़ी में ही जननेंद्रिय उभरती, फिर चमड़ी में ही जीभ नाक सब उभरते जाते, लेकिन सबसे पहले तो चमड़ी होती। तो चमड़ी बहुत मूल है और इसलिए स्पर्श बड़ा महत्वपूर्ण है। इसलिए जब हम किसी के प्रेम में पड़ते हैं तो तत्क्षण स्पर्श करना चाहते हैं, हाथ में हाथ लेना चाहते हैं, गले से गले लगाना चाहते हैं, आलिंगन करना चाहते हैं। जब हम किसी के प्रेम में पड़ते हैं तो हम स्पर्श करना चाहते हैं, और जिससे हमारा प्रेम नहीं है उसके स्पर्श से हम बचते हैं। मनोवैज्ञानिकों ने इस पर काफी शोध की और उन्होंने पाया है कि लोग जिनसे बचना चाहते हैं अपने बीच और उनके बीच एक खास तरह की दूरी रखते हैं। ट्रेन में ही चाहे लोग खड़े कितनी ही भीड़ है तो भी तुम पाओगे हर आदमी अपने में सिकुड़ा खड़ा है, दूसरे को छूना नहीं चाहता। और जिससे तुम्हारा प्रेम नहीं है अगर उसे तुम छू लो तो तुम तत्क्षण क्षमा मांगते हो। क्यों? छू लेने का अर्थ हुआ कि तुमने उसकी सीमा रेखा में प्रवेश कर दिया जो कि नहीं करना चाहिए, ट्रेस पास हुआ, तुम दूसरे के घर में
बिना आज्ञा मांगे घुस गए। जिससे तुम्हारा प्रेम नहीं है उसको छू ले तो तुम तत्क्षण क्षमा मांगते हो कि माफ करना, भूल हो गई, जान के नहीं किया है। और अगर कोई पुरुष या कोई स्त्री तुम ट्रेन में खड़े हो और तुमसे सच के खड़ा हो जाए और क्षमा भी न मांगे और ऐसा भाव दिखलाए कि बड़ा प्रेम में तुमसे खड़ा है, तो तुम अत्यंत नाराज हो जाते हो, तुम अत्यंत क्रोधित हो जाते हो, तुम इसे बर्दाश्त नहीं कर पाते। इसलिए ट्रेन या बस में इकट्ठे खड़े हुए लोग भी इस तरह खड़े होते हैं कि अगर शरीर भी छू रहे हैं तो भी उनके मन नहीं छू पाते, वो अपने कुछ सिकोड़े खड़े होते हैं। कम से कम इतना प्रदर्शन तो करते हैं कि हम तुम्हें छू नहीं रहे, अगर छू रहा है शरीर तो मजबूरी, हम नहीं छू रहे हैं। और हम एक सीमा बांध के रखते हैं। तुमने देखा कभी किसी के साथ तुम बात खड़े होकर बात कर रहे हो तो सदा तुम जांचोगे कि एक सीमा तक तुम उस आदमी को बर्दाश्त करते हो, अगर वो उससे ज्यादा करीब आ जाए तो तुम पीछे हट जाते हो। एक सीमा होगी, समझो कि 12 इंच, तो 12 इंच तक वो आदमी अगर तुम्हारे करीब आ जाए तुम्हें कोई चिंता नहीं पैदा होती, कोई बेचैनी पैदा नहीं होती। 12 इंच के भीतर आना शुरू हो जाए, हाँ, तुम्हारा बेटा हो तो ठीक, तुम्हारी पत्नी हो तो ठीक, तुम्हारा पति हो तो ठीक, लेकिन जिससे तुम्हारा कोई गहरा नाता नहीं है, कोई संबंध नहीं, वो अगर 12 इंच या 10 इंच के भीतर आने लगे तुम तत्क्षण पीछे हट जाओगे। वहां तुम्हारी एक अज्ञात सीमा है, चमड़ी का एक अज्ञात क्षेत्र है जहां तक उसकी तरंगें फैलती है। उन तरंगों के भीतर कोई भी आ जाए तो हम पसंद नहीं करते, अशिष्ट मालूम होती है ये बात।

0: नमस्कार, मैं बोल रहा हूँ सिंगला जधाना, टोक्यो 2020 पैरालंपिक सिल्वर ब्राउन मेडलिस्ट इन शूटिंग। आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8, फील गुड फील लाइफ।
1: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज फिर आप सबका स्वागत करते हैं। जब से हमारी ये सीरीज शुरू हुई है, बहुत से हमें कॉल्स आते हैं, बहुत से ईमेल्स आते हैं और आप सबका एक बहुत लगातार रिस्पॉन्स आता जा रहा है। ढेर सारा प्यार भी मिलता है, लेकिन साथ ही हमें बहुत बार दर्शकों ने लिखकर भेजा कि उनके अनुभव जो हो रहे हैं, जो आप लोगों को मिल रहा है, वो बहुत सुंदर है और जीवन में परिवर्तन आना शुरू हुआ है। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि हर बार हम आपके साथ कुछ ऐसा शेयर करें जो हो सकता है आप ही के जीवन में हुआ हो। तो आज एक बार फिर हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी, उनका स्वागत करते हैं। ओम शांति।
2: ओम शांति।
1: सिस्टर शिवानी, हम एक बात ये करना चाहेंगे कि जो लोगों का अनुभव हुआ है, जो परिवर्तन हुए हैं, वो जो उनकी लाइफ में चेंजेस आए हैं, वो कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है पूरे जितने और नए दर्शक जुड़ते हैं उनके लिए।
2: आई थिंक दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, क्योंकि परमात्मा भी हमें हमेशा यही कहते कि ज्ञान तो है ही सर्वश्रेष्ठ, लेकिन ज्ञान तब मेरे लिए पर्सनल हो जाता है जब वो मेरा एक्सपीरियंस बनता है। तब तक वो किसी और का ज्ञान है, जैसे या कहें पहले वो परमात्मा का ज्ञान है, लेकिन वो ज्ञान, क्योंकि बाबा का ज्ञान मेरी प्रॉपर्टी है ना, क्योंकि शिव बाबा ने कहा जो कुछ मेरा है वो आपका है, लेकिन वो मेरी प्रॉपर्टी कब बनता है, जब मैं उसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ करती हूँ और फिर यूज़ करके सक्सेस मिलती है, एंड देन आई से इट वर्क्स। सो टिल आई कम टू दैट लाइन व्हिच सेज दिस ज्ञान वर्क्स, दैट्स द डे व्हेन आई से ओके नाउ आई एम एट द राइट प्लेस, दिस इज एंड दिस इज गॉड। Even that, let's say the belief to the truth, वो जो journey है, because it starts with the belief कि ये ज्ञान जो है वो direct परमात्मा दे रहे हैं, लेकिन वो मेरे लिए truth कब बन जाता, when I see the transformation in myself, then I say कि you know जो देने वाला है वो जो doctor है, he is right because I'm getting cured,
1: right.
2: So it's a very big thing for any individual.
1: और शिवानी, ऐसा बहुत से लोग मुझे हमारे साथ जो जुड़ रहे हैं वो कहते जा रहे हैं कि मेरे में परिवर्तन देख रहे हो, लेकिन मैं शो पर हूँ तो
2: आपके अंदर सब परिवर्तन देख रहे हैं। I must tell you कि wherever I have gone and whoever I have met, everyone talks about you and everyone says कनुप्रिया को हम देखते आ रहे हैं पिछले 1.5-2 साल से, एंड वो तो बिल्कुल चेंज हो गई है, एंड यू मस्ट नो कि यू आर बिकमिंग अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। दे आर, बिकॉज दे सीइंग यू एंड दे से कि बहन के अंदर इतना चेंज आ गया है, उसको इतना समझ में आने लगा है, एंड दे ऑल्सो फील देर इज अ चेंज इन द वे यू आर प्रेजेंटिंग द होल ज्ञान। सो दे से कि बिकॉज दे आर सीइंग यू एज द एग्जाम्पल ऑन विच द ज्ञान हैज वर्क्ड। सी, इस साइड पर जो भी भाई बहने बैठते उनको तो वो देख ही तब रहे हैं आफ्टर दे हैव स्टार्टेड वर्किंग, लेकिन आपको उन्होंने उस जर्नी पर देख लिया है कि व्हेन यू बिगैन विद इट एब्सोल्युटली रॉ, ओम शांति यू वर सेइंग फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड टुडे व्हेन दे कैन सी दैट इट वर्क्स, तो आपको देखकर हर एक को बहुत प्रेरणा मिल रही है कि यस दिस कैन वर्क।
1: वेरी ट्रू, एंड इनफैक्ट ये हमें अनुभव तब होने लगता है जब हमारी सिचुएशंस जब आती हैं उनमें हमारा रिस्पॉन्स अलग होने लगता है, हम सिचुएशंस के ऊपर उतने उनको अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। तो ऐसा ही आप सबके साथ भी बहुत लोगों के साथ होता जा रहा है, और आज सिस्टर शिवानी के साथ हमारे साथ एक बहुत खास मेहमान है जिन्होंने इस प्रोग्राम को देखा, आप ही में से एक थी, समझा और फिर वो स्टेप उठाया। हम बार बार ये बात करते हैं कि हमें अच्छा लगता है सुनना, बहुत अच्छा लग रहा है सब कुछ सुनते हैं, लेकिन क्या ये मेरे जीवन में हो पाएगा जब मेरे जीवन में सिचुएशन आएगी। वो एक ऐसी ही शख्सियत हैं जिन्होंने उसे अपने जीवन में इम्प्लीमेंट किया। हमारे साथ खास सिंगापुर से भारत आए हुए, इन दिनों भारत में है, समीना जी हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। ओम शांति। आप ही की तरह के गेस्ट हैं, मतलब हमारे साथ, लेकिन आप बहुत इंपॉर्टेंट गेस्ट हैं समीना जी, और एक परिवार का हिस्सा बन चुकी हैं। सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि कैसे हुआ ये सब, कहाँ से शुरुआत हुई, कैसे प्रोग्राम देखा?
3: आई डोंट नो एग्जैक्टली कि कैसे हुआ, लेकिन एक बार चैनल सर्फिंग करने के टाइम पे ये प्रोग्राम देखा और मुझे लगा दिस इज डिफरेंट, यू नो ये रिलीजियस टॉक नहीं है, ये कुछ और है। तो फर्स्ट एपिसोड देखा तो यू नो इट वॉज अ गुड थिंग, यू नो समथिंग डिफरेंट, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन ये कहाँ क्या बोल के आ रहा है इन लोग। And then I felt that this is just talking about life, जो हमारी ज़िंदगी है, हम उसे कैसे अलग बना सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं, या यू नो इफ़ शी इज़ लुकिंग सो काम, मैं ऐसा बन सकती हूँ, बिकॉज यू नो हमारे जिंदगी में इतनी उथल पुथल होती है ना. सो आई फील के ऑलराइट, देन आई थॉट के ओके ये एक ही बार होगा, कभी और यू नो अनदर डे और टू टाइम वापस सर्व करने के टाइम पे वहीं वो उसी टाइम पे प्रोग्राम था. सो आई थॉट ओके दिस इज़ अ डेली शो, यू नो दिस इज़ नॉट अ वन टाइम शो, लेट मी सी. एंड एक फिर हैबिट बन गई, आप लोग अभी जो कहते हैं संस्कार, वो संस्कार बन गया कि नहीं मुझे देखना ही है, किसी भी तरह से मुझे ये टाइम निकाल के देखना है. एंड एवरी डे दैट आई सॉ मुझे लगा दिस इज़ डिफरेंट, ये जो कह रहे हैं ये शायद अगर ये कह रहे और वर्क करता है तो इट इज़ इट कैन बी सच अ ब्यूटिफुल लाइफ. एंड आई थॉट ओके नथिंग टू लूज, नहीं काम करेगा तो नहीं काम करेगा, काम करेगा तो अच्छा ही है. तो स्लोली वेरी ग्रेजुअली आई स्टार्टेड इम्प्लीमेंटिंग रोज जो आपके प्रोग्राम आते उसमें से एक बात पकड़ के मैंने बोला ट्राई करते हैं इसे, ये वर्क है. मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आई थिंक जो ट्राई करना था कि कैन यू समहाउ conquer your anger.
1: I know. That's the biggest thing.
3: Because that is such a immediate reaction. जब कुछ गड़बड़ होता है तो first reaction is anger, stress. क्या you know whether we have some sort of control over that situation. And every time a situation came जहाँ हम volatile हो सकते हैं या गुस्सा हो सकते हैं या you know agitate हो जाते हैं, तो तब क्या हम वो सिचुएशन को संभाल सकते हैं, यू नो. एंड आई फेल्ट दैट एक बार किया, दो बार किया, जब बहुत बार किया तब लगा इट इज़ सो मच बेटर कि तब नहीं होना है गुस्सा, सोचना है करना क्या है. एंड अब गुस्सा अंदर ज़रूर आता है लेकिन बहुत धीमे आता है, यू नो लाइक ओके एक बात को जब हम भड़क जाते थे बहुत बात पे, अभी यू नो थोड़ा वक्त देते हैं, ओके इट्स चैलेंजिंग, बहुत चैलेंजिंग है ये टाइम, यू नो कि गर्मी ठंडी में सब काफ़ी काम रहते हैं लेकिन गर्मी में सबके टेम्परेचर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं. सो इट्स रियली अ चैलेंज बट इट्स वेरी नाइस, क्योंकि यू नो जब हम थोड़ा शांत होते हैं तो सामने वाला भी शांत हो जाता है. आई डोंट नो आई फील इट दैट यू नो जब हम आराम से बात करते तो सामने वाला अगर गुस्से में भी होगा तो उसे बुरा लगेगा. जब वो हमारे से गुस्से से बात कर फिर उस खुद को लगता है कि शी इज़ नॉट स्क्रीमिंग तो कोई ज़रूरत है. और हमारे आदत है, एक्चुअली आदत ये भी है कि एवरीबडी नोज मी एज अ पर्सन हु रिएक्ट्स वेरी क्विकली. सो दे फील के ये ड्रामा करिए, ये यू नो क्या हो रहा है, यू नो या व्हाई